0: عقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: सामीन, अगर किसी शख्स में न तो कोई अच्छाई है और न ही वो दूसरों की मदद करता है, ऐसे शख्स के साथ अपना ताल्लुक कायम करना वक्त का ज़िया है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो न तो ज़ाती तौर पर फ़ायदेमंद हैं और न ही दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अरबी ज़बान की कहावत है, लिमा फी खैर तर्कह खैर। जो शख्स अपने अंदर अच्छाई या फ़ायदा नहीं रखता, जिस शख्स में भलाई नहीं है, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। तो ये कहावत ऐसे शख्स के लिए कही जाती है जो हसद करता है या जो किसी ज़रूरत में दूसरों की मदद नहीं करता और न ही अपनी ज़िंदगी में किसी अच्छाई को अपनाता है। ये शख्स न खुद फ़ायदेमंद होता है और न दूसरों की मदद करता है, इसलिए इससे वाबस्ता होना बेसूद है।
1: Anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। नींद हमारे जिस्म की सबसे बड़ी मेडिसिन है, दवा है। क्या आप जानते हैं कि दिन में जिस्म जो नुकसान बर्दाश्त करता है, रात की नींद उसे बिल्कुल ठीक कर देती है। आज हम बात करेंगे स्लीप हाइजीन पर, यानी नींद को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक नौजवान जो रात भर मोबाइल इस्तेमाल करता, सुबह बहुत ही थका हुआ होता, और फिर जब उसने कंसल्ट किया तो उसने कहा कि नींद की कमी जो है उसकी वजह से आपकी याददाश्त, आपका मूड और जो दिल को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो फिर उन्होंने रात 11 बजे मोबाइल बंद करना शुरू कर दिया। चंद दिनों के बाद ही बेहतरी महसूस की। तो फिर इसमें हमें करना ये है कि जो एडल्ट्स अफराद हैं उन्हें 7 से 8 घंटे नींद जो है वो पूरी करनी है। नींद की कमी की वजह से मोटापा हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, या फिर जो हमारी याददाश्त है वो भी मुतासर होती है। जब आप सोना चाहें, यानी जैसे कि नींद का आपका टाइम है, तो 1 घंटा पहले आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। तो इसलिए हमें करना ये है कि अपने सोने का जो वक्त है वो मुकर्रर करना है। रात में आप कैफीन ना लें, जैसे कि चाय है या कॉफ़ी है वो कोशिश करें कि ना लें, और जो कमरा है वो कुछ अंधेरा हो उसमें और ठंडा हो, और रात को आप दुआ या मुराकबा भी कर सकते हैं। तो अच्छी नींद ज़हनी सेहत की बुनियाद है। नींद वो दवा है जो हर सेल को नया कर देती है। तो नींद वक्त का ज़या नहीं है बल्कि एक इलाज है। तो हम कह सकते हैं कि पुरसकून नींद और पुरसकून जिंदगी। हेल्थ फॉर ऑल,
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। FM 107 दिल से देसी।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत बड़ा और डेंस सा जंगल था, जहाँ चार बकरियाँ रहती थीं। ये बकरियाँ एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं।

और उनका साथ एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज था। हर वक्त वो साथ मिलकर ही अपना वक्त गुजारा करती थीं। हर दिन उनकी रूटीन कुछ ऐसी होती थी कि वो सुबह सुबह उठ जाया करती थीं। वो सब मिलकर जंगल में घास चरने जाती थीं, फिर शाम को अपने अपने घर लौट आती थीं। जंगल के दूसरे जानवर भी इन बकरियों की दोस्ती को देखकर हैरान हुआ करते थे और इनकी दोस्ती और मेलजोल की आदत देखकर इन्हें पसंद किया करते थे। साथियों, ये बकरियां अपनी दोस्ती की बहुत जरूरी हिस्सों को समझती थीं। उनकी असली ताकत तो सिर्फ उनकी दोस्ती में थी। उन्होंने कभी भी अपनी दोस्ती को तोड़ने का नहीं सोचा था। उनका ये सोचना था कि जब भी वो इकट्ठी होती हैं, तो कोई भी शिकारी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस जंगल में काफी शिकारी जानवर रहा करते थे, लेकिन बकरियों का इकट्ठे रहना उनके लिए एक बहुत बड़ी ताकत था। एक दिन जब बकरियां अपनी यूजुअल रूटीन फॉलो करते हुए जंगल में घास चर रही थीं, उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो उनके लिए बहुत गलत साबित हुआ। एक बकरी ने कहा, चलो चलो, आज हम सब लोग एक अलग जगह पे घास चरने जाते हैं। इस तरह हम ज्यादा घास भी खा सकते हैं और एक दूसरे को तंग भी नहीं करेंगे। दूसरी बकरी ने उसको जवाब देते हुए कहा, अरे हाँ, ये अच्छा है। हम सब अपने अपने मनपसंद जगह पर जाएंगे और ज्यादा खाना खा कर आएंगे। तीसरी बकरी ने भी इनकी बात पे इत्तफाक करते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है। हम सब अपनी अपनी जगह पर खाएंगे, फिर सुबह तक वापस मिल लेंगे। ये फैसला उनको इतना आसान लग रहा था कि वो बिना किसी डर के या बिना किसी सोच के अपने अपने रास्ते चल दी। हर बकरी ने अपनी मनपसंद जगह का इंतखाब किया और अपनी दोस्ती को एक तरफ छोड़ दिया। उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि अपनी दोस्ती तोड़ना या अकेले हो जाना उनके लिए किस तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है। जब बकरियां अपनी अपनी जगह घास चर रही थीं, जंगल में एक शेर जो कि बहुत खतरनाक था उनको देख रहा था। शेर को ये देखकर अच्छा मौका लगा और उसने सोचा कि बकरियां आज अलग अलग हैं। उसने सोचा, अगर ये बकरियां इकट्ठी होती तो मुझे इन्हें मारना बहुत मुश्किल होता, लेकिन आज तो इन्हें अकेला मारना बहुत आसान होगा। शेर एक जगह जाकर छुप गया और उसने इन बकरियों को देखा और धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। उसने बकरियों के अकेले होने का भरपूर फायदा उठाया। पहली बकरी जो कि अकेली थी, वो घास चर रही थी और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक शिकार करने वाला जानवर उसके पास आ गया है। शेर ने उस पर चुपके से हमला कर दिया और उसे मार डाला। फिर शेर ने दूसरी बकरी का पीछा किया जो अपनी मनपसंद जगह पर घास चर रही थी। उसको भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस खौफनाक जानवर के करीब है। शेर ने दूसरी बकरी को भी मार दिया। ऐसे ही शेर एक बकरी को मार के दूसरी को भी मारने में कामयाब हो गया। जब तक बकरियां मिलजुल कर घास चरा करती थीं, तब तक तो वो बिल्कुल सही सलामत थीं। लेकिन जब उनकी मौत हुई, तब बाकी जंगल के जानवरों ने समझा कि अगर बकरियां इकट्ठी रहती और अपनी दोस्ती और ताकत का फायदा उठाती तो वो कभी भी इस मुश्किल में नहीं पड़ती। अगर वो अपने पुराने तरीके से अपनी दोस्ती को बरकरार रखती तो वो सब मिलकर शेर का सामना कर सकती थीं और उसके मुकाबले में जीत सकती थीं। मगर जब उन्होंने अपनी दोस्ती तोड़ दी और अकेले अकेले घास चरने का फैसला किया, तो वो शेर का शिकार बन गई। जंगल के दूसरे जानवर जो ये सब देख रहे थे, उन्हें ये समझ आ गई कि आज के बाद कभी भी उन्हें अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अकेले हो तो आप मुश्किल में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी दोस्ती को मजबूत रखते हैं तो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब बाकी बकरियों को इस बात का पता चला कि उन्होंने अपनी दोस्ती को तोड़ दिया था और इसकी वजह से वो शेर का शिकार बन गई थीं, तो उनको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। वो समझ गई थीं कि अगर वो सब मिलकर रहती तो वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रह सकती थीं। उनको ये भी समझ आया कि मिलजुल कर रहना और अपनी ताकत को इकट्ठा करना किस तरह से उनके लिए जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन सकता है। जंगल के सारे जानवर इस कहानी को देखकर समझ गए कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का बहुत आसानी से सामना कर सकते हैं। जिंदगी में कभी भी

दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, अपनी ताकत को इकट्ठा रखते हैं, तो हम जिंदगी के हर पहलू में कामयाब हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिंदगी में हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना जरूरी होता है। दोस्ती में ताकत होती है, और अगर हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम हर मुश्किल का आसानी से सामना कर सकते हैं। कभी भी अपनी दोस्ती को ना तोड़िएगा, क्योंकि दोस्ती में ही असली ताकत होती है। अगर हम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।

0: hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है. एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता. सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है. किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासर होती है. इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समात कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स.
4: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टर्म डिफ्लेशन के बारे में. जी हाँ, इससे पहले हमने आपको समझाया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है. आज हम आपको बताते हैं कि डिफ्लेशन किसे कहते हैं. जब हम किसी भी चीज की कीमतों में गिरावट देख रहे होते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपको इन चीजों को खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे. यही चीज कहलाती है डिफ्लेशन. चलिए मान लेते हैं कि आपने एक मोबाइल फोन एक साल पहले 50,000 कतरी रियाल में खरीदा था, लेकिन अब ये सिर्फ इस साल 40,000 कतरी रियाल का रह गया है. इसका सीधा मतलब है कि डिफ्लेशन हो रहा है. आपको यही मोबाइल फोन खरीदने के लिए अब कम पैसे देने पड़ रहे हैं. लेकिन दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डिफ्लेशन के एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं. जब चीजों की कीमतें गिरती हैं, तो लोग खरीदने से पहले ये सोचकर हाथ रोक लेते हैं कि शायद आने वाले वक्त में कीमतें और गिर जाए, और इसी सोच के चलते इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से अफेक्टेड होने लगती है, या यूं कहे कि इकोनॉमी स्लो होने लगती है. आखिर में तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें चीजों की कीमतें गिरती हैं और इससे मईशत पर असर पड़ता है. इसलिए हमेशा याद रखें कि इकोनॉमी का हर पहलू आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. चाहे कीमतें बढ़ें या घटें, दोनों ही प्रोसेस इकोनॉमी पर असर डालते हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. आगे मजीद मालूमात के साथ वापस से हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी.
3: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं. इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत. दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से. फी अमानिल्लाह.

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने के प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। गुफ्तगू की शुरुआत एक बहुत अहम हकीकत से करेंगे और वो ये कि बाज़ औक़ात इंसान जब दिल में एक सच्ची नीयत करता है कि अब मुझे अल्लाह से अपना ताल्लुक दुरुस्त करना है, अपनी ज़िंदगी में तौबा इताअत और क़ुर्ब इलाही को जगह देनी है, और इस तरह उसे हैरत अंगेज़ तौर पर दिल में एक अजीब सी हल्कीपन की कैफियत महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सीने पर रखा हुआ कोई भारी पत्थर हट गया हो, जैसे पहाड़ जितने बोझ अचानक हल्के हो गए हों। ये तब्दीली दरअसल दिल का रुख बदल जाना है, और जब दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए तो इंसान को महसूस होता है कि जवाब बहुत दूर नहीं, गोया वो एक कदम बढ़ाता है और रहमत के दरवाजे करीब महसूस होने लगते हैं। सामने कराम, मोमिन और महज ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क होना चाहिए। वो इंसान जिसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने कमाने दिखाने और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पूरी करने में गुजर जाए, वो बज़ाहिर बहुत मसरूफ़ हो सकता है, मगर उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई बुलंद माना नहीं रहता। उसके बरक्स मोमिन की ज़िंदगी उसूलों के लिए होती है। वो सिर्फ ये नहीं सोचता मुझे क्या मिलेगा, बल्कि उसकी अहम सोच ये होती है कि मैं किस मकसद के लिए पैदा हुआ हूँ। यही फ़र्क इंसान को महज ज़िंदा रहने से बामकसद ज़िंदगी तक ले जाता है। एक बहुत दिलचस्प और गहरी बात यह है कि इंसान की फितरत ऐसी है कि वो किसी न किसी बड़े मकसद की तलाश में रहता है। अगर उसने अपना आखिरी मकसद सिर्फ एक महदूद चीज़ को बना लिया, मसलन एक ख़ास रकम कमाना, एक घर खरीदना, शोहरत पाना, तो जब वो उस मकाम तक पहुंच जाएगा तो फिर क्या? ये सवाल बहुत से कामयाब लोगों को अंदर से हिला देता है कि अब आगे क्या है। और इसीलिए इंसान का असल मकसद तो ऐसा होना चाहिए जो ख़त्म ना हो, जो हर कामयाबी के बाद भी मज़ीद माना दे, और मोमिन के लिए वो मकसद है अल्लाह की रज़ा। अल्लाह के करीब होना एक ऐसा सफ़र है जिसकी कोई दुनियावी आखिरी लकीर नहीं। जितना इंसान आगे बढ़ता है उतना ही उसके लिए नए दरवाजे खुलते हैं, इल्म में भी, इबादत में भी, खिदमत में भी, अखलाक में भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी के पास करोड़ों हैं, बेहतरीन मकान है, आला मेयार की ज़िंदगी है, लेकिन वो फिर भी शिकायत कर रहा होता है कि ज़िंदगी में मज़ा नहीं रहा, सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। ये तजाद क्यों है? इसलिए कि सुकून और आसाइश एक चीज़ नहीं। आसाइश

अगर इंसान सिर्फ लम्हा देखेगा तो गुनाह खूबसूरत लगेगा, अगर अंजाम देखेगा तो वही चीज़ जहर महसूस होगी। सामने इकराम, बहुत से जरायम और गलत फैसलों के पीछे यही मसला होता है कि इंसान ने सिर्फ फौरी फ़ायदा देखा, अंजाम नहीं देखा। चोर ने दौलत देखी, जेल नहीं देखी। बदनवान शख्स ने पैसा देखा, रसवाई नहीं देखी। झूठ बोलने वाले ने फौरी बचाव देखा, एतमाद के खात्मे को नहीं देखा। तो असल मसला दरअसल यहाँ रुयत की कमज़ोरी है। जो इंसान पूरी तस्वीर देख ले उसके फैसले बदल जाते हैं। कुरान हमें बताता है कि ईमान और तकवा इंसान के अंदर एक नूर पैदा करते हैं। अल्लाह फरमाता है वَأَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, और वो तुम्हारे लिए ऐसा नूर पैदा करेगा जिसके साथ तुम चलोगे। तो ये नूर सिर्फ आँखों का नहीं, ये तो बसीरत का नूर है। ऐसा नूर जो हक को हक दिखाए, बातिल को बातिल दिखाए, फ़ायदे के लिबास में छुपे नुकसान को पहचानने की सलाहियत दे और मुश्किल शक्ल में मौजूद खैर को समझने की तौफीक दे। फ़र्ज़ कीजिए किसी शख्स को बहुत बड़ी रकम की पेशकश की जाए कि बस एक झूठी रिपोर्ट लिख दो, एक गलत गवाही दे दो, एक गैर कानूनी काम को जायज़ जाहिर कर दो। अब एक इंसान सिर्फ रकम देखकर आगे बढ़ता है, दूसरा इंसान ये देखेगा ये माल आएगा मगर मेरे ज़मीर का क्या होगा, मेरे रब के सामने क्या जवाब होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरे अमल के असरात कहाँ तक जाएंगे। ये दोनों लोगों में फ़र्क माल का नहीं, नज़र का है। एक शदीद बारिश के दिन अगर आप किसी शख्स को मुसलसल दौड़ते देखें तो आप सोचेंगे कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। मुमकिन है उसके जहन में कोई वाज़ह मकसद हो, मुकाबला या कोई ख़ास हदफ, फौजी तरबियत। वो बारिश भी बर्दाश्त कर रहा है, सर्दी भी, थकन भी, क्योंकि उसके अंदर एक मजबूत कन्विक्शन है। तो इस मिसाल से हमें ये पता चला कि जितना मकसद वाज़ह होगा उतनी हिम्मत बुलंद होगी, और इस तरह मोमिन की निगाह दूर तक जाती है। वो सिर्फ आज नहीं देखता, वो आखिरत को भी देखता है। सामने कराम, बुलंद हिम्मती की बात हो रही थी, और बुलंद हिम्मत की बात अगर आ जाए तो वहाँ सोबत की बात भी आ जाती है, जिसके साथ आप बैठते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरजीहात आपके अंदर उतरने लगती हैं। तो ज़रूरी है कि आप ऐसे शख्स के साथ बैठें जो कुरान से मोहब्बत करता है, इल्म हासिल करता है, लोगों की खिदमत करता है, अपने वक्त की हिफाजत करता है। तो आपके अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं कुछ बेहतर करूं। आप सोचते हैं कि काश मैं भी किसी खैर के मंसूबे का हिस्सा बनूं, काश मेरी ज़िंदगी भी किसी मकसद के लिए हो। लेकिन अगर सोबत ऐसी हो जहां गुफ्तगू सिर्फ ख्वाहिशात, माल, दिखावे और बेमकसद तफरीक के गिर्द घूमती रहे तो आपकी हिम्मत भी आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह उसी सतह पर उतरने लगती है। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल लदीन आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सादिकीन के साथ रहो। यानी सोहबत इंसान की सिमत बदल देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब कोई अच्छी बात सुन लें तो दिल नरम हो जाता है। बहुत कुछ बदलने का इरादा करता हूँ लेकिन घर जाता हूँ चंद दिन बाद फिर वही हालत। तो अक्सर मसला यहाँ माहौल का है कि अगर आप हर रोज़ ऐसे लोगों के साथ हैं जिनके लिए दीन सानवी है, सेकेंडरी है, जिनकी पूरी गुफ्तगु मादियत और ख्वाहिशात के गिर्द है, तो आपका ताज़ा जज्बा मुसलसल दबाव में रहेगा। कभी इलाज यही होता है कि अपनी सोहबत बदलिए, यानी दोस्तों का, ऐसे लोगों का हलका बनाइए जो आपको अल्लाह की तरफ खींचें, और दोस्त आपके मुस्तकबिल का शरीक हों, यानी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं। बुलंद हिम्मत इंसान की एक बड़ी निशानी यह है कि दुनिया उसकी नज़र में अपनी असल हद में रहती है। वो दुनिया से फ़ायदा उठाता है लेकिन दुनिया उसके फ़ैसलों की मालिक नहीं बनती। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी कन्विक्शंस से चलाते हैं या ट्रेंड से। यानी बुलंद हिम्मत इंसान, जैसा कि हमने कहा, ये माहौल का कैदी नहीं होता। वो सोशल प्रेशर, ट्रेंड, फैशन और लोगों की राय से मुकम्मल तौर पर अपनी शनाख्त नहीं बनाता। आज अगर किसी मशहूर शख्सियत ने कोई लिबास पहन लिया, कोई स्टाइल मकबूल हो गया, कोई नई सकाफती आदत ट्रेंड बन गई, तो बहुत से लोग बग़ैर सोचे उसके पीछे चल पड़ते हैं ना। लेकिन मजबूत ईमान वाला इंसान पूछता है कि क्या मैं ये मेरे उसूलों के मुताबिक है, क्या ये अल्लाह को पसंद है। यानी वो बाहर की आवाज़ों से पहले अंदर की मीज़ान को देखता है। सामने कराम, जब इंसान वाकई अल्लाह को अपने तरजीहात में सबसे ऊपर रखता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि इबादत में लज्जत पैदा

0: हार की वो जा रहा है पूरी शबम गुजार की तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बाहर
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

FM 107. Time check. Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01।

0: हाँ जी हाँ जी, सलाम आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। और आज एक और नया दिन, एक और नया वीक, एक और नए जज्बे के साथ हम और आप एक नया सफ़र आज का शुरू करने वाले हैं। ये भी सफ़र हमारा और आपका 3 घंटे का रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, मुस्कुराहटें हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, आपका साथ है ऑफकोर्स ऑन द नंबर 666-22107। एंड आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ओवर कॉल, उसके लिए नंबर है 4434-3437। तो बताइए, वैसे ये 2 दिन जो थे यानी फ्राइडेज एंड सैटरडेज, आपके कैसे गए? क्या कुछ किया आपने, कुछ खास हो सका इस वीक? या फिर बस आराम करना ही सबसे खास रहा, अपनों से मिलना सबसे खास रहा, किसी खास दोस्त से मुलाकात की, और कुछ नहीं तो कुछ खास काम, आई मीन कुछ आपके अपने पर्सनल काम, वो आपने निपटाए, पूरे किए? क्या कुछ किया तो थोड़ा आप मुझे बता सकते हैं 666-22107 पर। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, थ्रू आउट आपसे बात होती रहेगी, हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। और समर मॉर्निंग्स जो है वो किस तरह से अपने लास्ट वाले, एकदम लास्ट वाले वीक में एंटर करें, इसका भी हमें आइडिया नहीं रहा। तो जब सोचा था कि स्टार्ट हो रहा है सेशन, तो वी आर क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस कि हाँ, ये समर मॉर्निंग्स का जो सेशन, मतलब जो हमारा और आपका साथ रहेगा, आई मीन इनिशियली तो महविश मेरा और आपका साथ था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका हम लोग की छुट्टियों की वजह से। बढ़िया, अब ये बिल्कुल लास्ट वाला वीक है, तो बस चलिए, अच्छा बहुत लग रहा है कि पूरे समर्स हम और आप अर्ली मॉर्निंग एक साथ जुड़े, बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ सीखा हमने। तो आज भी ये सिलसिला आपका हमारा जारी रहेगा, लेकिन हम सबसे पहले अपने शो का आगाज़ करेंगे सुबह के असकार के साथ। तो बस सुबह के असकार, वापस आएंगे तो कुछ और अपडेट, मौसम का हाल चाल एंड ऑफकोर्स आपका हाल चाल जो आप मुझे देंगे 666-22107 पर।
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। मैं हूं नासिया, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो आज मौसम कैसा रहने वाला है? वैसे आज आसमान जो है वो पार्शियली आपको क्लाउडी लग रहा है, बट हाँ धीरे धीरे धूप जो है वो और तेज़ होगी। यानी कहने का मतलब है ऑल टुगेदर आज सनी डे ही रहेगा। टेम्परेचर की बात की जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर है तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस। बट हाँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है और सुबह के टाइम में एग्जैक्टली लाइक 70 के आसपास, तो हो सकता है आपको जो है वो टेम्परेचर महसूस हो 47 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर यूवी इंडेक्स की बात करें तो आज स्लाइटली हाई नहीं है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि हमेशा ही हाई आज उतना नहीं है, 6, लेकिन फिर भी अगर आप आफ्टरनूनस में बाहर निकल रहे हैं स्पेशली लाइक यू नो 10 to 3 इन बिटवीन, तो उस वक्त थोड़ा सा खास ख्याल रखिए, एज वी ऑलवेज से कि आप

जो है वो सनस्क्रीन सनब्लॉक जरूर लगाइए और कोई प्रिकॉशंस जो हो सकते हैं लाइक होल्डिंग द अम्ब्रेलास या फिर सनग्लासेस या फिर कैप्स उन सब का भी इस्तेमाल कीजिए. वहीं पर सनराइज की बात की जाए तो आज सनराइज हुआ है सुबह 5:10 पर और सनसेट होगा 6:02 पर. वहीं बाकी मौसम ठीक ठाक ही है, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है लेकिन हाँ मौसम जो है वो ठीक है. फिर भी जैसे हम आपको कहते हैं कि अभी क्योंकि ये वीक एक आध वीक और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, फिर सितंबर ऑनवर्ड्स या मिड सितंबर से मौसम ठीक होना शुरू हो जाता है. तो बस फिर भी आपको अपना ख्याल रखना है. व्हेन वी से दिस हमारा मतलब ये होता है कि आपको हाइड्रेटेड रखना है अपनी बॉडी को. पानी तो आप ले ही रहे हैं जो कि आपको कैरी करना ही करना है. उसके अलावा हाँ जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन है, क्यूकम्बर है या और दूसरे, इनको कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें. तो ये था आज का मौसम और आज के मौसम के साथ साथ अब बात करते हैं आज के ऑब्जर्वेंसेस की. आज है 23rd of August. तो आज 23rd अगस्त को दुनिया भर में कई अहम इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंसेस हैं और साथ ही इंटरेस्टिंग सेलिब्रेशंस जो हैं वो होते हैं, जिसमें सबसे पहले इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड. ये बेसिकली यूनेस्को की जानिब से उन लोगों की याद में सेलिब्रेट किया जाता है दिन जो स्लेव ट्रेड का कभी ना कभी शिकार रह चुके हैं. अभी तो खैर नहीं है ये बात लेकिन काफ़ी पुराना. और हाँ आज है इंटरनेट डे. डे 23rd of August 1991 को WWW यानी वर्ल्ड वाइल्ड वेब को पब्लिक कर दिया गया था, खोल दिया गया था. और इसी याद में आज इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी का जो है वो जश्न मनाया जाता है. तो ये दिन अपने आप में बहुत ही अच्छा. फिर कुछ लाइफस्टाइल डेज भी हैं जैसे नेशनल क्यूबन सैंडविच डे यानी क्लासिक क्यूबन सैंडविच के नाम एक मज़ेदार फूड सेलिब्रेशन और उसको आज सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये डे है. इसके अलावा है नेशनल स्पॉन्ज केक डे. ये दिन भी होता है भाई. सॉफ्ट एंड जो फ्लफी स्पॉन्ज केक लवर्स हैं ये शायद वो उनके लिए स्पेशली ये डे है. इसके अलावा है नेशनल राइड द विंड डे. ये भी एडवेंचर स्पोर्ट्स और आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार है ये उनके लिए दिन है. इसके अलावा मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि आज ये भी है चीप फ्लाइट डे. अभी कौन सी फ़्लाइट्स उतनी चीप रह गई हैं, बट चलिए ये दिन भी है. कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली फ्लाइट डील्स जो हैं उनसे जोड़ता है लोगों को. अब आज के दिन क्या जो डील्स दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं, क्या आपको मौका मिलता है उन्हें अवेल करने का, ये भी मुझे अपडेट कीजिएगा. इसके अलावा एक और दिन है एंड दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ब्लाइंड डॉग डे. तो कहीं ना कहीं ब्लाइंड डॉग्स की जो हिम्मत है या जो रेजिलियंस है उसे सेलिब्रेट करने का भी दिन है. सो ऑल टुगेदर ये दिन जो 23rd अगस्त है ये सिर्फ एक डेट नहीं है, मैं कहूँगी कि ये ज़िंदगी के जो रंग हैं वो हैं. चाहे बात हो इंसानी हकूक की जैसे हमने कहा या फिर इंटरनेट की दुनिया की या फिर मीठे स्पॉन्ज केक की, हर दिन अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है ना. बस आज मैं भी कुछ नया टॉपिक लेकर आई हूँ, कुछ नया टॉपिक रहेगा, कुछ नई बातें आपके साथ होंगी. डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़ेंगे 6622107 पर. तो कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और उन्होंने सलाम भेजना शुरू कर दिया है. आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सलाम कहते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड इसी के साथ हैं गुल नफीस जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको. और हमें प्यारा सा मैसेज भेजा है, राइट ओके. गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग मुझे कहते हैं और हमारी सारी टीम को गुड मॉर्निंग कहते हैं. एंड ये है यूसुफ शमीम जी का, ओ कैरम डे भी है आज, क्या बात है, इज इट. वैसे बताइए कितने लोगों को कैरम खेलना पसंद है, आप लोग खेलते हैं कि नहीं. अब ये सारे गेम मुझे लगता है धीरे धीरे धीरे धीरे पीछे होते चले जा रहे हैं. आज के बच्चे तो कैरम वैरम खेलने ही नहीं चाहते, उनके हाथ में तो बस फ़ोन रहता है या उनके हाथ में जो आप जानते हैं ई गेमिंग का जो चस्का बच्चों को चल गया है वही बस चल रहा है और बाकी गेम्स तो खेलना ही नहीं पसंद करते. खैर चलिए इस गेम को कैरम को फिज़िकल खेलने से ज़्यादा पसंद करते होंगे इलेक्ट्रॉनिकली. बट एनी वेज यहाँ पर शहजाद जी हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग कहते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग और अल्लाह पाक आपको और आपके सभी सुनने वालों को लंबी उम्र अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. अल्लाह ताला आपको भी खुश और सलामत रखे. इसके साथ हमारे साथ हैं
इनका नाम है मुशीर जी अ वेरी गुड मॉर्निंग हमें अलखोर से सुनते हुए एंड गुड मॉर्निंग कहते हैं और इनका नाम भी हम चेक कर लेते हैं हसन है हमारे साथ अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हसन आपको उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे एंड हुए

कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM

स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। मैं हूं नाजिया आपके साथ, it's 6:30 on the clock and yes,

आज की जो हमारी अपडेट्स हैं सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आज का हमारा टॉपिक होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि तस्वीर फोटो फेस्टिवल कतर ने अनाउंस किया है कि फ्रेम एंड फोकस एग्जीबिशन का सेकेंड एडिशन वो 5th सितंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट करेगा 5th अक्टूबर 2026 तक। जी आपको बताएं कि इस एग्जीबिशन में कतर और उन रीजन के आसपास के रीजन के 12 से भी ज़्यादा फोटोग्राफर्स जो हैं वो अपने काम को डिस्प्ले करेंगे। फोटोज़ में आइडेंटिटी, हेरिटेज, मेमोरी, माइग्रेशन और बिलोंगिंग जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। बेसिकली ये प्रोजेक्ट फोटोग्राफर्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कल्चरल बैकग्राउंड को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ये प्रोग्राम तस्वीर कतर प्रिपरेटरी स्कूल QPS 7 फाउंडेशन और गैलरीज की पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको बता दें कि कोर्स के दौरान पार्टिसिपेंट्स को 11 इंटरनेशनल रेनाउंड फोटो जर्नलिस्ट, क्यूरेटर्स और फिल्म मेकर से मेंटरशिप भी मिलेगी। ऑल टुगेदर तस्वीर के डायरेक्टर खलीफा अल उबैदली ने कहा है कि इस इनिशिएटिव का मकसद जो है वो कहीं ना कहीं लोकल और रीजनल फोटोग्राफी टैलेंट को सपोर्ट करना है और कतर के क्रिएटिव सेक्टर को और भी ज़्यादा मजीद मजबूत बनाना है। तो चलिए ये तो अपने आप में बहुत ही कमाल की एग्जीबिशन जहाँ पे फोटोग्राफर्स आई एम श्योर अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स शोकेस करेंगे और साथ ही कोर्स के थर्ड एडिशन के एप्लीकेशंस भी ओपन कर दी जाएंगी जहाँ पर उन्हें सीखने का भी भरपूर मौका मिलेगा। तो इस अमेजिंग अपडेट के साथ एक और लोकल अपडेट आपके साथ और ये है कतर यूनिवर्सिटी के हवाले से। जी हाँ, कतर यूनिवर्सिटी फॉल 2026 सेमेस्टर के लिए पूरी तैयारियां जो हैं वो अब मुकम्मल हो गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि ऑल टुगेदर 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सेमेस्टर का हिस्सा होंगे। आपको बताएं कि वाइस प्रेसिडेंट फॉर स्टूडेंट्स अफेयर डॉक्टर मोहम्मद दाइब ने कहा है कि एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज सब की सब पूरी तरह से रेडी हैं ताकि स्टूडेंट्स को बेहतरीन यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस मिल सके। जहां यूनिवर्सिटी एकेडमिक एडवाइजिंग, काउंसलिंग, लर्निंग सपोर्ट और करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करेगी जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद करेंगे। आपको बताएं कि क्लासरूम्स हों, लैब्स हों और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं या लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हैं उन सब से पूरी तरह से इक्विप किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को हर तरह की लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो फराहम किया जा सके। जो है नए स्टूडेंट्स के लिए हयाकुम फॉल 2026 एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जहां पर उन्हें यूनिवर्सिटी सर्विसेज, रेगुलेशंस और एकेडमिक लाइफ के बारे में गाइड किया जाएगा। सो ऑल टुगेदर कतर यूनिवर्सिटी फॉल 2026 सेमेस्टर जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर है 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज, सपोर्ट्स और भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, ये तो मैंने एक बताया और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो भी अरेंज किए जा रहे हैं ताकि नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में उनके लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथी और यू नो काफ़ी एडजस्ट करने जैसा हो और उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी दोनों अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की। एंड यस, अब थोड़ी देर में आपके साथ जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो। तो बिफोर दैट कुछ लोग हैं जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, नौशांती हमें सुन रहे हैं वकरा से, सो थैंक यू सो मच। एंड गुड मॉर्निंग नाजिया जी, आपका मॉर्निंग शो रिमाइंड्स मी ऑफ माय फाइनल सेमेस्टर GD क्लासेस इन यूनिवर्सिटी वेयर पार्टिसिपेंट्स शेयर डाइवर्स व्यूज दैट taught us so much, is it? In the same way, the participants on your show enrich my learning and I've been addicted to it. I'm sad that we won't be able to listen to this morning slot after next week, but I have to say you are as good as any university professor. Thank you for all the hard work. Hope you'll join gym soon now. Yes, ये है मीत हमारे साथ एंड थैंक यू इतना प्यारा और इतना टाइम निकाल के इतना अच्छा मैसेज आपने किया। आई एम गोना मिस यू ऑल फॉर श्योर, मैं अपने सभी मॉर्निंग लिसनर्स को मिस करूँगी बट आई होप कि आप मेरे साथ आफ्टरनूनस में डेफिनेटली जुड़ेंगे। एंड जैसे आपने कहा कि आप शायद मेरे पास थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा मुझे मिल जाए और मैं जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो मैं थोड़ी सी लेजी हो जाती हूँ। अभी तो मॉर्निंग में उठना इज़ क्वाइट मैंडेटरी फॉर मी, तो आई हैव नो चॉइसेस लेफ्ट, तो सुबह सुबह उठना है। एंड दैट्स हाउ यू वोंट बिलीव, मुझे थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा मिल रहा था, मुझे पता चलता था कि अरे वाह दिन तो बहुत है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास, बस हम ही थोड़ी सुस्ती में, थोड़ी काहली में या थोड़े से कम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और

वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है या उस तरह से हम उसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते. तो अब मैं चाहूँगी कि मैं अगर उठना मैंने स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग में, तो मैं इस रूटीन को यूँ ही फॉलो करूँ. और जैसे आप मॉर्निंग में जिम करते हैं, आई वुड लव टू

0: वॉइस नोट भेजा है तो मुझे सुनना पड़ेगा, पर मैं आपको बताऊंगी. इसके अलावा हमें एक और प्यारा सा वॉइस नोट है और ये है हमजा का. गुड मॉर्निंग ही कह रहे होंगे आई होप, आई डोंट नो. अच्छा जी, यहाँ पे सलाम कहते हैं रासिक जी हमारे साथ जुड़ते हुए. वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड हमें गुड मॉर्निंग वाला मैसेज और एक सवाल जो हमेशा से हमारे साथ चल रहा है, जो हम जिसका कोई जवाब हम आपको ऐसा दे नहीं पाते, बट आप पूछते रहते हैं और सही है, आपका पूछना बनता भी है. यहाँ पे डी एस हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं. एंड इट्स रियली नाइस लिसनिंग यू, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया जी आपके खूबसूरत से मैसेज का. एंड यहाँ पर एक और मैसेज है एंड लवली मॉर्निंग का मैसेज है रईस खान जी का. वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग आपको. इसके अलावा ये मैसेज किसका है हम चेक करते हैं. मुस्तफ़ा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए एंड सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. तो चलिए, गुड मॉर्निंग तो हो ही गया है. अब आज का जो मुद्दा है उस पर आते हैं थोड़ी देर में आते हैं, बस छोटा सा क्विक वाला ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके साथ जैसे हम वापस आएंगे देन ऑफकोर्स आज का जो हमारा मुद्दा है उस पर बात होगी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो इतना कुछ सीख रहे हैं और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हम सब के लिए, इसको यूनिवर्सिटी क्लास या कुछ भी कहें, लेकिन हाँ ऑल टुगेदर आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट, जहाँ हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो व्हाई नॉट बस अपने क्लासेस अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे अब से थोड़ी देर में. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, येट इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो. मैं देखना चाहूँगी कि मेजॉरिटी किसके साथ जाएगी, क्यों जाएगी, एंड ऑल्सो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली. व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये तो क्वेश्चन पता चलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आपका जवाब एकदम ऑनेस्ट हो. डोंट फील बैड कि हम इधर बोलेंगे तो शायद इस चॉइस पे बोलेंगे तो शायद अच्छा नहीं लगे. नहीं, जो आपको लगता है अच्छा, जो आप जिस चॉइस के साथ जाना चाहते हैं बस वही आपको बोलना है. टॉपिक अभी वापस आते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं.
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत. सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
2: क्रिकेट हो, एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स फोर रन. फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में.
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM.
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की.
2: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं. ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है. इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है. ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है. कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है.

0: मगर जो भी कुरान की सोबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूर

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समा मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपकी साथ 6:46 ऑन द क्लॉक। एंड यस, इट्स टाइम फॉर टीटीटी यानी टी टेबल टॉक का हमारा जो टॉपिक है आज का, उसकी तरफ आ जाते हैं। देखिए, हम सबकी जो लाइफ है वो देखा जाए तो

0: आज अब बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है और हमारे पास और हम जिस रेस का हिस्सा हैं उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं मनी से या पैसे से है। अब देखिए हम जो है आज के टाइम में ओवरटाइम करते हैं, कई बार एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लेते हैं, अपने गोल्स अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का भी सहारा लेते हैं, लेकिन इस दौरान अक्सर हमारे पास जो है वो फैमिली फ्रेंड्स या फिर अपनी खुद की हॉबीज़ के लिए वक्त कम पड़ जाता है। तो मतलब दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ईदर वी टॉक अबाउट टाइम और वी टॉक अबाउट मनी। अब लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, जो तो हमने सुन रखा है, बट एग्जैक्टली क्या इसको आप इस सेंटेंस को आप एग्जैक्टली वैसा ही मानते हैं जैसा कहा जाता है, या आपको लगता है कि नो, कहीं ना कहीं मनी जो है वो टाइम से भी ऊपर है। वैसे असली सवाल मेरे हिसाब से जो है ना वो ये होना चाहिए कि पैसे से क्या हम टाइम भी खरीद सकते हैं? शायद हाँ कि शायद नहीं, लेकिन चलिए इसको तो हम धीरे धीरे आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोगों से जब पूछा जाता है कि आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो उन्हें उनका जवाब होता है टाइम। हालांकि वो टाइम भी उन्हें इसलिए चाहिए कि पैसे ज़्यादा कमाने हैं, लेकिन फिर भी उनका जवाब होता है टाइम। अच्छा, जब टाइम की बात हो तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद टाइम का ताल्लुक फिर पैसे से नहीं है, वो शायद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से है, या फिर आपके हेल्थ से है, या फिर आपके फिटनेस से है, या फिर उन नए स्किल्स या फिर नए हॉबीज से है जिन्हें आप इंजॉय करना चाहते हैं या करना कर नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद उस काम से है जो आपको रिलैक्स करता है, या फिर उन यादों से है या उन फिर मेमोरीज से है जो आप किसी वजह से काम के चलते इतने ज़्यादा काम होने की वजह से वक्त ना निकाल नहीं पाए या फिर उन यादों को बना नहीं पाए। वहीं पर पैसा भी हर तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब पैसा आता है तो बहुत सारी अपने आप में वो अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, फिर आपको बिल्स हैं या फिर जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनका टेंशन कम हो जाता है, फिर आपके लिए बेहतर एजुकेशन होती है, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन बेहतर होती है, कहीं ना कहीं हेल्थ केयर जो है जो आप हासिल करना चाहते हैं वो भी आप कर पाते हैं, कितने सारे नए जो हैं वो ट्रैवल या फिर नए एक्सपीरियंसेस आपको उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और शायद कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ एक अच्छा टाइम तो जो भी स्पेंड होता है वो तो अलग ही बात है, उन्हें सपोर्ट करने का भी मौका मिलता है। तो बस यहाँ पर एक अजीब सी कन्फ्यूजन ये रहती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा पैसा आपके लिए फ्री टाइम खरीदा, मतलब पैसे से फ्री टाइम जो है वो खरीदा जा सकता है, क्योंकि आप काम आउटसोर्स कर सकते हैं या आप जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं। तो देखिए दोनों तरफ जो है वो दलील अपने आप में बड़ी है, और पिक्चर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ी है। तो बस आज मैंने सोचा इस बड़ी सी पिक्चर में जो छोटा सा सवाल हो सकता है जो बहुत ही पावरफुल है वो ये कि आपके हिसाब से आप किस टीम में जाना चाहेंगे, टीम टाइम में, यानी आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आपको कहा जाए कि आप इन दोनों से क्या पिक करेंगे, तो आप टाइम के साथ जाना चाहेंगे या फिर आप पैसे के साथ जाना चाहेंगे, और क्यों, ये भी आपको मुझे बताना है क्यों। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों में से आपने जिसको भी एक को पिक किया उसे क्यों किया। तो चलिए एक बार वापस से आज का जो हमारा सवाल है उसे रिपीट कर देते हैं। टाइम और मनी, वैसे तो ये दोनों एक साथ जुड़ के आते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इन दोनों को सेपरेट किया है। अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप क्या पिक करेंगे, क्या चूज करेंगे, क्या आप टाइम के साथ जाएंगे या फिर आप मनी के साथ जाएंगे, ये आज का हमारा सवाल है। एंड लेट्स सी पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका क्या कहना है, वो किसके साथ जाएंगे। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मैं आपके साथ एक फेमस के साथ।
0: वाह, क्या है आपकी बात शहजादा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो सवाल है ना, तो उसका मेरे मुंह में पहला जवाब यही था कि मैं एक समय हूँ।
0: आप?
1: अच्छा, वक्त, हाँ मैं एक वक्त हूँ और मैं किसी का इंतजार नहीं करता।
0: आप किसी का इंतजार नहीं करते, आप एक वक्त है। ओहो, क्या बात है। तो आप वक्त के साथ है, पैसे के साथ है ही नहीं।
1: वक्त है ना, नाजिम है, वक्त किसी का भी इंतजार नहीं करता।
0: हाँ।

0: और पैसा किसी के पास नहीं रुकता।
1: वाह, ये लाइन तो बहुत सही है आपने, पैसा किसी एक के पास बहुत दिनों तक नहीं टिकता, कुछ के पास टिका हुआ है जैसे कुछ बड़े बड़े लोग।
0: जी जी, और वक्त अपनी जो रफ्तार से हो तो हमेशा चलता रहता है। आप बात अप टू यू, हाउ कैन यू यूटिलाइज बोथ बोथ पर्सन, या पैसा या वक्त, उसको आप कैसे आप यूटिलाइज करोगे, तो वो आपके अपने थिंकिंग, आपकी अपनी प्लानिंग और आपका अपना एक पीसफुल एकदम सेटिस्फाई जिंदगी है ना, किस तरह आप उसको ढालोगे ना, तो ये फिर ये दोनों में डिवाइड किया जा सकता है, पैसे पे भी वक्त वक्त पे भी, कि आप कहाँ पर जाके मतलब कंफर्टेबल हो गए हो, बैठ गए हो, अपना टारगेट अचीव कर चुके हो या कर लिए हो, तो इज वेरी पीसफुल और वेरी गुड।
1: तो आपके हिसाब से वक्त, आप ही कहते हैं टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, है ना, कहीं ना कहीं जो वक्त चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता, पैसे तो कमाए जा सकते हैं लेकिन जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आएगा, सो फॉर दैट वक्त की ज्यादा अहमियत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की अहमियत है, लेकिन वक्त की अहमियत कब है, वक्त की अहमियत, वक्त तो किसी को नहीं ना, वक्त तो अपनी रफ्तार से चल ही रहा है, वो कहाँ रुकने वाला है, वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता है ना, अहमियत कहाँ पर है वहाँ पे, अहमियत किस चीज पर, अहमियत आपकी क्या मेहनत, क्या आपका जजमेंट, क्या आपका टैलेंट, क्या आपकी प्लानिंग, क्या हो सकता है वो, क्या क्या क्या।
1: अच्छा एक चीज नहीं, एक चीज ये भी है शहजादा जी, मान लीजिए आपके पास वक्त ही वक्त है, वक्त आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है, आप ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसे नहीं है, तो अब आप खुश रह पाएंगे ऐसे वक्त में, ये वक्त आप पे भारी नहीं पड़ेगा।
0: नहीं अभी पैसे, अभी आप आपके पास माइंड है, आपके पास ब्रेन है इतना अच्छा, तो आप ऑटोमेटिकली ना वो आप पर है ना, आपका ब्रेन ही आपको है ना आपका इतना हेल्प करेगा, वो नई नई प्लानिंग आपके मेमोरी में आपके दिमाग में लाते रहेगा, यार पैसे तो है नहीं अभी और खाली बैठा हूँ, बिल्कुल अभी ये पैसे आए तो कैसे आए और कहाँ से आए, सही है। हाँ तो इसमें आपके दिमाग का भी बहुत अच्छा सा एक अपना एक रोल है, कि आपके पास कॉन्फिडेंस, टैलेंट या ऐसा कोई हुनर है कि आप उसको यूटिलाइज करके आप पैसा पैदा कर सकते हो, और वक्त तो है साथ में, वक्त तो अपने साथ चल ही रहा है वो अपनी रफ्तार से, तो जिस तरह किस तरह उसको जो है आपके ऊपर है कि आप उसको जिस तरह उसको यूटिलाइज कर ले, बस वो तो वो तो रुकने वाला नहीं है, आप जल्दी कर लिया या बाद में किया या कभी किया या नहीं किया, उससे वक्त का तो उससे कुछ ये नहीं है ना कि भाई इसने मेरे को मेरा यूज लिया या नहीं लिया, वो नहीं, वो तो मैं तो वक्त हूँ, इसीलिए मैंने बोला ना मैं तो एक समय हूँ, मैं अपनी रफ्तार से चलता हूँ, मैं किसी का इंतजार करता ना, तो हर एक उस पर्सनालिटी पे डिपेंड है, हर एक वो इंसान पे, हर एक एक एक बंदे पे या बंदी पे, कि वो अपने आप को किस तरह है ना उन सब में ढालते हुए ना अपनी जिंदगी में।
1: वैसे देखा जाए तो शहजादा जी काफी काफी सब्जेक्टिव है, जिसके पास पैसा नहीं है ना उससे आप पूछे तो वो कहेगा कि नहीं भाई वक्त वक्त का कुछ नहीं करना, हमें तो पैसा चाहिए, वक्त तो बहुत है, हम तो बैठे हैं खाली, लेकिन हमारे पास उस वो पैसे नहीं है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें या अपनी फैमिली के लिए खुशियां बाय कर सकें या जो भी उनका क्राइटेरिया। वहीं पर जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो कहते हैं अरे भाई हमें पैसे वैसे कितना लालच नहीं, हमें तो चाहिए वक्त कि हम अपनी फैमिली के साथ जो कमाया है वो एटलीस्ट अच्छे से स्पेंड कर सकें, उनके साथ वो क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड कर सकें। तो यहाँ पर दोनों ही पक्ष हैं, मैं कह सकती हूँ, जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए पैसे की अहमियत है, और जिनके पास वक्त नहीं होता तो फिर वो उसकी अहमियत को ज्यादा मानते हैं।
0: जी जी, लेकिन दूसरा पहला ये भी पहलू ये भी देख लो ना, दूसरा पहलू कि जितने मालदार, जितने बड़े जो बहुत मतलब हाई फाई जो रईस है, जो मतलब दौलतमंद है, तो वो अपने खाने से पहले अपने आपका शुगर पहले टेस्ट करते हैं और सारा उसमें डाइट फूड कितना है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, वो सारा चेक करते हैं, तो उनको सबको ये सारी चीजों की टेंशन रहती है ना, और पैसा तो सबके पास है लेकिन किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, बस फर्क इतना ही है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बहुत ज्यादा है ना वो जिसके पास नहीं है ना, जो मतलब गुजारा करने के है ना, तो वो उसको देख के ना वो हसरत करता है, यार काश यार मैं ना गुलाब जामुन खा लेते यार, लेकिन नहीं खा सकता, इतनी दौलत है, है कि मेरी तो अभी शुगर इतनी हाई फाई है, मुझे तो एकदम, मुझे तो और जीना है, तो वो अपने कमजोर महसूस करता है।
1: बिल्कुल
0: एक नॉर्मल आदमी, एक मीडियम कैटेगरी जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, तो वो अपने हर चीज वक्त और पैसा दोनों को लेकर बड़ा पीसफुल और बड़ा एकदम बहुत कंफर्टेबल लाइफ में ना सुकून की नींद सो रहा होता है।
1: सही, चलिए बहुत ही अच्छी बात कही कि दोनों ही, और वैसे ये दोनों ही चीजें इतनी टेम्पटिंग हैं कि जितनी भी मिल जाए ना कम ही लगती हैं। इंसान के पास बहुत पैसा हो तो उसके पास अगर वक्त ही ना हो तो वो पैसा सब छोड़ के चला जाएगा, ये बात भी सही बात है। उसने क्या उसको उसका क्या यूज किया, कुछ भी नहीं कर पाया, कमाता रहा, भागता रहा, दौड़ता रहा, एक रेस कर रहा, करता रहा थ्रू आउट, और बस वक्त खत्म हो गया तो खेल खत्म।
0: एग्जांपल में नाजिया में इतनी सारी है ना, पर ये तो स्पेशल को कि सारी कुछ अपनी लाइफ यहाँ से निकाल के दुनिया का वहाँ कर दिया, लेकिन जब जाएंगे ना तो उनको दुनिया भर के परहेज है, वो नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, उनको जहाँ कुछ नहीं, हाँ बस वो बस मतलब एक मतलब यानी क्या है, मतलब इतना स्ट्रगल इतना ये करके ना, तो वक्त को भी इस्तेमाल किया, इतना वक्त लगा दिया और पैसा इतना ढेर सारा उठा दिया, लेकिन खुद के लिए आखिर में क्या पाया, क्या बचा खुद के लिए? एक मतलब एक डिसिप्लिन वाली और एक मतलब एक जो डॉक्टर के इंट्रक्शन के दी हुई लिमिटेड फूड, लिमिटेड लंच, लिमिटेड ब्रेकफास्ट, लिमिटेड सब, लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड सब हो जाएगा, बस लिमिटेड में ही रह के बस लिमिटेड, आखिरकार वो लिमिट भी खत्म हो जाएगी।
1: सही बात है, वो लिमिट भी, वो मुद्दत भी खत्म हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, तो हाँ तो हर मैं बोलता हर एक वो इंसान है ना, हर एक इंसान का अपना खुद का एक अपना एक कैरेक्टर, अपनी एक पर्सनालिटी, एक अपना एक कॉन्फिडेंस, एक अपना माइंड सेट, एक अपना खुद उसका खुद अपना एक वजूद है, एक खुद अपने हर एक इंसान का, तो वो पैसा और वक्त है ना, दोनों से बहुत खूब इंजॉय कर सकते हैं जी।
1: सही, चलिए बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच शहजादा जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मैं वक्त हूँ ये लाइन मुझे याद रहेगी।
0: साथियों को बोल दो मैं गुड मॉर्निंग आबा भाई, तौफीक भाई, जावेद भाई, रईस भाई और सब भाई जितने भी भाई है।
1: अरे तौफीक भाई वापस आ गए क्या?
0: नहीं नहीं अभी नहीं आए, और वो मेरे को है ना मैसेजें कर रहे कि मैं आऊंगा, बताओ तुमको क्या चाहिए, बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं बोला
1: ऐसे परेशान। हाँ वही ना।
0: नहीं नहीं लेकिन उनका जो मिजाज है ना बड़ा मतलब खुश दिल है, मतलब
1: पैसे फेंकने का उनके
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: पैसे उड़ाने का, वो देखते हैं दोनों हाथ से उड़ाऊं कि एक ही हाथ से उड़ाऊं कि दोनों हाथ पैर से उड़ाऊं।
0: हाँ हाँ, तो बहुत मतलब मोहब्बत की है, बड़े अच्छे है, मतलब वो मैसेजेस भी करते हैं सारे को, और मीट करते हैं, आप लोग रेडियो पे बात कर रहे हो ना, मैं बोला हाँ सब लोग है, गावा जी है, रईस भाई है, जावेद साहब है, जावेद भाई से तो कनेक्ट है क्या? अभी जावेद भाई का भी अपना ये जो इनका जो टूर था ये खत्म होगा तो फिर कम बैक करेंगे बहुत जल्दी,
1: तो
0: वी आर ऑल टूगेदर विद 107।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, ऐसा तो आपको तो जुड़े ही रहना है हमारे साथ। चलिए जी थैंक यू सो मच शहजादा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, एकदम फर्स्ट कॉल थी और बहुत ही अच्छी बात हुई, और जैसे मैंने कहा मुझे ये लाइन आपकी याद रहेगी कि मैं वक्त हूँ। चलिए ठीक है, ओके ओके वक्त जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर आज जो है वो बहुत ही कहने को काफ़ी टफ क्वेश्चन है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये सवाल खुद से पूछा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ, मुझे लगा दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है, पैसा भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता ही है, फिर लगा कि अरे पैसा बहुत और टाइम ही ना हो मेरे पास तो फिर कैसा पैसा है ना, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे भी खुद भी कि मैं किस चॉइस के साथ जाऊँगी, क्योंकि दोनों ही अपने आप में जैसे मैंने कहा बहुत ही टेम्पटिंग है। तो चलिए आप लोग किस चॉइस के साथ जाएंगे वो आप मुझे बताइए, एक छोटा सा क्विक मैंडेटरी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर हमारा डिस्कशन जारी रहेगा।

0: FM 107. Time check. Right, दोस्तों वेलकम बैक. टाइम फॉर द टाइम चेक. इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:02.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
0: हाँ जी, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नाजिया आपके साथ. मेरे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग रईसी. पहले तो आई एम सॉरी, आपको थोड़ी देर हमें होल्ड पे रखना पड़ा.
2: नो प्रॉब्लम.
0: अच्छा,
2: मतलब हमारे पास टाइम ही टाइम है.
0: पैसा नहीं है.
2: पैसा हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है भाई. पैसा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह.
0: पैसा
2: दोनों चीज इम्पोर्टेंट भाई. देखो, इफ यू हैव मनी यू पॉसिबल बिफोर टाइम एनीथिंग, मतलब हर काम को आप कर सकते हो. डूइंग एनीथिंग. पैसे के बगैर दोनों की एक अहमियत है मेरे ख्याल से. दोनों की एक अहमियत है.
0: दोनों की है.
2: अगर नहीं है, अगर आप मतलब उसी में अपना टाइम स्पेंड करते जा रहे हैं और आपको मतलब उसका कोई रिजल्ट है. पैसे के बगैर कोई बहुत से काम ऐसे हैं कि आदमी अपनी बहुत मतलब प्लानिंग करके रखता है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत है, बहुत टाइम है, लेकिन पैसा नहीं है. आप नहीं कर सकते हो वो काम को. ये चीज का भी बहुत अहमियत है दोनों का हमारे नजर में. और मतलब दोनों की अपने मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मतलब वक्त का और पैसे का दोनों का आदमी के लाइफ में जरूरत है. बस उसको कैसे आदमी को मैनेज करके चलना है वो अपने अपने माइंड के ऊपर आदमी को डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको लेके चलना है. अब अगर वक्त का कदर हम नहीं किए तो उसमें भी हमारा मतलब जिंदगी का सारा हिस्सा दरहम बराम हो जाएगा. और पैसे का भी कदर नहीं किया. अगर पैसे को भी अगर हम अपने हिसाब से मतलब स्पेंड नहीं किए, अपने बिला जरूरत उसको ये करके रखे और पैसा वक्त इंसान को मतलब ऐसा टाइम कभी कभी किसी को आने के बाद भी पैसा, मैंने बहुत लोगों को देखा कि अच्छा खासा उनका मतलब ये होने के बाद लेकिन उन्होंने उस पैसे को उस चीज को अपने हिसाब से उन्होंने मैनेज नहीं किया और ना मैनेज करने की वजह से वो लोग मतलब नहीं सक्सेस हो पाए. मतलब अपने अपने टाइम में और समझ लो कुछ दिन के बाद में आते आते फिर मतलब उसी जगह पे आ गए. ये भी ये दोनों की एक अहमियत है. उसका कदर और उसका ये जरूरी है मेरे ख्याल से.
0: तो मतलब कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा जो रुझान है वो पैसे की तरफ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? मतलब आप कहते हैं पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है. टाइम तो चलिए जो है सो है, अगर टाइम ही टाइम हो पैसा ना हो तो बड़ा मुश्किल है.
2: पैसे का टाइम ही टाइम, खाली मतलब आदमी को अपने माइंड के ऊपर मतलब ये करके डिपेंड करके मतलब किस तरीके से उसको हमको मैनेज करना है. सबको अपने वक्त का भी मैनेजमेंट अपने हिसाब से करके रखना है और पैसे का भी. अगर हम दोनों को भी अगर अपने हिसाब से छोड़ दिए बिना रस्सी का बांधे तो फिर वो हमारे हाथ से निकल जाएगा. वो एकदम समझ लो कि रुकने वाला नहीं है. ना वक्त रुकने वाला है ना पैसा रुकने वाला है आपके साथ में. तो एक जगह नहीं रुकता है दोनों. बिना जरूरत अगर आपने वक्त को मतलब जाया किया तो भी आपका समझ लो कि आपके जिंदगी में बहुत बड़ा मतलब नुकसान का बाइस बनेगा. और अगर आपने पैसा भी बिना जरूरत अगर आपने मतलब स्पेंड किया, अगर बिना जरूरत खर्च करके और इधर उधर ये किया तो आपका समझ लो कि उसमें भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं. आप भी नाकामी रहेंगे.
0: दोनों की अहमियत है. तो आप मतलब चाहते हैं कि दोनों ही आप पिक करें, दोनों ही चीजें आपको मिले.
2: दोनों को पिक करके हाँ, हमको अपने हिसाब से उसका एक गोल मतलब ये अपना सेटल करके चलना कि हमें किस तरीके से उसको मैनेज करके चलना चाहिए लाइफ में. दोनों की अपनी अहमियत. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी की मदद करना, किसी को मतलब जरूरतमंद को या अपने लाइफ में कोई चीज की जरूरत है कोई ये करने के लिए पैसे की जरूरत है. आपके पास टाइम बहुत है लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आप मेरे ख्याल से कि नहीं सक्सेस हो पाएंगे उसमें, कामयाब नहीं हो पाएंगे. और वक्त को भी अगर आपने अहमियत नहीं दिया तो अब आप ऐसे मुद्दे लेके आती है ना कि
0: समझ में नहीं. ये तो है, चैलेंजिंग हो जाता है मेरे खुद के लिए. ये टॉपिक बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं. मतलब मैं किस चीज को कहूं. पैसे की जरूरत से हम और आप जो है वो डिनाई कर नहीं सकते. टाइम भी बहुत जरूरी है हर तरीके से, हर लिहाज से. मान लीजिए पैसा बहुत हो और आपके पास वक्त ही ना बचे तो वो पैसा बिल्कुल आपके लिए तो बिल्कुल बेकार है. अब कमाते रहे कमाते कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं मैंने देखा उनके पास इतना पैसा है बट देन वो अपनी फैमिली की तरफ घूम के देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला मेरा बच्चा कब छोटे से इतना बड़ा हो गया इसका बचपन मैंने इंजॉय ही नहीं किया क्या ये वक्त वापस जा सकता है अब पैसा तो बहुत है लेकिन वो वक्त नहीं वापस जा पा रहा है वो बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहते थे वो वक्त अब लौट कर नहीं आ रहा तो वक्त निकल गया अब उनके लिए उस वक्त की बड़ी अहमियत हो गई क्योंकि पैसे तो कमा लिए हैं अब समझ में आ रहा है कि वो वक्त चाहिए मुझे तो देखिए दोनों ही चीजें हैं
2: बिल्कुल मेरे ख्याल से अभी देखो एक परदेश से आने वाला बंदा हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि चलो हम जाएंगे और जाने के बाद में कुछ इतना पैसा मतलब करने के बाद में
0: जी
2: और
0: जी.
2: हम अपने वक्त पे आके और अपने अपने आप को सिक्योर करके कोई भी चीज को मतलब मैनेज करके अपना लाइफ को सिक्योर कर लेंगे लेकिन आदमी के अंदर जिस तरीके से पैसा आते जाता है फिर उसी हिसाब से उसकी कसरत उसकी मतलब जरूरत की जरूरत जो है ना उसकी लाइफ में मतलब ये बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है उसके पास बच्चों का उसके फैमिली का बढ़ते जाता है वो आदमी कभी भी मतलब समझ लो कि सेटिस्फाई नहीं हो पाता है कि वो समझ लो कि यार अब बस हो गया नहीं बहुत कम लोग हैं कि जो कि मतलब समझ लो कि 2-5% मिलेंगे आपको
0: नहीं
2: तो 95% लोग को अच्छा ये कर लें तो अच्छा अभी ये कर लें अभी ये कर लें ये कर लें ये कर लें ये वक्त आपको खींचते खींचते खींचते हम लोगों को कितने सालों तक समझ लो कि परदेश में हम अपना स्पेंड कर देते हैं लेकिन हमारी जरूरत
0: पूरी नहीं होती सही बात है दोनों की अपनी चीजें हैं और इसीलिए शायद ये टॉपिक है भी काफी मुश्किल कि और मुझे जैसे कई जगहों पे ऐसा लगता है कि पैसा बड़ा जरूरी फॉर एग्जांपल किसी की आपकी फैमिली का ही कोई बंदा है उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है ऑपरेशन की जरूरत है पैसा अब आपके पास नहीं है वक्त है तो लेकिन वो वक्त आपका उसको ट्रीटमेंट के काम में तो नहीं आना चाहिए तो अल्टीमेटली आपको पैसा अब तो फिर पैसे की अहमियत ज्यादा है लगता है कि हाँ अगर पैसा ज्यादा हो तो शायद लेकिन चलिए ये भी एक लाइन मैंने सुनी है कि कहते हैं ना लोग कि पैसे से आप खुशियां तो कभी नहीं खरीद सकते पैसे से आप चीजें खरीद सकते हैं खुशियां नहीं खरीद सकते
2: मैंने एक की तारीफ नहीं की है नाजिया मैं आज दोनों के साथ हूँ मैं
0: दोनों के साथ नहीं जाना आपको एक के साथ था किसी ना किसी तरह से
2: ये बात अच्छा दोनों आपका मतलब ये था कि लेकिन मैं ज्यादा
0: मैं दोनों के साथ जाऊंगा मानूंगा नहीं
2: मैं पैसे की तरफ ज्यादा तरजीह दूंगा कि ये
0: पैसे की तरफ
2: हमारे इस्लाम ने रोका नहीं है पैसे का मतलब ये करने के लिए लेकिन उसको कहाँ पे खर्च करना है कैसे करना है इस पे भी एक सवाल किया जाएगा हमारे हमारे हमारे हिसाबों किताब एक सवाल ये भी किया जाएगा तुमको इतना माल दिया गया इतना पैसा दिया गया तुमने खर्च करना किया और ये वक्त का भी सवाल किया जाएगा मतलब कि तुमको इतना दिन तक सेहत और ये सब का लेकिन पैसे का भी माल का ये बहुत बड़ी अहमियत है और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ये माल और औलाद ये दो चीज बहुत समझ लो कि तुम्हारे लिए फितने का जरिया मतलब कि इसमें अगर जो बहुत जरूरत से ज्यादा अपने आप को ये किया तो वो मतलब नुकसान उठाने वालों में हो जाएगा ये दोनों की बड़ी अहमियत है
0: दोनों की अहमियत है बट आप कहते हैं फिर भी कहीं ना कहीं पैसे के साथ आप जाएंगे है ना
2: पैसे की तरफ मतलब
0: थोड़ा सा अगर दोनों में से एक हाँ पैसा आप कहते हैं ज्यादा जरूरी है
2: बड़े बड़े अकलमंद लोगों का सारा दिमाग फेल हो जाता है पैसा नहीं होने की वजह से उसका ये न होने की वजह से अभी अभी मैंने अब आज मैं फिर इरफान का बात करूंगा वो जो एक बंदा लड़का है अब आज उसके पास वक्त भी है और अकल भी है सारा चीज लेकिन पैसा नहीं है पैसा नहीं है तो उसने बहुत मतलब अपने अपने लाइफ में उतना अचीव नहीं कर पाया अपने फैमिली को वो सुख नहीं दे पाया ना अपने आप को मतलब वो कर पाया बहुत अकलमंद ही रहे अगर आदमी और पैसे के भी
0: लेकिन एक चीज है वक्त का सही इस्तेमाल करके हो सकता है वो पैसा कमा ले जो कि वो कर रहा है जिसे वो अब सीख रहा है तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। भी है आपकी पास आपके पास कि अगर आप पास वक्त है तो शायद आप पैसा कमा सकते हैं वक्त ही ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं अपने लिए भी नहीं कर पाएंगे औरों के लिए भी शायद उस तरह से ना कर पाए बट देन यस आपका कहना सही है अगर मुझसे भी पूछें तो मैंने भी जैसे कहा कि मैं नहीं कह सकती स्ट्रेट अवे कि मैं वक्त के ही साथ जाऊंगी या मैं वक्त को ही पिक

0: करूंगी, बिकॉज आई बिलीव कि पैसा जरूरी है।
1: 90 और 100
0: अरे तो 110 हो गया, 60-40 रखिए। चलिए, वेरी नाइस एंड थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ऑनेस्टली इस बात को जो है ओपनली और ऑनेस्टली रखा। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि
1: मतलब मुकदमा दायर कर दिया है कि मतलब आप नहीं जा रही है, आप पिछले हफ्ते भी आप लोगों को बहला फुसला के इधर उधर घुमा फिरा के भाग के जाने वाले हैं।
0: अरे मैं कहाँ जाने वाली, मैं तो यही हूँ। बस ये बात अलग है कि आप बिजी हो जाएंगे उस टाइम में।
1: एक फैमिली देखो, एक फैमिली होता है जिस तरीके से, भाई भाई हो या कोई भी हो ना
0: जी,
1: और ये दोस्त रूम पार्टनर ही होता है ना, जब एक दूसरे से समझ लो कि उससे आदमी घुल मिल जाता है उस टॉपिक पे, उसके मतलब बातचीत से और उसकी सारी चीजों से, फिर जब थोड़ा जहनी मतलब थोड़ा सा ये होता है, फिर थोड़े दिन के बाद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समझ लो कि थोड़ा सा अफसोस होता है कि ये थोड़ा सा
0: ये तो है, थोड़ा सा तो लगता ही है। इनफैक्ट मैं भी कह रही हूँ कि मुझे भी लगेगा थोड़ा, क्योंकि आई एम लाइक यूज्ड टू ऑफ दिस मॉर्निंग।
1: वो थोड़ा सा करूंगा कि आपको थोड़ा दिन मतलब सुकून क्या भाई, सुबह इतना जल्दी उठ के मतलब ये
0: सुबह सुबह आना, लेकिन समझ में आना फिर भी ठीक है। As compared to winters, winters में थोड़ा पिछले साल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था एकदम रात में आना, तो अभी समर्स में तो मैंने भी इंजॉय किया। इट्स नॉट रियली दैट बैड कि सुबह उठना उतना चैलेंजिंग नहीं रहा, और फिर आप लोग का अमेजिंग साथ तो बहुत ही अच्छा रहा, ये जर्नी बहुत ही कमाल की। चलिए थैंक यू रईस जी, एंड इंशाल्लाह
1: तमाम भाइयों को जितने हमारे दोस्त हैं, हमारे सलीम साहब आए थे तो उन्होंने मतलब जो उनको भी मतलब उनकी भी अपनी, हर आदमी का एक अपना राय है,
0: वही ना, सब अपनी अपनी राय
1: और अच्छा भी लगता है सबका, थोड़ा सा मुख्तलिफ और अपने अपने बातों को रखते हैं,
0: यही मजा आता है।
1: और तमाम हमारे भाइयों को सलाम आदाब, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने हमारे दोस्त भाई हैं सबको सलाम आदाब। ओके, सलाम अलैकुम,
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सो आज का बहुत ही टफ सवाल है दोस्तों, कहने के लिए बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में किसके साथ जाना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब ज्यादा पैसा भी चाहिए, वक्त भी चाहिए, अब समझ में नहीं आ रहा अगर एक पिक करना है तो हम किसके साथ जाएं। तो मेरे साथ इस वक्त जो है एक कॉलर है, आई थिंक दो कॉलर एक साथ कनेक्ट हो गए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हेलो, पहले तो जिनके लास्ट में, ओके वन एट अ टाइम, आई थिंक दो कॉलर्स मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं।
2: जी जी जी बिल्कुल, दो कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर ली थी
0: आपने। अच्छा,
1: मैं वेट कर लूंगा।
0: अरे वाह भाई वाह, आप तो पहले आप तो एक तो गाबा जी हैं, दूसरे आरिफ जी हैं, राइट? हाँ,
1: पहले गाबा
2: आरिफ भाई आप कीजिए, आरिफ भाई प्लीज
1: पहले गाबा जी को सुनते हैं।
0: अरे वाह, दोनों तय कर लीजिए, एक आध घंटा है हमारे पास, कौन पहले? अरे शुरुआत कीजिए, कौन पहले भाई?
1: गाबा जी को मैंने बोल दिया हूँ।
0: अच्छा, गाबा जी कह रहे हैं, गाबा जी कहेंगे, मैं तो खुद एक डेढ़ घंटा छोटा हूँ आपसे। अरे गाबा जी बोलेंगे, आप कहाँ चले गए? हेलो, नहीं वो तो अभी शायद म्यूट पे चले गए। आरिफ जी आपको ही बोलना पड़ेगा। नहीं कॉल तो ड्रॉप नहीं हुई है, बट उनकी आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक पता नहीं म्यूट हो गया क्या हुआ है। सो आरिफ जी आप बोलेंगे, क्या बताएंगे? आज का जो हमारा सवाल है वो बड़ा ही टफ है आपके लिए, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा पैसा या ज्यादा टाइम?
1: अभी का जो हाल चल रहा है उसके हिसाब से तो पैसा, क्यों टाइम को हम छोड़ के घर पे आ गए हैं, पैसा ही कमा रहे हैं।
0: तो मतलब हर हाल में आप कहते हैं ज्यादा पैसा?
1: हर हाल में नहीं, तो डिपेंड करता है।
0: अच्छा,
1: कुछ इमरजेंसी में तो हम लोग पैसा भी तो छोड़ के घर चले जाते
0: हैं,
1: जैसा वक्त आता है या कोई परेशानी होती
0: है।
1: और उसके लिए वो मतलब
0: अच्छा मान लेते हैं आरिफ, आपके पास आरिफ जी पैसा तो है, बट आपके पास टाइम नहीं है अपनी हेल्थ को देखने का, अपनी जो पर्सनल ग्रोथ हो सकती है उसका ख्याल करने का, कोई नई स्किल को सीखना चाहते हैं उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो ये पैसा आपको लगता है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थ के लिए, अब आपके पास टाइम तो है नहीं कि आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, कुछ और करें, पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, अब ऐसे में पैसा आपको लगता है कि है यूज़फुल, काम आएगा आपके?
1: एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, आज का जो टाइम है ना, टाइम भी है तो लोग मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं।

0: पैसा हो या ना हो।
1: अच्छा ओके तो मतलब आप ये कह रहे हैं लोगों पास टाइम है, सिर्फ प्रटेंड करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है।
0: मैं
1: खुद
0: तो
1: एक बहुत ही अच्छी आपने बात कही, कभी कभी ज्यादा टाइम जो है वो आपकी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देता है। सो राइट, ये बात भी सही कहा आपने, तो फिर आप लेजी भी हो जाते हैं।
0: हाँ, मैंने सोचा कि हाँ एक दिन सो लेते हैं, क्या मुश्किल है। तो उस एक दिन की सोने की वजह से मेरा दो दिन मुश्किल से उठ रहा, बड़ा तकलीफ
1: मेरे को। सही सही, चलिए वेरी वेल सेट। और आपका भी कहना है पैसा है ना, तो अभी
0: पैसा इम्पोर्टेंट है क्यों? हाँ। अगर टाइम इम्पोर्टेंट होता तो हम लोग घर पे होते या कोई अपने ऊपर कुछ आगे पढ़ने का कुछ पर इधर आके बस पैसा कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे कुछ। इधर होता है ना कि अपने आप के जो कोई स्किल डेवलप करो या कोई बिजनेस शुरू करो, थोड़ा टाइम लगा उसमें टाइम दो। पर हम लोग जो फेलियर का डर होता है ना, उसकी वजह से शायद हम लोग बस नौकरी में
1: उलझ के रह चुके। ये तो है सही। तो अभी तक देखा जाए तो पैसे को जो है वो दो पॉइंट्स मिले हैं, टाइम बेचारा एक ही पॉइंट के साथ है। हालांकि मुझे लगा था कि लोग टाइम को बढ़ चढ़ के शायद वोट करें, पर चलिए कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत ऑनेस्टली आके बोल रहे हैं।
0: इमोशनली देखा जाए तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है,
1: और प्रैक्टिकली देखा जाए तो पैसा,
0: प्रैक्टिकली पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे बाबा मतलब 18-20 साल के उम्र से इधर काम कर रहे हैं। वो हम लोग का बचपन भी नहीं जी पाए,
1: है ना।
0: अभी मैं भी उसी टाइम में आ गया, मैं भी अपने बच्चे का बचपन नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं जी, उसके साथ नहीं खेल पा रहा हूँ।
1: वही ना।
0: तो एक हिसाब से देखा जाए तो हम लोग पैसे को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं ना। वो प्रैक्टिकली या ना चाह के भी हम लोग को पैसा को ही वो टाइम देना पड़ता, मतलब
1: यानी पैसे को अहमियत देना हमारी मजबूरी है,
0: मजबूरी बन चुकी है। एक आदमी इधर अगर आके अपना टाइम वेस्ट करके थोड़ा अच्छा पैसा बना रहा है, तो जैसे कि मेरे बाबा इधर से तो हम लोग अच्छा मतलब अपना बचपन गुजारे या फैमिली हम लोग अच्छे से खाना खाए, मतलब जो कुछ होता है ना जो लाइफ स्टाइल हम लोग हमारा अच्छा था। अभी मैं इधर नहीं रुकूंगा, अगर फिर मैं घर से कुछ करने की ट्राई करूँ तो इधर का जो इनकम है घर से इनकम का मैच नहीं होगा, फिर शायद मेरा लाइफ स्टाइल मतलब पहले का जैसे ना रहे, उससे नीचे हो जाए, तो एक वो भी तो प्रेशर होता है ना।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और मैं एक इधर आ गया तो मेरा जो मेरा बच्चा है या मेरी माँ है या मेरे बाबा, वो लोग अच्छे थोड़ा लाइफ स्टाइल जी पाएंगे जो उन्होंने मेरे को दिया बचपन में, मैं अब उनको दे पाऊंगा।
1: सही, चलिए बहुत ही अच्छा जवाब आपका, और आई अप्रिशिएट, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं आपके लाइफ में, वो सारे आप अचीव कर पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। अपना ख्याल रखिए, और गाबा जी हमारे साथ वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अब खुदा हाफिज कहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सो या अब हमारे साथ जो है वो गाबा जी हैं। हेलो।
2: हाँ जी,
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ी देर हमें होल्ड पे रखना पड़ा।
2: वो कोई चक्कर नहीं है मैडम, वो अनफॉर्चुनेटली हो गया, दो कॉल्स कनेक्ट हो गए।
1: हाँ, एक साथ ही दोनों ही नंबर्स हमारे कनेक्ट हो गए। सो हाउज योर मॉर्निंग,
2: बात करके गए आरिफ भाई भी।
1: हाँ बिल्कुल।
2: मॉर्निंग मैडम जी ऐसी है, देखिए जेब तो मेरी खाली है अभी, चाय अच्छा? का कप है डैशबोर्ड पे पड़ा है, और मेरे पास टाइम ही टाइम है।
1: समझा दिया आपने मुझे किसकी ज्यादा अहमियत है आपकी लाइफ में। ये तो है, अगर देखा जाए वैसे तो कहने के लिए टेम्पटिंग है दोनों चीजें, अपने आप में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन पैसे में थोड़ी ज्यादा ताकत है, वो ज्यादा अपनी तरफ तेजी से खींच रहा है।
2: जी बिल्कुल नाजिया मैडम, आपने बात की ना सर्जरी के टाइम बंदे को पैसे की जरूरत होती है। हाँ। तो नाजिया जी मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, मैं था चंडीगढ़ में, तो मैं क्या हुआ, मेरी मासी जी की सर्जरी थी वहां पे ब्रेन की। ठीक है, वो अच्छे खासे हैं मैडम, पैसा भी है उनके पास, सही सिस्टम है। ठीक है मैडम जी, जब मैं गया पीजीआई हॉस्पिटल, उससे पहले जो मेरी फीलिंग थी बहुत खुश थी, एकदम जबरदस्त, क्योंकि बाहर का माहौल ऐसा है चंडीगढ़ का। जैसे ही मैडम लिफ्ट खुली और मैं कॉरिडोर में एंटर हुआ, मैंने लोगों को देखा मैडम, इवन आप ओपीडी छोड़ दीजिए, ओटी छोड़ दीजिए, जो कॉरिडोर है ना मैडम, उसमें ही लोगों को बैठने की

0: जगह तक नहीं थी बैठने की लेटने की। वो ये बात नहीं अभी मैडम वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होता है, मगर वहाँ पे मैडम इतनी ज्यादा भीड़ रहती है ना, तो बंदे को बिल्कुल भी जगह तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे बहुत यंग के सिस्टम ऐसा है।
1: सही।
0: तो मैडम अगर मैंने वहाँ पे रात का जब मैंने सिस्टम देखा ना, आप यकीन मानिए ठंड के दिन से दिसंबर जनवरी के लोग बाहर ही सोते हैं, ये बात नहीं है भी उनके पास पैसा नहीं है, पैसा मैडम हर किसी के पास है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। जो बाहर का सिनेरियो था ना मैडम, बंदे जमीन पे अपने गद्दे डाल के लेटे हुए हैं और यकीन मानिए मैडम उनके दरमियान एक उंगली का भी फासला नहीं था।
1: ओहो।
0: इतनी ज्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे। तो मैडम आपकी वो बात सुन के ना सर्जरी वाली, मेरे को वो चीज याद आ गई कि बंदे के पास पैसा भी होता है, सारा सिस्टम भी होता है, मगर वो टाइम को बंदा बाय नहीं कर सकता।
1: नहीं, बात तो है, वही चीज है ना कि खुशियां हम लोग कहते तो है कि पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन हर खुशी आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। चीजें तो खरीद सकते हैं, खुशियां नहीं खरीद सकते। अब देखिए आपने जैसे कहा पैसा तो है इनके पास, आराम भी नहीं खरीद पाए उस तरह से, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आप मजबूर हैं, यू हैव नो चॉइसेस, कोई दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, सो दैट यू हैव टू गो विद इट, कुछ और है ही नहीं। तो वो है कि पैसा है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है, ये बात तो है।
0: सब कुछ नहीं है। अगर मैं मैडम दूसरी तरफ आता हूँ, मैं अंबानी साहब को देखता हूँ,
1: उनके लिए तो टाइम
0: इज मनी, मैडम दुनिया ही बिल्कुल अलग है जी।
1: हाँ, ये देख लीजिए। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये लाइन भी अपने आप में बहुत गहरी है। टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल, व्हेन आई से दिस, तो हर मिनट का सही इस्तेमाल। अब उसमें सेकंड्स, आप इन जितने भी बड़े लोग हैं ना, इनके जब आप इंटरव्यू सुनेंगे तो एक चीज़ है कि टाइम को मैनेज करना, हर किसी ने कहा है, हर किसी ने कहा बस अपने टाइम को, क्योंकि 24 घंटे सबको मिल रहे हैं ज़िंदगी, अब उसको किस तरह से यूटिलाइज करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें उन्होंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने के लिए खुद को कंपेल कर रखा है, क्योंकि हम नहीं होते कर पाते, हम लोगों का हम स्केड्यूल्स अपना बनाते हैं, अपना रूटीन सेट करने की कोशिश करते हैं करते, बट उसे उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं आप? मुझे नहीं लगता हम में से कोई करता है। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे ऑफिस जाना है करना है, ये सब तो हमें मैंडेटरी है कि उस टाइम को फॉलो ही करना है, अदरवाइज हम बहुत सारी चीज़ें नहीं करते, हमारी मूड पर है, दिल नहीं हुआ तो हमने नहीं किया, जिम नहीं गए, वॉकिंग नहीं गए, है ना। तो ये हमारे लिए बड़ी फ्लेक्सिबल विंडो है, उनके लिए बहुत ही रिजिड विंडो है, वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं उन चीज़ों को, और शायद ये भी एक वजह है कि वो पैसे कमा रहे हैं, बिकॉज टाइम का सही यूटिलाइजेशन मौका दे रहा है उन्हें पैसे कमाने का।
0: जैसे अपना आरिफ भाई बता के गए ना मैडम, टाइम तो हर किसी के पास होता है। देखिए जिंदगी में पूरा पैकेज तो मैडम किसी को भी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ हर बंदे की लाइफ में मिसिंग रहता है, चाहे हेल्थ से हो, चाहे रिश्तों से हो, चाहे कुछ भी हो, मगर फिर भी अगर आप बोलोगे भी आपके पास टाइम नहीं है मैडम, ये बात तो फिर गलत है ना।
1: जैसे उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं मोबाइल, वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो मतलब टाइम है।
0: बिल्कुल नादिया जी, आप अपनी और मेरा कंपैरिजन कर लीजिए, देखिए आपका कितना ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, इंटरव्यूज का, जॉब्स का, ये वो, मगर फिर भी आप स्क्रॉल करते हो ना मैडम।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा,
0: 100% स्क्रॉल करते हो आप इंस्टा।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100%, उसके बगैर तो ऐसा लगता है जैसे कुछ तो मिसिंग है। वो कहीं ना कहीं हमारा एंटरटेनमेंट, जैसे हम लोग पहले भी टॉपिक पे बात की, वो एंटरटेनमेंट है, वो तो चाहिए बीच में आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन रिलैक्स करे। अब हम हर वक्त इतने प्रोडक्टिव भी नहीं रह सकते, ये भी एक पॉइंट है, हर वक्त आप इतने प्रोडक्टिव कैसे रहोगे? पता नहीं, कुछ लोग ट्रेन कर लेते हैं अपने आप को, तो आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक कि कोई हर वक्त इतना प्रोडक्टिव हो सकता है। थोड़ा है
0: मैडम, आपने टाइम को यूटिलाइज करने की बात की ना, मेरे को दिमाग में एक बात याद आ गई
1: जी।
0: टाइम को मैडम यूटिलाइज करना, जैसे कमान के अंदर वो तीर बंदा फंसाता है ना, बस उसको सही जगह पे फंसा के सही जगह पे निशाना लगाने वाला होता है सिस्टम।
1: अगर
0: आपने वो कमान में सही नहीं लगाया ना मैडम तीर, वो कभी लेफ्ट जाएगा कभी राइट जाएगा, आपकी पकड़ और उसमें सेटिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए,
1: निशाना
0: फिर अपने आप बुल्स की आई हिट हो जाएगी।
1: सही बात है। और ये भी हमें नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है, आई मीन टू से कितना मौका हमें मिलेगा, कितनी बार हमें चांसेस मिलेंगे हिट करने के, ये भी वी डोंट नो, है ना। तो बस जो एक चांस मिले उसी में अपना बेस्ट

0: लिस्ट दिखा दो। ये है
1: बाकी मैडम, आप मेरे से जेन्युइनली पूछना चाहोगे, आई विल गो विद मनी।
0: सेम बाबा जी, सेम सेम
1: जी। अगर मैडम मेरे पास मनी हुई ना, तो मैं अपने आप ही अपने अच्छे दिन ले आऊंगा।
0: फिर मेरा टाइम है सब सही हो जाएगा, मुझे मनी चाहिए। चलिए ये बात भी है, अभी तक जो है वो सिर्फ सलीम जी ही हैं जिन्होंने कहा नहीं, टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि वैसे देखा जाए, अगर आप किसी से वैसे किसी से पूछें तो वो यही कहेगा कि हाँ टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समझ में आता है प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल हम जितना जूझ रहे हैं चीज़ों से, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं पैसा मिल जाए तो शायद हमारी वो सारी परेशानियाँ, वो तकलीफ जो हैं वो सब दूर हो जाए। सो फॉर दैट हमारे जहन में पैसा आ रहा है। यहाँ पर मैंने हेल्थ भी रखा था, लेकिन हेल्थ हटा दी, फिर मुझे लगा कि एकदम एक साइड चला जाएगा जवाब, बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा, हर कोई हेल्थ कहेगा क्योंकि वो तो टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए मैंने वो कट करके सिर्फ दो ही रखे। फिर मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होगा लोगों को पिक करना, एंड देखते हैं किसके साथ लोग जाएंगे। बट
1: जी सही। बस लास्ट में नाजिया मैडम जी, बस एक मिनट दीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा
0: जी।
1: जैसे शहजादा भाई और अपने रईस भाई बात करके गए ना,
0: हाँ।
1: नाजिया मैडम जी, ये जो आपका ये वाला शो है ना,
0: हाँ।
1: आपने इससे पहले बहुत ज्यादा शो किए हैं, यकीन मानिए ये जो आपका शो है ना, जब आप छोड़ के जाएंगे तो बंदों को डेफिनेटली फील होगा।
0: इवन मुझे भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मुझे भी लग रहा है।
1: शो से अटैचमेंट ऐसी है ना मैडम हर किसी की, क्योंकि हम लोगों को भी एक्साइटमेंट रहती है ना, सभी लिसनर्स कॉलर्स आते हैं आपके।
0: जी जी ये तो है,
1: तो बहुत अच्छा लगता है मैडम।
0: मैं भी मिस करूंगी, लेकिन चलिए इंशाल्लाह फिर कभी ऐसा मौका जरूर आएगा।
1: तू भी वेरी ऑनेस्ट नाजिया जी, आपकी जिंदगी में जो आपको अवार्ड्स मिले हैं, जो भी आपने अचीवमेंट्स रिसीव की हैं, उनमें आपका ये भी शो शामिल होगा आने वाले समय में। थैंक यू मैडम।
0: अरे जी, थैंक यू सो मच, यू बीन सो काइंड ऑलवेज, हमेशा ही बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स एंड थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियन। यू टू टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आज मैंने जो सवाल रखा है बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे, मैंने जैसे कहा अभी तक मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए, तो आप लोगों से जवाब जानने की कोशिश है आपके लिए। अगर आपको पिक करने हैं दो चॉइसेस में से एक चॉइस के साथ जाना है, तो आप किसके साथ जाएंगे, टाइम या फिर मनी? एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बस गर्मी के साथ जी रहा हूँ।
0: गर्मी के साथ जी रहे हैं,
2: सर्दी सर्दी है।
0: हाँ थोड़ी गर्मी तो खैर, लेकिन अच्छी बात यह है कि बस अब थोड़े ही दिनों की है, इंशाल्लाह मौसम अब बेहतर होना शुरू होगा। हाँ इतना काट लिया आपने तो बस एक आध हफ्ते।
2: आपका सवाल तो मैं सुन तो रेडियो सुना समथिंग आधे घंटे से,
0: अच्छा।
2: सवाल का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कॉलर से और आप में बात करते
0: अच्छा,
2: थे समझ में आया, टाइम या फिर मनी।
0: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझा, तो क्या आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
2: पहले तो मैं इससे शायरी बोल देता हूँ।
0: अच्छा इरशाद।
2: ग्यारह मेरा नेपाल, जी रहा हूँ कतर में, 20 ईयर्स तो मैंने गुजार दिए है दो पैसे कमाने में।
0: 20 साल से आप?
2: 20 साल से मतलब कमा रहा हूँ अपने पैरों पे।
0: तो क्या वक्त पूरा पड़ा आपको पैसे कमाने के लिए, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कमा लिए बहुत इनफ पैसे हो गए, या अभी भी और वक्त चाहिए?
2: मेरे पास वक्त नहीं है तो उसको ये तो शायद मेरे घर से अब 48 घंटे करना चाहिए दिन रात मिला के, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा पास भी जिसका पास काम है उसका पास भी 24 आवर्स है, जिसका पास काम नहीं उसका पास भी उतना ही घंटा है, तो टाइम कहाँ से, टाइम तो उसी में से निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मेरा सैलरी 1000 है, उसी में से बचाना है, उसी में से खाना है, तो टाइम तो भाई आपको निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। तो पैसा तो दुनिया के एतबार से तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, और दिन के एतबार से तो ईमान बहुत जरूरी है।
0: नहीं जैसे इन दोनों में से सिर्फ एक ही चॉइस के साथ आपको जाना है, मतलब आपके आपके ऊपर ही कंपल्शन है कि दोनों में से एक ही के साथ आपको जाना है, तो पैसे की तरफ ज्यादा आपका रहेगा रुझान या फिर आप चाहेंगे कि टाइम?
2: मैं तो बस इसमें कहूंगा कि बस मेरा चॉइस तो 90 नहीं बल्कि 100% पैसा है, क्योंकि अगर मैं कमाऊं या ना कमाऊं टाइम तो वही रहेगा, अगर नहीं कमाऊंगा तो पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं, पर टाइम तो 24 आवर्स रहेगा मेरा साथ। पर मैं पैसे के साथ जाना चाहूंगा।
0: आप पैसे ही के साथ जाना चाहेंगे, चाहे आपको लगता है कि अच्छा पैसे आपने कमा खूब लिए, मान लेते हैं आपने बहुत पैसे अच्छे से कमा लिए, लेकिन अब वो अटैचमेंट या वो जो फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर पाते वो नहीं कर पाए। अब आप मान लेते हैं कि ओल्ड एज में आ गए, अब आप कुछ करने की पोजीशन में, आप पैसे तो बहुत कमा चुके हैं, अब वो पैसा अच्छा लगेगा। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। तो देखिए आज जो हमारा सवाल है, मैं कहूँगी है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, चॉइस भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, समझ में आ नहीं रहा है मेरी, जैसे मैंने खुद भी कहा कि समझ में मेरी भी नहीं आ रहा है कि मैं किस चॉइस के साथ जाऊँ, शुड आई गो विद मनी और शुड आई गो विद टाइम। बट हाँ मैं चाहूँगी कि आप में से कोई मुझे भी कन्विंस करे कि किसके साथ जाना ज़्यादा बेहतर है, और आप अपनी चॉइसेस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने हेल्थ रखा था, हेल्थ हटा दिया क्योंकि मुझे लगा फिर तो एकदम क्लियर कट लोग हेल्थ के ही साथ जाएंगे, यहाँ पे शायद फिर भी कुछ लोग टाइम के साथ जाएं, मे बी, और हो सकता है ज़्यादातर टाइम के साथ जाएं, बट यहाँ आप लोगों ने मुझे सरप्राइज़ किया क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अभी तक मैं कहूँगी 1, 2, 3, 4 लोगों ने जो है वो पैसे को ज़्यादा अहमियत दी है। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमाल जी हैं, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेहमान बताएं कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, और कैसी जा रही है आपकी सुबह, काम वाम सब ठीक अच्छे से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मालिक का रूह की तरह से बहुत बेहतर है
0: अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आपने मेरा आज का जो सवाल है वो सुन रखा है।
3: क्या कहूँ मैं, इतना गुंजलक मौजू है आज का आपका और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत देर से दिमाग चला रहे हैं, बहुत देर से दिमाग चला रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कई चीजों से उसका मुआवजना भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो अलग अलग तरह से जवाब भी मिल रहे हैं। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जिन जिन चीजों को मैंने अभी आते हुए आपका मौजू सुनते हुए, लोगों के मतलब क्या कहते हैं तासुर सुनते हुए, एक जो अखज किया है मैंने, वो मैं सोचता हूँ कि आपके सामने रख दूं, और आपके हवाले से सारे मतलब क्या कहते हैं, अरे आप हमारे लिसनर वगैरह भी सुन लेंगे। मैं सोचता हूँ कि उसके बाद फिर आप ही से पूछूंगी, मैडम कैसा लगता है आपको, क्या चीज इंतखाब करना चाहिए?
0: चलिए कुछ आपने भी मेरी तरफ ही जो है ना वो घुमा दिया है। मैं खुद भी बता रही हूँ ना, ये पहला ऐसा टॉपिक है जिसके साथ मैं बिल्कुल 100% श्योर होके एक तरफ जा नहीं पाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बता हूँ, क्योंकि मैं भी अपना टेक जो है वो सोच के रखती हूँ। मुझे नहीं समझ में आया, मैंने कहा आज मैं ऐसे ही बैठूंगी, देखती हूँ कि जो लिसनर्स कहेंगे उस हिसाब से जो मेरी समझ में आएगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने अपने आप को बिल्कुल प्लान नहीं किया है कुछ भी कि लास्ट में मैं क्या कहने वाली हूँ, मैं किधर जाऊँगी।
3: देखिए मैम, एक जहाँ तक बात रही वक्त और पैसे की, दोनों मतलब अपनी जगह पे अहमियत कम नहीं रखते हैं, मसला ये दोनों जगह पे अहमियत कम नहीं रखते हैं। किस लिहाज से आप सोचेंगे, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, सही है? पैसे कमाने के लिए भी वक्त दरकार है ना भाई,
0: सही बात है, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट है।
3: अगर अगर वक्त नहीं है आपके पास तब आप कहाँ से पैसा कमाएंगे कोई भी चीज, और अगर आप वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पैसा या और जो भी चीज हो, जिस भी चीज के लिए आप अपना वक्त दे रहे हैं तभी उसको पाएंगे, उससे पहले तो नहीं पा सकते। तो वक्त की अहमियत कम नहीं। अच्छा, समाज में अगर आपको जीना है, और समाज की क्यों बात करते हैं, ऊपर वाले ने भी कहा है ना इस बात को, अल्लाह भी कहता है कि बंदे तेरे कंधे पर मैंने एक जिम्मेदारी का बोझ रखा है, उसे अगर तू निभाता है अपने मतलब पूरी तरह से तो गोया तुझे सदके का सवाब मिलता है। बल्कि यहाँ तक सूरह नबा में कुरान की आयत है, उसमें अल्लाह ने कहा है कि आप रात को सो जाओ, वो जालन लैल लिबासा वो जालन नहार माशा, है ना, मैंने दिन बनाया ही इसलिए है कि ताकि तुम अपने जरिए मास के लिए जाओ, ढूंढो तलाश करो। लोग कहते हैं ना कि मतलब पैसा एक ऐसी चीज है कि जो मतलब अगर इस्लामी तौर तरीके से देखा जाए तो भाई नहीं, उसकी जरूरत है, वो हमारे जिंदगी की एक ऐसी अहम जरूरत है कि जिससे आप समाज में बड़े इज्जत आबरू से बहुत कायदे से जी सकते हैं। अपने जिम्मेदारियों का बोझ आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत, उनकी परवरिश पर्दाख्त के लिए आपको कहीं ना कहीं उस चीज की जरूरत है, आपको जिंदा रहने के लिए वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कहना पड़ेगा कि भाई वो भी अगर देखा जाए तो उसी के हुक्म की फरमाबरदारी हो रही है।
0: सही बात है,
3: सही है। और एक दूसरे नाहिए से

0: शायद आपको भी मतलब थोड़ी सी संतुष्टि हो, आपको भी वो कर सकें और खुद में भी ये तसल्ली हो कि हाँ ठीक है, मतलब दोनों के में से किसी एक की तरफ जाना है तो मैं अपना जवाब मुकम्मल करने में कहीं ना कहीं सक्षम हूँ, वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब मतलब नजर उठा रहे हैं तो जैसे सुबह शाम है, जैसे जिंदगी और मौत है, जैसे और तमाम चीजें हैं, उसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के साथ ऐसा मतलब जुड़ा हुआ है कि अलग कर ही नहीं सकते हैं। मैंने आपसे वही एक बात कही कि एक छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर आपके पास वक्त है तभी तो आप पैसा कमा पाएंगे।
1: बिल्कुल, वक्त है तभी तो पैसा कमा पाएंगे। और देखिए वक्त की उस वक्त एहसास कमी महसूस होती है जब मान लीजिए आपके एल्डर पेरेंट्स हैं, खुदा ना खास्ता खुदा ना खाता आप उन्हें खो देते हैं, पैसे कमाने के लिए आप लगे रहे शायद आपने उन्हें वक्त ही नहीं दिया और अब वो नहीं है आपके बीच, तो क्या उन पैसों से उन्हें वापस लाया जा सकता है? शायद
0: 22 रमजान का दिन था और वालिद साहब एतकाफ में बैठे थे और वही मस्जिद में उनका इसी जो पिछला रमजान गुजरा है, और सुबह को उठ के मैंने बहुत कोशिश कर ली, जितना हो सका, जितना मेरी बस में था, जितनी मेरी इस्तेताद थी उतनी कोशिश कर ली मैंने, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला और मैं नहीं जा पाया।
1: देख लीजिए अब ये भी सिचुएशन है कि पैसे हैं फिर भी नहीं है।
0: ये था कि अगर 5,000 का भी एक टिकट नहीं, 5,000 रियाल का भी एक टिकट मिलेगा तो भी मैं ले लूंगा और चले जाऊंगा, लेकिन मेरी लाख जद्दोजहद, लाख तगड़े कोशिश करने के बाद में मुझे टिकट नहीं मैसर हुआ और मैं नहीं जा सका।
1: तो इसमें मुद्दा बताएं क्या समझ में आने वाला है कि टाइम निकाल के उन छोटी छोटी चीजों को भी जो है वो लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, जो आपके और हमारे अपने एग्जिस्टेंस के लिए, जो एग्जिस्टेंस की वजह है, जिनमें हमारे पेरेंट्स हैं। अब हम कमाते रहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता शायद एक कॉल करने का भी, है ना? और मतलब ये तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया एक एग्जांपल, ऐसे कितनी चीजें हैं मैंने देखा लोग कमाते रहते हैं और अपने बच्चे की शादी में नहीं जा पाते।
0: मैम सही कह रहे हैं आप,
1: देखो
0: सुनिए, हमारी मम्मा बोलती थी कि मतलब मेरे खानदान में या मेरे घर में पूरे तमाम बच्चों में वो मेरे लिए बोलती थी कि ये मतलब मेरे सर का ताज है, ऐसे कभी हर माँ अपने बच्चों को लाड प्यार से बोलती है, वो बार बार ये बोलती थी। लेकिन मैं कतर आया और अगर देखा जाए तो घर की गरीबी ही दूर करने के लिए मैं घर से निकला था और बहुत खुशी खुशी निकला था और ये सोच के निकला था कि मैं अपने माँ बाप को आराम की जिंदगी दूंगा, मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े।
1: जी, जी, जी।
0: और आके 2 महीना हुआ था और उस वक्त है ना वहाँ पे जैसे आज का दौर है कि पहले से ही मेडिकल हो जाता है तब लोग यहाँ पे आते हैं, ऐसा नहीं था, यहाँ पे आने के बाद मेडिकल होता था। वो मंदूब मेरा मतलब तमाम चीजें लेके और सबमिट किया मेडिकल के लिए और उसी दिन मम्मा के मेरी तबीयत खराब हुई, रात में लेके गए, दवा करा के लेके आए और ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद ऐसा लगा मतलब बात भी मैंने किया उनसे, बातचीत हुई, सारी चीजें हुई और उसके बाद 1 या 2 घंटे के बाद उनको अटैक आया, खत्म हो गए, कभी भी नहीं जा पाया।
1: वही चीज़ है कि देखिए पैसा है बहुत ज़रूरी, लेकिन जो वक्त आप गुजारते हैं, जो एक अच्छी मेमोरीज आप बना पाते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, वो बहुत बहुत कीमती है, वो शायद पैसे से ज़्यादा कीमती है। ये मैं कहना चाहती हूँ, शायद हम वक्त को इतना कीमती ना समझें लेकिन उन पल को, उन मेमोरीज को, उन मोमेंट्स को, इंसिडेंट्स को हम कीमती समझते हैं और वो वापस नहीं आते, चाहे हम बहुत पैसा खर्च कर लें फिर भी वापस नहीं ला सकते, तो ये बात तो है। लेकिन हाँ फिर भी पैसा इम्पॉर्टेंट है इक्वली, अगर पैसा नहीं होगा तो हम टिकट लेके जा नहीं सकते, पैसा नहीं होगा तो शायद हम इलाज नहीं करा सकते, तो ये दोनों ही जो है अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनीवेज बट आपने बहुत ही अच्छा गुड बैलेंस क्रिएट करते हुए इस आंसर का जवाब दिया एंड बहुत ही अच्छा जवाब दिया, काफ़ी हद तक मुझे भी लग रहा था कि मैं भी शायद यही कहती जो आपने कही ये बातें।
0: सही बात यह है कि समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी, एक एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, कि जहाँ पर आप देखते हैं कि एक आदमी दौलत सरवत के साथ में आसमान छू रहा होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वक्त ना मिलने के कारण फिर उसकी आंखें अश्कबार होती हैं, ऐसा भी देखा गया है। कई एक मिसालें मैं आपको बता सकता हूँ, एक दो नहीं, कई एक मिसालें बता सकता हूँ। तो उस जगह पर आप सोचिए कि वक्त कितना कीमती है, या वक्त का हासिल होना आपके लिए, वक्त कब होना आपके साथ, अगर मान लीजिए इतना वक्त हो कि आप किसी अपने को कुछ वक्त दे सकते हो, है ना, तो यकीनी तौर पर

0: मुद्दत जो कम लगता है ना पैसा कमा के इकट्ठा करने में, या उसके बदले में जो खुशियां मैसर होती हैं, वो उससे कम नहीं होता. वो कि अगर आप कुछ वक्त अपनों के साथ गुजार दें जो आपके आपको मतलब देखने को भी तरस रहे हो, तो ऐसा लगता है कि ये सालों की कमाई से बेहतर है.
1: हाँ जी, हाँ.
0: तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि नहीं, वक्त तो एक ऐसी जरूरत है जो अगर नहीं है तो इंसान ये समझे कि वो. और जहां तक बात रही पैसे की, अगर आप मुझे ये कहोगे कि नहीं आपको एक ही तरफ जाना है, तब मैं ये कहूंगा कि नहीं मैम, वक्त कहीं ना कहीं अवलियत का दर्जा रखता है.
2: वक्त रखता है.
0: की बात रही पैसे की, तो अगर आदमी थोड़ा किफात शियारी से भी गुजारे जिंदगी गुजर सकती है, जिसका हुक्म है ना, जिसका हुक्म भी है. मैं चलो माना कि बहुत बहुत सारी दौलत सर्वत के मालिक हम नहीं है,
1: आप दूसरे बंदे हैं जो टाइम के साथ हैं.
0: हाँ, किसी तरह से सरवाइव तो कर रहे हैं.
1: हाँ,
0: okay. तो उसमें ये लगता है कि नहीं, वक्त जरूरी है.
1: वक्त जरूरी है. बहुत ही अच्छी बात, जबरदस्त. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला एंड हमारे साथ जुड़े. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अपना ख्याल रखिएगा.
0: बहुत शुक्रिया मैम. बहुत शुक्रिया. बहुत कंफ्यूजन में डाल देता है कभी कभी आप.
1: कभी मैं भी कंफ्यूज हूँ, आप लोग निकालेंगे मुझे इस कंफ्यूजन से.
0: नहीं नहीं, जो हमारे भाई तो सुबह सुबह उठ के मतलब बिल्कुल फ्रेश होके आते हैं ना, उनका दिमाग खाली होता है. मैं रात से जागता होता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा मतलब दिमाग की कुश्ती लड़नी पड़ती
1: है. ये तो है, आप कहाँ थके होते हैं, ब्रेन भी थका है. चलिए उसके बावजूद भी आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, कर पाते हैं, सो हैट्स ऑफ, आपका ब्रेन ट्रेन्ड है दैट वे.
0: नहीं, वो तो वो आप लोगों की मेहरबानी है.
1: चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. आज दोस्तों जिस सवाल पे बात हो रही है, अभी तक मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के साथ गए हैं, जो कि समझ में भी आता है. बहुत सारा ऑब्वियस रीजंस हैं और हम इस चीज़ से बिल्कुल जैसे कहते हैं कि नहीं, डिनाई नहीं कर सकते कि टाइम की बहुत बहुत अहमियत है, लेकिन पैसा इक्वली इम्पॉर्टेंट है और शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आज के दौर में तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी टाइम भी इम्पॉर्टेंट है. उसे कहीं ना कहीं आप एकदम अलग या साइड में नहीं रख सकते. तो सोचिए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक कॉलर मेरे साथ और यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम नाज़िया जी.
1: वेरी गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं अहमद जी हमारे साथ?
3: परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही.
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने बिल्कुल सही पहचाना. आज का टॉपिक काफी टफ है.
3: नहीं नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है.
1: अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग. ओके नाइस.
3: बिल्कुल सिंपल है मेरी नजर में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू.
1: ओके ओके.
3: मेरी नजर में बिल्कुल, यानी मैं 100-200-500% बोलूंगा पैसा पैसा पैसा. अच्छा. ये एकदम जेन्युइन है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे.
1: अच्छा, ओके.
3: पैसा
1: पैसे.
3: शायद देखिए, आपने हम सब ने एक कहावत सुनी होगी कि बाय आई विल बाय द टाइम, यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप टाइम बाय कर सकते हो. आपने जो भी अपनी चीजें करनी या करवानी है वो आप पैसों के जरिए यू कैन मैनेज इट. तो जैसे पैसे कमाना एक चीज होती है और पैसा मैनेज करना एक चीज होती है. कि तमाम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके पास इतना पैसा होता है, ये टाइम बाय करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनको कहीं जाना है तो ये हम लोगों की तरह, हम लोग देखिए, हम लोग मिडिल क्लास है शायद, हम लोगों की तरह ये इकोनॉमी वगैरह में यानी बैठकर यानी अपनी चीजें हैंडल नहीं करते. ये लोग अगर इनको सही में कहीं पहुंचना है वो अपना एक जेट क्लियर करेंगे और चले जाएंगे. उसी जगह पर इनको कहीं पर भी पहुंचना है वो खुद जाने के बजाय वो अपने एक मैनेजर को सेंड करेंगे या अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करेंगे जिसको पे करेंगे. थ्रू मनी हर जगह पर वो पैसे के जरिए वक्त को खरीदेगा हर बंदा, क्योंकि उसको मैनेज करते आएगा कि मुझे इस वक्त अपने पैसे को इस तरह पर इस्तेमाल करके मेरा अपना काम करवाना है. सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मैं बात सुन रहा था तमाम लिस्टर के साथ में, जहाँ हेल्थ आ जाती है बीच में, आपने इसलिए हेल्थ को उसमें से सेपरेट कर दिया है कि जहाँ हेल्थ आ जाती है वहाँ पर अच्छे से अच्छा बड़ा रुस्तम खान बोलते हैं ना, उसकी नहीं चलते. फिर हेल्थ के आगे अच्छे से अच्छी चीज निकल जाती है. तो सिर्फ हेल्थ को एक्सक्लूड करते हुए हर चीज आप मैनेज कर सकते हो पैसे के जरिए, ऐसा मेरा मानना है. वक्त आप खुद बना लोगे. जब आपके पास पैसा आता है ना, आपका ब्रेन भी उस तरीके से फंक्शन करेगा, यार मैं इस चीज को इस तरीके से क्यों हैंडल कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं इसको इससे इसको यूज करता हूँ और मैं अपने काम निकल पाता हूँ.
1: हाँ, मैं इस बात से 100% मैं भी एग्री करती हूँ. लेकिन एक चीज है, जैसे हम कहते हैं कि वी कैन बाय कम्फर्ट थ्रू मनी, लेकिन वी कांट बाय मोमेंट्स वी लूज.

0: एंड लाइफ. व्हेन आई से मोमेंट्स वी लूज इन लाइफ, लाइक आपके एजिंग पेरेंट्स का मैंने एग्जांपल दिया. आपके पेरेंट्स एज कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है उनके साथ वक्त गुजारने का, और जब शायद आपके पास टाइम हुआ तो उनके पास टाइम नहीं रहा. मेरा मतलब है, हो सकता है वो रहे ही नहीं इस दुनिया में.
1: आप वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि भाई उस वक्त आपके पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल एक ऐसी स्टेज पर है जो ऑलरेडी एजेड है. यानी आपने उनके साथ में तमाम उनकी जो जिंदगी ऑलरेडी गुजार चुके हैं. ये तो अभी उनके जो, अगर नॉट टू से एग्जैक्टली इनके अभी लास्ट मोमेंट्स है, आप उस तरीके से उसको हाइपोथेटिकली के लिए बोल रहे हो ना, लेकिन आपने अपनी पूरी जिंदगी तो उनके साथ गुजार ची है क्योंकि आपके पास इतना पैसा था. अभी सिर्फ कुछ लास्ट मोमेंट में अगर आप किसी वजह से उनके साथ में नहीं मिल पा, नहीं रह पा रहे क्योंकि आपके पास पैसा है फिर भी, तो ये तो वो तो होना ही है. यानी आप है तो हाइपोथेटिकली, यानी उनकी वो जो लास्ट स्टेज है वो तो है, वो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे चाहे आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो जाए.
0: तो कुछ कुछ सिनेरियोस ऐसे हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक फादर आप हैं या कोई और है जिसकी फैमिली यहाँ उसके साथ नहीं रहती, उसके पास टाइम ये नहीं था कि वो अपने बच्चे की शादी को अटेंड करे जाके. पैसा कमा रहा है भरपूर, उसने पैसा भेजा, पूरे पैसे से शादी बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके खुद के पास टाइम नहीं था और उसने वो मोमेंट मिस कर दिया. बाद में पैसा होने के बावजूद भी वो उन लम्हों को वापस नहीं ला सकता, ला ही नहीं सकता. पैसा है फिर भी नहीं ला सकता.
1: पैसा है तो देखिए, आप बोल रहे हो कि पैसा होकर भी वो ना जा पाया, तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है?
0: हो सकता है मेरे कमिटमेंट्स ऐसे हो, मैं पैसे तो भेज रही हूँ बहुत अच्छी शादी हो जाएगी, बट मेरे खुद के ऐसे कमिटमेंट्स है कि मुझे छुट्टी नहीं मिल गई. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए पैसा मायने ज्यादा रखता है, तो फिर मैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं रिस्क लेके जाऊंगी. तो मैंने एक बहुत बड़ा मोमेंट लाइफ में जो शायद बहुत ही
1: है, तो वो तो अरेंज करेगा ना.
0: लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं, और इनमें से मैं आपको बताऊंगी कितने लोग बाहर निकल के आएंगे जो कहेंगे हाँ हम पैसे भेज देते हैं, शादी हो जाती है, बड़े बड़े फंक्शंस हो जाते हैं, हम नहीं अटेंड कर पाते.
1: तो ये तो आप सिर्फ एक्सपर्ट लोगों की बात बोल रहे हो क्योंकि जो यहाँ पर अटक गए, फॉर एन एग्जांपल उनके जो जॉब कमिटमेंट है आप उनकी बात बोल रहे हो, करेक्ट?
0: चलिए मैं कहती हूँ जो लोग उस कंट्री में रह रहे हैं, हो सकता है किसी और सिटी में काम कर रहे हैं या कहीं और दूसरे स्टेट में कर रहे होते हैं, उनके साथ भी मैंने ये देखा नहीं आ पाते, नहीं कर पाते. और उनकी दलील क्या होती है कि टाइम नहीं था, हमें टाइम नहीं मिला.
1: नहीं देखिए, अगर मैं सब सोच रहा हूँ कि अगर आप एक्सपर्ट्स को इंक्लूड कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो एक्सपर्ट के पास ये मजबूरी होती है कि पहली बात तो वो पैसे वाले नहीं है. अगर वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं तो कहीं पर किसी के पास पीरियड से वो स्लेवरी में नहीं जॉब कर रहे हैं, वो 9 to 5 या व्हाटएवर उनकी जो यहाँ पर स्टेटस है वो अपने स्पॉन्सर के पास है और वो कर रहे हैं. जो अगर बिजनेस में इंजीनियर है, दे आर केपेबल कि भाई वो अपनी अर्जेंटली टिकट बुक करे और चले जाए, इनके पास ऑप्शन होता है. फिर अगर आप अपने इन कंट्री की अगर आप कह रहे हो, तो उनके पास अगर इतना पैसा है तो वो विद इन द रीच है, यानी उनको एक प्लेन पकड़ कर नहीं जाना है. अगर इन द सिटी है, अगर वो आउट ऑफ द स्ट्री आउट ऑफ द स्टेट है, पूरी इमरजेंसी आती है, तो भी वो आई थिंक इट्स पॉसिबल अगर उनके पास पैसे है तो.
0: पैसे है तो अच्छा. एक और आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे दिमाग में आ गई. आपने और हमने तो एलन मस्क का नाम सुनी रखा है और हम जानते हैं कि उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है. आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस इंटरव्यू, आप डालिएगा, आप सर्च इंजन में आप देखिएगा. उनके इस इंटरव्यू में बहुत सारे वहाँ पर जो थे वो स्टूडेंट्स थे, ग्रेजुएट कर चुके थे या करने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि सर हम चाहते हैं हम आप जैसा बने, आप जैसा वेल्दी बने, आप जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो. तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ एलन ने कहा कि मैं चाहूँगा कि आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक भी शख्स मेरे जैसा ना बने, एक भी शख्स. और उनका ये कहना था, उसकी वजह ये थी उनका मेरे पास पैसा बहुत है बट स्टिल आई फील आइसोलेटेड. और फिर आपने सुना ही उनकी बेटी का, उनकी फैमिली का ब्रेकअप एंड सो मेनी थिंग्स, यू नो, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करें. तो देखिए वो कितने, अब वो टाइम वो चाहते हैं कि वो टाइम उन्हें मिले जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ उस गुड बॉन्ड को क्रिएट कर सकें. पैसा तो बहुत हो गया.
1: देखिए ये आपने जो बोले ना एलन मस्क का, ये ठीक है, शायद मैंने कहीं ये देखा भी होगा. पर ये डिफरेंट टॉपिक चला जाता है कि आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप ना खुश है, आप अनहैप्पी हो, ऐसा कई कई कई एग्जांपल्स होंगे.
0: क्योंकि मैं बताना क्या चाह रही हूँ अमर जी, वो टाइम जो हम अपने बच्चों के साथ इन्वेस्ट करते उनकी अपब्रिंगिंग में, वो टाइम हमने सिर्फ कमाने में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा कमाने में, एंड देन वी आर आइसोलेटेड टुडे. ये भी एक मुद्दा है. अब हम आज आइसोलेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का और हमारा वो कनेक्शन ही नहीं बना, हम तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी थे कमाने में.
1: हाँ ये बात भी सही है. देखिए अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की सेक्रीफाइस करनी होगी. आप बिल्कुल ये नहीं ये सोच करके मैं मुझे ये भी मिले वो भी मिले और उसके बाद में मैं मिलियनेयर बिलियनेयर एलन मस्क जैसा बन जाऊं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है. क्योंकि आपको

0: आपने अर्ली स्टेजेस में आपको कई चीजें आपको थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी होती है, अर्ली स्टेज की मैं बात बोल रहा हूँ। एलन मस्क ने भी जब अर्ली स्टेज में जब वो ग्रो कर रहा था तो उसने अपने सेक्रीफाइसेस किए, इसी के बनिस्बत मेरे ख्याल से वो कह रहा है कि भाई यू डोंट बिकम लाइक मी, क्योंकि मैंने काफी चीजें सेक्रीफाइस की। और एक एक दूसरा और एक क्वेश्चन भी है, कई जो अमीर लोग होते हैं ना नाजिया जी, वो नहीं चाहेंगे कि मैं जो सामने वाले बंदे हो ना वो भी अमीर बन जाए, वो चाहेंगे कि मैं सिर्फ मैं ही अमीर रहूं।
1: अच्छा, हो सकता है ये कोई साइकोलॉजी हो, ये कोई,
0: ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे फर्डू से लोगों को जानता हूँ ये, और अमीर वो नहीं चाहेंगे कि दूसरे लोग अमीर हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोल रहा
1: हूँ।
0: काफी अमीर है, एक छोटे मोटे अमीर की बात नहीं बोल रहा हूँ, तो वो लोगों का मैंने नजरिया जाना, वो लोग चाहेंगे कि गरीब है ना गरीब ही रहे।
1: ये हो सकती है बात, चलिए इस बात के साथ तो मैं इत्तेफाक रख सकती हूँ कि हो सकती है साइकोलॉजी कहीं काम करती हो किसी के जहन में, क्योंकि पोजीशन को लेके तो ये तो बहुत ही कॉमन है कि मेरी पोजीशन ये है तो मैं नहीं चाहूंगी कि जो मेरा जूनियर है वो मेरी पोजीशन तक आए, तो ये तो साइकोलॉजी काफी कॉमन है जो रिलेट हम सब कर सकते हैं।
0: पोजीशन वाइज पे नहीं बोल रहा हूं,
1: नहीं आपने तो इस चीज को बोला पैसे को उसको लेके, हो सकता है ये बात हो और इत्तेफाक। अच्छा एक चीज मुझे लगती है अहमद जी, बहुत स्ट्रांगली मैं कह सकती हूँ, जिसके पास जो है उसकी अहमियत नहीं है, अगर हमारे पास टाइम ज्यादा है तो हम पैसे के पीछे हैं, हमारे पास किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वो शायद टाइम की अहमियत को उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। सो जो हमारे पास जो है, हाँ ये एक पॉइंट है, राइट, सही कहा आपने, जबरदस्त। चलिए जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का ओपिनियन आपका हमेशा की तरह, और बहुत ही ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू,
1: यू टू टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़, बाय। दोस्तों एक घंटे से, मतलब डेढ़ घंटे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं गाना बीच में प्ले कर दूँ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। बट अब मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक हमारा हो जाए, आपको भी थोड़ा सा और मौका मिल रहा है कि आप सोचिए और मुझे बताइए। और वो लोग जो लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं 666 वाले नंबर पर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 443-443-77, आई रिपीट 443-443-77, ये नंबर है जहां आप हमारे साथ जुड़ेंगे ऑन एयर। ठीक है, फिलहाल छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:02।
0: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ और इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
2: वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं समर जी आप?
2: मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ रहे आप, एक दो दिन से आपसे हमारी शायद बात नहीं हो पाई ना?
2: जी थोड़ा सा क्या है, मैं बच्चों के हाथ में आ गया था।
1: अच्छा, अच्छा।
2: जो आपने जो टॉपिक छेड़ी है ना उसी की उसमें था, समझिए जरा। मेरे बहन के तबीयत ठीक नहीं थी इंडिया में और थोड़ा सा मुश्किल का सामना हो रहा था, तो थोड़ा डॉक्टर वगैरह से बातचीत कर रही थी, उसी में बिजी थे।
1: चलते
2: रहते हैं जिंदगी के, और जिंदगी है, लड़ना तो पड़ेगा हालात से।
1: हाँ नहीं, ये तो है। अब ठीक है आपकी बहन, अब आपकी बहन ठीक है, बेहतर?
2: नहीं अभी तो वो नहीं है, चल रहा है, पता है कि आगे जो है देखा जाएगा। वो डिलीवरी का केस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लोगों की गुजारिश है इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे।
1: इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं आपकी बहन के साथ, दोनों जिंदगियां जो है वो साथ खैरियत के आए और खुशियां लेकर आए, यही हम कहेंगे। आप हमारे टॉपिक पे बात कर सकेंगे?
2: बिल्कुल बिल्कुल करेंगे मैडम, ऐसा कुछ नहीं।
1: अच्छा चलिए, प्लीज बताइए क्या कहना चाहेंगे।
2: टाइम इज मनी,
1: टाइम इज मनी,
2: मनी इज टाइम।
1: हाँ,
2: ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये मेरा मानना है।
1: Okay. हाँ,
2: कुछ मरहलों पे आपको, अब जैसा कि मैं यहाँ पर हूँ, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ऐसे हालात चल रहे हैं, अब वहाँ पर मैं मौजूद रहूंगा तो मैं पैसा नहीं दे सकता। अब मुझे पैसा देना है तो मैं वो जो है मौजूद नहीं रह सकता, तो ऐसे सिनेरियोस आ जाते हैं जहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक चीज चुननी पड़ती है।
1: बहुत सही
2: ना, क्योंकि हम दोनों को किसी एक पहलू में नहीं रह सकते हम यहाँ पर, कि हम कहेंगे कि नहीं वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर या फिर हम कहेंगे कि हम पैसा इम्पोर्टेंट। पैसा तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में आर्ली बेसिस पे जो है जॉब्स होती हैं, सही है ना? आपके पास जितना दम है उतना कर लो, 24 घंटे करना है, या मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, इलीगल हो जाता है वो, तो 6 घंटे 12 घंटे 8 घंटे जो भी उनका एक टाइम फ्रेम होता है वो रखते हैं। तो यानी इंसान का वक्त ही इंसान का पैसा है, इंसान की कामयाबी है, सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। तो यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जुड़वान ट्विंस हैं। ये एक हरकत करेगा तो दूसरा भी वही हरकत करेगा, मेरा नजरिया ये है। बाकी सबका अपना अलग अलग है माशाल्लाह, जिस लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, लेकिन मैं तो जो है ये कहूंगा कि ये जुड़वा है,
1: दोनों जुड़वा हैं,
2: एक दूसरे से जुड़े।
1: अच्छा, मैंने उन्हें और परेशान भी किया समझ जी, ये पूछ के कि आपको जाना ही एक चॉइस के साथ है, अब आप किस चॉइस के साथ जाएंगे?
2: देखिए पैसा जो है ना सब कुछ बाय कर लेता है।
1: ओके,
2: हाँ, आज के दौर से अगर देखा जाएंगे, पहले के दौर से अगर देखा जाएंगे आप, तो वक्त है, तो हर दौर अपना एक वो चीज लेकर आता है, फितना। तो अभी के दौर का फितना पैसा है, बिना पैसे के वक्त लेके क्या ही करने के, फर्जी काम लेके आप बताइए, वक्त ही बहुत रहेगा। हाँ, अब अलग चीज है कि आप किस चीज से जा रहे हैं, आप जो है स्पेशल है या फिर आप जो है क्या कहते हैं अपने मुख्तलिफ चीजों में अपना वक्त देते हुए, सोशल सर्विस में देते हुए, सब चीजों से, मगर हर चीज में आपको कहीं ना कहीं पैसा तो लगेगा।

0: गई ना। राइट और रॉन्ग,
1: सही बात है, नहीं पैसा तो है ही हर जगह, बिल्कुल सही बात है।
0: नहीं, क्योंकि आपको बच्चों को भी वक्त देना है, तो वो कहते हैं ना कि भाई ऐसा ना हो कि बाप जब बच्चों को लेके निकले तो आप बच्चों की आंखों पे हाथ रख के निकले कि कहीं मेरा बच्चा ये ना मांग ले, वो ना मांग ले, क्योंकि पैसा नहीं है जेब में। तो ये पैसा जो है इंसान को अगर कैसा भी रहो, बुरा भी रहो, तभी भी वो जो है उसका वक्त अच्छा ही बताता है। ये पैसे की ताकत है, हकीकत है, कुछ भी कहो आप, पैसे में बड़ी ताकत होती है मैडम। देख रहे हैं ना, बड़े बड़े जो है वो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे से भागो, ईमान उसके पीछे खराब करो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बैलेंस करके चलना होता है हमको, वक्त और पैसा। जहाँ पर जो चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज की तरफ खुद ब खुद, वो कहते हैं ना थाली में का बैगन कभी इधर लुढ़को कभी उधर लुढ़को, वैसा वाला जो है आपको जहाँ जो चीज की जरूरत होती है वहाँ वो लुढ़क जाना होता है। जहाँ पैसे की जरूरत है वहाँ लुढ़क जाओ, जहाँ वक्त की जरूरत है वहाँ लुढ़क जाओ, दोनों को बैलेंस करके चलो। किसी एक तरफे में तो हम नहीं जा सकते हैं मैडम, मेरे हिसाब से तो हम नहीं जा सकते, ये दोनों के तरफ ही रहना पड़ेगा। जैसा बच्चा माँ बाप के बिना नहीं रह सकता है ना, वैसा इंसान पैसा और वक्त के बिना नहीं रह सकता, मेरा ये नजरिया है।
1: मतलब दोनों ही आप कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपने कहा कि पैसा ज्यादा है, अगर एक चॉइस आपको दी जाए तो पैसे के साथ ही।
0: नहीं देखिए, वक्त इंसान को एक एक मरहले पर आके आप जो है ना, वो कहते हैं ना कि जरूरतें जब चोट मारती है ना, तो वक्त, मोहब्बत, जज्बात, ये सब सारी चीजें जो है घर की दहलीज पार कर लेती है मैडम। ये सब कहने वाली बातें फिलोसफी के लिए अच्छी चीजें हैं, मगर प्रैक्टिकली नहीं है। आप क्योंकि थेरेपिस्ट अगर देखेंगे सब सारी चीजों में, तो ये सब चीज है कि आप वक्त किस में दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपने अपने आप को इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, जैसा कि होता है ना कि आपके पास पैसा बहुत है या फिर माँ बाप के पास पैसा भी दौलत बहुत है, आपको कमाने का जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, फर्जी फिर रहे हैं और अपना वक्त ऐसे ही जाया कर रहे हैं क्योंकि करने के लिए कुछ रहा नहीं। तो उस हिसाब से जो है वो इंसान, उस इंसान के लिए वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको पैसे के लिए जाना नहीं है ना, उसकी लाइफ में सिर्फ इंजॉय करना है या फिर घूमना है, फिरना है, एक्स वाई जेड। अब हम जैसे लोग जो यहाँ पर प्रदेश में आते हैं, सब चीजें होते हैं, इनको दोनों चीजों की अहमियत होती है, क्योंकि इनकी दो चीजें खर्च होती है, पैसा भी खर्च होता है, वक्त भी खर्च होता है, उम्र भी खर्च होती है। तो ये चीज जो है बहुत अहमियत रखती है हमको, और इसकी कदर हम बहुत करते हैं।
1: राइट, सही।
0: एक एक रियाल की भी, एक एक रुपए की भी हमको अहमियत प्रदेश में आके पता चलती है कि भाई किस मेहनत से कमाया जाता है, और वक्त की कदर जो है हमको ये वक्त से ये वक्त के फ्रेम में, जबकि गारंटी कुछ नहीं है कि कौन कब तक रहेगा, कौन कब तक जाएगा, लेकिन हम फिर भी एक हाइपोथेटिकली लेकर जीते हैं कि हम शायद इतने टाइम तक रह भी जाएं तो उस हिसाब में हम जो है इतना कुछ जमा पाएंगे, इतना कुछ कर पाएंगे ताकि हमारे आने वाले वक्त को जो है हम सुधार सकें। तो वक्त भी कनेक्ट है, पैसा भी कनेक्ट है। आप वक्त को सुधारने के लिए पैसा है, आप घड़ी भी पहन रखी है मैडम अपने हाथ में, तो उसका शल बदलने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना।
1: हाँ नहीं, पैसा तो देखिए है ही इम्पोर्टेंट, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, घड़ी बंद हो जाती है,
0: वक्त बताना बंद कर देती है, तो पैसा देकर ही शल डाल के फिर वक्त देखना पड़ता है ना हमको।
1: और जब हमारी घड़ी बंद हो जाती है खुद की,
0: वही तो बोला ना, अब हम किसी से पूछेंगे बार बार वक्त क्या हो रहा है, वक्त क्या हो रहा है, बोलते यार तुम एक घड़ी खरीद ले तेरे पास, तभी पैसा नहीं है क्या, बोलते तो कनेक्टेड है मेरे हिसाब से। बाकी आप
1: देखिए, आप पैसों से घड़ी तो खरीद सकते हैं लेकिन वक्त नहीं खरीद सकते, ये बात सच है।
0: हाँ, ये तो सही है, लेकिन क्या है कुछ कुछ मरहलाओं पे जो है मैंने कहा ना सिनेरियोस में कि आपको दोनों तरफ में जाना पड़ता है, कभी इधर या कभी उधर। अगर अब हम आज किसी को बोल देना कि आप दो दिन के लिए नॉन स्टॉप काम करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, या फिर एक महीने के लिए, सब दौड़ पड़ेंगे मैडम। ये सब कहने वाली बातें होती हैं, बट प्रैक्टिकली आज की दुनिया के हिसाब से अगर बात करूं तो पैसा ही सब कुछ है। ये जो दौड़ लगी है ना, सुबह सुबह उठ के भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, आप आए हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, घर में सोते पड़े रहते सब आराम से।
1: मैं जो समझाना चाह रही हूँ कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाना ये सही नहीं। ये फर्क
0: ये
1: है,
0: तो
1: ये बहुत बड़ा फर्क है जो हम मिस कर रहे
0: हैं। ये बात अपनी
1: वो है ना कि पैसों को तो हमें अहमियत देनी है, लेकिन सिर्फ पैसे को अहमियत देनी है, रिश्तों को नहीं देनी और चीजों में, ये गलत है।
0: नहीं वो तो फिर एटीएम वाली बात है, ये बैंक हो जाएंगे हम हमारे छोटे छोटे बच्चे एटीएम हो जाएंगे, हम बैंक हो जाएंगे, वैसा नहीं इंसान के अंदर जो है
1: देखिए रिश्तों की भी अहमियत है, सिचुएशंस की भी अहमियत है, आपके लव्ड वंस की भी अहमियत है, आपके दोस्तों की भी अहमियत है, हर चीज की। और मैं एक चीज आपको अपनी छोटा सा किस्सा बताऊं कि एक मेरी फ्रेंड मुझे लगा

0: लगातार, मतलब अभी नहीं, हो गए 3-4 महीने पहले, कॉफी पे इनवाइट करती रही कि नाजिया लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर, और मैं वाकई इतनी बिजी कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. मैं उसको पुश करती रही कि लेट्स कीप इट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक. फिर मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि शी मूव्ड टू इंडिया और मैं उससे मिल ही नहीं सके. तब मुझे एहसास हुआ कि वक्त की अहमियत है, और वो वक्त जो मैं, वो जो मेरे साथ देना चाहती जब मैं उसके साथ, वो हम दे ही नहीं सके, और अब वो शायद वापस भी नहीं आ सकता वक्त. तो आई एम लाइक बिजी विद माय कमिटमेंट्स, मेरे कमिटमेंट्स, मेरे काम, शायद उन काम का ताल्लुक कहीं ना कहीं पैसे से है, तो मैं उसमें बिजी रही हूँ, मैं शायद उस चीज को मैंने मिस किया. तो ये है, कई बार हम मिस करते हैं और अफसोस भी करते हैं, वो चीजें वापस नहीं आ पाती.
1: नहीं आ पाती है, सही बात की आपने.
0: ये तो है,
1: जैसा कि अब हम परदेशी हैं, ना ज्यादा किसी की खुशी में रह पाते हैं, ना किसी के दुख में रह पाते हैं, और इससे बड़ा दुख हमको होता है कि हम नहीं रह पाए करके. हमसे बड़ा कौन जान सकता है वक्त की अहमियत.
0: सही बात,
1: कि भाई कोई फौत की हो गई है, जा नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे मुश्किल पैदा हो जाती है, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बैलेंस करके चलना पड़ता है. तो ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है, सच में तो होता है वक्त का भी,
0: वक्त की भी अहमियत बहुत है, और वो शायद हम बाद में रियलाइज करते हैं, जब हम आइसोलेशन अकेलेपन में बैठते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, पैसे तो हम बहुत कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ, मगर जो वक्त हमें स्पेंड करना है, जो हमारे लिए क्वालिटी टाइम है, वो हम नहीं दे पा रहे कभी भी किसी को.
1: बिल्कुल, फिर वो पछतावे की अलमारी खोलते हैं, फिर उसके बाद में नानी भाई हुए वादे देखते हैं, सारी चीजें करते हैं,
0: है ना. वही वही. चलिए जी, थैंक यू सो मच, और वापस से आपकी बहन के लिए दुआएं बहुत सारी, हमें अपडेट कीजिएगा जैसे ही आपको अच्छी खबर सुनाई दे, हम सबको भी दीजिएगा, और हम सब मिलकर यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है. चलिए जी, थैंक यू, मिलते हैं, आप भी अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट, सो यहाँ आप देखिए, अभी तक जितने लोग आ रहे हैं ज़्यादातर, और वो बिल्कुल सही भी हैं, मैं भी कहूँगी आप जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप सबका कहना मानना बिल्कुल सही है, पैसे की बहुत अहमियत है, बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है. आई स्टिल बिलीव एंड कीप ऑन सेइंग रिपीटिंग द सेम सेम सेम, बट हाँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचिए कि वक्त की भी उतनी इम्पोर्टेंस है. स्ट्रेट अवे हमारे दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिल्स हैं, बच्चों की पढ़ाई है, पता नहीं कितना कुछ है, और शायद बच्चे के साथ वक्त स्पेंड करने का हमारे पास टाइम नहीं है. बच्चे के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के साथ जो बच्चा है ना, वो जब तक बच्चा है तभी तक उसको आपके टाइम की हर चीज़ की अहमियत है. जब वो ग्रोन अप हो जाएगा तो शायद आप तरसेंगे कि आपको टाइम दे दे. टाइम की अहमियत है दोस्तों, है, रिश्तों में तो बहुत है. अच्छा, यहाँ पे एक और मेरे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
2: क्या हाल है नाजिया जी, खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ. अजहर जी हैं क्या मेरे साथ?
2: बहुत शुक्रिया आपका हमारे को
0: पहचानने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक दो बार से मैं सही पहचान रही हूँ. अल्लाह सही, मेरे जो मैं वॉलनट्स खा रही हूँ ना, आमंड्स खा रही हूँ, उसका फायदा है.
2: नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह रखे
0: आपको भी.
2: तो आप यहाँ से बाहर हमेशा पैसा नहीं है, जब भी फोन करेंगे, क्योंकि वीकली एक टाइम तो भी बात करूंगा आपसे, क्योंकि बात नहीं करने से हो जा रहा क्या बोले तो वो FM 7 से मोहब्बत कम हो जा रही है हमारी.
0: ओ, क्या ये तो मत कहिए. ऐसे नहीं कहिए आप, प्लीज. मोहब्बत नहीं कम होनी चाहिए, भले से आपकी बात हो ना हो, अगर हो जाती तो हमें भी पता चलता है कि हाँ आप हमें सुन रहे हैं, अदरवाइज हमें पता नहीं चलता ना कि कौन कौन सुन रहे हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बेचे आप लोग, आप खैर, आप लोग तो खैर वो जॉब है आप लोग का, लेकिन आप लोग हम इतना सुबह उठ के, यानी सबके लिए जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी फैंस है, वो लोग फोन करते हैं, वो लोग की बात आप सुनते हैं, आपकी बात हम सुनते हैं, आपके यानी जो भी राय मशवरा है आप हमारे को बताते हैं, हमारा राय मशवरा जो भी है हम आपको सुनाते हैं, फिर इसका कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर आप आना, फिर हम बात करना कोई फायदा नहीं है. तो जाहिर सी बात है, याद करना लाजिम है. खैर आपको फोन करके अगर नहीं भी याद करे तो ये जो है ना,
0: याद रखूंगी कि आप याद कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक, सब खैरियत. आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं टॉपिक है, टाइम और मनी. हाँ, आप कहाँ, आप किसकी तरफ जाएंगे?
2: जाएंगे तो पहली बात, तो सबसे पहली बात आप जो टॉपिक लाए बहुत अच्छी टॉपिक है, ये सबके लिए यानी एक अच्छी नसीहत की चीज है. वक्त और पैसा इंसान को दुनिया में तो खैर जरूरी है, नहीं बल्कि नहीं, लेकिन एक छोटी बात, वक्त ज्यादा नहीं लेता मैं. इंसान को पैसा तो जरूरी है यकीनन, यानी आज के दौर की बात, प्रेजेंट आज के दौर की बात, पहले के दौर की बात पैसा कम

0: था, इंसानियत ज्यादा थी लोगों को।
1: हाँ, सही कहा आपने,
0: इंसानियत ज्यादा थी, अखलाक ज्यादा थे और मोहब्बत ज्यादा थी, चाहे पड़ोसी हो, अपने हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। 100 रुपए भी अगर जेब में अगर रह गए ना, तो 100 रुपए में 100 जनों को खिलाने की थी, यानी कैपेसिटी थी, बरकत थी, इंसानियत थी, अखलाक थी। अब वैसा नहीं है। और पहले के दौर कैसा था राजा जी, जेब में पैसा नहीं देखता था इंसान, इंसान की दिल में मोहब्बत देखता था पहले के दौर।
1: बहुत अच्छा कहा आपने।
0: लेकिन आज के दौर में जी, आज के दौर में सिर्फ इंसान देखेगा तो इंसान आगे वाले को फोकस यही करेगा कि पहले इसके जेब में पैसा है, इसके हाथ में फोन कौन सा है और इन्हें दिखने में कैसा दिखता। अगर उसका रहन सहन जैसे कि लिबास हो, चाहे हाथ में मोबाइल हो, वट एवर जो चीज इंसान को जो लुक देती, वो अगर उन्हें थोड़ा भी अगर वो चीज में कमी हो गया ना, तो आप एक ही बोल सकते कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपन यही अंदाजा लगा सकते कि इन्हें अपने काबिल का नहीं है। समझे आप, इन्हें ये अपने काबिल का नहीं है। लेकिन आगे वाले को ये नहीं मालूम है, शायद मैं माजरा चाह रहा हूँ, आगे वाले को ये नहीं मालूम है कि आज के दौर में पैसा तो यकीनन है, इंसान मरने के बाद भी उसको तस्लीम करने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा तो बहुत जरूरी है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन पैसे के साथ इंसानियत और अखलाक भी बहुत बड़े मायने रखते इंसान के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला बोलते ना, जो इंसान मुसलमान राई के दाने के बराबर भी ईमान लाएगा, उन्हें दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है उन्हें। जी, तो इंसान को पैसे तो बेशक जरूरी है, वो जब तक उन्हें सांस बाकी है, उन्हें जब तक मर गया, मरने के बाद भी इंसान को पैसा जरूरत, लेकिन उससे अहम इंसानियत है। और पैसा रहने के बाद कोई चीज ऐसी है नाजिया जी, कोई पैसा रहने के बाद कोई चीज यानी हासिल नहीं कर सकते आप। पैसा रहने के बावजूद भी इंसान मोहताज हो जाता किसी का, जैसे कि पैसे वाले जो खिदमत करा लेते, अब पैसा रख के क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन वो आगे वाला पैसा रखने के बावजूद एज ए बिलियनियर रहने के बाद भी जो है ना, वो आगे वाले के ऊपर डिपेंड है कि इन्हें मेरी कुछ खिदमत कर लिया तो अच्छा है, इन्हें मेरे लिए जो है ना कोई हेल्प कर लिया तो अच्छा है। पैसा रखने के भी कोई मायने नहीं है। लेकिन बार बार मैं यही बात बता रहा हूँ कि इंसान को पैसा रहना, लेकिन उससे पहले भी आपको इंसानियत और अखलाक, छोटों की छोटों से मोहब्बत, बड़ों की कदर कर लिए ना, आपको सबसे बड़ी दौलत वही है।
1: सही बात है, बहुत ही सही।
0: इंसान जो है ना आजकल देखिए, और ये जो लीडर वगैरह जो रहते और ये पॉलिटिकल की ये जो भी जितने भी रहते, ये लोग क्या है, व्हाइट शर्ट पहनते, व्हाइट शर्ट पहन के ये लोग के गदर शर्ट में जो है ना ऊपर के जेब में पैसा रहता। अगर उन्हें चाहे फकीर भी रहा, एक माने को फकीर भी रहा, तो जो है ना उन्हें खाली व्हाइट शर्ट डाल लेगी, उन्हें 500 की नोट अगर रख लिया आज के दौर में, या 1000 की नोट तो बंद हो गए, अगर 1000 भी रख लिया तो अरे बहुत बड़ा अमीर है बोलते हैं। वो शर्ट पहन के उन्हें पैसे न को रखने दियो ना दादाजी, ना उसको ना तो उसकी शर्ट की मायने है, ना तो जैसे वो इंसान की कोई कदर है, क्यों, पैसा ही नहीं है उसके जेब में। तो क्यों, उन्हें मोहब्बत कर रहा है पैसे से, इंसान से मोहब्बत नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा यही है बोलना है कि जो ना सबसे बड़ी चीज, इंसान को दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, इतना भी पैसा नहीं चाहिए कि जो ना वो पैसे में इंसान कुछ अपने आप को होश हवा खो दिए सरकार। तो इंसान को पैसे रहना, लेकिन उसके साथ ही साथ इंसानियत रहना और अखलाक भी रहना। और मैं ऐसे मेरी लाइफ में ऐसे थोड़े जनों को, बहुत जनों को मैं देखा नाजिया जी, पैसा रखने के बावजूद भी जो ना, यानी वो लोग खुद के अपने लिए बात बता रहा है, अपने खुद के लिए एक रियाल हो यहाँ के या इंडिया के, एक रुपया भी खर्च करना है तो 10 बार सोचेंगे, अरे ये एक रियाल अगर मैं खर्चा कर जाए तो कैसा। देखिए पैसा रख के कोई फायदा नहीं है।
1: बिल्कुल सही,
0: ये बात
1: बहुत
0: है। और रही बात वक्त की, और रही बात वक्त की, जैसे बिल्कुल वक्त की तो बहुत खतर करना पड़ता। और अभी थोड़ी देर पहले आप बोले कि जो ना घड़ी में शल डालने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जो ना वक्त ही जब साथ नहीं देगा तो क्या करेंगे। एग्जैक्टली आप जो बात बोले बेहतरीन बात है,
1: समझने वाले घड़ी तो खरीद सकते हैं, वक्त नहीं खरीद सकते
0: हैं। नहीं
1: नहीं,
0: वो समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, घड़ी है जब वक्त ही साथ नहीं दिया, जैसे कि वो फिल्म है ना नाजिया जी, कौन सा वो वंस अ टाइम ऑफ मुंबई जो है, अजय देवगन का, देखिए क्या है उसमें, घड़ी पहनता है लेकिन वक्त साथ नहीं दिया उसको।
1: जी जी,
0: लास्ट में जैसे इमरान हाशमी जो गोली मारता उसको, उन्हें घड़ी तो उतनी महंगी पहन लिया लेकिन वक्त साथ नहीं दिया उसको। तो हर चीज के पीछे एक मायने है। और सबसे बड़ी बात मैं यही बार बार यही मेरा ये एक एडवाइस है, इंसान को पैसा होना, लेकिन पैसे के साथ साथ अखलाक, इंसानियत, छोटों से मोहब्बत, बड़ों का एहतराम, आप सबसे बड़ी दौलतमंद हुई छे आपके लिए।

0: बिल्कुल,
1: हर वक्त की तो कदर करना, जब वक्त साथ नहीं देगा तो फिर जो भी है तवक्कुल तो अल्लाह।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही जबरदस्त बात कही आपने। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह सर जी। थैंक यू,
1: हम जो भी बोले, ये जो बोलने की वजह आप है, क्योंकि आप टॉपिक लेके आए, हमारे दिल से जो बोलना था हम बोल दिए।
0: हाँ नहीं, मैं चाह भी रही थी कि आप लोग बिल्कुल अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दें, जैसा जो आपने दी भी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ आप सबकी ओपिनियंस को। हालांकि आज की चॉइस काफी टफ चॉइस है और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जो है ना दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दी है और अपनी एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन रखी है हमारे साथ। सो थैंक यू वंस अगेन, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर योर कॉल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वालेकुम अस्सलाम। ऑल राइट, हालांकि इतनी बैक टू बैक मुझे कॉल्स आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम बहुत कम है, इस टॉपिक को हमें फॉर श्योर कंक्लूड करना है। लेट्स इट कनेक्टेड टू दी लास्ट कॉलर, एकदम लास्ट कॉलर है और उसके बाद हमारा फिर गेम होगा, तो प्लीज़ वहाँ भी आपको कनेक्ट होना है, वहाँ पर एकदम हल्के दिमाग से कनेक्ट होना है, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। तो बस ये लास्ट कॉलर, देन मैं इसको कंक्लूड करूँगी एंड या फिर हम अपने गेम सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: आज टॉपिक ऐसा लग रहा है मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया।
0: अच्छा नफीस ने हमारे साथ क्या?
2: नहीं, मैं खलील बात कर रहा हूँ।
0: खलील जी हैं, खलील फराचा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: पाकिस्तान से। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, ये दोनों चीजें ही बड़ी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी और टाइम भी ना। और वाकई पेरेंट्स जो है बेचारे अपनी औलाद के लिए इधर आ जाते हैं, फिर वो बच्चों की केमिस्ट्री से इतना दूर हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि उनकी नफ्सियात से वो बिल्कुल बहुत दूर हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट तो दोनों चीजें हैं, पैसा भी और टाइम भी। पर आजकल की महंगाई के दौर में जहाँ रिश्ते भी पैसे पे हैं, सारी चीजें पैसे पे, आपके पास पैसा नहीं है ना तो कोई आपको अपने रिश्तेदार भी नहीं कहेगा।
0: हाँ ये बात सच है। हाँ नहीं, सच कहा आपने, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि आजकल
2: ये जो इखलास और मोहब्बतों की ये बातें, ये सब पैसे पे है। अगर आप देख आजमा के देख लें, अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई नहीं आप लिफ्ट कराएगा, इवन अपनी खुशियों में भी नहीं बुलाते। ये सब चीजें पैसे के साथ है, और पैसे के लिए आप अपनी औलाद अपने बच्चों से इतनी दूर हो जाते हैं कि आप जो है ना उनकी केमिस्ट्री से बहुत दूर हो जाते हैं, उनकी नफ्सियात से दूर हो जाते हैं। आखिर में यही होता है कि बच्चे और आपके दरमियान बहुत गैप आ जाता है। वो काम तो आप बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं, पर कितना मुश्किल होता है कि आप बच्चों की नफ्सियात से दूर हो जाएं। और वो उनका वो जो बचपन की शरारतें होती हैं, मैं आज भी बहुत मिस करता हूँ बच्चों को, देखता हूँ मॉल्स वगैरह में खेलते हुए। तो क्योंकि मेरी फैमिली इधर रहती थी और मैं पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस में काम करता था, तो मैं उन बच्चों को इतने उससे देखता हूँ, उनकी शरारतें, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में वो लोग इधर आ गए थे कतर में, तो मैं बहुत मिस करता हूँ। पैसा तो आ जाता है, पर वो चीजें, सारी चीजें इम्पोर्टेंट
0: है। ये मैं कह रही हूँ, पैसा तो शायद आपके पास आ जाए एक स्टेज पे आकर, बट वो चीजें जो आपने मिस कर दी ना, वो फिर आपने कर ही दी, वो शायद
2: वो
0: तो रिवर्स
2: इम्पोर्टेंट होती है पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों की शरारतें और ये चीजें।
0: जी,
2: बिल्कुल, बहुत मिस होती है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल के तारों को छेड़ दिया।
0: चलिए, मुझे खुशी हुई कि आज फाइनली आप जो है ओवर ए कॉल जुड़े, हालांकि आप मैसेज तो मुझे करते हैं एंड यू आर ऑलवेज काइंड, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू फॉर दैट, बट आज फाइनली आपसे कॉल पे बात हो रही है तो वो और भी अच्छा लगा।
2: मुझे ऐसा लगा कि किसने मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया।
0: चलिए, मुझे खुशी हुई कि फाइनली इस टॉपिक ने आपको झंझोड़ा कि नहीं कॉल करो आज।
2: एक टाइम ऐसा था कि मेरी मिसेज कराची में आगा खान में काम करती थी।
0: अच्छा।
2: और मैं सुई गैस में काम करता था, तो मैं आ रहा होता था और वो जा रही होती थी,
0: दोनों का आपस में।
2: बिलीव मी, ऐसा टाइम मैंने गुजारा है, और कम टाइम नहीं, 11-12 साल।
0: ओ, ये तो बहुत अच्छा खासा अरसा।
2: जी हाँ, ऐसा टाइम होता था।

0: यानी लेट हो जाता था तो मेरे बिल्कुल दिमाग काम करना छोड़ देता था, क्योंकि बच्चे किसके पास रहेंगे। और मैं, हम दोनों मियां बीवी ही होते थे कराची में अपना, और मैं फिर उनको यही कहता था भाई कमरे में बच्चे को बंद करके चली जाऊं, मैं आ जाऊंगा, चाबी है मेरे पास। तो बिलीव में ऐसा वक्त, इतनी महंगाई का दौर है, क्या करें, आप किसी चीज पे कंपनसेट नहीं कर सकते। आप बच्चों की तालीम पे, आप बच्चों के कपड़ों पे, किसी चीज पे आप कंपनसेट नहीं कर सकते। हर चीज आपको A1 रखनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है।
1: ये सोशल प्रेशर है, और ये भी प्रेशर, इस पे भी बात होगी एक दिन, और ये प्रेशर भी हमने ही खुद पे बिल्ड कर रखा है, पता है। हमने जो है ना ये जो सोशल प्रेशर बिल्ड किया है, उसके लिए हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे लोग कम हैं।
0: जिस सोसाइटी में आप रहते हैं ना, और आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो वो सोसाइटी की भी डिमांड यही होती है कि आपके बच्चे एक अच्छे स्कूल में, चाहे आप अफोर्ड कर सके या नहीं कर सके। आपको पता है पाकिस्तान में कितनी सैलरी होती है और कितनी महंगाई होती है, और गवर्नमेंट पेशा आदमी कितनी तनख्वाह होगी उसकी, और प्राइवेट स्कूल्स का तो आपको पता है कितने हाई उसकी फीसेस होती हैं।
1: जी जी जी।
0: तो मैं आज मैं ऐसे मजबूर हो गया आपको फोन करने पे।
1: चलिए मुझे खुशी है।
0: चलिए मैं मैसेज ही करता हूँ। हाँ। तो मेरे को ऐसे लगा मैं आज ना अपने दिल की बात किसी से शेयर करूँ।
1: हाय, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज आपको मैंने फाइनली मजबूर तो किया और आप जुड़े ओवर कॉल, ये बहुत बड़ी बात है।
0: नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगा मैं अंदर अपनी बात भी कहूँ, जरूर है, जरूरत है इस बात की है।
1: जबरदस्त, तो बहुत ही अच्छी बात आपने रखी। थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल, अपना ख्याल
0: रखिएगा।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो अभी तक मैं ये कह सकती हूँ कि अब जाके कहीं एक गुड बैलेंस क्रिएट हुआ है, वरना ज़्यादातर लोगों का जो था वो कहीं ना कहीं उनका रुझान, या कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के साथ हैं, जो कि मैं खुद भी हूँ, जो मैं मानती हूँ, और आप सब ने इस बात को जो है वो स्ट्रांगली रखा है, इंक्लूडिंग दोज ऑल्सो जिन्होंने टाइम को थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली एज दिया, बट उनका भी यही कहना था कि हाँ कहीं ना कहीं पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी ऑफन से एंड लिसन टू दिस टर्म कॉल्ड टाइम इज मनी। अब देखिए, हम ये सुनते तो हैं टाइम मनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइम और मनी बिल्कुल एक जैसे हैं। इस फ्रेज का मतलब है कि आप अपना वक्त जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसका असर आपकी अर्निंग और आपकी कामयाबी पर पड़ता है। जैसे एक कोई कामयाब बिजनेसमैन है, अगर वो एक घंटा वेस्ट करता है तो शायद वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्लाइंट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खो देता है। तो उसकी, उस लिहाज से उस मिनट की वैल्यू है जो कि उसकी डायरेक्ट इनकम से या उसकी सक्सेस से जुड़ी हुई है। वहीं मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे मान लेते कि एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो दो घंटे मोबाइल देख रहा है, यूं ही वेस्ट कर रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा, तो फ्यूचर में हो सकता है कि अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दे, क्योंकि उस तरह से उसके ग्रेड्स नहीं आएंगे, उस तरह से वो सीख नहीं पा रहा है। यहाँ भी वक्त का सही इस्तेमाल फ्यूचर में कहीं ना कहीं पैसे से ही जुड़ा है। वहीं पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी टैक्सी ड्राइवर है और वो 3 घंटे बिना वजह किसी उसके यूं ही बैठा हुआ है, तो उस ड्यूरेशन में वो शायद पैसेंजर्स पिक करके अर्न कर सकता था, लेकिन उसने वो वक्त गवा दिया, तो उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं अर्निंग से है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो हमें और आपको याद रखनी वो ये कि टाइम इज मनी। अगर हम बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू करियर्स, इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्रोथ आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन हमेशा जो है वो टाइम की अहमियत नहीं है। जैसे आपने भी कहा और जैसे मैं भी कहूँगी, बहुत सारे ऐसे सीन, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पर पैसा जो है होकर भी वो चीज़ें आप नहीं खरीद पाते, वो खुशी आप नहीं ले पाते, जबकि टाइम से आपको खुशी मिलती है। यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा, एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगी कि एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन था। रोज़ सुबह से रात तक वो काम करता था। उसके पास आप देखें तो उसके पास गाड़ी है, उसके पास बहुत बड़ा घर और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा। लेकिन हर रोज़ उसका छोटा सा बच्चा उससे एक ही सवाल करता कि पापा आप मेरे साथ खेल लीजिए, आप इतने खिलौने तो लाते हैं बट आप मेरे साथ खेलते नहीं हैं। लेकिन वो बिजनेसमैन हमेशा एक ही जवाब देता कि मैं जो हूँ वो मैं बिजी हूँ और तुम्हारे फ्यूचर के लिए पैसे कमा रहा हूँ। ऐसे महीन कुछ दिन गुजरे, फिर दिन जो है हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में, और महीने देखो तो सालों में तब्दील हो गए। अब वो लड़का बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी के लिए दूसरे मुल्क में या दूसरी कंट्री में चला गया। एक दिन ये जो बिजनेसमैन था या जो ये था कामयाब बिजनेसमैन, जिसे हम सब कहते हैं, कामयाब भी मैंने यहाँ लगा दिया, अपने बेटे के कमरे में जाता है और वहाँ ये देखता है कि उसने छोटे छोटे नोट्स लगाए हुए थे और उस पर लिखा था कि आज भी पापा ने मुझे वक्त नहीं दिया, आज भी पापा ने मुझे टाइम नहीं दिया, पापा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए था। और ये पढ़कर उस शख्स की आंखों में आंसू थे, नॉट एज अ बिजनेसमैन बट एज अ फादर। अब वो चाह कर भी, पैसे उसके पास बहुत थे, लेकिन अब उसका बच्चा तो रहा नहीं, बड़ा हो गया, अब वो बचपन जो था वो वापस नहीं आ रहा, वो बातें, वो वक्त कभी वापस नहीं आया। और ये एकदम सच्ची स्टोरी है जो मैंने रिसेंटली एक स्पीच में टोस्ट मास्टर्स की एक शख्स हैं उन्होंने, और उनको इस बात पे अवार्ड भी दिया गया था, उनकी स्टोरी थी, उससे ये मैंने पिक किया, वो मेरे एकदम जहन में ये स्ट्राइक हुई। हालांकि उसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स डाले, बट मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट करके आपको समझाया। कहने का मतलब मेरा आपसे ये है कि पैसे को अहमियत दीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही अहमियत देना ये गलत है। मानी वाकई ज़रूरी है, मैं कह सकती हूँ पैसा ज़िंदगी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पैसा ही चाहिए। अगर हम ये कहें कि नहीं पैसा नहीं, तो ऐसे तो कह ही नहीं सकते, पैसे की ज़रूरत है, पैसा हम सबको चाहिए। मगर एक लाइन आपने सुनी होगी कि ना, मनी लॉस्ट कैन बी अर्नड अगेन बट टाइम लॉस्ट कैन नेवर बी रिकवर्ड। तो पैसा ज़िंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन वक्त वो चीज़ है जो आपके रिश्तों को, आपकी मेमोरीज़ को और आपकी खुशियों को बनाता है। अब चॉइस आपकी है कि आप मशीन की तरह लगे रहना चाहते हैं या उन मोमेंट्स को भी जीना चाहते हैं, उन रिश्तों को भी जीना चाहते हैं, उन मेमोरीज़ को भी बनाना चाहते हैं और खुशियाँ भी अपनाना चाहते हैं अपने लव्ड वंस के साथ जिनके लिए आप पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, स्पेंड मनी वाइजली। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप करें तो स्पेंड मनी वाइजली बट स्पेंड टाइम लविंगली, ये लाइन याद रखना हमें और आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो मेरा टेक था, चूँकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट आपकी बातें सुन सुन के मुझे लगा कि नहीं, पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे स्ट्राइक हुई कि नहीं, वो पैसे से तो आप नहीं खरीद सकते, और शायद उसमें मुझे समझ में आए खुशी, लेकिन हाँ वक्त आपको खुशी देता है। तो बस हम सब जो हैं वो कहीं ना कहीं सुकून और खुशी की तलाश में हैं, तो उसकी अगर उसका जो रास्ता है वो ठीक है, स्ट्रगल से होके जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों से होके गुजारा है, लेकिन उसकी अगर डेस्टिनेशन वक्त पे आके रुक रही है तो वाई नॉट टाइम। चलिए, इसी के साथ अब मेरे पास जो है वो टाइम बहुत कम बचा है और अब मुझे अपने गेम सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, तो मैं चाहूँगी कि अब आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए गेम सेगमेंट के लिए। आज भी हमने जो है वो बहुत ही सिंपल सा रखा है, जस्ट द वॉइसेस, कुछ आवाज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने जो है वो सेट की हैं, आपको पहचाननी है, 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा, ट्राई ज़रूर करना है ना, ट्राई ज़रूर करना है, ये नहीं कि आप ट्राई नहीं करें, तो ट्राई करने के लिए कॉल करना है मुझे, कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। अब थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, हल्के फुल्के अंदाज में इस गेम को खेलेंगे एंड लेट्स गेट कनेक्टेड, एंड अभी के लिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये अमेजिंग सा ट्रैक एंजॉय करते हैं, वापस आएंगे तो गेम हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है।

0: हाँ जी, बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज में आपने एंजॉय किया। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। मैं हूँ नासिया आपके साथ 8:38 ऑन द क्लॉक एंड यस वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: हाय
1: साहिल आदमी फ्रॉम।
0: हाय साहिल, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप?
1: ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया मैम।
0: चलिए
1: जी, After 13 years, I moved in Dubai.
0: Uh-huh.
1: And first time today, I am listening radio.
0: Uh-huh.
1: And it's really amazing.
0: Hi,
1: one of my friends yesterday, he said radio in my phone. So
0: uh-huh.
1: it is really amazing.
0: Okay.
1: And last 1 hour, I am listening you while driving.
0: Uh-huh.
1: So, and
0: I hope you are enjoying, right?
1: Dubai, yeah, enjoying. I am very emotional. Your speech and last one, your stories and everything is very awesome.
0: I hope कि आप उस इमोशन से बाहर आ गए। It's not to make you emotional.
1: Yes.
0: It's just to, you know, remind each of us कि हम किस रेस का हिस्सा हैं और सिर्फ उसी रेस का हिस्सा
1: yes.
0: ना बने। ठीक है, पैसा ज़रूरी है यही समझें, सब कुछ है ये ना समझें। ये
1: yes.
0: बस एक फ़र्क हमारे जहन में रहना चाहिए। अब क्योंकि आपने मुझे कॉल किया और यही टाइम जो होता है ना हमारा गेम का होता है, तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ गेम भी खेलिए। ठीक है, प्लीज़ डोंट से नो। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस की वॉइसेस हैं। 30 seconds का आपके पास टाइम है, जस्ट आपको पहचानना है। कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन से पास, तो मैं आपको दूसरा वॉइस प्लेस कर दूँगी। ठीक है, चलो फैंटास्टिक। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है साहिल अब।
2: मुन्ना, लेकिन इतने बड़े होटल में लाने की क्या जरूरत?
3: अरे मुन्ना, वो पूछ रहे हैं तुम क्या खाना खाओगे।
0: बिल्कुल सही।
4: हाँ हाँ, खाई खाई, और डॉक्टर भी आया था चेक करने के लिए। मैंने तो साफ कह दिया, खांसी तो रुकी नहीं रही मेरी, फायदा क्या है? मैंने मिर्ची कम ही बोला था, ये तो ऊंचा सुनता है ना?
0: बिल्कुल सही।
5: दोनों भाई का लड़ाई, पास्ता करेगा कमाई, आफ्टर ऑल लंदन का सबसे फेमस मैरिज ब्यूरो चलाता है आखिरी पास्ता कपूर, मम्मा मिया, आई एम कमिंग।
0: Is that right answer? क्या बात है साहिल, मैंने तीन आपके लिए प्ले किया और तीनों के तीनों आपने सही पहचान लिए। Superb, very nice। हालांकि टाइम अप हो गया, बट कोई बात नहीं, आपने तीन का स्कोर किया और तीनों न्यू वॉइसेस आज मैंने प्ले की थी, तो बहुत अच्छा खेला। इट्स रियली फर्स्ट टाइम कि आप आए, जुड़े, बात आपने बहुत अच्छी की एंड खेला भी बहुत अच्छा। सो थैंक यू सो मच और आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आगे भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। Okay, have a fantastic day. अपना बहुत ख्याल रखिए जी, take care, bye. Bye. Finally, कोई आया था बेचारा मुझसे बात करने, मैंने कहा नहीं नहीं आपको तो खेलना ही पड़ेगा, ऐसे हो रहा है हमारा हाल। चलिए एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। यूसुफ जी, फाइनली आज आपने सोचा कि मैं तो 7-8 तो कर ही लूंगा।
6: कैसे
0: आप कैसे, आपका आपकी आवाज मुझे लग रही है थोड़ी सी खराब है मौसम की वजह से। मौसम कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
6: थोड़ी शिकायत करनी थी आपसे।
0: अच्छा, प्लीज बताइए क्या हुआ।
6: कर सकते हैं ना?
0: हाँ हाँ, नहीं करिए करिए जरूर।
6: नहीं, जो जो टॉपिक चल रहे हैं मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। मैसेजेस
0: नहीं ले पाते, आप देख रहे हैं ना कितनी कॉल्स चलती रहती है, कॉल्स आती ही रहती है हमको टॉपिक के उसके।
6: अच्छा,
0: उससे
6: तो, मतलब
0: मुझे गेम खेलना होता फौरन
6: कॉल भी है। मतलब,
0: हाँ, पहले हमें कॉल को ज्यादा वो देना, लेकिन लास्ट में मैं नाम लेती हूँ वो थोड़ी सी।
6: नहीं, नाम लेने से कुछ फर्क नहीं, नाम तो रोज नाम से क्या
0: थोड़ा
6: वो लोगों की ओपिनियन तो जानने होते हैं जो कॉल नहीं।
0: हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग बेचारे जुड़ नहीं पाते फोन पे, सो आई थिंक हमें बिल्कुल ये बात सही। चलिए कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप देखते ना बैक टू बैक कॉल्स चल रही होती हैं
6: तो वो मुझे बिल्कुल। लेकिन जस्ट मैं अपने
0: हाँ नहीं, ये आपने अच्छा कहा, मैं भी मैंने देखा आज बहुत मैसेजेस हैं अभी।

0: आपके कहने से मैंने फोन उठा के देखा तो बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं और सबके सब टॉपिक पे ही हैं, तो आई थिंक ये मुझे इंक्लूड करना चाहिए था।
1: एक ही टिका रहा है वो, मतलब
0: मोबाइल ने अभी तक देखे नहीं है क्योंकि फिर खो जाते हैं ना, मैं अगर ओपन कर लूंगी तो मैं भूल जाऊंगी, तो अभी है पेंडिंग में, बड़ी यादें आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ अभी लास्ट में उन्हें शामिल करें। चलिए क्या कर सकते हैं, टॉपिक में हम इतना खो जाते हैं ना हम सब कि वो
1: नहीं, वो मेरा बोलने का मतलब है कि वो जो कॉलर्स हैं उनकी ओपिनियन के साथ साथ जो मैसेजेस हैं उनकी भी थोड़े ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा ना, जो कॉल नहीं रीच कर पाते हैं वो भी तो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ लोग कुछ कहना चाहते हैं और मिस हो जाता है, फिर गेम के वक्त आके शुरू हो जाता है,
0: वही हो जाता है, फॉरन गेम भी हमें रखना ही रखना है जिसमें बैटरी, तो वो हो जाता है। चलिए मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगी कि मैं इसको देखती रहूं और इंशाल्लाह आप लोग के मैसेजेस भी लूं। चलिए हम आपके साथ गेम स्टार्ट करें, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, ठीक है? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: आज हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, रोमियो एंड जूलियट।
0: सही,
3: एक दिन में भी करती हूँ मैं, अभी मैंने एक मुकेश।
0: सही।
4: हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर नाम।
0: सही।
5: मेरे बेटे आएंगे,
0: राखी।
6: आप शायरी लिखते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं।
0: रवीना टंडन इज द राइट आंसर। यहाँ पे टाइम अप हुआ है, सो 1, 2, 3, 4, 5 5 का स्कोर किया। ओ हो, नॉट एट ऑल बैड, क्या बात है भाई।
1: शोले की जो वॉइस है रहते हो सकते हैं, मैं जब ट्राई करना वो शोले की जो
0: वही थे आपने ये आवाज नहीं पहचानी। अच्छा खेला आपने, अपने थ्रोट का प्लीज अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए, यू टू टेक केयर, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। राइट, सो अभी तक देखा जाए तो हाईएस्ट इज लाइक 5 का स्कोर जो है वो हाईएस्ट चल रहा है। अगर आपको गेम खेलना है, पार्टिसिपेट करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज 666-22-107 पे हाई हेलो लिखकर भी भेज सकते हैं, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, या फिर आप डायरेक्टली भी मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर इज 443-443-77। एक हमारे साथ कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हेलो।
7: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
7: How are you?
0: I'm good, I'm
7: good. How was your weekend?
0: Was great. How was your weekend?
7: Great.
0: Aapka
7: naam? It will be more great. I'm going to India tomorrow for Onam. So, yeah.
0: Nice for Onam celebrations.
7: Hamesha bhi naam, abhi naam to yaad hona chahiye. Naam to yaad hoga.
0: Naam to yaad hoga. Raj. ओके राज, आपका नाम मुझे याद है बिल्कुल। चलिए आपके साथ गेम को स्टार्ट करते हैं, आप चैंपियन तो हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, उन्होंने 5 का अच्छा स्कोर किया, लेट्स सी, ऑल द वेरी बेस्ट। आप कम से कम 6 करिए, कोशिश कीजिए कि आप जो है यूसुफ भाई को कल के लिए मोटिवेट करके जाए यहाँ से, कल हो गया नहीं, मुझे 7 करना है आज कम से कम। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
8: ओहो, अजी दुश्मनों के हाथ से दवा पी पी कर ही बचे हुए हैं आप।
9: झूठ बात।
6: आप शायरी लिखते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं।
0: सही,
10: हमारे धंधे में ना बंदूक चलती है, ना बॉम्ब, ना चाकू, चलता है तो सिर्फ
11: ये। वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है, मुझे मेरा फर्ज मुबारक। अगर आपके पीसी सरकार जैसे
10: तो तुम लोग आगे पीछे चारों तरफ पोजीशन ले लो।
0: नहीं।
10: और आदमी
7: नहीं
10: सब
12: क्या की गल चेस कर रहे हो सर जी, आप मेरा सुबह से देख रहा हूँ मैं सर, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, आपको इसे प्रॉब्लम क्या? गाड़ी रोको साइड पे, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल।
0: टाइम चला गया राज, आज टफ हो गए, टफ हो गए क्या?
7: हाँ टफ हो गया थोड़ा
0: शायद, लेकिन मेरी गलती है।
7: पेपर आप हमेशा इजी जब हो जाते हैं तो बोलते नहीं कल मैं थोड़ा शुगर लेके आऊंगा।
0: अरे मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, लोग कहेंगे एक ही सा पेपर देती रहती है, कुछ अलग से बनाती है।
7: मुझे अगर वो पहला वाला मिल जाता तो अच्छा हो जाता। मुझे जय बद्री का भी नाम याद था।
0: हाँ, अच्छा अच्छा,
7: बैड लक।
0: नहीं नहीं, इट्स ऑलवेज योर गुड लक, डोंट से दैट वे। आपने कुछ नया ट्राई तो किया, एटलीस्ट ये बड़ी बात थी, है ना? सो दैट्स इम्पोर्टेंट। एनीवेज, यू आर ऑलवेज अ चैंपियन। होता है कभी कभी कि कुछ चीजें एकदम से हमें क्लिक नहीं करती, बट आई एम श्योर ये आप लेटर ऑन अगर वैसे सुन रहे होते तो आप शायद बता पाते। बट यहाँ पे एक प्रेशर भी होता है ना, वो टाइम भी चल रहा है एंड ऑल दैट। सो बट एनीवेज, आना, जुड़ना और कनेक्ट होना और चैलेंज लेना, ये बहुत बड़ी बात है। सो फॉर दैट, बहुत जबरदस्त राज, जाइए अच्छे से, आप अपनी हॉलीडेज स्पेंड कीजिए, वी आर गोना मिस यू, एंड फिर आइए, फिर वापस
7: करेंगे।
0: अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, सो सी यू वेरी सून। अपनी फैमिलीज को मेरी तरफ से, जितने मेंबर्स उनको रिगार्ड्स। ओके,
7: थैंक यू सो मच,
0: बाय,
7: हैव अ गुड डे,
0: यू टू, टेक केयर, बाय। ऑलराइट, और यहाँ पर एक और कॉलर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो,
9: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
9: खुश नसीबी है, हमारे दिन में दो बार बात हो
0: गई। यही मैं सोच रही हूँ, अजहर जी की आवाज है
9: जी, जी,
0: तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बात तो बहुत अच्छी की थी, आज खेलना भी बहुत ही अच्छा है आपको। हाँ,
9: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह, अच्छा,
9: कोशिश करना अपना काम है, हार जीत।
0: हाँ हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स,
9: नसीब है वो होगा इंशाल्लाह।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ट्रू ट्रू ट्रू।
9: और सबसे बड़ी बात तो मैं ऑलरेडी जीत गया हूँ, क्योंकि मैं गेम में प्रैक्टिस करना वही बहुत बड़ी जीत है
0: ना। ये बात, ये मुझे बहुत अच्छी लगी लाइन, कि जो ये सोचते हैं ना कि अरे हम हार जाएंगे, अरे हारता कोई नहीं है, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, तो बस यही बात है। चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं, और आपका टाइम स्टार्ट होता है।
9: अच्छा
0: चलो, मैं फिर और भी आसान
9: लेडीज का तो अपने को ऑलमोस्ट अपने को मालूम ही नहीं वो।
0: अच्छा,
9: जो भी ये लेडीज के आवाज पहचाना मुश्किल है। खैर चलो, जो भी है देखा जाएगा।
0: अरे बाप रे, सारी की सारी लेडीज आ गई इधर, तो लेडीज आप नहीं पहचान पाएंगे। ओके, तो मैं कोशिश करती हूँ, शायद आप ये वाली वॉइस शायद पहचाने, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
13: हमारे धंधे में ना बंदूक चलती है, ना बॉम्ब, ना चाकू, चलता है तो सिर्फ एक ही चीज, पैसा, पास।
14: ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं। अब क्या
13: पूछो तुम लोग, आगे पीछे चारों तरफ पोजीशन ले लो, और आदमी सबको बुलाओ। चल कौन?
0: नहीं
12: क्या की गल, चेस कर रहे हो सर जी? मेरा सुबह से देख रहा हूँ मैं सर, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, कहाँ जाता हूँ।
15: जब मौत उससे डर कर भागती थी, अब बिना कदम लड़खड़ाए।
0: टाइम भी पास हो क्या?
9: कोई बात नहीं, कोई
0: बात नहीं, इंशाल्लाह। फिर
9: ऑलरेडी मैं जीत के ही जा रहा हूँ, लेके ही जा रहा हूँ।
0: ये बात जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात आपने कही अजहर जी, के कोई हारता नहीं जीतता है, कुछ कुछ ना कुछ तो सीखता और जीतता है, और पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। सो फॉर दैट आपके लिए तालियां।
9: स्टेडियम में बैठने से बेहतर है स्टेडियम में उतर के देखे तो मालूम होता है चारों तरफ कौन है,
0: ये
9: बहुत बड़ी हिम्मत होना चाहिए।
0: ये बात जबरदस्त, चलिए थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा अभी भी आपसे, फिर वापस फिर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट, सो आज वाकई किस्मत अच्छी थी यूसुफ जी की, यही कहूंगी कि आज का 5 का स्कोर उनका काफी तगड़ा साबित हुआ है, और आज के विनर हमारे जो है वो है यूसुफ जी, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं और लेने ही लेने हैं। मुजाहिद हैं और सलाम कहते हो, कहते हैं बहुत ही अच्छा शो मैम, थैंक यू सो मच। एक यूसुफ और है हमारे साथ, अब 3 यूसुफ हो गए हमारे साथ। मोहसिन अली जी गुड मॉर्निंग कहते हुए, इमरान हमारे साथ है गुड मॉर्निंग कहा है, इंजीनियर फैजान जी हैं, चलिए ज़रूर इंशाल्लाह, उसके साथ गुड मॉर्निंग कहते हैं मकसूद आलम जी, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, और हाँ किसी से प्यार और ना ही किसी से प्यार करता है, तो ये बात भी बड़ी सही कही, बड़े पते की कही, ना इंतज़ार करता है ना प्यार करता है। अच्छा गुड मॉर्निंग कहते हैं मोहम्मद इब्राहिम जी, यहाँ पर जुनैद है गुड मॉर्निंग कहते हैं, कहते हैं पैसा सब कुछ है। उसके साथ यहाँ पर सरफराज जी का मैसेज है, सलाम एंड गुड मॉर्निंग, एंड इनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और कहा है कि सभी सुनने वालों से ये गुजारिश करते हैं कि इनकी अम्मी के लिए दुआ करें। तो बिल्कुल सरफराज जी, हम सब आपकी अम्मी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र और सेहत दे, आमीन सुमा आमीन। और प्लीज़ हमें अपडेट भी

कीजिएगा उनके हेल्थ के हवाले से. पैसा सही कहा. लोग सही कहते हैं कि इंस्टा पे और एफबी पे टाइम गुजारने टाइम मिल जाता है वक्त काटने के लिए, और वैसे पूछो तो टाइम नहीं है. पैसा नहीं होगा तो टाइम ही टाइम होगा. सो टाइम नहीं होना अच्छा है, ये कहना है सीबी का. मतलब पैसे को तो खैर आज ज़्यादातर पैसे ने डोमिनेट किया ही क्या है. इसके साथ मुमताज़ अहमद जी हैं, नाइस शो एंड थैंक यू सो मच. नाजिया मैम आप मुझे पैसे दे दो. हमारा टाइम कब आएगा पैसे मिलने का. हाँ ये बहुत बड़ा सवाल है मुमताज़ जी. मैं भी यही सोच रही हूँ कि बहुत लोग बेचारे पूछते रहते हैं कि पैसे कब मिलेंगे. मेरी भी दुआ अल्लाह पाक आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए, यही मैं कह सकती हूँ. यहाँ है मोहम्मद एहसन उबैद कुरैशी जी का मैसेज. सलाम कहते हैं, माई टेक विल बी मनी एंड टाइम बोथ आर इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू हैव मनी नो टाइम then of no use. Similarly, if you have time, no money, then also of no use. हाँ ये तो है, good balance की तो बात है ही, but हमने बहुत compel कर दिया लोगों को कि एक choice के साथ जाना है. मोहम्मद बशीर जी thank you so much आपके message के लिए. सुरेश है हमारे साथ और कहते हैं बहुत ही difficult है choice, but अगर एक choose करना है तो I'll go with money. नहीं सॉरी विद टाइम. इन्होंने टाइम कहा है और मनी कहा है विपिन जी ने. सो थैंक यू सो मच आपके सभी के मैसेज के लिए. उज्मा हमारे साथ थैंक यू. एंड ये मैसेज है अवैस खान जी का, बहुत शुक्रिया. खलील पराचा जी ने तारीफ़ की, थैंक यू. अल्लाह ताला ये शेख अजहर जी ने दुआ लिखी है कि आपकी अम्मी को जो है वो जल्द से जल्द ठीक कर दे. मोहम्मद यूसुफ जी थैंक यू सो मच. वेल विद दिस दोस्तों अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का. इंशाल्लाह कल सुबह वापस आपकी मेरी मुलाकात होगी सुबह 6 बजे. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

0: सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया, इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ. साहिब सुमो अमीर ने अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के सदर को सदर के ओहदे का हलफ उठाने पर तहनीती पैगाम इरसाल किया है. रियासत कतर ने बिरादर मुल्क शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाही इलाके बैत जिन में एक शहरी गाड़ी पर इसराइली ड्रोन हमले की शदीद मुजम्मत की है. इराकी सदर ने खलीज ममालिक के खिलाफ हमलों के लिए इराकी सरजमीन को इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हुए मुल्क के इस्तेहकाम के तहफ्फुज़ और उसे इलाकाई तनाजात का मैदान बनने से रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है. रूस और यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज़ एक दूसरे के मुख्तलिफ इलाकों पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए जिनके नतीजे में दोनों जानिब मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए जबकि रिहायशी इमारतों सनतियों तिजारती मराकज़ और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुँचा. ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ और अब समात की जो मुफस्सल नशरिया.

रिपोर्टिंग के लिए यकसां तरीका कार इख्तियार करने की अहमियत पर भी इत्तफाक किया। इसके अलावा दोहा फ्रेमवर्क के तहत जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा लेने और दरपेश मुश्किलात के हल के लिए एक खसूसी तरीकाकार कायम करने पर इत्तफाक किया गया। जायजे के बाद फरीकैन ने मुज़ाकरात के लिए मरहलावार लायह अमल और मुख्तलिफ मराहिल की तकमील के लिए मुकर्ररा मुद्दत तय की, जबकि दोहा फ्रेमवर्क के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लचक और नए तरीकाकार का इख्तियार करने के आज़म का इजहार किया। फरीकैन ने मशरिकी कांगो और वसीतर ग्रेट लेक्स खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए कतर, अमरीका, अफ्रीकी यूनियन के सालिस टोगो, स्विट्ज़रलैंड और अफ्रीकी यूनियन कमीशन की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने यमन में जंग से मुतासर आबादी के लिए एक नया इमदादी मंसूबा शुरू कर दिया है, जिसके तहत अल हुदैदा गवर्नरी के अल जैदिया और अल जोहा इजला में सेहत, गजाइत और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। कतर रेड क्रीसेंट सोसाइटी के मुताबिक इस मंसूबे के लिए अक्वामे मुत्तहदा के दफ्तर बराए राबता इंसानी अमूर के यमन ह्यूमैनिटेरियन फंड की जानिब से 10 लाख अमरीकी डॉलर फराहम किए गए हैं। मंसूबे से 55,000 से ज़ायद बेघर और मुकामी अफराद मुस्तफीद होंगे, जबकि 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। मंसूबे के तहत 4 तिब्बी मराकज़, जिनमें 2 अस्पताल और 2 सेहत मराकज़ शामिल हैं, चलाए जाएंगे। इन मराकज़ के लिए अद्वियात, तिब्बी सामान, आलात और अमले की तनख्वाहों का इंतज़ाम किया जाएगा, ताकि बुनियादी सेहत, तौलीदी सेहत, हंगामी तिब्बी सहूलियात, जचगी के ऑपरेशन, तिब्बी मुंतकली और जहनी सेहत की खिदमात बिला तातुल जारी रहें। गजाइत के शोबे में बच्चों और खवातीन में शदीद गजाई किल्लत के इलाज के लिए खसूसी प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जबकि शेरख्वार और बच्चों की गजाइत के मराकज कायम किए जाएंगे। इसके अलावा कम्युनिटी की सतह पर गजाई किल्लत की बाकायदा जाँच और खुराक व हिफ्जान सेहत से मुतालिक आगाही सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे। मंसूबे के तहत इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदानों को बराह रास्त माली इमदाद भी फराहम की जाएगी, ताकि वो खुराक, सेहत की सहूलियात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें और मुआशी मुश्किलात का बोझ कम किया जा सके। सामीन, ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नशर की जा रही हैं। इसराइली काबिज फोर्सेज ने कल मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 14 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक अलराम शहर में 3 फ़लस्तीनी इसराइली फ़ौज की फायरिंग से ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए ने बताया कि ज़ख्मियों की हालत मुस्तहकम है। उधर तोबास शहर और उसके मशरिक में वाक़ गांव तयासीर में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई के दौरान 11 फ़लस्तीनी आंसू गैस और दम घुटने के बायस मुतासिर हुए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तोबास में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के अमले ने कार्रवाई के दौरान दम घुटने से मुतासिर होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की। इस दौरान मुतअद्दिद फ़ौजी गाड़ियों ने शहर की सड़कों पर गश्त किया, जबकि इसराइली फ़ौजी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहे। भारत के मशरकी साहिल के करीब पानामा के परचम बरदार माल बरदार बहरी जहाज़ ओशन विनर के डूबने के वाक़े में भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 अफराद को बचा लिया है। भारतीय कोस्ट गार्ड के मुताबिक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का जहाज़ से राबता मुनक़ता हो गया था, जिसके बाद तलाश और इमदादी कार्रवाई शुरू की गई। जहाज़ में लोहे की खाम धात का सामान मौजूद था, ताहम उसके डूबने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कोस्ट गार्ड के तर्जमान कमांडेंट अमित ओनियाल ने बताया कि जहाज़ पर हमले के 24 अरकान सवार थे, जिनमें 20 चीनी, 3 म्यांमार के शहरी और 1 बांग्लादेशी शहरी शामिल था। मुकामी ज़राए के मुताबिक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को आज जहाज़ से राबता मुनक़ता होने की इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद जहाज़ चलाने वाली कंपनी ने तलाश और बचाव की कार्रवाई में मदद की दरख्वास्त की। भारतीय कोस्ट गार्ड ने बताया कि अब तक 2 अफराद को लाइफ बोट से बाहिफाजत निकाल लिया गया है, जबकि दीगर अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इराकी सदर नजार आमीदी ने खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों के लिए इराकी सरजमीन को इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हुए मुल्क के इस्तेहकाम के तहफ़ और उसे इलाकाई तनाजात का मैदान बनने से रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। 8वें बगदाद डायलॉग कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मुबाहसे में गुफ्तगू करते हुए इराकी सदर ने कहा कि इराक अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़ और अपनी सरजमीन को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए पुरअज़्म है।
उन्होंने एक बार फिर खलीजी ममालिक के खिलाफ इराकी सरजमीन से किए जाने वाले किसी भी हमले की मुखालफत का यादा किया। इराकी सदर ने कहा कि इराक इस वक्त खित्ते की एक हसास दौरे पर है, जिसके बाइस सियासी और सिक्योरिटी इस्तेहकाम को बरकरार रखना और खित्ते में बढ़ते हुए तनाज़े के असरा से मुल्क को महफूज रखना ज़रूरी है। शाम के लिए अमरीका के खसूसी नुमाइंदे और तुर्किया में अमरीकी सफ़ीर डॉम बैरिक ने कहा कि शाम के गोलान के पहाड़ी इलाके पर इसराइल का कंट्रोल एक कब्ज़ा है जो अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों और पूरे आलमी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करता है। शामी अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक टॉम बैरक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून के तहत गोलान की पहाड़ियां शाम का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी निज़ाम की मुखालफत करते हुए अब भी गोलान पर काबिज़ है, जबकि आलमी बरदारी उसे शामी इलाका करार देती है। रूस और यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज़ एक दूसरे के मुख्तलिफ इलाकों पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए, जिनके नतीजे में दोनों जानिब मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए, जबकि रिहायशी इमारतों, सनअतियों, तिजारती मराकज़ और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुँचा। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों में मुख्तलिफ इलाकों में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। क्रासनोदार के इलाके में 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक हुए, जबकि समारा में एक शख्स हलाक हो गया। वहाँ एक ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी और सनअती तनसीबात को नुकसान पहुँचा। ओजोन कंपनी के एक लॉजिस्टिक्स मरकज को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए और काम रोकना पड़ा। बेलगोरूद में 2 अफराद हलाक और 13 ज़ख्मी हुए, जबकि अलग अलग ड्रोन हमलों में एक 17 साल लड़की समेत मजीद 3 अफराद ज़ख्मी हुए। ब्राइंसक में भी 4 अफराद ज़ख्मी हुए। क्रीमिया के सियोस्तोपोल में मास्को नवाज़ हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन का मलबा एक बस पर गिरने से 2 अफराद हलाक और 10 ज़ख्मी हुए। उधर मशरकी यूक्रेन के लोहानसिक में, जहां रूस का बेशतर इलाके पर कंट्रोल है, एक 16 साल लड़की समेत 2 शहरी हलाक और 9 ज़ख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में रूसी मिज़ाइल, ड्रोन और ग्लाइडेड बम हमलों में यूक्रेन में कम से कम 6 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ज़ापोरेज़िया में 3 अफराद हलाक और 15 ज़ख्मी हुए, जबकि केफ के इलाके में मिज़ाइल हमलों के नतीजे में एक बच्चे समेत 2 अफराद हलाक और 8 ज़ख्मी हुए। हमलों में गोदामों, गाड़ियों, घरों और एक पेट्रोल स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमले में एक शख्स हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए, जबकि गोदाम में आग लग गई। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि इस हमले में इंजनों से भरे एक रेलवे डिपो को निशाना बनाया गया। दरअसल जुम्मे को क्रेवी रिया में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में हलाकतों की तादाद बढ़कर कम से कम 16 हो गई है। 130 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, जबकि 2 बच्चों समेत 9 अफराद ताहाल लापता हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूक्रेन रूस के अंदर ऑयल रिफाइनरियों और लॉजिस्टिक्स मराकज समेत इक्तसादी तनसीबात को ड्रोन हमलों का निशाना बना रहा है, जबकि रूसी अफवाज यूक्रेनी शहरों, तनसीबात और बुनियादी ढांचे पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की निगरानी के मिशन के मुताबिक हालिया महीनों में शहरियों की हलाकतों और ज़ख्मी होने के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसकी एक बड़ी वजह तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों का बढ़ता इस्तेमाल और महाज़े जंग से दूर इलाकों में हमलों में शिद्दत है। फ़्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया है कि पेरिस यूक्रेन को मजीद दिफाई मिज़ाइल फराहम करेगा, ताकि रूसी हमलों के मुकाबले में अपनी फ़िज़ाई हदूद के दिफा के लिए यूक्रेन को ज़रूरी वसाइल फराहम किए जा सकें। मैक्रों ने कल यूक्रेनी सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन में एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाने वाले हालिया रूसी हमले पर सदमे और अफसोस का इजहार किया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूक्रेन को दिफाई मिज़ाइलों की कमी का सामना है, इसलिए ऐसे तमाम ममालिक जिनके पास मतलूबा वसाइल मौजूद हैं, उन्हें यूक्रेन की मदद के लिए मुश्तरिका कोशिशों में शामिल होना चाहिए। स्पेन के मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों में जंगलात की आग और शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब के बाइस 1000 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि कम अज़ कम 11 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक है।
वैलेंसिया के एक

0: कस्बे गाटोवा में सैगोरबे से फैलने वाली आग ने तकरीबन 633 हेकड़ रकबा मुतासिर किया। आग पर काबू पाने के लिए 350 अहलकार और 25 तैयारे कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि मुतासर अफराद की फिलहाल घरों को वापस जाने की इजाज़त नहीं। शुमाल मशरकी इलाके तालूनिया खसूसन तारागोना के करीब रौदा दे पैरा में सैलाब से सड़कें मकानात और ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई। हुकाम ने एक कैंपिंग साइट से 300 और एक तफरीही मुकाम से 100 अफराद को निकाला, जबकि हंगामी खिदमात को 830 कॉल्स मौसूल हुईं। सामिन, खबरों के इस मरहले में अब समाप्त कीजिए बिजनेस न्यूज़ हेडलाइंस।
1: बिजनेस न्यूज़ हेडलाइंस विद सरवर मिर्ज़ा।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर शेख बंदर बिन मोहम्मद बिन सऊद अल सानी से रियासत कतर में जमहूरिया कजाकिस्तान के सफीर बखीत बतार शायेव ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन के अहम पहलुओं का जायजा लिया गया, बिलखुसूस माली और बैंकिंग सेक्टर में तआवुन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। अबूधाबी इंटरनेशनल बुक फेयर का 35वां एडिशन 13 सितंबर से 18 सितंबर तक अबूधाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्किद होगा। इस नुमाइश में कतर समेत 95 ममालिक के दर्जनों मुसन्निफीन मुफक्किरीन और एकेडमिक्स भी शिरकत करेंगे। अदर नेशनल बैंक के मुताबिक चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बरामदाद तेजी से बढ़ रही है। बैंक का कहना है कि ये चीन की सनती हिकमत अमली की कामयाबी को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी जाहिर करता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री अब अपनी मकामी मार्केट से बाहर निकलकर नए चैलेंजेस का सामना कर रही है और मजीद मुनज्जम होने की तरफ बढ़ रही है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने हफ्ते के रोज ऐलान किया है कि कनाडा अमेरिका पर जवाबी टैरिफ्स लगाएगा, जबकि अमेरिका की तरफ से कई कैनेडियन प्रोडक्ट्स पर नए 50% टैरिफ्स नाफिज हो गए हैं। ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुजाकरात नाकाम होने के बाद सामने आए हैं। मार्क कार्नी ने वाशिंगटन की तरफ से पेश की गई शराइत को गैर मुनासिब और गैर इक्तसादी करार देते हुए किसी भी मुमकिन मुआहदे की काबिल एतमाद हैसियत पर सवाल उठाया है। और अब करेंसी अपडेट। एक कतरी रियाल के एवज आज इंडियन रुपीज हैं 25.56, पाकिस्तानी रुपीज हैं 76.16, बांग्लादेशी टका है 33.51, श्रीलंकन रुपीज हैं 89.56, अफगान अफगानी हैं 17.97 और यूएस डॉलर्स हैं 0.27 एंड दीज रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। तो ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स। आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
3: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में गल्फ फुटबॉल फेडरेशन ने 2026-2027 गल्फ क्लब चैंपियंस लीग का नया लोगो अनवील कर दिया है। कॉम्पिटिशन का तीसरा एडिशन 13 अक्टूबर से 30 अप्रैल तक खेला जाएगा। कतर बास्केटबॉल फेडरेशन ने 2026-2027 सीजन का कैलेंडर अनाउंस कर दिया है। मेंस और एज ग्रुप कंपटीशन सितंबर से शुरू होंगी, जबकि क्लब्स के नए सीजन के लिए तैयारियां कर रही हैं। अर्जेंटीना के मिडफील्डर लियांड्रो पारेदेस को 2026 वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन के खिलाफ हार के बाद होने वाली हाथापाई में दोषी पाने पर 10 मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दिफाई चैंपियन असद ने 2026-2027 कतर स्टार्स लीग कैंपेन का आगाज अल अहली क्लब के खिलाफ एक के मुकाबले में तीन गोल की शानदार जीत से किया। यह मैच जासिम बिन हमाद स्टेडियम में हफ्ते को खेला गया। हॉकी वर्ल्ड कप में इंडियन मेंस टीम को पूल ई में नीदरलैंड के खिलाफ एक के मुकाबले में तीन गोल से शिकस्त मिली।

0: और वहीं पाकिस्तान ने 16 साल बाद FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। हफ्ते को वैंगिंगा स्टेडियम में पाकिस्तान ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के दूसरे दिन आज मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त देकर सीरीज को बराबर कर दिया। और US ओपन टेनिस में सेरेना विलियम्स और कार्लोस अल्काराज मिक्स डबल्स खेलने के लिए टीम बना रहे हैं। US टेनिस एसोसिएशन ने आज इस बात का ऐलान किया है। US ओपन का आगाज परसों से होगा। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब न्यूज हेडलाइंस समत फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
2: साहिब सुमो अमीर ने अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के सदर को सदर के ओहदे का हलफ उठाने पर तहनियती पैगाम इरसाल किया है। रियासत कतर ने बिरादर मुल्क शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाही इलाके बैत जिन में एक शहरी गाड़ी पर इसराइली ड्रोन हमले की शदीद मुजम्मत की है। इराकी सदर ने खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों के लिए इराकी सरजमीन को इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हुए मुल्क के इस्तेहकाम के तहफ्फुज़ और उसे इलाकाई तनाजात का मैदान बनने से रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रूस और यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज़ एक दूसरे के मुख्तलिफ इलाकों पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए जिनके नतीजे में दोनों जानिब मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए जबकि रिहायशी इमारतों सनती और तिजारती मराकज़ और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुँचा। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तितम को पहुँचा। स्टूडियो से तकनीकी मावन नूर और न्यूज़ स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्जा, युसरा महमूद और इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक ऐसे वाक्य पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें बैक वक्त कई अजीम सुन्नतें जमा हैं। इसमें बीमार की आदत भी है, गैर मुस्लिम के साथ हुस्न सुलूक की बात भी आई है, दावत में नरमी, इसी तरह इंसानी हमदर्दी और किसी की हिदायत के लिए आखिरी लम्हे तक फिक्र करना। अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक यहूदी लड़का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत क्या करता था। वो बीमार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहा

0: खाने बैठ गए और फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो। उसने अपने बाप की तरफ देखा जो उसके पास ही था। उसने कहा, अबुल कासिम की इताअत करो। इस पर उस लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए बाहर तशरीफ ले आए कि तमाम तारीफें उस जात के लिए है जिसने इसको जहन्नम से नजात दे दी। इसे रिवायत किया है बुखारी ने। इस वाकये का सबसे बड़ा सबक यह है कि अक्सर औकात दिल किरदार से खुलते हैं। ये लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहा था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखा था, आपकी नरमी देखी थी, आपका तवाज़ु देखा था। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इस्लाम कबूल करने को कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उसके लिए अजनबी नहीं थी। दावत पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के जरिए उसके दिल तक पहुँच चुकी थी। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, बीमार की इयादत ये ज़रूरी है। खैर खाही तो सबके लिए है और यही इस्लाम के अच्छे तारुफ को पेश करने का मौका है। इस्लाम तो हमें ये कभी नहीं सिखाता कि सिर्फ अपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का दायरा बहुत वसी था। मजीद सामने किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं सोचा कि अब तो ये लड़का बहुत बीमार है, अब क्या फ़ायदा। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हे तक उसके हिदायत की फिक्र की। यह हमें सिखाता है कि किसी इंसान के बारे में जल्दी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जब तक जिंदगी है, हिदायत का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। यहाँ यह भी गौर करने की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को इस्लाम की दावत दी लेकिन उसे जबरदस्ती मजबूर नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो। फिर वो अपने वालिद की तरफ देखता है, वालिद इजाजत देता है और वो अपनी रजामंदी से इस्लाम कबूल कर लेता है। यही दावत का सही मिजाज है कि हक वाजे करो, नरमी से समझाओ और दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करो। हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफ़क़त और दावती हिकमत अपनाने की तौफीक अता फरमाएं। हमें बीमारों की आदत, कमज़ोरों की मदद और हर इंसान के साथ खैरखाही की तौफीक दे। मजीद हमारे अखलाक को इस तरह संवार दे कि लोग हमारे किरदार में इस्लाम की खूबसूरती देख सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुबारक अल नईमी के बारे में। मुबारक अल नईमी कतर की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ियों में शुमार होती हैं और मुल्क की नुमाया फीमेल एथलीट्स में से एक हैं। उन्होंने कम उम्र से ही टेनिस का सफ़र शुरू किया और अपनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन की बदौलत कतर की नुमाइंदगी कई अहम मुकाबलों में की है। मुबारक ने मुख्तलिफ जीसीसी, अरब और एशियन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने कीमती तजुर्बा हासिल किया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। वो कतर की उन खिलाड़ियों में से हैं जो मुल्क में वुमेन्स टेनिस को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कतर टेनिस फेडरेशन की हिमायत और मुसलसल ट्रेनिंग की बदौलत मुबारक ने अपने गेम में काफ़ी बेहतरी पैदा की है। उनकी फिटनेस, फुटवर्क और कोर्ट पर कॉन्फिडेंस उनकी पहचान बन चुका है। वो हर टूर्नामेंट में बेहतर नताइज हासिल करने और अपनी रैंकिंग को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत करती हैं। मुबारक अल नईमी सिर्फ एक टेनिस प्लेयर ही नहीं बल्कि

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, सड़कों पर मुकर्रर की गई या डेजिग्नेटेड लेन्स में चलना, खास तौर पर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक की रवानी में मदद फराहम करता है और सड़क हादसात को कम करता है। जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलने का एहतमाम करता है तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि सबको अपने रास्ते में चलने की सहूलत मिलती है। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है। जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है तो ना सिर्फ सफर में बेहतरी आती है बल्कि सबके लिए सेफ एनवायरनमेंट भी बन जाता है। चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है। अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं। रोड सेफ्टी को अपना कर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, एक बार फिर हम बेचैनी की वजूहात पर बात करेंगे कि वो क्या हैं। हमारे दिमाग में मौजूद बाज कीमियाई मादों का तवासुन जब बिगड़ने लगता है तो बेचैनी पैदा हो सकती है। अगर ख़ानदान में किसी को एनजाइटी रही हो तो उसके इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे थायराइड का मसला है, किसी को डायबिटीज़ है, दिल के मसाइल से कोई दो चार है, एस्टमा है या कोई भी क्रॉनिक जो है वो पेन है, तो उससे बेचैनी जो है वो ज़्यादा हो सकती है या वो बेचैनी का सबब बन सकते हैं। और जैसे कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें बेशुमार वजूहात होती हैं एनजाइटी की या जी की बेचैनी की, जिसमें मुलाजमत का कुछ दबाव है, माली परेशानियां हैं, घर के मसाइल हैं और खुदा नखास्ता किसी अजीज़ की वफात भी हो सकती है, इम्तहानात का बहुत दबाव है, इस तरह अज़दवाजी या ख़ानदानी कुछ मसाइल हैं, ये सब हमारी बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें ये है कि नींद का पूरा ना होना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स जो है उनका इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना और हर वक्त मोबाइल या सोशल मीडिया इस्तेमाल जो हम करते हैं तो उससे भी बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेगेटिव जो न्यूज़ हैं उनमें मुसलसल मसरूफ़ रहना, ये तमाम आदत जो हैं वो एनजाइटी को बढ़ा सकती हैं। तो लिसनर्स, बेचैनी की वजह को समझना उसके इलाज की तरफ पहला

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी,
3: आसान हो जाएगी।
2: सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ख्वातीन व हजरात, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे। सामईन, आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अरब इल्म व फन के शहजादे थे, जिन्होंने ना सिर्फ साइंस में बल्कि फिलॉसफी और लॉजिक में भी बेहद खुद को मनवा लिया था। जी हां, आज हम बात करेंगे

0: ابو نصر الفارابی کی، جو کہ ایک مشہور عرب سائنٹسٹ، فلاسفر اور تھنکر تھے۔ تو دوستوں، اپنے ریڈیو کا والیوم تھوڑا بڑھا لیجئے، کیونکہ اس پروگرام میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں علم کی دنیا میں۔ ابو نصر الفارابی کا اصل نام محمد بن محمد بن ترخن الفارابی تھا۔ یہ آج سے تقریباً دوسری اور تیسری صدی ہجری کے دوران زندہ تھے، جو کہ سن 872 سے لے کر 950 تک کا وقت تھا۔ الفارابی، جو کہ سیکنڈ ٹیچر کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان کو ایرسٹوٹل کے بعد کا فلسفر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل علاقہ فرب تھا، جو آج کے ازبکستان میں ایک شہر ہے، اس لیے انہیں الفارابی کہا گیا۔ الفارابی کا علم پر ایمان تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت حصہ علم اور علم و فن کی تلاش میں گزار دیا۔ الفارابی کا دل بہت خوبصورت تھا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے کام کیا۔ ابو نصر الفارابی کا علم کا سفر واقعی انتہائی لاجواب تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم فراب کے علمی مرکز سے شروع کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے بغداد کا رخ کیا، جو اس وقت کا علمی مرکز تھا۔ یہاں پر انہوں نے بہت ساری مشکل اور علم سے بھرپور کتابیں پڑھیں اور اپنے علم کو آگے بڑھایا۔ الفارابی کو اس دوران گریک فلاسفرز جیسے کہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل کی ٹیچنگز نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ انہوں نے ایرسٹوٹل کی کتابوں کا بہت گہرا مطالعہ کیا اور اپنی سوچ کو اس حساب سے ڈیولپ کیا کہ انہوں نے اپنی فلسفی کو ایرسٹوٹل اور پلیٹو کی ٹیچنگ سے ملا کر ایک نئے طریقے سے سمجھا۔ سامعین، الفارابی صرف ایک فلسفر نہیں بلکہ ایک سائنٹسٹ بھی تھے۔ انہوں نے سائنس کے کئی شعبوں میں کام کیا، جیسے کہ ایسٹرونومی، میتھمیٹکس اور لاجک۔ ان کا کام آج بھی علم کی فیلڈز میں زندہ ہے۔ ان کا کام کافی ماڈرن تھا اور انہوں نے اپنی فلسفی کو بہت ہی مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ ان کی فلسفی میں خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے لاجک اور ریزننگ کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ ان کے مطابق انسان کو اپنی سوچ کو صاف اور لاجیکل طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی فلسفی میں پلیٹو کی آئیڈیاز کو ایکسپینڈ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر انسان اپنی ریزننگ اور انٹلیکٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو وہ اپنی لائف میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ الفارابی نے المدینہ الفضیلہ یعنی دا ورچوس سٹی کے بارے میں کافی لکھا۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک ایسی سوسائٹی کا تصور دیا جو لاجک اور جسٹس پر مبنی ہو۔ ان کا یہ آئیڈیا آج بھی دنیا بھر کے تھنکرز اور فلسفرز کے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ آئیے دوستوں، اب نظر ڈالتے ہیں کہ فارابی کا میوزک کے لیے کیا کنٹریبیوشن رہا۔ آج کے زمانے میں یہ بات کم لوگ جانتے ہیں، لیکن الفارابی کا میوزک میں بھی کافی گہرا انٹرسٹ تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام کتاب الموسیقی الکبیر تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے میوزک کی تھیوری اور اس کے اثر پر تفصیلی ریسرچ کی۔ انہوں نے میوزک کے علمی پہلوؤں کو سمجھایا اور یہ بتایا کہ کس طرح میوزک انسان کی روح اور جذبات کو اثر انداز کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میوزک کی فلسفی اور سائنس دونوں کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ان کا یہ کام جو انہوں نے میوزک اور سائنس کو کمبائن کرنے میں کیا، اس وقت کے لیے کافی ایڈوانس تھا۔ الفارابی کی انومریشن میں وہ روایتی کلاسیفیکیشن کو فالو کرتے ہیں جس میں میوزک کو میتھمیٹکس کے انڈر رکھا جاتا ہے۔ द ग्रेट बुक ऑफ म्यूजिक में वो जरूर ये वाजे करते हैं कि म्यूजिक अपने चंद उसूल मैथमेटिक्स से ड्राइव करता है, लेकिन वो ये भी जिंदगी में कहते हैं, जैसे कि हमने ऊपर कहा कि परफॉर्मेंस का अहम रोल है उसके एम्पेरिकल प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करते हुए। कुछ पॉइंट्स पर कान थ्योरेटिकल रिफ्लेक्शन से ज्यादा आखिरी फैसला करने वाला जरिया है, चाहे कभी भी कान किसी मैथमेटिकल प्रिंसिपल से कॉन्ट्रेडिक्ट भी करता है। मिसाल के तौर पर वो खूबी से जानते हैं कि सेमी टोन असल में टोन का आधा नहीं होता। द ग्रेट बुक ऑफ म्यूजिक का सिर्फ एक मुकम्मल तर्जुमा है जो रुडोल्फ डी इरेंगलर ने फ्रेंच में किया, जो असल में सन 1930 से 35 में पब्लिश हुआ था। अरेबिक टेक्स्ट के एडिट होने से पहले रीप्रिंट हुआ 2001 में। सिर्फ कुछ हिस्सा इंग्लिश में तर्जुमा किया गया है। मैंने उनमें से दो का जिक्र किया है, एक जो जुबान के सेक्शन में है और एक जो लॉजिक के सेक्शन में पोएटिक के अंडर है। जॉर्ज डिमरिटी सावा, जो 2009 में हयात थे, ने रिदम पर दो चैप्टर का तर्जुमा किया। मैकग्रिल यूनिवर्सिटी के एलिसन लिवाइन, जो कि एक फिलोसफर हैं और ग्रीक म्यूजिकल थ्योरीज का अच्छा इल्म रखते हैं और ऊद प्लेयर भी हैं, एक मुकम्मल इंग्लिश तर्जुमा तैयार कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स और लंबी टेक्स्ट का। उन्होंने अलफराबी के म्यूजिक थ्योरी को यूनिवर्सल साइंस के तौर पर समझाया, लेकिन द ग्रेट बुक ही एक मतन नहीं है जो अलफराबी ने म्यूजिक को डेडिकेट किया। इसे लिखने के बाद अपनी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिदम से मुतमईन नहीं होकर उन्होंने बाद में रिदम्स पर दो छोटे मतन लिखे। दोनों का इंग्लिश तर्जुमा सावा ने 2009 में किया। ऐसा लगता है कि अलफराबी ने रिदम्स के लिए एक नेशन सिस्टम इन्वेंट किया था। अपनी किताब फिलोसफीज ऑफ म्यूजिक इन मेडिवल इस्लाम में फेडलस शेहादी, जो 1995 में अपनी तीसरी चैप्टर को अलफराबी को डेडिकेट करते हैं, थेरेसी एनी दौरात 2020, ये दिखाती हैं कि अलफराबी म्यूजिक को जबान, लॉजिक और हत्ता के सियासत से कैसे जोड़ते हैं। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 107। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है, जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं। डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है। सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है। यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों, अबू नासिर अल फारबी का इल्म और उनकी फिलॉसफीज न सिर्फ उनके अपने जमाने में बल्कि आज के जमाने में भी बहुत गहरा असर छोड़े हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ इस्लामिक फिलॉसफी को नई सोच के हवाले से मुतासिर किया बल्कि उनके आइडियाज का असर यूरोप और वेस्टर्न फिलॉसफी पर भी पड़ा। अल फारबी ने इस्लाम को एक ऐसी लाइट के तौर पर समझाया जो लॉजिक और रीजनिंग के साथ कॉम्पिटेबल हो। उनका काम उनके बाद के इल्मी स्कॉलर्स और फिलोसफर्स पर भी बहुत असर डाल गया। उनके काम से इंस्पायर होकर फिलोसफर्स जैसे इब्न सीना या एविसीना और इब्न रुश्द यानी एवेरोइस ने भी अपनी थ्योरीज डेवलप की। अल फारबी का इल्म न सिर्फ एक जमाना बल्कि पूरे इल्मी सूरत पर अपना असर छोड़ गया। उन्होंने जो थ्योरीज डेवलप की उनका बहुत गहरा ताल्लुक आज के साइंटिस्ट और थिंकर से है। उन्होंने जो फिलॉसफी और साइंस के हवाले से आइडियाज दिए उनकी बुनियाद आज भी कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। आज के इल्मो फन के दौर में भी उनके काम की अहमियत को समझा जाता है। अगर हम बात करें आज के वक्त में पॉपुलर साइंस और फिलॉसफी के शोबे की तो उनका काम उन्हीं इल्मी यकीन और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस का हिस्सा बन गया है। अल फारबी ने एथिक्स पर ज्यादा काम नहीं किया लेकिन झगड़ा इस बात पर है कि जो काम हम उनकी खोई हुई कमेंट्री ऑन द निकोमैकियन एथिक्स के बारे में जानते हैं वो उनकी एथिक्स में अहम काम था। एरिस्टोटल की निकोमैकियन एथिक्स का एक अरबिक तर्जुमा जो अकेसोई और ए फिडोरा ने तैयार किया और डीएम डनलप ने इंग्लिश में तर्जुमा किया मौजूद है लेकिन अल फारबी के जिंदा लिखे हुए कामों में इसका ज्यादा असर नजर नहीं आता। फिर भी अल फारबी ने इस पर एक खोया हुआ कमेंट्री लिखा था जिसका हवाला तीन एंडलिशियन फिलोसफर्स इब्न बज्जा इब्न तुफैल और एवेरोइस ने दिया। उनका काम है कि इसमें अल फारबी ने इंसानी रूह की इमोरटैलिटी और एक्टिव या एजेंट इंटेलेक्ट के साथ मिलने की मुमकिनत को माना है और उन्होंने बस झूठ या अफसाने समझा है। लेकिन बाकी कामों में जैसे कि ट्रीटाइज ऑन द इंटेलेक्ट द ओपिनियंस और द पॉलिटिकल रिजाइम में वो ये कहते हैं कि ये मुलाकात मुमकिन है और ये असल खुशी का जरिया है। अगर एंडलुशियंस फिलोसफर्स जो कुछ भी रिपोर्ट करते हैं वो इस खोई हुई टेक्स्ट की सही तफसीर है तो फिर लियो स्ट्रॉइस के डिसिपल्स को इस बात की थोड़ी सी तवक्को हो सकती है कि वो अल फारबी के काम को एक्सटोरिक और एसोटेरिक काम के बीच में तकसीम कर सकते हैं क्योंकि इन कामों का कॉन्टेक्ट वो टेक्स्ट के मुताबिक होगा जो आम लोगों के लिए जैसे कि द ओपिनियन जिसमें नियो प्लेटोनिक असर सबसे ज्यादा है। नियो प्लेटोनिक मेटाफिजिक्स जो कि असल में अटर और इमेनेशन के तौर पर समझा जाता है एक एक्सोटेरिक नजरिया देगा जो आम लोगों के लिए अच्छा हो लेकिन हिस्टोरिक कामों में जैसे सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल इलीट के लिए रखा गया है इसे माना जाता है। चाइम मेयर नीरिया ने इस कमेंट्री से दो कोटेशंस पब्लिश की हैं हेब्रू तर्जुमा और इंग्लिश तर्जुमा के साथ जो नए मिले हैं और इस मसले का खुलासा दिया है। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते रहिए एफएम 107। दोस्तों डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का वायोलेशन और बेअदबी है। ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है। याद रखिए डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। तो दोस्तों, आज हमने अबू नसर अल फाराबी की जिंदगी और काम के बारे में बात की। उनका इल्म और उनकी फिलॉसफी आज भी इल्म की दुनिया में रोशनी का जरिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो काम किया वो सिर्फ उनके अपने जमाने तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि हर दौर में उनके आइडियाज का असर रहा। अगर हम अपनी सोच को लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी में बेहतरीन चेंजेस ला सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अबू नसर अल फाराबी ने किया। उनका काम सिर्फ इल्म तक महदूद नहीं रहा बल्कि उन्होंने इंसानियत को एक नए तरीके से सोचने की आदत डलवाई। आजकल हमारे पास अल फाराबी के मतन की बेहतर एडिशंस और मुकम्मल तर्जुमे हैं, खासतौर पर अंग्रेजी और फारसी में। लेकिन ऐसे कई एडिशंस और तर्जुमे मुख्तलिफ किताबों और जर्नल्स में फैले हुए हैं। अल फाराबी के तमाम दस्तयाब मतन को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। कुछ मतन अभी भी बेहतर तरीके से तहकीकात के मोहताज हैं। कुछ मतन अब तक किसी भी यूरोपीय जबान में तर्जुमा नहीं हुए या अब तक अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं किए गए। उलूम के तलबा को हमेशा ये पूरी तरह से एहसास नहीं होता कि किस चीज का दस्तियाब है और दूसरे उलूम के तलबा ने क्या कहा है। बहुत ज्यादा काम अभी भी बाकी है, लेकिन अल फाराबी के कामों का एक वाज़े और ज्यादा मुश्किल मंजर अब सामने आ रहा है कि उनके वसत और खूबसूरती को उजागर करता है, चाहे हम अब भी तमाम हिस्से जोड़कर मुश्किलात का सामना कर रहे हों। सामईन, इस सोच और इल्म की रोशनी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हमारी आपसे गुजारिश है कि अपनी जिंदगी में अपनी सोच को बेहतर बनाएं और किसी भी मुश्किल का सामना लॉजिक और रीजन के साथ करें। इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें सोशल मीडिया में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो अगली मुलाकात तक के लिए साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को दीजिए इजाजत। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में।
4: एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में
3: वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
4: कुछ मिलेगा यहाँ।
3: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। डोंट मिस इट।
5: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
6: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. Time Check. Hello, hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio ki ghadi mein 11 bajke sahi 2 minute.
0: Aap sun rahe hain Sun and Sound. RJ Sarwar Mirza aur RJ Safa ke saath. Sirf FM 107 par. Dil se Desi.
1: Anji, welcome, ahlan wa sahlan, khush aamdeed and swagatam. Lijiye saab, shuru hua naya hafta.
2: Nahi, naya hafta nahi, naya hafta nahi. Shuru hui ek aur nayi daud.
1: Ekdam taza taza, jisko kehte hai na, main hamesha kehta aaya hu ki ekdam abhi chule se utara, ekdam garma garam. Aap noshat tanawul farmaiye, pura hafta aapke liye ab inshaAllah taala behtar hone wala, ye main keh raha hu. पूछिए कैसे
2: इंशाल्लाह क्योंकि सफा और सरवर जुड़ गए ना
1: ऐसे ऐसे ऐसे इंशाल्लाह।
2: देखो हम किसी और को किसी और से मदद नहीं कर सकते, खुश रहो अपने अपने खर्चे पर लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ एंटरटेनमेंट का पैकेज साथ चलता रहेगा। क्या
1: बिल्कुल साथ चलता रहेगा FM 107 में जब तक आप जुड़े रहेंगे, आपको बोरियत क्या होती है ये इंशाल्लाह ताला आप भूल जाएंगे, ये हमारा दावा है।
2: और बच्चा जमूरा घूम के दिखाओ, वो मुझे याद आ रहा है हमारे पाकिस्तान में ना घरों के बाहर ना वो बंदर डांस करवाने वाले आते थे ना,
1: बंदर डांस डांस बिल्कुल बिल्कुल
2: डुगडुगी होती उनके हाथ में डक डक डक डक डक डक।
1: खाली बंदर ही नहीं बल्कि याद दिलाया आपने तो मैं बताऊं कि वो भालू भी कभी कभार आया करता था उसके अंदर।
2: भालू था आप लोगों के पास?
1: भालू भी आता
2: था, हमारे पास नहीं था। ऐसे खतरों के खिलाड़ी ना चल रहे।
1: हाँ नहीं, बालू और बंदर दोनों के ही जो कर्तव्य होते हैं, खाली डांस या नाच ही नहीं पूरा कर्तव्य उसके अंदर होता था। इट वॉज कहना चाहिए छोटा सर्कस कह सकते हैं उसको, है ना, छोटा मिनी सर्कस कह सकते हैं उसको, और वाकई वो एक एंटरटेनमेंट का साधन होता था। तो अब सफा ने मिला दिया तो समझ लिए कि भालू और बंदर आपकी भी खिदमत में हाजिर हो।

0: आपको याद ही यही आया है सुबह सुबह, तो मैंने कहा शायद इसी से ही हमें मिलाया जा रहा हो। तो जनाब आपने क्या करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है अगर आप बोर हो रहे हैं और वो डुगडुगी जो है वो लेके आ जानी है।
1: वैसे एक बात है, भालू कौन है, बंदर कौन है,
0: ये
1: और फिर बताएंगे
0: थोड़ी देर में डिस्कस करके ये भी बता दिया जाएगा। फिलहाल आपने हमारे साथ जुड़ जाना है अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, अपनी नॉलेज को हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारी नॉलेज में और ज्यादा इजाफा करने के लिए। दो मुख्तलिफ तरीके हैं ये आप जानते ही हैं, बट हजबे जायका स्वाद अनुसार जितना ज्यादा आप चाहें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 666-22-107 रिवायत के मुताबिक बताता चलूं कि ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ जाते हैं, अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना खास दिन क्या है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। भाई खास दिन को और भी खास बनाने के लिए सफ़ा और सर्वर दोनों यहाँ मौजूद हैं, प्लस ये कि आप हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर भी बात कर सकते हैं। और नंबर क्या है सफ़ा?
1: 443-443-77 is the number to call.
0: बता, उर्दू में,
1: चार चार तीन सात सात नंबर है। इतनी तो आती है, अलग अलग वाली आती है, इसे लेकर 10 तक आती है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये था इंग्लिश डायलेक्ट में उर्दू बोलना तो ये अच्छा
1: जी तुसी जे हो ना कॉल करो 443-443-77।
0: ये कौन सी थी, पंजाबी कह दूं इसको? अच्छा नहीं, मैंने कहा क्या शायद अपनी तरफ से भी सफा की बोली पड़ती है।
1: अगर सिंधी में बोलना है तो बता देती हूँ।
0: वाह, अरे प्लीज प्लीज प्लीज,
1: क्या कहते हैं,
0: थोड़ा थोड़ा, हाँ,
1: चार चार ट्रे सत सत
0: ट्रे,
1: थ्री को ट्रे कहते हैं, एक ब ट्रे चार पंज छ सत आठ नौ
0: ट्रे में कुछ आने वाला है थोड़ी देर में, हम तो यही समझते हैं भैया ट्रे आ रही है तो नाश्ता वाश्ता आ रहा होगा ट्रे के अंदर। चार, अच्छा चार चार ही है? अल्लाह से और जानते हैं, आइए सफा से इस वक्त क्या है वेदर का हाल।
2: वेदर का हाल 107
0: भाई 107 तो वेदर का हाल अच्छा रहता ही रहता है, और अगर अच्छा ना भी हो तो हम उसको और ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आ जाते
1: हैं। जहाँ सर्वर भाई होंगे ना वहाँ पे टेम्परेचर 10-11-12 ऐसा चलता है। मेरी इस वक्त अगर हालत बता दूं ना मैं कि क्या चल रही है तो आप लोग सब मेरा मजाक उड़ाएंगे।
0: देखिए स्टूडियो का जो माहौल है ना वो ठंडा रहना चाहिए।
1: मजे की बात ये आदमी जैसे जैसे वो सुकड़ कर मुर्गी जो है ना वो अपने पर यूं कर लेती है ना, ये अपने हाथ यूं करके
0: तो
1: अपने फोल्ड किए हुए अपने आप को
0: मुर्गी से भी मिलाया। देखिए आज सारे जानवरों परिंदे
1: आ रहे हैं, सब हाल बता रही हूँ कि इनको इतनी सर्दी लग रही है लेकिन उन्होंने टेम्परेचर फिर भी वही 12-13 का रखा हुआ है।
0: अच्छा ऐसा है क्या, चलिए जान लेते हैं कि इनका टेम्परेचर क्या कह रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
0: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ पहले कॉलर आज हमारे?
3: खलील पराचार्ज कर रहा हूँ जी।
0: खलील भाई?
3: जी जी।
0: कैसे हैं खलील भाई, खैरियत से हैं?
3: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई।
0: अच्छा?
3: सफा बहन जो अभी सिंधी में गिनती सुना रही थी।
0: अच्छा वो
3: बिल्कुल
0: जो ट्रेन नाश्ता लगवाया उन्होंने सही था, वो बिल्कुल सही था,
3: बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई।
1: साईं असां सिंधी आयूं इंदी असां के सिंधी
0: ले जी साहब।
3: नहीं नहीं सिंधी तो आपकी इतनी अच्छी नहीं है, बस गिनती
1: अच्छी नहीं है
0: आपकी सिंधी इतनी अच्छी नहीं है, गिनती अच्छी है।
1: हाँ हाँ ये पता है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनली सिंध में बोली जाती है ना सिंधी, दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
0: खलील भाई इज फ्रॉम सिंध पाकिस्तान राइट?
3: यस।
0: और वहाँ किधर से खास? और
3: सक्कर से।
0: सक्कर से?
1: सक्कर से।
0: वाह,
1: ना कहिएगा कि आप कहीं वो एयरपोर्ट सोसाइटी के आसपास वाले एरिया में भी रहते हैं।
3: नहीं नहीं, मैं असल में हमारा बचपन सक्कर में ही गुजरा और एजुकेशन भी वहीं हुई।
1: अरे ये तो मेरे साथ
0: बच गए खलील भाई। नहीं, खलील नहीं, भाई आप बच गए, आप सफा से बच गए अगर आप उस तरफ।
1: हमारी मेरी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो सक्कर की है।
0: Oh,
1: सिंध बोर्ड की है।
3: अच्छा,
1: अगर आप सखर गए तो आपको याद होगा हमारा स्कूल का नाम था जो कि वो था क्या कहते हैं पब्लिक स्कूल सखर।
3: जी जी वो उस जमाने में सोसाइटी कहलाती थी।
1: हाँ जी हाँ जी ये बहुत सोसाइटी।
0: ये जमाने पहले की बात हो गई, 1956 की बात है।
3: से बाहर होता था और बहुत मशहूर स्कूल होता था।
1: हाँ
0: अब नहीं रहा सफा जब से पढ़ के निकली वहाँ से, ऐसा है?
1: हाँ ना देखो हम चले गए ना।
3: नहीं नहीं
0: खलील भाई स्कूल रहा नहीं रहा,
3: टॉप टॉप
1: उस जमाने का टॉप वन स्कूल
0: उस जमाने का था। जब ये पहुंची हैं उसके बाद फिर
1: वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए।
3: जब ये आई तो बहुत सारे खुल गए, उस जमाने में वो एक ही था।
0: वाह वाह वाह कितनी पुरानी बात हो गई सफाई ये। चलिए खलील भाई थे ये बताने के लिए, इवन खलील भाई भी जब पैदा नहीं हुए थे ये उस टाइम की बात, उन्होंने भी सुना था अपने पूर्वजों से।
1: सरवर भाई आपने तो मुझे डायनासोर इलाका बना दिया।
3: पब्लिक स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था उस जमाने में, और माशाल्लाह बड़े बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे
1: वो। आपको अगर अगर उस वक्त का याद हो तो हमारे सर फिदा होते थे वहाँ के प्रिंसिपल, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट।
3: मैं खुद उधर से नहीं पढ़ा, मैं एक्चुअली पढ़ा हूँ मॉडर्न स्कूल से।
1: सही सही सही।
3: तो पता तो होता है ना इर्द गिर्द के जो मशहूर और बड़े स्कूल होते हैं।
1: अच्छा मेरा जो ननियाल है ना वो सारा सखर का है, और मैंने तकरीबन 4 से 5 साल बिकॉज ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एंड स्टफ मैंने सखर में गुजारे, तो मैंने उन 4 से 5 साल के अंदर अंदर ही सिंधी सीखी है। क्योंकि हमारे नाना का घर का रूल था कि कोई उर्दू नहीं बोलेगा घर के अंदर, आप सिंध में हो तो आप सिंधी ही बोलोगे। इतने स्ट्रिक्ट थे। मैंने सिंधी
0: मिस्टर सर्वर एक्चुअली।
1: यस मिस्टर सर्वर।
0: ये सर्वर नाम के सब करते जो भी है कमाल करते हैं, ऐसी बात नहीं है।
1: तो जो टूटी फूटी मुझे आती है ना सिंधी वो वहीं से, वो नाना ने ही इम्प्लीमेंट कर।
0: अगर वो आप बातचीत करती रहती तो ताजा रहती, अब हो जाएगी। खलील भाई से वादा ले लेते हैं डेली आके 2-3 जो वर्ड्स हैं सिंधी के वो हमारे साथ शेयर करा करेंगे। खलील भाई फिलहाल तो ये बताएं कि कैसा रहा वीकेंड आपका?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक्चुअली यहाँ विजिट के लिए आता हूँ, फैमिली है मेरी, तो अब मेरा वापसी है 1-8 दिन में।
0: अच्छा तो मतलब आप कतर में फिलहाल मुकीम नहीं है, फैमिली यहाँ पर है?
3: हाँ रेजिडेंट परमिट है मेरी।
0: हाँ मतलब आप आते जाते रहते हैं। ओके तो ये जो जाना होता है किधर, पाकिस्तान की तरफ ही या कहीं और जाते हैं?
3: नहीं फिलहाल तो उमरा करने जा रहे हैं, फिर वहाँ से पाकिस्तान।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
1: भाई, हमारे लिए दुआएं, हमारे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा भाई।
0: अल्फ मबरूक माशाल्लाह
3: इंशाल्लाह। सफा बहन की सिंधी अगर मैंने नहीं सुनी होती तो मैं फोन भी नहीं करता, पर मैंने सिंधी सुनी तो मैंने कहा मैं
1: थोड़ी बहुत अभी
3: मुझे खुद।
0: और अब सिंधी सुन के फोन काटने का दिल करने लगा खलील भाई।
3: नहीं नहीं यहाँ कोई बोलने वाला नहीं होता, एक्चुअली हम वहाँ सिंध में रहे तो हमसे सिंधी।
0: हाँ वो बताया ना सफन अभी के नाना जी ने तो
3: गड़बड़ शुरू हो जाती है।
1: हाँ हाँ हाँ हमारे नाना को भी ये था कि हमारी लैंग्वेज इंस्टेंट ना हो जाए।
0: तो आपकी रवानगी कब की है?
3: इंशाल्लाह कल।
0: अरे वाह तो चलिए सही वक्त पे बात हो गई, क्योंकि हम दुआ की दरख्वास्त करते हैं आपसे।
1: हाँ भाई बिल्कुल, मुझे तो खास तौर पे दुआओं की सख्त जरूरत है। मेरे जो
0: हम सभी को है,
1: मामला चल रहे हैं ना जिंदगी में, मुझे तो
0: बहुत सख्त जरूरत है। और खैर आफियत के लिए
3: सभी के लिए मामला बड़े तब जा रहे हैं, बस अल्लाह ताला खैर का मामला करे।
0: बस आप याद रखिएगा, अगर याद आ जाए तो नाम लेके दुआ कर दीजिएगा,
1: और अगर नहीं याद आए तो बस सरसरी से कह दीजिएगा अल्लाह ताला मुझे जिन जिन ने दुआएं दी थी ना सारी पार्सल।
0: हाँ मतलब निपटाने के लिए तो फिर ऐसे करना पड़ता। चलिए साहब खलील भाई तो तशरीफ ले आए हैं, तो चलिए थोड़ी बहुत बातचीत आपसे आज कर लेते हैं मौजू के हवाले से भी। खलील भाई ये बताइए कि अल्लाह ना करे आप परेशान हो, वैसे आजकल का ये एक मसला बना हुआ है कि जब आप परेशान होते हैं तो लोगों से बात करते हैं या फिर मतलब अपने आप को तनहा कर लेते हैं, घुलना मिलना पसंद करते हैं, अपना वक्त गुजारना दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, कोई भी हो रिश्तेदारों के साथ, या फिर अपने आप को आप बिल्कुल अलग कर लेते हैं?
3: सर भाई आजकल परेशानियां तो सबके साथ ही है, कोई शेयर करता है कोई नहीं करता।
0: सही।
3: बच्चे कहते हैं शेयर नहीं करनी चाहिए। मेरे मैं बच्चों से कहता हूँ यार मैं अगर कहीं बैठा हूँ दोस्तों में कोई परेशानी हुई शेयर की तो बाबा वो आपने क्यों शेयर की, आपको नहीं करनी चाहिए,
0: क्यों कहते हैं ऐसा,
3: क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे मैंने कहा मैंने इसलिए थोड़ी कहा किसी को शेयर, अगर आप शेयर कर दोगे तो आपका शायद हो सकता है मन थोड़ा सा हल्का हो जाए।
0: मेरा भी मानना ऐसे ही है
1: दोस्तों के साथ बैठकर, लेकिन फिर वो आपके दोस्त भी ना वो फिर हम कहते हैं ना समंदर में मोती की तरह होने चाहिए फिर वो दोस्त मिलते ही, फिर हाँ, वो दोस्त भी ऐसे वाले हों फिर आपके
3: नहीं,
1: पास।
3: नहीं आप अगर किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो आप उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं जब तो शेयर करते हैं।
1: आजकल का मसला अलग है ना, आजकल जो बच्चे बोल रहे होते हैं ना कि कोई क्या ही कर लेगा, किससे शेयर करके क्या मिला,
3: जी जी जी,
1: तो आजकल का मसला अलग है, उनको ना दोस्तियों का वो अंदाजा ही नहीं है।
3: जी जी जी, पर परेशानियां तो मैं समझता हूँ आप शेयर करेंगे तो मे भी हो सकता है कोई सोल्यूशन निकाल दे, कोई अच्छी सजेशन मिल जाए।

0: पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती,
1: सही, सही।
0: तो ऐसा नहीं है कि सभी खराब हैं, ऐसा
1: हाँ,
0: भी नहीं
1: हाँ,
0: है
1: हाँ, हाँ।
0: और सारे अच्छे हैं ऐसा भी नहीं है।
1: बस वो ढूंढने से तो, कोई आपको मिल जाए तो आपकी लक।
0: हाँ शायद अच्छा सजेशन मिल जाए आपको इस परेशानी का, तो ये चीज होती है। पर वो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनका अपना ओपिनियन है, आप क्या कह सकते हैं।
2: सही बात है, बट इसके अंदर एक बस ये इजाफा करना चाहता हूँ मैं कि शायद वो हमें देख, हाँ मगर अब यही ये कह रहे हैं हमें देख के ये कहते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद अब नई जनरेशन
1: भी अलग है ना,
2: सीखना नहीं चाहते हैं, इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं,
1: या उनकी जनरेशन में वो चीज मिसिंग
2: है। हाँ एग्जैक्टली,
1: उनकी जनरेशन में वो दोस्तियां मिसिंग है।
2: एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि शायद
0: हम जिस दौर के हैं तो हमें तो पाला, तो हमें तो मोहल्ले में अगर किसी के घर की वाइफ अपने मैके गई हुई होती थी तो हमारी अम्मी खाना देती थी, या जाओ उधर खाना दे आओ। वो बहन मेरे घर आई थी, मुझे बता के गई थी कि मैं मैके जा रही हूँ इतने दिन के लिए, तो इसलिए जो पका होता था घर में, स्पेशली नहीं जो पक्का होता था, तो मैं छोटा होता था तो मेरी ये ड्यूटी होती थी कि जाके देख आता था,
2: जाइए और देकर आइए भाई। यही है ना कि रवायत को हम आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आगे बढ़ेंगी भी।
0: वो रवायतें खत्म हो गई ना असल में माशरे में।
1: हाँ अच्छा, ये भी आपने मुझे एक बहुत अच्छी बात याद दिलाई। कॉल हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन बात बहुत मजे की हमारी चल रही है, तो मैंने मुझे याद आया कि ये भी एक बात है कि अगर कोई छुट्टी पर भी जाता था ना तो उसका भी लोग बताकर जाते हैं कि बाजी हम लोग छुट्टी पर जा रहे हैं। उसका मकसद ये नहीं होता था कि वो आपको जता रहे हैं या कुछ चिढ़ा रहे हैं, उसका मतलब ये होता था कि बातों बातों में ना आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि हम लोग जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई पीछे घर खाली है, कोई मसला ना हो, कुछ ना हो, तो लोग बाकायदा एक दूसरे का ख्याल करते थे भाई,
0: लोग
1: ख्याल करते थे लोग एक दूसरे का।
2: क्या बात है यार, और बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और अच्छा हुआ कि आपने पहले ही कॉल मिला ली। तो खलील भाई जाते जाते कुछ सिंधी में हमारे लिए एक अच्छा सा मैसेज जो हमें याद रहे और सफा मुझे समझा सके आगे।
0: एक्चुअली सिंधी आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ना मैं।
2: मतलब कोई एक मैसेज जाते जाते,
0: बाबा सब इंसान मिली जुली करे रहा, कैसे झेड़ो करो ना है मोहब्बत, सब खा पहली बेहतरीन छेद किया ना मोहब्बत, मोहब्बत पान में कायम रखो, जे मुल्क में रहो उन सा सच्चाई कयो, उन जो इतरो सुठो मुल्क आ माशाल्लाह। मैं तो खुद इम्प्रेस बहुत होता हूँ इन चीजों को, मैं उधर जाके बताता हूँ यार उधर ऐसा है।
2: वाह वाह, मेरे समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बोल नहीं पाऊंगा मगर समझ में आ गई क्या कहना चाहते हैं। जाहिर बात है काफी वर्ड्स जो हैं उर्दू के भी मैंने सुने इसके अंदर बाहर।
0: मेरी तो माशाल्लाह सिंधी भी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं उनमें ही रहा हूँ सारी जिंदगी।
2: सही सही,
0: तो इस वजह से मैं वहाँ भी हम स्वी गैस में काम करता हूँ तो वहाँ सिंधी ज्यादा
1: बोलती
2: है। चलिए भाई अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपका सफर आसान करे और आपका उम्रा कबूल फरमाए, हमारी यही दुआएं हैं। और मजीद आपसे भी दुआओं की दरखास्त भाईजान, बहुत सारा ख्याल रखिए और इंशाल्लाह आप जब भी तशरीफ आए, आप वापस आए तो हमसे जरूर जुड़िएगा, अल्लाह ताला खुश रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज,
1: अल्लाह।
2: तो भाई खलील पराचा साहब यहाँ पर हमें थोड़ा सिंधी
1: में मौसम का हाल बता रहे थे पहले,
2: मैसेज देते हुए। बिल्कुल खलील भाई की कॉल हमने ले ली, अब आइए मौसम का हाल अहवाल जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
1: तो भाई मौसम इस वक्त हम अगर आपको बताते चलें तो इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 41 डिग्री सेल्सियस, आज टेम्परेचर जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस तक हाईएस्ट, और लोएस्ट जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस तक। ह्यूमिडिटी के बारे में अगर बात की जाए तो ह्यूमिडिटी अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमारे पर तरस आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ रही है क्योंकि खजूरें ऑलरेडी पक चुकी हैं, खजूरों को पकने का मौसम खत्म हो चुका है,
2: हम भी पक गए।
1: हाँ तो भाई ह्यूमिडिटी जो है वो 31% यानी कि कल से कदर निस्बत कम है। हवाओं की रफ्तार तकरीबन आपके लिए 10 से 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर है, और जो है ना बाकी मामलात कुछ ऐसे हैं कि दुआ करें कि भाई सर्व भाई कल जो है ना कल बड़ा बुरा हुआ था। कल मैं ऐसे ही बाहर निकली, मैंने कहा चलो कहीं लुसैल वगैरह का चक्कर मार कर आते हैं, लेकिन ऐसे बाहर निकली ना गाड़ी तक पहुंची वापस घर पलट गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हवाओं की रफ्तार होगी लेकिन शाम होते होते हवाएं बिल्कुल पता नहीं कहां चली गई, ऐसा लगा कि बोरिया बिस्तर उठा के कहीं गुम हो गई। तो अगर आज जो है वो कुछ मौसम अच्छा रहा तो आज लगा लेंगे लुसैल का चक्कर,
2: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे। वैसे कि

0: बता दूं मैं जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से बताया गया है कि गर्मी थोड़ी ज्यादा सख्ती दिखाने वाली है आज, फील्स लाइक को मद्देनजर रखते हुए। टेम्परेचर इतना रहेगा नहीं, बट जो महसूस होगा वो आपको हाँ 50 तक या 51 तक भी महसूस हो सकता है।
1: 53 था शाम में।
0: भाई अल्लाह ताला खैर करने वाले हैं हर तरीके से, ये भी वक्त गुजरते गुजरते गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिलहाल क्या कहती है सफा, ब्रेक की तरफ चला जाए, एक और ले लेते हैं। चलिए भाई अपने कॉलर्स को हम बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ देखते हैं कनेक्टेड है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: अहलन अहलन खादिम भाई, क्या हाल चाल है? हम लोग बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं और कैसा रहा वीकेंड आपका?
2: सफा बहन को भी बहुत बहुत सलाम और सरवर भाई आपको भी बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: तो सर कैसा रहा वीकेंड?
2: माशाल्लाह वीकेंड बहुत अच्छा रहा। पार्क में गए थे, गर्मी भी एंजॉय कर रहे थे, पसीना पसीना, सिर्फ बस ये था कि हवा और गर्मी में, मौसम भी अजीब मौसम था लेकिन फिर भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे।
0: वाह,
1: बच्चे ना गर्मियों की छुट्टी में बड़े वो हो गए समझ में नहीं आ रहा बच्चों को कहाँ जाना, जो लोग बच्चों वाले ना खास तौर पे वो बड़े परेशान होते हैं।
2: हम लोग भी बच्चों के साथ ही बच्चे बने हुए थे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, ये है बात।
2: लेकिन अभी ये जो माशाल्लाह वक्रा जो पार्क बना हुआ है माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत अरसा बाद मैंने देखा, बहुत दिनों बाद यानी तकरीबन 2 साल बाद मैंने देखा और बहुत अच्छा बनाया हुआ है माशाल्लाह। फैमिली के लिए बहुत अच्छा
0: रेनोवेट किया है और बड़ा खूबसूरत बना दिया। आपको पहले वाला भी शायद याद हो क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैंने काफी वक्त गुजारा वहां पर, बट उसको इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से उसको रेनोवेट कर दिया है कि अब बड़ा ही खूबसूरत बना दिया। सही कह रहे हैं आप,
2: बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत
0: सही।
2: पहले ऐसे नहीं था।
1: सही, कौन सा? हाँ। वो वाला वक्रा वाला पार्क जो वो सी साइड के पास है।
0: एग्जैक्टली
1: मैं तब जाती जब वो बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था।
0: क्या बात है,
1: मेरी बारी आई है वहाँ जाने की। नई डेस्टिनेशन मिल गई मुझे, मिल गई।
2: अच्छा ये क्या खुशखबरी में आप क्या खिलाएंगे हमें?
1: देखिए खुश रहे अपने अपने खर्चे पर क्योंकि 28 तारीख अभी तक नहीं आई
0: जल्दी से खा के आइए,
1: जल्दी से खा रहे हैं।
2: वो बात तो सही। हाँ नहीं नहीं वो अभी आएगी भी नहीं जब तक आप कुछ खिलाओगे नहीं।
0: भाई साहब ये दुआ अगर कबूल हो गई खादिम भाई की सफा, कह दे आप कि मैं खिला दूंगी आपको।
1: अच्छा मैं आपकी तरह झूठ बोल दूं?
0: नहीं मतलब झूठ बोलिए, दिल से कह दिए, बाकी तो आपका मूड बदल जाए।
1: खादिम भाई इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो फिर ट्रीट रही
2: इंशाल्लाह। चलो ठीक है, सही इंशाल्लाह, बस हो गई बात इंशाल्लाह।
1: अब तो मैं आपको पाताल में से ढूंढ के निकालूंगा।
0: तो खादिम भाई क्या कहते हैं, परेशानी के वक्त अल्लाह ना करे आप परेशान हो, बट फिर भी घुलते मिलते ज्यादा है या फिर आपको बिल्कुल अलग कर लेते हैं,
1: आइसोलेशन
0: आइसोलेट कर लेते हैं एक्चुअली?
2: परेशानियों में मैं कभी अलग बिल्कुल नहीं रहता।
0: वाह,
2: वो अलग रहने से फिर वो परेशानी और भी बढ़ जाती है, तो कोशिश ये रहती है कि फैमिली के साथ, फैमिली नहीं है फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स नहीं है तो फिर जो रिलेटिव होते हैं रिश्तेदार उनके साथ घुल मिल के रहता हूँ।
1: अगर रिश्तेदार साथ हो तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाती परेशानी?
2: नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है।
1: बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं खादिम भाई आपके, बहुत अच्छे,
2: बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और मैं कहता हूँ कि हम लोग ऐसे रहते हैं ना कि दूसरे का गम जो है वो अपना गम समझ के उसको बांट देते हैं फिर। हाँ, और
1: काश कि मुझे भी ऐसे रिश्तेदार मिलते।
2: नहीं सफा बहन, वो सबके रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी का ऐसा है, लेकिन सबका ऐसे होता है कि वो एक दूसरे का दुख दर्द बांट देते हैं। लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि कुछ रिश्तेदार वो महसूस करते हैं जल्दी और कुछ नहीं महसूस करते।
1: ये बात मैं बाद में महसूस करता हूँ, मैं आपकी बात मानती हूँ।
2: हाँ, लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि अकेले बिल्कुल नहीं रह सकता और कभी रहा भी नहीं।
0: काफी लोग ऐसे हैं और मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इसी तरीके की मेरी ज़हनियत भी रहती है, मैं और ज्यादा परेशान हो जाता हूँ अगर मैं अकेला रहूँ। अल्लाह ताला महफूज रखे।
2: अगर अभी ये ऐसा है कि मैं अपने बच्चों के साथ भी हर वो बात शेयर करता हूँ, अगर मेरे दिल में भी मुझे भी कुछ थोड़ी भी परेशानी हो तो मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं।
1: हाँ ये बात मैं मानती हूँ।

0: ये इस बात में मैं आपके साथ हूँ।
1: मेरे दोस्त है और वो इतना वो बहुत हौसला, बहुत ज्यादा बच्चों से मिलता है मुझे, फिर भाइयों से, यानी पूरी फैमिली से, लेकिन बच्चों के साथ ज्यादा शेयर करता
2: हूँ। क्या बात है यार खादिम भाई, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को अच्छा रखे, घर खानदान को अच्छा रखे, दोस्तों को अच्छा रखे, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी प्यारे प्यारे नोट के साथ ये दुआएं हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: वालेकुम
2: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: सर भाई ब्रेक पे जाने से पहले जरा मुझे ये बताएं कि आपको क्या पसंद है।
2: मैंने बताया मैं बिल्कुल नहीं आइसोलेट कर सकता अपने आप को, मैं अकेला ना बैठ सकता हूँ, ना खा सकता हूँ, ना रह सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं।
0: मुझे खामोशी चाहिए, तो
2: कहीं और चले जाएगा मसला। हाँ बिल्कुल मेरे अपने काफी दोस्त अहबाब रिश्तेदार ऐसे हैं, बट मेरे साथ तो भाई प्लस प्लस हो जाता है। अगर खुशी है तो अल्हम्दुलिल्लाह दो वाला, और परेशानी है खुदा ना खास्ता,
0: खुशी के टाइम तो मैं कहती हूँ खुशी के टाइम तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं हम लोग, खुशी के टाइम तो एड्रेनलिन यूं करके शूट अप करता है, लेकिन परेशानी होती है ना तो मैं माइनस में आ जाती हूँ।
2: इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि परेशान हो तो दूसरी को दो परेशानी, अपनी बांटो भैया, खाली खुशी क्यों बांट रही, परेशानी भी बांटो, इसे क्या परेशानी है। लीजिए साहब हुई बेहतरीन गाने के साथ शुरुआत, स्वैग से करेंगे आप सबका स्वागत, विशाल डाडलानी एंड नेहा भासिन। क्या कहती हो सफा
0: भाई, ब्रेक लेते हैं और सुनते रहें आप लोग FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफा।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: इतने खूबसूरती से गाया गाना कि पता नहीं कितनी मिठाई कितने हलवे इसके अंदर लगा दिए हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र एंड जोनिथा गांधी, अलमित हबीबू।
1: एक बात बताओ सर्वर भाई,
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सर्वर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: पूछिए पूछिए क्या है वो बात
1: भाई। पूछनी सर्वर भाई से थी और पता नहीं कबीर कहाँ से बीच में आया था बार बार याद दिलाने। हाँ। अच्छा खैर जो है मैं सर्वर भाई ये पूछ रही थी, ये गाना हाँ। जो था इसका कुछ मतलब समझ में आता है या सिर्फ बीट अच्छी, मुझे तो इस गाने की बीट अच्छी लगती है।
0: हाँ नहीं देखिए गाना कोई भी हो अगर बीट अच्छी है और सुनने में अच्छा लग रहा है होती है जिसमें टेंशन होने लगती है, समझ में नहीं आ रहा फिर भी अच्छा नहीं लगता।
1: हाँ, हाँ,
0: या समझ में आ रहा है फिर भी अच्छा नहीं लगता, तो दोनों चीजें हैं देखिए। तो इसमें खिचड़ी जब बन जाती है तो गाना अच्छा लगे या ना लगे, अच्छा लग रहा है तो फिर उसमें झूमिए और नहीं अच्छा लग रहा है तो भैया साइड पे हो जाइए, पता नहीं गाना क्या कहना चाह रहा और आप क्या समझ रहे हैं, दूसरे को भी देख के
1: बीट एंजॉय करो।
0: तो भाई यहाँ पर आइए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं और साथ ही हम बढ़ेंगे आगे। हाँ क्योंकि अजान का भी वक्त आ रहा है करीब, तो फिलहाल के लिए हमारे पास है तो बहुत कुछ आपको बताने के लिए। क्या कहती हैं सफा, आज का मशरूब जो आप लेके आई हैं वो भी हम शेयर कर लें अभी या थोड़ा रुक के ही करेंगे?
1: मशरूब मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद शेयर किया जाए क्योंकि अजान का टाइम बहुत करीब आ रहा है।
0: हाँ अभी है हमारे पास इतना टाइम, तो चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके मैसेजेस क्या है यहाँ पर हमारे पास, आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो साहब मोहम्मद यूसुफ खान यहाँ पर आ गए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग सफा जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड, दिल से देसी यूसुफ खान, हैप्पी संडे मॉर्निंग। कैसा रहा आप दोनों का वीकेंड? होप गुड। सफा क्या कहती है, कैसा रहा आपका और
1: मेरा? अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड अच्छा रहा भाई। मैं जब मेरी बैटरी खत्म हो रही होती है ना तो वीकेंड पे मैं वही वाली बात है कि दोस्त तो इतने को खास है नहीं लेकिन रिलेटिव्स को थोड़ा इधर उधर से खींच खांच के भाई आ जाओ पार्टी करते हैं, मेरी उससे बैटरी चार्ज होती है।
0: तो आप क्या दावत थी इसका मतलब ये कहना चाहती हैं?
1: वो माशाल्लाह हर हफ्ते ही होती है क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि आप घर में बैठकर सबके साथ एंजॉय करो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: हाय हाय तो हमें नहीं बुलाया आपने?
1: नहीं नहीं आप देखें खुश रहो अपने अपने खर्चे पर।
0: अच्छा ये तो ये क्या बात हुई, मुगी खा गए सरवर मिर्ज़ा, इस वक्त दावत मिली ना और बेइज्जती
1: आपको
0: और
1: दावत मिलानी ना, मुझे कंटेनर मंगवाने पड़ेंगे।
0: दावत मिली है बेइज्जती और हो गई। ओके यहाँ पर कौन है, अरे भाई मैसेज खोलने तो दो मुझे। ओके कहते हैं आओ कैसे हैं सफा नूर आप और सरूर भाई, आप कैसे हो यार? आप लोग छोटी ना किया करो, ये वाले दो दिन आने लगते हैं मुझे के पता नहीं किसी और के कार चला रहा हूँ। पढ़ना एक बार
1: अच्छा, मुझे
0: हम एक ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद इंशाल्लाह
1: ताला डिकोड करके वापस आते हैं। डिकोड करके
0: ऑलराइट।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: सेहत की बात हो तो एतमा चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: वेलकम बैक। इस वक्त FM 107 की घड़ी में बज रहे हैं 11:46 ऑन द क्लॉक और सरवर और सफा आपके साथ जुड़ चुके हैं सन एंड साउंड लेकर आए हैं FM 107 पर। और भाई आप लोगों के मैसेजेस जारी हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ मैसेजेस पर जुड़ना है उनको याद दिलाते चलें कि मैसेज के लिए नंबर है 666-22107 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज। अगर चाहते हैं कॉल से कनेक्ट होना तो ज़रूर अपने अपने खर्चे पर खुश रहें। आप जो हैं वो 443-443-77 यानी कि 443-443-77 पर गोभी दें आप फुल्लो आ जाओ ज़रा खुशबू लगा के बातचीत करते हैं किस किस ने कहाँ कहाँ वीकेंड गुजारा। आप देखें हमारे भाई थे उन्होंने हमें पहले ही बता दिया मुझे नहीं पता था। वैसे जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी ना वाकरा के उस पार्क की तो तब मैं जाती थी वहाँ पर।
0: ओके
2: तो अब मुझे बस चला अपडेट मिली कि हाँ भाई वो पार्क खुल गया।
0: क्या बात है।
2: मुझे इंतजार था उसका लेकिन मैं कहीं भूल गई अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में हम भूल गए कि एक पार्क ऐसा भी था जो अंडर कंस्ट्रक्शन था जब हम जाया करते थे। तो आप जरूर जाएंगे इंशाल्लाह ताला।
0: तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस आपके और साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें लिख भी सकते हैं कॉल करने के लिए तो हम आपसे कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर रोहिल भाई थे जिनका हम मैसेज
2: डीकोड
0: करने की कोशिश कर रहे थे। लिखा उन्होंने सही है और फिर उन्होंने वॉइस नोट भी भेज दिया। उनका कहना यह है कि सर्वर और सफा छुट्टी पे मत जाया करो यार, 2 दिन 7 दिन काम किया करो। वो फिर हमें मतलब जब हमारी मौजूदगी नहीं होती तो वो फिर बोर होते हैं। उनको अपनी गाड़ी भी ऐसी लगती है कि जैसे दूसरे की गाड़ी चला रहे हैं।
2: ये जो हमारे कंधे हैं ना मैंने एक बात सुनी थी कि अल्लाह ताला उसके ऊपर इतना ही बोझ डालता है इतना वो बर्दाश्त कर सके। ये 2 दिन का हमारे ऊपर से जो ऑफलोड होती हैं चीजें वो भी वो देखो सर्वर भाई ने घर में कपड़े भी धोने होते हैं बर्तन भी पड़े होते हैं
0: बहुत काम
2: होते हैं खाने वाने बनाते होते
0: हैं। काम ये हमसे करवाना चाहते हैं कि भाई तुम एक काम करो ये 2 दिन तुम छुट्टी मत लेके हमारे यहाँ आ जाया करो। या तो ये कहना चाहते हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हो सर और बंदर को भी सलाम हमारी तरफ से। लीजिए साहब डिसाइड हो गया सफा कौन भालू है और कौन बंदर है। सफा मैम ने 1975 हाई एजुकेशन किया था। हाँ बिल्कुल सही बात है।
2: 1975 कितना होता पहले ही तो बताना।
0: 75 अरबाज है हमारे साथ।
2: 75 में अगर मैंने सेकंड ईयर किया था तो उससे पहले मैं कितनी बड़ी मतलब मैं कब पैदा हुई थी भाई मतलब मैं कोई 50s और 40s की पैदाइश हूँ।
0: और ऑब्वियसली यही कहना चाह रहे हैं इसमें
2: मतलब इंडिया पाकिस्तान के आजाद होने से पहले की
0: इसमें छुपा क्या है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई सफा मैम कैसे हैं आप दोनों। आज लगता है आप लोग से बहुत सारी जुबान सीखने को मिलेगी। ओए होए मुमताज भाई जुबान तो चलाती ही हैं सफा अच्छी
2: सरवर भाई
0: हो सकता है ऐसा
2: मुझे ऑफ एयर मिलो फिर बताती हूं।
0: तो भाई
2: हिसाब बराबर करेंगे सरवर भाई हिसाब बराबर
0: कॉलर जुड़ रहे हमारे साथ आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
2: चार लोगों में

0: सकती है और महसूस होती सर भाई।
1: चार चार तीन सात सात पे जहाँ पर आज बात हो रही है कि भाई जब मसला होता है लाइफ में कुछ भी, जब आप परेशान वगैरह होते हैं तो आप लोगों में ज्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं या अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते। इसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी जो है हमें दे सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे
0: साथ। क्या दे सकते हैं?
1: टिप्पणी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: क्या चीज थी?
2: सलाम जनाब।
1: गाबा भाई, आप लोग बिल्कुल ठीक है? गाबा भाई, आप कैसे हैं और कैसा रहा वीकेंड?
2: सरवर भाई, जिस हिसाब से आप दोनों ने स्टार्टिंग में भालू और बंदर की कहानी सुना के ना, उसके बाद स्वैग से स्वागत किया है भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया।
0: अच्छा ये तो बता दें, गाबा भाई, बंदर कौन था इस कहानी में और भालू कौन था?
2: मैडम क्यों इल्जाम लगवा रहे हो मेरे ऊपर?
1: हम तो याद कर रहे थे कि ऐसे
0: हमने कहा था कि हमने तो ऑलरेडी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। हमने ऑलरेडी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भालू कौन है, बंदर कौन है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम सही सोच रहे हैं
2: मैडम, मगर मेरा जमीर नहीं इजाजत देगा कि ऑन एयर मैं डिस्क्लोज कर सकती
1: हूं। चलिए साहब,
2: दोनों ही मेरे दिल के करीब हो, बस इतना कहना चाहता हूं।
1: मेरा भाई कैसा? गाबा भाई जैसा? वाह, क्या बात है गाबा भाई की। और गाबा भाई कैसा गुजरा वीकेंड?
2: वीकेंड सर्वर भाई बस उस जगह पे गुजरा जहाँ पे नाचना गाना थोड़ा ज्यादा रहता है।
1: ओहो,
2: अच्छा, लेट नाइट जी।
1: तो क्या मैं सही समझ रहा हूँ?
2: बिल्कुल, आप तो बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो भाई।
1: अच्छा, तो कुछ खास था या फिर बस भाभी बोले कि चलो भाई आज जरा वीकेंड को, मतलब क्या फैमिली के साथ ही थे या अब मैं कुछ और भी समझ रहा हूँ?
2: यारों दोस्तों के साथ सर्वर में।
1: हाँ, ऑलराइट। हाँ नहीं, जरूरी है यार, ये भी जरूरी है और इसी के हवाले से आज हमारी बातचीत भी हो रही है एक्चुअली, कि खुदा ना करे आप परेशान हो, बट परेशानी में क्या करना पसंद करते हैं गाबा भाई? दोस्तों यारों के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मतलब कोई ना कोई मेरे साथ रहे, अपनी परेशानी उसके ऊपर डाल दूं।
2: इस पे तो मैं छोटी सी बात करूंगा, बात मैंने आज भालू के ऊपर करनी है, कुछ याद आ गया।
1: वाह वाह वाह, चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम
2: जी। मैं
1: फरमाइए,
2: आप यही बोलते हो ना कि जब आप टेंशन में होते हो तो आप क्या करते हो?
1: सही।
0: हाँ जी
2: जी, तो मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ जी उस टाइम।
1: ओके, क्या बात है,
0: मेरी तरह ही
2: अकेला।
1: उसके पीछे वजह
2: जी? वजह ये है, सफा जी घर पे एलईडी लगी हो 42 इंचेस, बंदे ने सिनेमा जैसा माहौल बनाया हो, अपनी मन मर्जी का बंदा देखे जिससे बंदे का दिमाग रिलैक्स होता हो।
0: मुझे तो टीवी भी शोर लगता है उस टाइम पर।
2: सर्वर भाई देखिए हंसने का स्टाइल देखिए।
1: मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा
0: मुझे
1: सा
0: पिन ड्रॉप साइलेंस
1: मुझे सुन के अच्छा लग रहा है ना, कि मतलब मेरे जो अपोजिट होता है उसमें लोग किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं, अपने आप को कैसे ईज करते हैं, तो ये भी सही है। तो मतलब फिर भी ये तो कहना चाहिए कि किसी ना किसी चीज का तो सहारा लिया आपने, लेट से एंटरटेनमेंट, तो उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई साथ हो आपको, कभी ख्वाहिश होती होगी ऐसी?
2: बस एक चीज है सर्वर भाई, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, उसका सहारा मिल जाता है कभी कभी जब मैं टेंशन में होता हूँ।
1: मैं समझ सकता हूँ। हाँ। बहुत अच्छे से। अच्छा।
2: चलिए अभी मैं बात करता हूँ भालू के ऊपर।
0: अच्छा। सर भाई आपके बारे में बात कर रहे हैं।
1: ठीक है, ओके। इरशाद
2: सर्वर भाई, आपने कब देखा इंडिया में शो ये, कितने साल पहले?
1: लाइक मेरे ख्याल में 15 साल, 12-15 साल। हाँ, तो एनी हाउ
2: जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अब तो इंडिया में ये बैन हो गया है जी।
1: हाँ ओके, क्योंकि हम जब आगरा की ट्रिप जाते थे ना, तो उस तरफ ये भालू वाले जो मदारी भाई हैं ये ज्यादा होते थे, तो हाईवे पे या फिर आगरा के अंदर यूजुअली जब हम ताजमहल वगैरह के लिए जाते थे तो वहां पे ज्यादातर देखने के लिए मिलता था। बट अगर हम अपनी तरफ की बात करें हैं तो सब यूपी ही, तो इधर जो बंदर वाले मदारी भाई हैं वो ज्यादा होते थे। बट ये बंद हो गया, मतलब बंदर वाला भी बंद हो गया?
2: नहीं नहीं, बंदर वाला तो लीगल है, जैसे 2-3 स्पोर्ट गेमें हैं ना जिनमें एनिमल्स की
1: प्रदर्शन। यार नॉलेज में इजाफा हुआ देखिए। ओके
2: जी, जैसे ये भालू वाला हो गया या सांप दिखाना, वैसे दिखाते थे ना सपेरे
1: सांप, सांप यस यस यस यस, वो बीन वगैरह बजाते थे,
2: लीगल है अपने इंडिया में।
1: हाँ ओके ओके ओके।
2: और उसके बाद वो दूसरा था जो मुर्गों की लड़ाइयां नहीं करवाते थे बंदे।
1: यस यस यस,
0: वो तो हाँ वो तो मना है,
1: तो ये एनिमल राइट्स की वजह से ऐसा हुआ होगा ऑब्वियसली।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर्वर भाई, बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
1: ओके, तो ये फिर बंदर वाला क्यों नहीं अभी तक बंद हुआ, ये भी एक सवाल है। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी, तो वो भी हम ढूंढेंगे। बट जाहिर है किसी ना किसी तरह सही है, क्योंकि जब हम उनको मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, एजुकेट करने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से, मतलब जो कि हम नाच या करतब उस वक्त देख रहे होते हैं, तो हम उनको जबरदस्ती वो चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि उनके उनके अंदर तो वो चीज़
0: हाँ,
1: नहीं है।
0: वो,
1: और उस सिखाने में जो प्रेशर और उनके ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो वो जाहिर बात है कि गलत है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने बड़ी अच्छी मुझे बात बताई एक्चुअली, कि अब इस पे मनैदगी है। और चलिए ये तो यार अच्छा ही है, कुछ ना कुछ हमने इंसानों ने सीखा जानवरों के जरिए, बड़ी अच्छी बात है यार। थैंक यू सो मच गावा भाई, और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं?
2: जहाँ तक मेरा ख्याल है ना सरवर भाई, मेरे दिमाग में बात आती है बंदर की, उसको मेरे ख्याल से एज अ पेट ही लिया जाता है।
1: okay.
2: जैसे पपी हो गया या नॉर्मल पेट्स हो गए, जहाँ तक मेरा है, इसको मेरे को इसके पीछे का लॉजिक प्रॉपर नहीं पता है, जहाँ तक मेरी सोच है।
1: बट फिर भी यार जुल्म तो किया ही जाता है कैसे ना कैसे करके,
2: जुल्म तो गलत है ना सरवर भाई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: क्योंकि उसको भी जब आप वो चीज सिखाते हैं, और जाहिर बात है उस वक्त कर्तव्य करना है। अब हम लोग ने ये भी नोटिस किया होगा अभी जो हमें सुन रहे हैं, कि वो जिस वक्त तो उसको कर्तव्य करवा रहे होते हैं, तो कोई एक ऐसी चीज होती है जिससे वो डरता है, या तो डंडा होगा या कोई और ऐसी चीज होगी जिसको वो बराबर उसको दिखाते रहते हैं, तो वो जानवर जो है समझता रहता है। एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ
2: भाई आपको ना जी, मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पंजाब में ना कबूतरबाजी बहुत चलती थी, कबूतरों का मुकाबला आपको पता होगा।
1: बिल्कुल, हमारी तरफ यूपी में भी बहुत मशहूर है भाई
2: जी। तो उसके पीछे जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे बंदे, ज्यादातर बंदे कबूतर को ना ड्रग्स दे देते थे, कि वो सारा दिन उड़ता रहे, एनर्जी में रहे, और सबसे लास्ट में आके अपने उस पे बैठे जो उसका बना होता था।
1: राइट राइट, और उससे उसकी सेहत में
0: खराबी पेश आती होगी,
1: खराब होती होगी।
2: तो अभी वो चीज भी बैन की हुई है हमारे वहाँ पे।
0: अच्छा, कितनी सारी चीजें जो हमें नहीं पता होती है, और हम कहते हैं पता नहीं ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है।
1: मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि अगर हम वहीं वेस्ट में देखें, तो ये जानवरों की जो ट्रेनिंग है वो बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, और वो कैसे करते हैं, वो एक ट्रीट देके उनको
0: रिवॉर्ड सिस्टम, जैसे ह्यूमन ब्रेन डिजाइन है कि रिवॉर्ड
1: एग्जैक्टली, तो वो ट्रीट कहलाती है, और उस ट्रीट में उनका खाना वगैरह जो भी चीज है उससे उसको मिलाते हुए वो समझाने की कोशिश करते हैं। एनी हाउ, बड़ा अच्छा लगा यार, और कुछ ना कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, और नई बात पता ही चली गाबा भाई से। थैंक यू सो मच गाबा भाई।
2: बाकी आप सरवर भाई देखोगे, जैसे अभी सर्कस का शो भी होता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। जैसे पहले जानवरों को लेके आते थे, अभी तो उनकी परमिशन लेनी, इवन फिल्मों में भी आप जानवर को टॉर्चर करता हुआ नहीं दिखा सकते,
0: एनिमल राइट्स बहुत ज्यादा।
1: हाँ, जो कि अच्छी बात है। हाँ, जो कि अच्छी बात है, और ऐसा होना चाहिए कि उनका ख्याल रखते हुए ही उनसे काम लिया जाए। जाहिर बात है हमारे अपने स्वार्थ के लिए है वो, तो उसका ख्याल करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया गावा भाई फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।
2: मेरी तरफ से भी आप गोभी के फूलों को बहुत बहुत थैंक यू, टेक केयर,
1: वेलकम, ओके गावा भाई, बाय, अल्लाह हाफिज। तो ये थे गावा भाई, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला एक बार और। और यहाँ पर याद दिला दें कि आप भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर 443-443-77 पे अपने व्यूज रख सकते हैं। अकेले रहने में ये तो बात आज हुई अभी तक भालू की, और आगे दूसरे जानवरों की। फिलहाल आज हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि जब आप परेशान होते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर आप अपने आप को दूसरों से घुला मिला देते हैं ताकि उस परेशानी पे जो है काम किया जा सके या उससे बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, सफा मैम, कैसे हो आप दोनों? आज लगता है आप लोग से बहुत सारी जुबानें सीखने के लिए मिलेंगी। ये मुमताज का, अच्छा मैं पढ़ चुका हूँ। सफा, कोई दूसरी जबान आती है अपार्ट फ्रॉम अरबी, सिंधी, इंग्लिश, उर्दू?
0: डच आती थी, डच तो मैंने 3 साल पढ़ी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का वो कोरिकुलम में थी। लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी, जब आप बोलना छोड़ देते हो कोई चीज तो फिर वो आपके वहमो गुमान में भी नदी नहीं आती।
1: वी गो डच, ये मुझे इतना ही याद रह गया, और इसके पीछे क्या है ये भी सब जानते ही है। तो यहाँ हसनैन है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आइए भाई, कॉल खूब आ रही है माशाल्लाह, कनेक्ट कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, क्यों नहीं आवाज आ रही? हेलो,
3: हेलो
1: जी, सलाम वालेकुम, सुन पा रहे हैं हमें?
3: जी जी, सुन पा रहा हूँ।
1: कौन है हमारे साथ?
3: साहिल, आपसे
0: मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. हेलो, आई एम अंडर द वाटर.
1: फिर बताइए एक बार अपना नाम.
3: जी मेरा नाम साहिल आजमी.
0: अच्छा साहिल भाई है. साहिल भाई.
1: साहिल आजमी, क्या बात है.
0: ऐसा लग रहा है वो किसी नॉवेल राइटर का नाम सुन रही हूँ.
1: अरे अपना यूपी का बंदा है भाई, आजमगढ़ से. और क्या चाहिए.
3: यूपी का बंदा है मैम. और मैम हमारे जैसे आपने कहा नॉवेल का,
0: हाँ.
3: तो हमारे यहाँ की एक चीज कही जाती है कि सितारा बन के निकले हैं, चमक दुनिया ने देखी है. माया क्यों नहीं होगी जो आजमगढ़ की मिट्टी है. जैसे वहाँ पे शेर व शायरी का बहुत ज्यादा वहाँ पे मैम एक क्रेज रहा है. कैफी साहब वहाँ से हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त शकील आजमी अभी बहुत रिसेंटली बहुत अच्छे राइटर हैं वो, और मेरे बहुत बहुत करीबी हैं शकील साहब.
1: बिल्कुल.
3: और बहुत सारे गाने आप देखेंगे तो वहीं से हुआ है. जावेद अख्तर साहब की ससुराल वहाँ पे है. तबाना आजमी जी वहाँ से हैं. तो
1: क्या बात है.
3: बहुत बड़े नाम है मैम.
1: आजमी सुहेल, सुहेल बताया नाम है.
3: साहिल.
1: हाँ हाँ, नाम भी अपने आप में क्या बात है. सबको डूबते हुए को सहारा देने वाले. हाँ क्या बोले. आफ्टर 30
3: After 13 years, I was in Dubai, sir, but last 3 months, before 3 months, I was sorry, yes.
1: आए हाय, नई नई आमद हुई है कतर में. क्या बात है.
0: गर्मी, मैं कहूँ कतर में गर्मी, टेम्परेचर क्यों इतना बढ़ गया 3 महीने से.
3: बहुत बस ठीक है, अच्छा है. सेम एनवायरनमेंट है मैम, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है वहाँ से दुबई से. हो गया हमें.
1: आपको अभी तक नहीं समझ में आया, बट इंशाल्लाह ताला आज मैं आपसे वादा और दावा दोनों करता हूँ. ये आप बस एक 7 से 8 महीने गुजार लिए, इंशाल्लाह खैर के
0: आपको सारे फर्क नजर आ जाएंगे.
1: आपको इतने फर्क नजर आ जाएंगे खुशहाली के. इंशाल्लाह
0: पॉजिटिव पॉजिटिव.
1: आप ये कहेंगे कि भाई ये जगह वाकई, मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा, बट ये जगह दुनिया में सबसे बेहतर है. और यकीन जानिए कि इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतर जगह पे आप.
0: मैं इस बात की अटेस्टिफिकेशन करते हुए दुनिया की छांटी मारते हुए खाक छानते हुए नहीं भाई, कतर कतर है.
1: हमारा कतर बहुत प्यारा है और अब इंशाल्लाह ताला आपको भी अच्छा लगेगा ही, इंशाल्लाह ये हमें उम्मीद है. तो साहिल भाई क्या कहते हैं आप जब कुछ परेशान होते हैं तो किस तरीके से बिहेव करते हैं अपने साथ.
3: आइसोलेट करता हूँ सर, बिल्कुल साइलेंट जोन में रहता हूँ और सारे लोगों से डिस्कनेक्ट रहता हूँ. अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल या कुछ मेंटली या समथिंग, तो मैं आइसोलेट करता हूँ अपने आप को और तब तक बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं होता हूँ जब तक वो सारी चीजें शॉर्ट आउट ना हो जाए. पूरा फोकस उस पर करता हूँ उस चीज से बाहर आने के लिए. तो ये शुरू से मेरी आदत है. हालांकि कई मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जो रिलेटिव हैं वो लोग कंप्लेन भी करते हैं कि यार तुम क्या हो जाता है कि कभी कभी तुम 1-2 महीना बिल्कुल पता ही नहीं रहता, तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा था या इस तरह से चीजें नंबर चेंज हो गया. तो मैं कहता हूँ हाँ यार कुछ प्रॉब्लम थी. तो अभी सबको वो हैबिट पता चल गई है. तो कोई अभी उतना परेशान नहीं होते. वो लोग कहते हैं ठीक है, हो सकता है कुछ ट्रबल होगा, फिर निकल जाएगा, खुद ही आएगा, टेंशन ना लो.
1: चलिए यार ये भी अच्छा है कि आपने अपने जो अदा है वो दूसरों को दिखा भी रखी है और समझा भी रखी है. ये तो चलिए सही बात है.
3: जैसे मेरी जैसे मैं ये मानता हूँ सर कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है ना तो हमें खुद उससे लड़ना है ना. हम दूसरे को उसमें क्यों दूसरे को क्यों खराब करें. तो हम बस अपना खुद ही झेल लेंगे.
0: साहिल भाई मुझे आपकी ये सोच इतनी पसंद आई है ना.
3: हमारा जो है वो हम ही से निकलेगा, ना किसी हम सफर ना हम समी हम नसी से निकलेगा.
0: Exactly.
3: हमारे पांव का कांटा है ये, हम ही से निकलेगा
0: ये. एग्जैक्टली exactly. मैं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी होने वाली है इस मामले में. मैं बिल्कुल इस थॉट को
1: परेशान हूँ भाई. ये तो बस बात की
0: प्रॉब्लम्स जो है ना वो जिंदगी का हिस्सा है. देखिए कुछ लोग इसलिए आइसोलेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे लोग और आपके जैसे लोग इसलिए आइसोलेट करते हैं क्योंकि उस वक्त ना हमें आइसोलेशन सबसे ज्यादा कंट्रोलफुल चीज नजर आ रही होती है. हमें ये होता है कि ये हम ही ने करना है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे समझने का टाइम दो कि लाइफ में चल क्या रहा है.
3: शोर का मुंह बाकी. अगर मुझे कोई बिग ट्रबल है या कुछ है तो मुझे दो चीज चाहिए, ब्लैक कॉफी और 3 ड्रॉप साइलेंस.
0: ओ भाई
3: दो चीज चाहिए मुझे.
0: वाह भाई निकले.
3: मुझे दो चीज चाहिए थी.
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, मुझे पता नहीं. I feel you. बस
3: I can easily find out solution.
0: हाँ वो एंड I can literally, मुझे अगर कोई उसके अंदर चींपा मिली ना या मुझे कोई आकर कुछ और वो लोग कहते हैं ना अपने आप को डाइवर्ट कर लो, दूसरों से बात कर लो. नहीं, मुझे उस वक्त उस चीज का सोल्यूशन निकालना है एंड ऑल आई नीड इज सम आइसोलेशन. थोड़ा सा मुझे सोचने का टाइम दो, मुझसे थोड़ा सा दूर हो जाओ. मैं स्ट्रेस ने मुझे ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया, मेरी एनर्जी खत्म कर दी है. तो एक काम करो, मुझे अभी किसी और से डील नहीं करना, मुझे अभी सिर्फ अपने आप से डील करना.
3: मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कर लूंगा.
0: हाँ
1: क्या बात है भाई, अल्लाह ताला पहले तो आपको परेशानी से बचाए, हमारी यही दुआ है। और मजीद ये कि बड़ा अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया, अब इंशाल्लाह ताला ये जो दोनों नंबर है हमारे आप सेव कर लीजिए। और मजीद आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि हमारा जो वेब एड्रेस है,
3: सबसे बड़ी चीज मैं आज आपको बताऊं, और मुझे यहां पता नहीं था कोई रेडियो चैनल है या क्या है,

0: तो मेरे दोस्त ने कल शाम को ही उसमें डाल दिया एक दो चैनल दुबई में, तो जिसे हम लोग सुनते हैं वहाँ पे तो सात छह या सात चैनल है तो वहाँ पे सुनते हैं, तो यहाँ पे उसने डाल दिया। अब ये जब स्टार्ट किया मैंने सुबह में, आज ये मेरा पहला दिन है रेडियो सुनने का यहाँ।
1: अरे वाह भाई, वेरी गुड हो गया,
2: वेलकम कहेंगे आपको।
0: सलवा रोड में था, पार्किंग नहीं मिल रही थी तो मैंने लगा दिया, मैं कब से सुन रहा था।
2: वाह तो क्या बात है भाई,
0: ये सारी चीजें हैं तो अच्छा लगता है सर आप लोगों का कि आप लोग इस तरह से ये
2: भाई आप हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहें, यही हमारी दुआ है। मजीद इसमें आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हमारा जो वेब एड्रेस है urdu radio.qa, या फिर आप जब ऑनलाइन जाकर इंटरनेट पर जाकर उर्दू रेडियो कतर लिखेंगे तो आप हम लोगों को ढूंढ लेंगे एक्चुअली, और उसमें मजीद आप सारे प्रोग्राम्स, सारे आरजे कौन किस वक्त प्रोग्राम करता है, कौन सा प्रोग्राम कब जा रहा है, इवन जो भी प्रोग्राम आपके मिस हो गए हैं किसी एक प्रोग्राम से ताल्लुक, या आप शुरू करना चाहते हैं सुनना, तो वो सारी चीजें आपको हमारे वेब एड्रेस पे मिल जाती हैं। मजीद ये कि इंशाल्लाह ताला 24 घंटे सातों दिन
0: जाते जाते एक एक एक शेर बोलूंगा मैं, जो मेरे एनिमीज होते हैं और जो मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मैं कहना चाहता हूं
2: जी,
0: मोटिवेशन के लिए जो जितने भी साहिल नाम के लोग हैं, कि साहिल है मेरा नाम मिटाओगे क्या मुझे, साहिल है मेरा नाम मिटाओगे क्या मुझे, तूफान मुझसे सैकड़ों टकरा के मर गए।
1: भाई ने अपने नाम को क्या तो यूटिलाइज किया है,
0: नहीं साहिल से तूफान वो मैं वो लहरें टकरा के मर जाते हैं।
1: एग्जैक्टली,
2: बहुत अच्छे भाई, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच साहिल भाई, आगे भी इंशाल्लाह ताला जुड़ते रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सर,
2: थैंक यू वेरी मच। एंड फॉर नाउ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी लीजिए, बज गए हम सबके 12 बज के सही 7 मिनट। और अब मैंने दिल तुझको दिया, नकाश आए हैं अपना एक नया गाना लेकर, कुछ कुछ गानों की कॉपी भी लगेगी आपको।
3: बहुत दिल फेंक चल रहे हैं,
2: दिल फेंक चल रहा है मेरी जान। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए ट्रैक, सरवर और सफा आपके साथ है ओनली ऑन FM 107।
3: दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी। अंजी वेलकम बैक अहलन व सहलन।
1: इस वक्त बज रहे हैं 12:14 ऑन द क्लॉक और भाई हम आपके साथ जुड़ चुके हैं सन एंड साउंड में। सफा और सरवर हाजिर हैं और भाई देखें हमारे पास ना फन ट्रिविया है आज का और फन ट्रिविया हमारा क्या कह रहा है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में, वैसे तो फन ट्रिविया जो गर्मियों से रिलेटेड था, मैंने कहा भाई गर्मियों के बारे में बहुत बात कर ली, कुछ और कर लेते हैं बात, ठीक है। फन ट्रिविया में आपको बताती चलूँ कि सिर्फ इंसानों में ही डिस्ट्रेस नहीं होता, इंसानों में ये नहीं होता कि उनको मेंटल लोड होता है या एंजाइटी या स्ट्रेस जो भी है, सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होता है। सर भाई आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिफेंट्स होते हैं ना, जो एलिफेंट्स का ये मामला होता है।
0: मुझे क्यों ज्यादा जनवा रही हैं आप इस नाम से, आज सुबह से यही हो रहा था, वो क्या बात है।
1: अच्छा भाई मैं एलिफेंट्स के बारे में बात कर रही थी। एलिफेंट्स जो है ना अपना जो इनका झुंड होता है ना इसके अंदर अपने स्ट्रेस को पता है कैसे कंट्रोल करते हैं, बाकायदा ये एक दूसरे के स्ट्रेस को फील करते हैं और जो स्ट्रेस्ड वाला एलिफेंट होता है ना उसको उसके पास जाकर बाकी जितने भी कबीले के लोग होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं अपनी लैंग्वेज में ताकि उसका स्ट्रेस कम हो और उसे सोशल सपोर्ट देते हैं। जानवरों में भी ये हम कह रहे हैं ना कि इंसानों में होता है कि भाई एक दूसरे के पास इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं, जानवरों में भी होता है। यहाँ तक कि जो डॉग्स और कैट्स होते हैं ना वो भी अगर उनके कोई ओनर है ना, अगर वो पेट हैं घर के, तो वो अपने मालिक के पास जाकर अटेंशन ढूंढते हैं, उनकी गोद में बैठ जाएंगे, उनके आसपास घूमेंगे और जो है ना उनसे कम्युनिकेट करने की अपने तरीके से कोशिश करेंगे, मतलब उनकी अटेंशन चाहेंगे वो। मुझे याद है मेरे पास बिल्लियाँ थी ना, तो जब मेरी बिल्लियों को स्ट्रेस होता था ना तो वो क्या करती थी कि मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो आकर लैपटॉप के ऊपर बैठ जाती थी, कहती नहीं कुछ नहीं करो, बस हमें प्यार करो, हमारे हाथ के पास आकर ना वो अपना सर देती है कि हमें प्यार करो। वैसे ही अपना ये जो अपने मकाओ को सुने, मकाओ जो पैरट होता है बड़ा सारा जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल पैरट, वो जो रंग बिरंगी सा जिसको नहीं पता, आप में से जितने के पास ये ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं ना, ये पैरट वगैरह, इनको आप देखेंगे इनका बाकायदा रिसर्च ये बताती है कि इनको डिप्रेशन हो जाता है अगर आप इनसे बातचीत ना करें तो ये बोर हो जाते हैं और बोरियत में इनको डिप्रेशन हो जाता है। उस डिप्रेशन की वजह से पता है क्या करते हैं ये अपने पर वगैरह जो पंख होते हैं ना ये उतार उतार के अपने आप को छीलना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक डिस्ट्रेस की निशानी है। और इनको कंपनी की जरूरत पड़ती है, इनको अपने ओनर से अटेंशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये अपने जो अगर आप पेट की ना भी बात करें, वुल्व्स होते हैं जो इसे उर्दू में क्या कहते हैं, वुल्व्स को
0: भेड़िया,
1: हाँ भेड़िया भेड़िया भेड़िया भेड़िया जो होता है ये तो आप पाल नहीं सकते घर के अंदर, जाहिर बात है पेट एनिमल नहीं है। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स में भी ये देखा गया है कि ये सोशल एनिमल्स होते हैं, ये पैक्स में घूमते हैं और जो है ना इनके आपस में ये जो मेंबर्स होते हैं इनके रिलेशन आपस में बड़े अच्छे होते हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे, इंसानों में भी ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो पसंद करते हैं सोशल सर्कल जो आपके जैसे होते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं टेढ़े मेढ़े, उनको दुनिया समझ में नहीं आती और इंसान समझ में नहीं आते, तो वो कहते हैं कि शायद वो उनका बिल्ट इन ऐसा होता है कि उनको आदत होती है बचपन से कि अपने प्रॉब्लम्स खुद सुलझाएं, तो वो मेरी तरह कहते हैं कि भाई हमें आइसोलेशन चाहिए, एक मग्गा ब्लैक कॉफी का दे दो और आइसोलेशन दे दो थोड़ी देर के लिए।
0: क्या बात है भाई, चलिए ये आज हमने जाना सफा के जरिए से कि किस तरीके से कौन सा जानवर कब परेशान होता है और इनका ख्याल भी रखना जरूरी है, यहाँ तक कि आपकी गोल्डफिश जो है वो भी स्ट्रेस में जाती है और उसी के बाद वो अपनी जान खो देती है, तो उसका ख्याल रखें। तो भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बोथ ऑफ यू डूइंग गुड जॉब, स्पेशल सर्वर भाई वेलकम बैक, कीप रॉकिंग। कौन है हमारे साथ, मकसूद भाई हैं हमारे साथ, ओके अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बहुत अच्छा टॉपिक लाया है, असल में कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, इश्क लिखा हुआ है भाई, इश्क या इसकी वजह से दूसरे की कामयाबी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको चाहिए मेहनत करें, जब रोजगार होगा तो फजूल बातें नहीं करेंगे वो लोग भी, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मेरे सपोर्ट सफा बहन के साथ है, सरवर भाई तो फेवरेट हैं।
1: अच्छा सरवर भाई, सरवर भाई मैं जो ना एक रिसर्च पढ़ रही थी, मुझे याद पड़ता है मैंने कुछ टाइम पहले रिसर्च पढ़ी थी ये आइसोलेशन और मिलने जुलने की सोशल सर्कल की, तो उसके अंदर था कि कुछ लोग जो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं ना स्ट्रेस में, उनका मामला ये होता है कि कभी कभी ये भी होता है कि स्ट्रेस जो है ना वो प्रीवियसली अगर आपने किसी से डिसमिसल एक्सपीरियंस किया हो ना कि आपने कभी दोस्तों चार दोस्तों के बीच में बैठकर आपने कोई बात कर दी और दोस्तों ने आपकी खिल्ली उड़ा दी, उससे भी आपको बहुत, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं उससे भी, उनको एक एक्सपीरियंस होता है कि नहीं भाई ये सब तो मुझे देवदास समझते हैं, ये मैं जब कोई बात करता हूँ तो मुझे कहते हैं मुझे जज करते हैं या मुझे जो है ना बुली कर देते हैं। तो कुछ लोग इस चीज से भी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और उनका लाइफ को गुजारने का तरीकेकार चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं भाई इससे बेहतर है कि हम दूसरों से अपनी खिल्ली उड़वाएं।

0: हम जो है ना अपने मसलों को खुद हैंडल करना चाहिए. तभी मैं कहती हूँ जो जो आपको दोस्त होते हैं ना आपके, हर कोई दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला.
1: वाह वाह, क्या.
0: तो वो मुश्किल से आप 50 दोस्त बनाएंगे तो उसके अंदर एक दोस्त ऐसा निकलता है जिससे आप बैठ कर वाकई में जिससे आप कोई सीरियस मुद्दे पर बात कर सकते हो, वरना बाकी सब तो
1: यार मेरे साथ तो मैटर ही दूसरा है. मुझे तो इन सारी चीजों में जाने ही नहीं. मैं तो खाना बनाता हूँ और बुलाता हूँ और बैठाता हूँ, खाना खाओ मेरे साथ जितना खा सकते हो. ये है
0: स्ट्रेस रिलीज
1: और क्या. हमजा जुड़ गया हमारे साथ, हमजा खोखर कहते हैं सलाम वालेकुम आप दोनों को और सरोर भाई आपके लिए और मेरे लिए वो बहुत परेशानी होगी. अच्छा तो ये दो रोटी से ज्यादा खा लेंगे और क्या. देखो वही बात कह रहे हैं हमजा भी. क्या बात है हमजा भाई, बिल्कुल सही बात है. जसविंदर हां जी जनाब, थोड़ा की हाल है.
0: थोड़ा की हाल सी,
1: जसविंदर सिंह शाहजी हमारे साथ, हम लोग बिल्कुल ठीक है. अनवर HUK, क्या बात है.
0: मुझे एक बात बताएं, ये जो नाम नहीं लिखते मैसेज कर कर अपना, और हम इनके अजीबो गरीब नाम इनके डिस्प्ले पिक्चर से पढ़ रहे होते हैं, इनका क्या मतलब, क्या मजा मिलता है.
1: मेरे ख्याल में उत्तराखंड से लग रहे हैं मुझे.
0: अच्छा यू के लिख दिया है.
1: ओके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर मैम कैसे हैं आप. अनवर UK लिखते हैं.
0: देखो हम कहते हैं ना, हम कराची वाले ना, हम कहते हैं हम UK से ताल्लुक रखते हैं. कहते हैं UK से ताल्लुक रखते हैं, हाँ यूनाइटेड कराची से.
1: अरे हमारे यहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ केरला भी तो है. ये भी कहते हैं हमारे मेरे जितने दोस्त हैं केरला से बचपन के, हम लोग खूब मजे इस बात पे लेते थे. तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल बोथ. आजकल आपकी फ्लाइट नहीं हो रही, फाइट नहीं हो रही. ओहो लगता है मैम कुछ हाथ हल्का रख रही हैं सरोर भाई पर.
0: देखिए मैंने कहा कहीं रोना वोना ना शुरू कर देना स्टूडियो में.
1: मेहमान 3 दिन के होते हैं अब तो, सरोर भाई को आए हुए काफी दिन हो गए. कौन है ये लड़ाना चाहता है.
0: इन्होंने वो वाली बात कर दी कि महंगा फोन किडनी बेच कर लिया है तो कम से कम 6 महीने तो चलाऊं.
1: इकराम से हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर ले लेते हैं. भैया बहुत देर हो गई. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ.
2: सरवर भाई
0: कुछ तो आया. बस सरवर भाई, सरवर भाई कैसे हो.
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कौन है हमारे साथ.
2: यूसुफ खान.
1: यूसुफ भाई यार क्या बात है. आप नाम जितना खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत यूसुफ भाई भी हैं हमारे. कैसे हैं यूसुफ भाई, खैरियत से.
0: देखो मेरे जूते नीचे थे, टेबल के नीचे जूते मार मार के मुझसे कह रहे हैं तुम ठीक हो. हाँ भाई मैं ठीक हूँ जबरदस्ती. हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ.
1: अच्छा जवाब देला, अच्छा जवाब देला. चलिए भाई तो यूसुफ भाई क्या कहते हैं, जब अकेले होते हैं परेशानी में जब ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं या किसी के साथ ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं.
2: कौन पागल अकेला रहते हैं परेशानी.
0: मैं अच्छा यूसुफ भाई चले इसके ऊपर एक डिबेट करते हैं, इसके ऊपर डिबेट करते हैं ठीक है. मुझे जरा ये बताएं कि 4 लोगों को बोरिया बिस्तर बांध के साथ बिठाने में कौन से मसले हल हो जाएंगे.
2: यार 4 लोग छोड़ो, एक आदमी होगा तब भी बिस्तर गोल नहीं करना चाहिए, बात करना चाहिए, कुछ टेंशन दूर करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अकेले में जाओ खुद कैसी करोगे.
0: तो भाई देखें अकेले में जाकर ये होता है कि अपने आप देखिए जब हम परेशान होते हैं ना तो हमें एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए होती है ना कि सरवर भाई की. अब सरवर भाई को साथ बिठाएंगे तो 4 लोग वैसे ही आ जाएंगे. मतलब सरवर भाई 4 लोगों के बराबर हैं. अब समझा करें ना बात को. तो मामला ये है कि हमें एक्सपर्ट की एडवाइस के लिए खुद से बात करनी पड़ती है. सरवर भाई जड़ से उखेड़िए फेंके. सरवर भाई तो टॉन टॉन टॉन जड़ से उखेड़िए फेंकूंगा प्रॉब्लम को.
1: सनी देओल बन जाता हूं मैं बिल्कुल
0: 2.5 किलो का.
1: चलिए भाई क्या बात है. तो चलो भाई अब यूसुफ भाई के साथ गेम भी खेल लेते हैं. सफा क्या कहती हो.
0: हाँ
1: ठीक है तो यूसुफ भाई गेम खेलते हैं.
0: मार्केट में नया गेम लेकर आए सरवर भाई.
1: रेडी
2: सरवर भाई. गेम नेक्स्ट टाइम खेलेगा. मैं बस सिर्फ सलाम की दे कॉल किया. मैं ड्राइविंग में हूँ ठीक है.
1: अच्छा अच्छा अच्छा चलिए ठीक है
2: ओके.
0: आपको भी ढेर सारा
1: बचने का अच्छा तरीका निकाला. चलिए ठीक है ओके ओके ओके ओके.
0: अच्छा अच्छा पहले हमने सोचा कि हम लोग जो ना आज के दिन में वो खेल लेते हैं बॉलीवुड वाला गेम, लेकिन फिर मैंने कहा हाँ, मुझे
1: confusion,
0: याद आया, मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ये कहकर फोन कट कर देते हैं कि नहीं भाई हम बॉलीवुड नहीं खेलेंगे हम
1: अरे हमारे पास एक से एक दिग्गज भी निकल आते हैं, हो सकता है कि टाइमिंग का इस वक्त फर्क हो, क्योंकि बॉलीवुड वाले हमारे जो आफ्टरनून शिफ्ट में बहुत जबरदस्त निकल के आते हैं, तो ये भी एक मैटर हो सकता है। तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ताला वापस आने के बाद आपके मैसेजेस, आपकी कॉल और इंशाल्लाह ताला गेम भी खेलेंगे। फिलहाल केके आ गए यहाँ पर माहौल को बदलते हुए। क्या कहती हो सफा?
0: कुछ कहना था। अच्छा हम अभी भी ऑन एयर हैं? मैं तो जा चुकी थी।
1: एंजॉय कीजिए बेहतरीन गाना केके की आवाज में, तू ही मेरी शब है सुबह है।
0: मुझे तो सिर्फ इमरान हाशमी याद आता है इस गाने को सुनकर।
1: तू ही दिन है मेरा। आवारापन किस किसने देखी भाई, अपडेट नहीं आई।

0: हाँ जी वेलकम बैक एलन वसहलन, और जबरदस्त गाना एंजॉय किया आपने केके की आवाज में। और जी साहब यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों के मैसेजेस भी हैं, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।
0: हमजा हमजा टेंशन होगी तो दो रोटी ज्यादा खाने का है।
1: हम लोग ना अक्सर दोस्त यार इकट्ठे बैठे थे ना, तो अगर किसी को छेड़ने हो ना तो बोलते नहीं कर यार, ये गुस्सा कर जाएगा। भाई गुस्सा करेगा तो दो रोटी ज्यादा खाएगा और क्या करेगा
0: यार, जबरदस्त। एक्चुअली कोई और भी ऐसा सुनता है तो वो सुन के मेरी ज्यादा हंसी निकल आई। इस वक्त मैं अकेला ही नहीं हूँ इस प्लेनेट अर्थ पे जिसके साथ ऐसी बातें होती हैं। हमला ऐसे ही है
1: भाई, आपके साथ हमेशा हम जुड़े हुए, टेंशन नहीं लेते। जहाँ जहाँ आपको फील हो आप अकेले हैं वहाँ आप हमें पाते
0: हैं। अरे मेरा भाई कैसा,
1: मैं ऐसा नहीं कर पाता।
0: हमला भाई पे पैसा ही पैसा।
1: बस मैं कैसे, सफा मैम कैसे है? ठीक है
0: सफा मैम, आप कैसी हैं?
1: मुझे क्यों ऐसा लग रहा है,
0: हाँ कैसा लग रहा है
1: मुझे, क्यों ऐसा लग रहा है? मुंह फुला के साइड पे बैठी हुई है कि हाँ आपस में भाई बात कर रहे हैं।
2: नहीं नहीं, मैं मुंह फुला के नहीं,
0: मार दिया था इनके,
2: आंख अपनी सुजा कर बैठी हुई हूँ भाई। पता नहीं किस चीज ने क्या किया है मेरी आंख के साथ, आंख मेरी क्या दुनिया धुंधली हो गई है।
1: चले अच्छा है कुछ टाइम के लिए, कुछ कहता है वो फिल्म का डायलॉग ना, कहता है अच्छा है मैं अंधा हूँ,
2: कुछ टाइम के लिए सरवर भाई नजर नहीं आएंगे
1: अगर वो, तो
2: कुछ टाइम के लिए सरवर भाई नजर नहीं आएंगे।
0: चलिए साहब हमजा गेम शुरू कर देते हैं। उल्टी गिनती आ गई है मार्केट में, तो क्या बोलते हैं, रेडी?
2: ये उल्टी गिनती के लिए गला क्यों साफ करने की जरूरत पड़ गई भाई?
0: उल्टी गिनती खेलेंगे हमजा, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, टाइम 10 सेकंड का नहीं मिलेगा एक्चुअली, जो जितनी जल्दी कर देगा वो इस गेम का विनर कहलाएगा। और स्लॉट आपको मैं देने वाला हूँ बहुत इजी, क्योंकि पहले कॉलर है हमजा, ठीक है?
1: ठीक हो गया।
0: 221 से 10 वापस जाना है, यानी 211। सही कहा मैंने, उल्टा मैं सही जा रहा
1: हूँ? ठीक हो गया।
0: तो मैं ऐसी शक्ल क्यों बनाई सकता, तुमने जैसे तुम्हें समझ
2: में गिनती की आपने तभी,
0: मेरी
2: बहुत ही गंदी शक्ल बनाई मैंने।
0: अच्छा इसलिए, चलिए तो 221 से 211 जाना है हमजा, रेडी हैं?
1: जी।
0: अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं अपनी घड़ी रेडी कर लूं, मैंने घड़ी रेडी नहीं करी, माय बैड माय बैड माय बैड।
2: 221 220
0: चलिए ठीक है हमजा, आप है वही है। चलिए आपका टाइम शुरू हो गया अब।
2: 221,
0: 217, हमारे कॉलर भी है तो गेम के लिए चैंपियन है पहले, तो फिर से शुरू करते हैं। 221 से 211 उल्टे भागना है, आपका टाइम शुरू होता है अब।
1: 221, 217, 218, 217, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217, 218, 216, 217
0: पहली कॉल में ही मारा चौका
1: आपकी इस बात से ना।
0: हाँ
1: आपकी इस बात से मुझे अपने बताया क्योंकि बात याद आ गई।
0: अच्छा
1: बहुत सर में क्वेश्चन पूछते थे हम लोगों से और ना उनका ना अगर सही जवाब दे दो ना बोलते रंगीन टीवी आपका हुआ।
2: वो मुझे ना वो
1: वाली कहानी याद आ गई कि रंगीन टीवी आपका।
0: नहीं तो वाटर कूलर तो मैं भी बांटता रहता हूँ उनकी तरह। क्या नाम था उनका?
2: तारिक अजीज साहब। मैं भी बोल रहा हूँ तारिक अजीज
0: यार बड़ा एक्टर यार बड़ी
1: शख्सियत। तारिक अजीज साहब भी यही बोल रहे लेकिन वो जो हमें असल याद है ना वो मेरे ताया अब्बू थे।
0: अच्छा वो टीवी बांट रहे थे
2: जो उनका बजट ज्यादा था
1: ना वो अक्सर उनका ना शौक है।
0: ओके
1: उनका शौक है ना वो बहुत सारी चीजें ना इतना जना पूछ के क्वेश्चन को घुमा कर आकर पूछ के तो फिर आगे बंदे से बोलते हैं हाँ भाई अब बताओ क्या है
2: मैं...
1: और आपको एक
0: कोई बता दे तो ये वाटर कूलर आपका हुआ ये टेलीविजन आपका हुआ।
2: उनका बजट ज्यादा था ना अच्छा था बजट उनका।
0: क्या बात है यार मगर जबरदस्त खेले हमजा।
1: और एक मजे का क्वेश्चन उनका मुझे अभी तक याद है।
0: क्या
1: एक छोटा सा आपको बताता हूँ हम लोग शहर में पहले बड़े बच्चे हैं तो ना हम लोगों का भी पता नहीं है कि जानवर वगैरह जो है वो किस तरह सर्वाइव करते हैं और क्या है चीज ना। तो उन्होंने क्या किया एक बार ना एक थैले में ब्लैक चने और एक थैले में पकड़ी की नींगने हम लोग नींगने बोलते हैं। उन्होंने बोला कि बताओ इसमें से कौन।
0: और मजे की बात यह है, मैं आपको बताऊं, इस वक्त सफा जो है हाजमोला की गोली खा रही है, तो उनको पूरा टेस्ट चाहिए।
2: अस्तगफुर अल्लाह सर्वे में बहुत
0: नहीं, मैं कह रहा हूँ हाजमोला की गोली खा रही है तो अच्छा फील कर
2: बात हजम हो जाएगी।
0: हाँ, फील अच्छा कर रही है,
1: अच्छा
0: हाँ, फील अच्छा कर रही है,
1: बात हजम हो जाएगी आपको,
0: फील अच्छा कर रही है। क्या बात है यार।
1: मैंने इस चीज पर रंगीन टीवी जीता था।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, टीवी के लिए कुछ भी करेगा।
2: उस जमाने के रंगीन टीवी के लिए तो कुछ भी करेगा।
0: जबरदस्त यार हमजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और पानी शानी पीते रहिए, गर्मी ज्यादा हो रही है भाई, ख्याल रखिए अपना, है ना। थैंक यू हमजा, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आप भी मेरे भाई, आप भी, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे हमजा भाई हमारे साथ यहाँ पर चैंपियनशिप पूरी करते हुए, और हमजा ने ऐसी चीज बता दी हमें कि सफा है
2: हर चीज उसी से रिलेटेड नजर आ रही
0: है। पहुंच गया एकदम यार, मैंने कहा ये हमजा उधर जिक्र कर रहे थे, ये चीज इधर कैसे मिल गई, और यहाँ पर चैंपियन मैं समझो शायद ताजी ताजी। ओके यहाँ पर एक और चैंपियन हमारे साथ जुड़ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम सरवर भाई, मैं हूँ खलील पराचा। मैंने कहा मैं खुद भी खेल।
0: खलील भाई की हुई दोबारा आमद, तो मैं ये चीज बताती है, देखिए कितना हमने रोक रखा खलील भाई को सऊदी जाने से फिलहाल। अल्लाह ताला खैर करे, और बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई इतनी मसरूफियत में भी आप हमारे पास तशरीफ लाए। तो रेडी हैं खेलने के लिए उल्टी गिनती?
3: जी बिल्कुल।
0: चलिए साहब खलील भाई का नाम लिख लें। खलील भाई अभी तक बड़ा स्कोर जो है यहाँ पर हमजा भाई ने रख दिया है, 6 सेकंड के अंदर उन्होंने जो हमने उनको गिनती बताई थी
2: 210 से है ना,
0: उन्होंने पूरी कर दी है
2: 219 से।
0: तो अब आप रेडी हैं?
3: इंशाल्लाह।
0: चलिए साहब तो 245 से 235 पीछे जाएंगे खलील भाई, ठीक है?
3: ओके।
0: इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, कौन सी बोली?
3: उर्दू,
0: जो आपको इजी हो। ओके देन फाइन, 245 से
3: 235।
0: आई वाह चलिए समझ गए भाई, इधर कर लें घड़ी रेडी, एंड खलील भाई का टाइम शुरू हो गया।
3: इंग्लिश में करूंगा।
0: इट्स फाइन नो वरीज, बिल्कुल करिए आप इंग्लिश में करिए, नो प्रॉब्लम। आपका टाइम शुरू हो गया अब।
3: ओके 245 244 243 242 241 240 239 238
0: 237 236 235। थोड़ा टाइम लिया खलील भाई ने, बट खलील भाई की इतनी मसरूफियत में से आना अपने आप में चैंपियन,
2: जाना और फिर वापस आना,
0: चैंपियनशिप की एक मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 12 सेकंड में पूरा किया खलील भाई, विच इज ऑल्सो गुड। मैंने बताया ना कि ये जो स्कोर हमजा ने आज खड़ा कर दिया भाई, ये तो चैंपियंस का ही रहा है, और इसी से हमारी कोशिश भी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा चैंपियन बनते रहे। भारत बहुत
3: मैंने कहा मैं भी आजमाऊं।
0: हाँ नहीं नहीं वेरी गुड भाई, अपना यार हमारे साथ आके यहाँ पर खेलना, अपने आप चैंपियन की पहचान है, निशानी है।
2: 50 बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं और ऑन एयर जैसे ही आते हैं तो गुम।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा लगा खलील भाई, बहुत मजा आया और अपना ख्याल रखिए।
3: आप दोनों की गुफ्तगू सुनता हूँ मुझे बहुत मजा आता है, और आज सफा बहन ने जो सिंधी में गिनती सुनाई,
0: जो ट्रे लगवाई है,
3: फिर दोबारा फोन करना पड़ गया।
0: जो नाश्ते की ट्रे लगवाई है आज सफा ने वो पूरी हो गई। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। All right then.

0: ब्रेक पे जाने से पहले इन चैंपियन से हम बात कर लेते हैं।
1: वैसे सर भाई, आपने कभी खुद खेली है गेम? अगर मैं आपको चैलेंज करूं तो आप खेल पाएंगे ये गेम?
0: हाँ खेल पाएंगे, बट कभी कभार ऐसा होता है। देखो 6 सेकंड मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ, 6 सेकंड बहुत जबरदस्त स्कोर है। मतलब इससे नीचे जाना अपने आप में भाई एक मसला है, बट लेट्स सी। तो अभी हमें लगता है कि चैंपियन जो है वो नहीं उठा पा रहे हैं। आप भी हमारे साथ ये गेम खेल सकते हैं और आप हमें मजीद मैसेज कर सकते हैं अगर आपको खेलना है और आप कॉल नहीं लगा पा रहे हैं।
1: यहाँ पर
0: बहुत सारे मैसेजेस भी हैं यार, ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्टूडियो भी थोड़ा जल्दी कुछ छोड़ना होगा क्योंकि अमीन भाई भी फिर आएंगे। तो कहते हैं, हाय, आई हैव स्टोरी, आई वॉन्ट वर्क इन स्टोरी, इफ वॉन्ट फिल्म डायरेक्टर, If FM can call me, I will do roles as hero. क्या बात है, क्या
1: भाई
0: बात
1: ने खुद ही स्टोरी लिखी भाई ने,
0: और नाम है Firefly। तो
1: जुगनू तेरे प्यार में बन के जैसे जुगनू
0: तो यहाँ पर इन्होंने अपना सीवी भेज दिया हमें ऑन एयर, ये बड़ी जबरदस्त बात रही भाई Firefly की।
1: अच्छा, और सीवी भेज दिया,
0: नाम नहीं दिया, ये देखिए कितने कर रहे हो रहे हैं यार। यहाँ पर एक चैंपियन हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है सरवर भाई भी और
1: नाजिया भी और सफा
0: अप्पी भी। सफा अप्पी भी। कैसे हैं आप
2: जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप बुजुर्गों की दुआ है।
1: इन बुजुर्गों को नाम बता दें, क्योंकि ये जो बुजुर्ग गानी बैठी हुई हैं ये नाम भूल जाती हैं लोगों के।
0: दुग्गल साहब
2: कच्ची आप ही, मैं हुसैन बात कर रहा
0: हूँ।
1: हुसैन भाई कहीं ये वही वाले हुसैन भाई तो नहीं है जिनसे हम पहले भी बात किया करते थे? मुझे याद नहीं आ रहा कौन।
2: जी, बिल्कुल सही पकड़े।
0: क्या बात है
1: हुसैन भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
2: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह।
1: गर्मी एंजॉय कर रहे हैं?
2: वैसे ही है जैसा आप छोड़ के गए हैं।
1: बस क्या करें, देखें ये हमारा जो गजनी का पॉइंट ऑफ व्यू ना, ये हमें लोगों को छोड़ने पे मजबूर कर देता है। हमें पता नहीं चलता कब कौन आता है कब कौन जाता है।
0: वाह, क्या शेर सुनाया सफा आपने। तो हुसैन भाई रेडी फॉर द मैच?
2: जी बिल्कुल।
0: 278 से 268 जाना है, 278 से 268 वापस। ओके
2: 278 से
0: आईवा
1: 268 से 268। अरे वाह भाई,
0: ठीक हो गया, रेडी है?
2: ठीक
0: सेट है?
2: नहीं हुआ फिर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
0: अरे ठीक होगा यार, चलिए तो घड़ी यहाँ पर रेडी। तो आपका टाइम शुरू हो गया अब।
2: 277 276 277 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
0: मैंने कहा रोको नहीं,
1: जल्दी पहुंच गए,
0: रोको नहीं, ये अब इंडिया ही जाके रुकेंगे सीधे या पाकिस्तान, कहाँ से ताल्लुक है आपका हुसैन भाई?
2: जी मैं इंडिया से हूँ।
0: इंडिया में कहाँ से?
2: इंडिया में मैं बिहार।
0: बिहार में किधर से?
1: की जो है ना मैंने सुना है मेट्रो बड़ी अच्छी है वहाँ की।
2: बिल्कुल आप कभी ट्राई कीजिए।
1: भाई मैंने सुना है लेट नहीं होती,
0: ये मेट्रो ही तो चला रहे थे आपने।
1: वही कहने लगी मैं भी इसी बात आ रही थी कि
0: तो यार हुआ यूं कि आपको ये दोबारा से खेलना पड़ेगा, सॉरी टू से, आप बहुत लंबा पीछे चले गए। आपको जाना था सिर्फ 68 तक,
1: आपको 68 तक जाना था सिर्फ,
0: 278 से 268। तो मैं आपको दोबारा चांस दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी फिर मजे लेने लगा, ठीक है, तो दोबारा कर लेते हैं इसको। चलिए तो आपका टाइम शुरू होता है, सेम सेम 278 से 268, ठीक है,
2: ओके
0: ऑल राइट देन, आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 272, 279।
1: अरे भाई ये ज्यादती हो गई भाई, ये ज्यादती हो गई भाई, नहीं भाई
0: यार हुसैन भाई भूल गए यार, जा बहुत अच्छा रहे थे। अभी भी याद आया क्या कहते हैं उसको 69
2: याद आ गया, 269।
1: अरे भाई
0: यार जबरदस्त, नहीं मैं आपको इसके पॉइंट दूंगा और बिल्कुल आप मतलब जो आप रुके हैं वहां आप 8 सेकंड पे थे, तो मैं चलिए उतना ही कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि हुसैन भाई आए हैं बड़े दिल से आए हैं और कोशिश अच्छी करी है, भूल गए थे जबकि, बट एनी हाउ चलिए आज के लिए पॉइंट, क्योंकि आज पहला दिन है उल्टी गिनती का, तो आगे ये गेम रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हुसैन भाई, थैंक यू सो मच। और भी कुछ कहना चाहते हैं क्या?
2: नहीं और कुछ नहीं, बाकी सब

0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे, पानी वगैरह पीते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।
1: बिल्कुल पानी का टब तो मैं साथ में लेके चलता हूँ, मैं पीता भी और मैं बैठ भी जाता
2: हूँ। तोते हैं क्या, कबूतर हैं क्या, क्या है
3: बात है? नहीं, खाली उंगली उसके अंदर डुबा देते हैं, महसूस करते हैं कि मैं पूरा टब के अंदर हूँ। ऐसे ही हो सर भाई? चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। तो खातिनो हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, उल्टी गिनती का सफर चल रहा है इस वक्त FM 107 पे, और यहाँ पे कोई आ गया इसलिए मैंने कहा कि इधर देखते हुए इनको कनेक्ट कर दूं जल्दी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: हेलो, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।
4: कैसे हैं आप लोग?
3: हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। कौन है हमारे साथ?
4: साफा जानती है।
2: अरे भाई, अरे भाई है ना?
4: हाँ।
2: देखा, अरे भाई है।
3: कुछ और आ रहा था, मैंने रोक लिया।
4: मैंने कजनी को भी यादाश्त तेज कर दिया।
2: और ये देखो मैडम, तमगा इम्तियाज कहाँ है भाई, कहाँ है? अरे भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
4: थोड़ा परेशान चल रहा था इसलिए।
3: अल्लाह ताला आसानी करे भाई, अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर भगा दे बिल्कुल और खत्म कर दे, और उसका मुकम्मल आपको इलाज दे दे, यही दुआ है हमारी।
4: उस परेशानी को सरवर भाई खा जाए।
3: हाय हाय
2: हाय, अल्लाह क्यों बर्गर है क्या?
3: मुझे को खिला रहे यार भाई, अरे मुझे को खिला रहे
4: आपके, ट्रांसफर नहीं कर रहा, मतलब खा के उसको हजम कर जाए।
3: हाँ, हजम कर जाए। और आज बड़ी बात हो रही है आदमी की, सफा भी बराबर यहाँ पर हाजमोला जो है वो खा रही है। हजम करने के साथ साथ तो चलिए भाई, अरे भाई तो रेडी इस वक्त उल्टी गिनती का सफर इस वक्त जारी सारी है, तो उल्टी गिनती खेलना है अब आपको हमारे साथ, ठीक है?
4: थोड़ा समझा सकते हो, मेरे को मालूम नहीं।
2: अरे भाई आपने करना ये है कि हम आपको बोलेंगे चलो 200 से लेकर कितना 200 से लेकर सर्वाइव बैक कितना जाए,
3: मैं बता देता हूँ इनको।
2: उल्टी गिनती गिननी है ना, आपको नंबर देंगे।
3: ये तो मशहूर गेम है यार अपना,
2: 150 से लेकर 140 तक काउंट कर लो, खत्म।
3: हाँ नहीं, इतना आसान नहीं देते हम। 298 से 288 जाना है।
4: 298 से 288
3: बस, खाली 10 पीछे जाना है बस।
4: ओके,
3: ठीक है, रेडी है?
4: कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं।
3: किस में बोलेंगे पहले बता दिए ताकि हम अपनी डिक्शनरी खोल लें।
4: ओके, अब पहले मैं खुद का अंदर सोच लूं कौन सा इजी रहेगा।
3: बहुत कर रहे हैं भाई, बहुत कर रहे हैं।
4: हिंदी में?
3: हिंदी में
4: हाँ।
3: चलिए ठीक है, रेडी है?
4: हाँ रेडी।
3: चलिए आपका टाइम शुरू हो गया अब।
4: 298, 297, 298, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299, 299
0: अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर है। बट मैं आपको बता दूं कि आज का हाईएस्ट स्कोर जो है वो 6 सेकंड का है, तो अभी तक
2: 2 सेकंड पीछे रह गए बस।
0: आपने हुसैन भाई के
4: कोई
0: साथ
4: कोई भाई तो जीत रहा है बस।
0: हाँ कोई
2: अरे
0: बात
2: भाई
0: नहीं, आप भी जीत रहे हैं, आप भी जीत रहे हैं। आप अभी तक हुसैन भाई के साथ सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है।
4: ओके, मैंने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट भी डाली है, थोड़ा देख लीजिए।
0: अच्छा लिखा हुआ है क्या है बता दीजिए, मैसेज बहुत सारे मैंने पढ़े नहीं।
4: मैंने सॉन्ग की रिक्वेस्ट डाली थी प्यार हमारा अमर रहे,
2: प्यार हमारा अमर रहे। आए हाँ, दिल जले चल रहे। अगर ये गाना चला दिया तो हम तो यूं स्लोप ऐसा रहेगा स्लाइड से नीचे जा रहे हैं।
4: परेशानी दूर होगा तो सोचा कि थोड़ा गम को याद किया जाए।
0: ओहो प्यार हमारा रहे, परेशानी समझ रही, सफा किस तरफ से आ रही थी। समझा अब समझा।
2: दिल का मामला है बाबू भाई, दिल का मामला है।
0: ओके अरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और मुमकिन हुआ तो हम देखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
2: लड़की का चक्कर बाबू भाई, लड़की का चक्कर।
0: ये डायलॉग बोलनी है सफा, और इस बात का हमसे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक डायलॉग है वो अदा हुआ है इस वक्त। तो क्या कहती है सफा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आने के बाद इंशाल्लाह ताला गेम जारी सारी रहेगा, और बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा।
5: आप सुन रहे हैं FM 107,
6: दिल से देसी।
5: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। डोंट मिस इट।
6: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
7: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
0: लेकिन साहब, हुई हमारी वापसी और यहाँ पर एक और चैंपियन हमारे साथ जुड़ते हुए। आइए इनका हाल अहवाल जानते हैं और फिर इनके साथ गेम भी कर देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
8: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: अहलेन अहलेन शेखो, कहाँ थे, कैसे हैं शहजादा सलीम साहब? जो बच्चा कुछ बोल रहा हूँ वो भी बंद हो जाएगा। ये बहुत चादर है, ये दूसरी तरफ से आ रहे।
2: तुम सुनाओ, आज हम तुम्हारी उर्दू की गिनती सुनेंगे शेखू।
0: दूसरी तरफ से आ रहे तो शहजादा भाई, चलिए गेम चल रहा है उल्टी गिनती, जल्दी से खेल लेते हैं क्योंकि वक्त है कम। और रेडी हैं आप?
8: जी जी जी।
0: चलिए साहब, तो 246 से 236 जाना है, ठीक है, वापस उल्टे। ओके, तो यहाँ पर घड़ी कर लेते हैं रेडी, जल्दी से रीसेट हो जा भाई। ओके, आपका टाइम शुरू हो गया अब।
8: 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237,
0: 236। मेरी जान, क्या आखिरी में इंग्लिश लगा ली है? कह रहे 237, 236।
2: भाई इसे कहते हैं ट्रांजेक्शन।
0: क्या बात है,
2: आप ऐसा ट्रांजेक्शन करो कि किसी को समझ में ना आए कि हुआ क्या।
0: आज के चैंपियन शहजादा सलीम घोषित किए जाते हैं। और कुछ अलग ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मगर पूरा किया, मगर 11 सेकंड में किया, तो ये भी अपने आप में एक चैंपियन है भाई। कोई तो तीसरे पोजीशन पर आएगा तो शहजादा भाई के लिए हो जाएगा, हमने संभाल के रखी हुई थी, वरना तीसरे पोजीशन पर कौन आता।
8: ओके जी, बहुत शुक्रिया।
0: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। तो भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि हम कॉल नहीं ले पाएंगे जल्दी जल्दी यहाँ पर मैसेजेस, क्योंकि जाने का टाइम हो गया है। अब से थोड़ी सी देर में आप कनेक्ट होंगे हमारे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के साथ विद मोहम्मद अमीन, जो आपको दुनिया भर की स्पोर्ट्स की खबरें, खेल से रिलेटेड खबरें बताएंगे, सुनाएंगे। और यहाँ पर ओके, ओहो, एस्पायर डाउनटाउन वाली साइड पे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ओके, कुछ हादसा ऐसा है लगता है, रोहिल ने बताया, फ़ोटो भेजी हैं, अल्लाह ताला खैर करे। यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज भेजे हैं हमें, कौन हैं, अरबाज हैं, जल्दी जल्दी मैसेज पढ़ लेते हैं भाई। शहजाद अहमद, अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों के क्या हाल हैं? मुझे जब भी स्ट्रेस होता है तो मैं सरवर भाई की तरह खूब दबा कर खाता हूँ। क्या बात है भाई शहजाद अहमद, खाइए इंशाल्लाह ताला अल्लाह हजम भी करा दे आपको।
2: हजम भी करा भाई, देखो हाजमा अपना दुरुस्त रखना
0: भाई। मुझे लगता नहीं कि अब मैं ये सारे मैसेजेस शामिल कर पाऊंगा क्योंकि नाम भी
2: नहीं आ रहे।
0: मुझे ऐड करने पड़ेंगे नाम, इंशाल्लाह। आरिफ अंसारी दिख रहे हैं ऊपर से, जो दिख रहा है, अस्सलाम वालेकुम सफा जी, अंसारी भाई। शौकत अली खान, मैं मैसेज पूरे नहीं पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी। आरिफ अंसारी, ओके। खादिम भाई का भी यहाँ पर मैसेज है हमें। और ये कौन थे हमारे साथ, अरबाज हैं हमारे साथ, ओके। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, नसीम नदवी हैं हमारे साथ, और मैसेज आ रहे हैं माशाल्लाह से ऊपर। ये कौन है हमारे साथ, फरीद पूना वाला है हमारे साथ, ओ फरीद फ्रॉम पुणे। चलिए साहब अब फिलहाल के लिए हम इजाजत ले लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी
2: इंशाल्लाह
0: सफा और सरवर के साथ।
2: और एक चीज याद रखें कि बात ये नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं, लोगों में घिरा हुआ रखते हैं, बात ये है कि आपको क्या सूट करता है वो करें।
0: बस बिल्कुल अपना ख्याल रखिए। और आज के जो विनर है हमजा है, नंबर दो पे है हुसैन और आरिफ, और नंबर तीन पर है शहजादा, और उसके बाद थे खलील भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समर स्पोर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। स्टूडियो की घड़ी पर 1:01 हो चुका है अभी। आज जो है बेसिकली सारे स्पोर्ट्स, काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स हो ही रहा है। आई मीन मैं काउंटिंग नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ आज हम लोग जुड़ेंगे। एंड जुड़ने से पहले एक सवाल आप लोगों को हमेशा की तरह मैं पूछते रहता हूं, और ये सवाल है, नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने अभी अभी सरवर और सफ़ा के शो में आप लोग मौजूद थे, तो शायद आप लोग अभी भी रेडियो पर मौजूद होंगे, FM 107 सुन रहे होंगे, तो ये सवाल नोट कर लीजिएगा। टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स में पूरे 10 विकेट्स लेने वाला बॉलर कौन था? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी सिंपल आंसर भी है। जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं आप लोग, तो क्रिकेट को बहुत ही करीब से, बहुत ही अपने दिल से मोहब्बत भी करते होंगे। तो टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स में पूरे 10 विकेट्स लेने वाला, एक इनिंग्स में, हाँ, वो बॉलर कौन था? आपको बताना है 6662107 पर, और इस पर आप जुड़ सकते हैं विथ योर रिप्लाइज, विथ योर आंसर। आपके जवाब जो हैं प्रोग्राम के एंड में बता दिया जाएगा आप लोगों के नाम के साथ। नाम ज़रूर लिखिएगा भैया, नाम की कुछ होता नहीं है, तो नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चलते हैं, अभी शुरू करते हैं आज के जो मेजर हाइलाइट्स है, मेजर शो जो है ये समर स्पोर्ट्स में क्या क्या हो रहा है आपको बता दें। दोस्तों, क्रिकेट इज़ अ वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट फॉर द देसी पीपल एंड सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए। स्पोर्ट्स अगर हम कुछ डिफाइन करें तो क्रिकेट इज़ नंबर वन। और देखिए, आज सुबह एक मैच हुआ और मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, हैरान हूँ कि टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का तो होता है और ये दो दिन भी नहीं बल्कि 1.5 दिन में कैसे ये ख़त्म हो सकता है ये टेस्ट मैच। एंड दैट एक्चुअली हैड हैपेंड। और आज सुबह ये न्यूज़ जो है ऑस्ट्रेलिया से आई है न्यूज़, और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 1 innings and 51 runs से शिकस्त देकर इस सीरीज़ को बराबर कर दिया। इन्हें 2 मैचों की सीरीज़, और फर्स्ट टेस्ट जो है पिछले हफ्ते बांग्लादेश की जीत हुई थी, और आज 1.5 दिन में ये मैच ख़त्म हो चुका है भाई। एंड फर्स्ट इनिंग्स बांग्लादेश वो 64, और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करके 210, वो भी ऑल आउट, और उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग करने आते तो 95 पे ऑल आउट हो जाते हैं। सो देन दैट वे आज day 2 और 3rd session में ही मैच का अता पता सब कुछ पता चल गया हमें। एंड बांग्लादेश लॉस दिस टेस्ट मैच, और इसी वजह से ये सीरीज जो 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हो गया। एंड ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने वेदर टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए इस तरह के विकेट्स बनाए जा रहे हैं या क्या है। जो भी है, टेस्ट क्रिकेट हावी है। अगर मैं बोलूँ कि T20 क्रिकेट के ऊपर हावी हो चुका है, एंड टेस्ट क्रिकेट इज़ बैक ऑन द यू नो इन द न्यूज़, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में मज़ा आता है। पहले के ज़माने में बहुत ड्रॉज होते थे, पहले के ज़माने में पता नहीं मैच घसीटते हुए, मतलब

जबरदस्ती का खेला जाता था, लेकिन अब बहुत एंटरटेनिंग, अब बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो चुका है टेस्ट क्रिकेट। और टेस्ट क्रिकेट में दो दिन में मैच खत्म होने का मतलब होता है कि देयर इज समथिंग, और यही समथिंग और समथिंग आज ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी रोमांचक, बताऊंगा कि एक सनसनीखेज मुकाबले में बांग्लादेश को हारना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया की जीत हो गई है। और देखते हैं कि किसने क्या किया इस मैच में। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मुझे लगता है कि वसीम अकरम के बाद अगर कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आया है तो ये मिचेल स्टार्क है। मिचेल स्टार्क इज डेफिनेटली अनप्लेएबल ऑन अ फर्स्ट पिच। ऑन अ फर्स्ट पिच में मतलब बहुत तेज तरीन क्रिकेट विकेट हो तो उसमें स्टार्क को खेलना थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट इनिंग्स में देखिए 12 रन देकर 6 विकेट, और सेकेंड इनिंग्स में 39 रन देकर 4 विकेट। और इसी तरह से बांग्लादेश की इनिंग्स जो पारी, सेकेंड इनिंग्स की पारी है, वो सिमट गई 95 रन्स पर। और जो फर्स्ट टेस्ट में हमें देखा था कि बांग्लादेश विल डू समथिंग, बांग्लादेश कुछ करके दिखाएगा, वो हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि अभी भी बांग्लादेश को फास्ट ट्रैक पर यानी फास्ट विकेट पर, ग्रीन टॉप पर थोड़ा बहुत और तजुर्बे की जरूरत है। मिचेल स्टार्क वॉज द टॉप ऑफ द बॉलर और मैन ऑफ द मैच रहे हैं, और पैट कमिंस 10 रन देकर 3 विकेट। बांग्लादेश के लिए नाजमुल हुसैन शांतो ने थोड़ा बहुत कोशिश की 31 रन बनाकर 46 गेंदों पर, और वहीं पे मुशफिकुर रहीम जो है 80 गेंदों पर 29 रन बनाकर कुछ कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ये कोशिश ज़रूरी नहीं है कि बहुत आगे तक बांग्लादेश को मदद मिली। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच बांग्लादेश लॉस्ट दिस टेस्ट मैच दैट वॉज प्लेड एट साउथ मकई ग्रेट बैरियर रीफ अरीना। ये एक नया प्ले ग्राउंड है, नया क्रिकेट पिच है, नया क्रिकेट ग्राउंड है कह सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया का। सो बांग्लादेश फाइनली मैनेज्ड वन ऑल इन दिस सीरीज, लेकिन ये मैं कहूँगा मतलब यू नो क्लैप्स कॉन्ग्रेचुलेशन टू बांग्लादेश क्रिकेट टीम, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस सीरीज को बचाया, कम से कम बराबरी पर खत्म किया। मूविंग ऑन टू फुटबॉल, और फुटबॉल में आपको पता है कि लास्ट थर्सडे यानी जुमेरात को कतर स्टार्स लीग का आगाज हुआ, और कल यानी हफ्ते के रोज दिफाई चैंपियन असद ने जबरदस्त शुरुआत की इस चैंपियनशिप में, इस टूर्नामेंट में, और अल अहली को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर अपना जो कैंपेन है उस कैंपेन को शानदार अंदाज से शुरू किया है अलसद क्लब। और इस बार अलसद क्लब के जो कोच हैं मांचिनी जो थे, रोबर्टो मांचिनी जो इटली के फॉर्मर मैनेजर थे, वो पिछले सीजन के बीचों बीच वो चले गए थे। तो अलसद क्लब के अभी जो न्यू मैनेजर यानी न्यू कोच है लुचेस्कू हैं, राजवान लुचेस्कू, जो कि 12 साल पहले कतर में उस टाइम में अल जैश क्लब को कोच करवाते थे। तो लुचेस्कू इज़ द बिगेस्ट साइनिंग फॉर अलसद टीम दिस सीजन। और ओवरऑल अलसद आई विल से कि देखिए टीम तो मजबूत है, टीम इज़ अ वेरी परफेक्ट टीम है, एंड उसमें कोई शक नहीं है कि टीम को जीतने में कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन आने वाले टाइम में ये तो मैराथन लीग है, अप्रैल तक जो है ये मैच, ये टूर्नामेंट जो है, ये लीग जो है वो चलता जाएगा, चलता रहेगा। सो वहीं पर देखना है कि वेदर दे कैन रियली मैनेज टू डिफेंड द टाइटल दिस सीजन या नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू अनदर स्पोर्ट, कतर के ही सैफ अल दिन मोहम्मद ने एक बार फिर नया मयार कायम कर दिया है दोस्तों। एथलीट हैं और उन्होंने कतर एथलीट ने पोलैंड के सपोर्ट एथलेटिक्स मीट में 5.90 मीटर की बुलंदी पार करके नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया। पोल वॉल्ट में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया जो कि नेशनल रिकॉर्ड है कतर के लिए। और क्रिकेट में एक और अपडेट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि 9 अक्टूबर इस साल के 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक श्रीलंका और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें दौरा करेंगी, और इस दौरान बायलेटरल और ट्राई सीरीज खेली जाएंगी, जिसका ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। देखिए बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान प्लेइंग इन दिस थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट दिस ईयर, और पाकिस्तान इन दिनों इंग्लैंड का दौरा कर रहा है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज trying to save this series. They lost the first test match by an innings and 103 runs. ये परसों की बात है, और अभी देखना ही है कि अगला टेस्ट जो होने जाएगा वो 27 तारीख से शुरू है, उसमें पाकिस्तान क्या कुछ कर पाए या नहीं पाए, हमें वेट करना पड़ेगा। एंड बांग्लादेश के साथ साथ अगर पाकिस्तान का मैं पाकिस्तान की बात करूँ यहाँ पर, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थोड़ा अगर देखा जाए तो उस मजबूती पर नहीं है, लेकिन they can really do well in England, especially England के against में host country है, और England के इस time में मौसम जो है थोड़ा सेम वाले मौसम है, bowlers जो swing bowlers हैं उनको मदद मिलती है, और वहाँ पर देखना ही है कि whether Pakistan can balance this season.

जहां पे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को घुमा दिया था एंड हालांकि सेकेंड टेस्ट मैच में दे लॉस्ट बट सीरीज तो कम से कम बराबर कर चुका एंड वहीं पाकिस्तान को देखना है कि वेदर दे कैन बी एबल टू बीट इंग्लैंड इन द सेकेंड टेस्ट मैच दैट इज स्टार्टिंग ऑन ऑगस्ट 27. ये तीन मैचों की सीरीज है और बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. और आगे चलते हैं, एक अनाउंसमेंट हुआ है कल एंड ये अनाउंसमेंट फीफा की जानिब किया गया है और जो सबको इंतज़ार था वर्ल्ड कप फाइनल के बाद एक हाथापाई के एक वो हमें मंजर जो हमें देखने को मिला था हाथापाई घुसमघुसी, यू नो देयर वाज जस्ट फ्री फॉर ऑल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, कि मारा मारी पीटा पीटी थप्पड़ घूसे लात मतलब वॉट एवर इट वॉज, जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बड़ा ही एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा है कि वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद इस तरह के बड़े बड़े फुटबॉलर्स एक दूसरे को मार रहे हैं पीट रहे हैं. तो इसी मुद्दे पर फीफा ने एक अनाउंसमेंट एक स्टेटमेंट जारी किया है एंड वो बताएंगे आपको हम ब्रेक के बाद. लेकिन ब्रेक से पहले जाने से पहले क्वेश्चन जो है आज का क्विज है वो मैं दोहरा देता हूँ. टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स में पूरे 10 विकेट लेने वाला बॉलर कौन था, आपको ये बताना है विथ योर नेम एंड ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पर क्लिप्स टू एफएम 107 दिल से देसी. करदा है इनिया मेनिया गल्ला से तू लड़दा.

0: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: अजू वेलकम बैक टू समर स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं ये समर स्पोर्ट्स प्रोग्राम जहां पर खेलों के अपडेट्स और खेलों के अपडेट्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। जैसे ब्रेक से जाने से पहले एक फीफा की जानिब एक स्टेटमेंट आया था, मैं वो पढ़ रहा था या आपको बताया भी था कि इस साल के जो हॉकी माफ कीजिएगा फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के बाद एक वाकया हुआ था जहां पे आप लोगों ने देखा होगा बॉलीवुड एक्शन ढोसा मसूसी हाथा पाई मतलब एक दूसरे को मतलब मारना पीटना प्लेयर्स अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन के मैच के बाद। और ये मैच अर्जेंटीना की हार हुई थी, इस मैच में अर्जेंटीना टीम की हार हुई थी एंड स्पेन वन द वर्ल्ड कप आफ्टर 2010। सो इस मैच के बाद जो वाकया पूरे दुनिया को देखने को मिला टीवी सेट पर, अपने लोग देखा होगा कि बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको हम आइडल मानते हैं, बच्चे आइडल मानते हैं, वो एक दूसरे पे टूट पड़े। और ये एक बहुत सही एक मैं कहूँगा पिक्चर नहीं था फॉर द यू नो ग्रेटर बेनिफिट ऑफ द गेम, और अगर कोई बच्चा देख रहा था तो उनको भी ये सही नहीं लगा होगा। तो इसीलिए फीफा जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने एक सख्त वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन उनको लेना पड़ा और अर्जेंटीना के मिडफील्डर लियांड्रो पारेदेस को इस हाथापाई में शामिल होने के लिए 10 मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया। 10 मैचेस परदेस विल नॉट प्ले और वो परदेस चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ही विल नॉट बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ अर्जेंटीनास एनी नेशनल टीम के गेम में। तो देखिए मैच खेलना अलग बात है, मतलब टेम्परमेंट लूज करना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप मार रहे हैं फिजिकली किसी को असॉल्ट कर रहे हैं, वो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी स्पोर्ट कोई भी खेल में। बिकॉज स्पोर्ट्स हमें मोहब्बत हमें वो जज्बा है जो हमें एक दूसरे को शेयर करने में मदद करती है। वहाँ पर इस तरह के जो पीटना किसी को मारना दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। बिकॉज आफ्टर ऑल फुटबॉलर्स स्पोर्ट्स पर्सन्स को हर बच्चा हर जनरेशन के यंग प्लेयर जो है उसको देख कर ये सोचता होगा कि मैं भी इस तरह का फुटबॉलर बनूंगा, और उनको लड़ते हुए देखना इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल। सो फीफा ने बहुत सख्त एक डिसीजन लेने में मजबूर हो गया। तो एनीवे चलते हैं हॉकी वर्ल्ड कप जारी है और हॉकी वर्ल्ड कप में कल इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मैच, एंड इंडिया को हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट द होस्ट कंट्री जो है नीदरलैंड्स, 1-3 इस मैच में हार मिले। वहीं पाकिस्तान ने 16 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की एंड हफ्ते को वैगेंगर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने जापान को 3-4 हरा दिया। हालांकि दोनों टीमें जो है नॉकआउट स्टेज पर पहुंचने में नाकाम रहीं और पाकिस्तान तो पहले ही देवर आउट ऑफ द नॉकआउट स्टेजेस, और यहां पर इंडिया के पास एक चांस था कि अगर वो मैच जीते तो सेमीफाइनल तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब वो चांस हाथ से गया। अब इंडिया जो है कल यानी पीर को अर्जेंटीना के अगेंस्ट में एक इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच में दे विल पार्टिसिपेट। और वहीं पाकिस्तान के लिए ये जीत काफ़ी अहम इसलिए माना जा रहा है बिकॉज आफ्टर 12 ईयर्स पाकिस्तान की जीत हुई है एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट, माफ़ कीजिएगा 16 साल के बाद ये जीत हुई है इन वर्ल्ड कप हॉकी में। और यहाँ पर पाकिस्तान वॉज प्लेइंग यू नो पाकिस्तान और जापान का ये जो मैच था जो 9th to 6th place के क्लासिफिकेशन मैच था, सो दिस वॉज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान हॉकी। और वहीं इंडियन हॉकी के लिए थोड़ा बहुत मायूसी है, इंडिया आर द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन ओलंपिक, सो कल के इस हार के बाद इंडिया इज ऑल आउट ऑफ द सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज जिसको हम कहते हैं। सो ओवरऑल हॉकी की मैं बात इसलिए कर रहा था, हॉकी में इस बार जो हमें इंटरेस्टिंग मोड़ हमें दिखने को मिला वो है कि हॉकी नेशनल स्पोर्ट है पाकिस्तान का, हॉकी नेशनल स्पोर्ट है इंडिया का भी। और ये पाकिस्तान की इस जीत के बाद मुझे लगता है, अभी मैंने कल ही देखा था ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कई ऐसे एफर्ट्स कई ऐसे कैंपेन शुरू कर चुके हैं, कई कैंपेन उन्होंने जारी किए हैं हर स्टेट में हर सिटी में जहां पे हॉकी को थोड़ा बहुत यू नो प्रमोट किया जाए। और वहीं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया हैज़ रियली रिवाइव्ड इट्स लॉर्ड्स ग्लोरी 1980 के बाद 1980 के बाद इंडियन हॉकी टीम कुडन विन द मेडल, लेकिन 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में मुसलसल दो मरतबा उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने में एक बड़ा ही एक रिकॉर्ड मैं सॉर्ट ऑफ कहूँगा कि 8 बार के ओलंपिक चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट उनको ब्रॉन्ज मिला अगर वो भी 40 साल के बाद 2020 में एंड 2024 में ब्रॉन्ज मेडल दोबारा वो जीतते हैं तो हॉकी इंडिया में रिवाइव तो हो चुका है. पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू रिवाइव द हॉकी वंस अ ब्यूटिफुल गेम played by both the you know traditional you know hockey players of both the countries. maine to dekha hai hockey ko and wo khiladiyon ko dekha maine zafar iqbal sahab ko dekha mohammad shahid iqbal sahab ko dekha aur pakistan se hasan sardar samiullah kalimullah itne artistic players hote the aapko lagta tha ki yaar ye hockey jo hai hamara game hai cricket is basically ek foreign game ek desi game to ho hi nahi sakta hockey hamara game tha to india aur pakistan ke liye hockey mein is tarah is qadar jo popularity hame इस वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिला तो इससे मैं बहुत पॉजिटिव हूं. आप लोग क्या समझते हैं आप बता सकते हैं और दिस इज व्हाट आई वुड से. और यस्टरडे कल के इस मैच में मैंने एक फोटो देखा जो वायरल हुआ था, उसमें राहुल द्रविड़ और स्टीव वॉ जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान और राहुल द्रविड़ इंडिया के भी साबिक कप्तान, ये दोनों क्रिकेटर हॉलैंड में यानी नीदरलैंड में वो मैच देख रहे थे. तो यकीन जानिए कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्रिकेटर्स भी दे आर फॉलोइंग हॉकी. तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि हॉकी has really come out जो हम इंडिया और पाकिस्तान पहले सोए हुए थे, लेकिन अब जो है अब माहौल थोड़ा चेंज हो गया है. हॉकी के लिए एक नो एक इम्पॉर्टेंस एक जो तवज्जो दी जा रही है वो मुझे बड़ा सही लगा कि आफ्टर ऑल हॉकी इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट. अच्छा अब देखते हैं कि टेनिस में कुछ एक्टिविटीज़ हैं. अच्छा बिफोर आई मूव ऑन टू टेनिस, क्रिकेट जारी है. हाँ क्रिकेट इंडिया वर्सेस श्रीलंका का क्रिकेट जारी है. अगर नहीं बताऊँ तो वो इनकम्प्लीट है. आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो है आमने सामने है और ये मैच जो है कोलंबो में खेला जा रहा है. इंडिया जो है सीरीज़ में 1-0 से आगे है और इस मैच में इंडिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. एंड इंडियाज फर्स्ट इनिंग्स राइट नाउ इज 3 विकेट के नुकसान पर 226. यशस्वी जायसवाल जो है 45 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. केएल राहुल इस बार कुछ कर नहीं पाए इस इनिंग्स में, 18 रन बनाकर लाहिरु कुमारा के गेंद पर आउट हो चुके हैं. लेकिन अब जो बल्लेबाज जो टिके हुए हैं वो फर्स्ट टेस्ट में जिन्होंने सेंचुरी स्कोर किया और इंडिया को जीत दिलवाने में बड़ा ही अहम रोल अदा किया था वो देवदत्त पाटिक्कल हैं. 84 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और वहीं उनके साथ है ऋषभ पंत, 3 रन बनाकर अभी माफ़ कीजिएगा रविंद्र जडेजा 13 रन बनाकर अभी नॉट आउट है. ऋषभ पंत जो है वो रिटायर्ड हार्ट हो चुके हैं, मतलब उनको चोट लगने के बाद वो मैदान से बाहर है. शुभमन गिल जो कप्तान है वो 50 रन एक्यूरेटली डॉट 50 रन उन्होंने 108 गेंदों पर बनाए जिसमें 6 चौके हैं. सो ऑब्वियसली ये गेम जो है आई वुड से अभी तक जो लग रहा है कि 50-50 है और कोलंबो में मैच जो है अभी जारी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो क्रिकेट में एनीथिंग इज पॉसिबल. फर्स्ट टेस्ट में इंडिया गेंड अ कंसिडरेबल 300 से ज़्यादा रन की एक लीड उनके पास था, इसी वजह से दैट मैच वेंट इंडियाज फेवर. तो इस इनिंग्स में देखते हैं कि अब इंडिया कहां तक अपने पारी को लेके जाता है. 400 रन विल बी अ गुड लीड, गुड इनिंग्स, आई मीन गुड स्कोर टू डिफेंड अगेंस्ट श्रीलंका. श्रीलंका विल बी चेजिंग अ विक्ट्री बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट मैच फॉर श्रीलंका, क्योंकि WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दे हैव टू क्लाइंब द टेबल बिकॉज अभी उनके जो पॉइंट्स टेबल है वो बहुत कुछ खास नहीं है. एंड आपको मैं थोड़ा सा स्टैंडिंग्स भी बता दूं कि अभी ऑस्ट्रेलिया जो है WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये आप लोगों को पता होगा कि पहले होता था कि एक दूसरे से खेल रहे हैं, अब वो बात नहीं है. अब एक दूसरे से खेल रहे हैं तो वो पॉइंट्स बनते हैं और उसमें डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होता है. अभी ऑस्ट्रेलिया दे आर लीडिंग नंबर 1 पर है और साउथ अफ्रीका जो है डिफेंडिंग चैंपियन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, दे आर ऑन द सेकेंड पोजिशन. न्यूजीलैंड इज 3rd एंड बांग्लादेश इज 4th एंड उनके नीचे इंडिया है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है और पाकिस्तान है. तो टोटल देर आर 9 टीम्स जिनको WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिस्ट में शामिल किया गया है. और अभी तो गेम शुरू हुआ है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अभी बता दूं कि श्रीलंका के लिए किसने ज़्यादा विकेट लिए हैं, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर देता हूं। आसिथा फर्नांडो जो है 2 विकेट्स लिए हैं 41 रन देकर, लाहिरु कुमारा जो है 1 विकेट, और रेस्ट ऑफ द बॉलर जो है प्रभात जयसूर्या अभी तक उनके खाते में कुछ नहीं है, केशारा नुवान था उनके खाते में कुछ नहीं है, सोनाल दिनुषा उनके भी खाते में कुछ नहीं है, धनंजय डिसिल्वा भी अभी तक विकेट लेने में नाकाम रही। नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्विज, जो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि टेस्ट क्रिकेट की तारीख में उस बॉलर का नाम बताइए जिन्होंने एक ही इनिंग्स में 10 विकेट लेने का एक रिकॉर्ड कायम किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। बहुत सारे लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है, एंड आई वुड अप्रिशिएट, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं आप लोगों का, स्पेशली कुछ जो लिसनर्स हैं उन्होंने तो बाकायदा पूरा एक लिस्ट दे दिया है, एंड उनमें से एक साहब हैं अरबाज खान, एंड अरबाज खान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा लिस्ट दे दिया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली। मुमताज़ वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा प्रोग्राम बता रहे हैं तो अच्छा ही है, एंड रियली इट्स अ गुड फीलिंग कि आप लोग जुड़ते हैं इसमें, मुझे अच्छा लगता है। एंड मुबीन बगदादी साहब भी अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लिखते नहीं है। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुकम्मल तौर पर अपनी वो लिस्ट शेयर किया है, एंड उसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक्स है, मैं आपको बता दूंगा। और भी लोग हैं जिन्होंने, हरजिंदर साहब भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मैसेज ये अपने मैसेज किया है, एंड सही जवाब आपने दिया है। एंड और कौन है बांग्लादेश के हैं अली मुस्तफ़ा, एंड उन्होंने भी सही जवाब दिया है। सही जवाब तो सबने दिया है, जिम लेकर ऑफ इंग्लैंड जिन्होंने स्पिन बॉलर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक इनिंग्स में 10 विकेट लेने का एक रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड काफ़ी सालों तक रहा। तब जाके 1999 में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में अनिल कुंबले ने उस रिकॉर्ड को इक्वल किया, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में 10 विकेट एक ही पारी में 10 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड जो जिम लेकर के पास था, उस रिकॉर्ड को इक्वल किया था अनिल कुंबले, इंडिया के वन ऑफ द लेजेंडरी स्पिन बॉलर लेग स्पिनर अनिल कुंबले। और उसके बाद एक बॉलर आया, वो न्यूजीलैंड का ही है, और बहुत से जैसे कि यहाँ पे अरबाज खान ने ये दिया है लिस्ट जो शेयर किया है, उसमें उन्होंने उनका नाम भी जिक्र किया है, एंड अजाज पटेल जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, अजाज पटेल जो है वो भी 10 विकेट लेने में कामयाब रहे, एंड दे आर द इन द लिस्ट ऑफ 3 बॉलर्स जो लिस्ट है उसमें इन तीनों बॉलर के नाम है, जिम लेकर ऑफ इंग्लैंड, अनिल कुंबले ऑफ इंडिया, एंड अजाज पटेल जो है वो न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने सारे विकेट जो है अपने खाते में किए, आपने जेब में डाले द फर्स्ट इनिंग्स में, एक इनिंग्स में 10 विकेट, और पटेल उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में ये रिकॉर्ड कायम किया, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। कौन लिख रहे हैं ये थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। अरबाज साहब कह रहे हैं कि सर एक टाइम था जब हम क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानते थे कि ना, बस गुरबत की वजह से क्या करें। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्रिकेट को अपनाया, ये बहुत बड़ी बात है, और क्रिकेट की बात ये है कि क्रिकेट हमारे देसी लोगों के लिए काफ़ी एक आई वुड से कि मोटिवेशनल एक स्पोर्ट है। अगर हम गल्फ में हैं, मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, कतर में बैठे हैं, सऊदी में बैठे हैं, क्रिकेट खेलकर हम थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं, एंड क्रिकेट के साथ हमारा ये जो रिश्ता है, जो नॉलेज है जो हम शेयर करते हैं, वो मुझे हमारे FM 107 को जो आप लोग शेयर किया आप लोगों ने इस मैसेज के जरिए, तो वो भी बहुत अच्छा लगा, एंड आने वाले टाइम में भी आप लोग भी शेयर करते रहिएगा विद ऑल दी रिप्लाइज, विद ऑल योर इनपुट्स ऑन स्पोर्ट्स। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, मंगल को आप लोगों से मुलाकात होगी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने मैसेज का जवाब दिया, यानी मेरे क्वेश्चन का आप लोगों ने जितने भी जवाब दिए बड़े सही जवाब था। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और खेलों की दुनिया के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़। आप सुन रहे हैं FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक, टाइम चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के डेढ़, यानी ये वक्त हो चला है।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।
2: सो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? भाई नया हफ्ता आप सभी को मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम वेलकम वेलकम। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता एस्केप रूम के आज के ब्रांड न्यू चैलेंज में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो ये बताएं क्या हालचाल है, कैसे गुजरा वीकेंड, क्या क्या किया आपने, अच्छे से आराम किया कि नहीं किया, या फिर यूं ही मूवीज देखते हुए खाते पीते हुए सिर्फ गुजार दिया, जरूर बताएं। ठीक है, तो 666-22-107 666-22-107 इज आर नंबर, इसके जरिए हम अपनी बातों कंटिन्यूसली करने वाले हैं। और आज हम एस्केप रूम में कहाँ जाने वाले हैं, कौन सी वो सिचुएशन होगी जहाँ से हमें दूर भागना होगा। चलो आज एक हरियाली में लेके चलती हूँ, ग्रीनरी। उफ, जब गर्मी होती है तो ठंडी पेड़ों की छांव, हल्की ठंडी हवाएं बड़ी अच्छी लगती है, तो यही चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी ठंडी हवा खा भी लेंगे, एट द सेम टाइम आज एस्केप रूम का चैलेंज भी सॉल्व कर लेंगे, क्या बोलते हो? तो बस प्रिपेयर हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को लूजन अप करो, हीटर गाने इंजॉय करो, करक इंजॉय करो, नींबू पानी पियो, वट एवर यू लाइक, जस्ट डू इट। और उसके बाद हमारा चैलेंज आएगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, तो आपने कहीं नहीं जाना है। फिलहाल ये नंबर नोट कीजिए 666-22-107 666-22-107 और आपकी ये फरमीता आपसे मिलने का इंतजार करेगी। तो शो की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह और अकासा की अमेजिंग आवाज के साथ। स्टेडियम टू FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।
5: Yes, now welcome once again FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और हफ्ते का नया दिन नए चैलेंज के साथ आइए शुरू करते हैं। तो जनाब आज की सिचुएशन, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि नीचे मत देखो। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों अमिता? बिल्कुल मत देखो, क्योंकि आज आपको थोड़ी सी सांस थामनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम जमीन से 300 फीट की बुलंदी पर हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? चलो बताते हैं क्या कर रहे हैं। इस वक्त आप और मैं जो है ना, दो विशाल रेडवुड ट्रीज के बीच एक मजबूत रस्सी के जाल में झूल रहे हैं। अब यहाँ कैसे आ गए? बस आ गए। अब नीचे नीचे सिर्फ धुंध है, कोहरा है और मिट्टी की महक है। हमको नहीं पता अभी क्या है क्योंकि मैं साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मे बी आगे जाके हमें दिखाई दे, मतलब जैसे जैसे धुंध हटे। लेकिन थोड़ा और गौर से सुनिए, ठीक है? आपको सुनाई देगी एक सरसराहट, एक तेज हवा के झोंके के आने की एक फीलिंग, ठीक है? और इसी के साथ आपको ऐसा लगेगा कि कोई कुछ बात कह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सदियों पुराने जो बड़े बड़े से पेड़ हैं आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने तो हमेशा, वो कहते हैं ना, सोचा था कि पेड़ खामोश ही खड़े रहते होंगे, पर आज के इस एस्केप रूम में यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें उनके सोशल नेटवर्क का ना हिस्सा बनना होगा। अब चाहे तेज़ हवाओं की आवाज़ हो, चाहे पेड़ हिल रहे हों, उनकी हर एक मोमेंट को हमें समझना होगा।

इनका अपना एक अलग इंटरनेट होता है। अगर एक पेड़ प्यासा है तो दूसरा पेड़ उसे पानी भेज सकता है। अगर किसी दुश्मन कीड़े ने हमला किया तो पूरे जंगल को वार्निंग सिग्नल भी मिल जाता है कि भाई जल्दी से ख्याल रखो। इनकी दोस्ती बड़ी बेमिसाल है। तो हम जो जाल में फंसे हुए हैं, हम कैसे निकल सकते हैं? जब हमें क्लूज मिलेंगे और हम उसे सॉल्व करेंगे। सो क्लू नंबर वन आपके लिए ये रहा, मैं जंगल का वो छुपा हुआ इंटरनेट हूँ जो तारों से नहीं बल्कि फंगी के बारीक सफ़ेद धागों से बना हूँ। मैं शुगर और मैसेजेस एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुँचाता हूँ। साइंटिस्ट ने मुझे एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया हुआ है। मैं हूँ वुड वाइड डैश। इस ब्लैंक को हमें भरना है। चलिए मैं आपको तीन वर्ड्स देती हूँ, बताएं इसमें क्या आएगा, थ्रेड, वायर या वेब? क्लू नंबर वन एक बार फिर से आपके लिए मैं दोहराऊंगी कि मैं जंगल का वो छुपा हुआ इंटरनेट हूँ जो तारों से नहीं यानी वायर से नहीं बल्कि फंगी के बारीक सफ़ेद धागों से बना है। मैं शुगर और मैसेजेस एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचाता हूँ। साइंटिस्ट ने मुझे एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया है। मैं हूँ वुड वाइड डैश। इस डैश में कौन सा वर्ड आएगा, वेब, थ्रेड या वायर? ठीक है, इन तीनों में से कोई एक वर्ड चुने और लिख के हमें दे अपने नाम के साथ 6622107 6622107 पर। लेट मी सी कि पहला पड़ाव आप में से कितने लोग पार कर पाते हैं। और अभी के लिए चरण और बादशाह की आवाज़ में ये बड़ा ही सूदिंग सा गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम श्योर यू गोना लव इट। सो वॉल्यूम बढ़ाइए, इंजॉय कीजिए, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो जनाब, आज एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की कि हम ना जमीन से 300 फीट ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि हम एक जाल में फंसे हैं और ये जाल दो बड़े रेडवुड ट्रीज के बीच में है। ओए होए, कैसे आके वहाँ गिर गए। लेकिन जो भी है, अभी हमें ज़मीन अच्छे से दिख नहीं पा रही है क्योंकि थोड़ा सा

पे धुंध जमी हुई है, पर मिट्टी की बड़ी ही फ्रेश खुशबू आ रही है। तो यकीनन मिट्टी हमारे एकदम नीचे है लेकिन अभी हम एकदम हवा में तैर रहे हैं, और इस सिचुएशन से अगर हमें निकलना है तो क्लू नंबर वन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं जंगल का वो छुपा हुआ इंटरनेट हूँ जो वायर्स से नहीं, यानी कि जो तारों से नहीं बल्कि फंगी के बारीक सफ़ेद धागों से बना हूँ। मैं शुगर और मैसेजेस एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचाता हूँ। साइंटिस्ट ने मुझे एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया है, मैं हूँ वुड वाइड डैश। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, वायर, थ्रेड, वेब, क्या आना चाहिए? तो हमारे लिसनर्स ने तीनों ही ऑप्शन चुन लिए हैं। चलिए ठीक है, सही जवाब की तरफ फटाफट चलते हैं। सबसे सही जवाब जो सटीक बैठेगा वो है वुड वाइड वेब। तो जिन्होंने भी ये लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, जोरदार तालियां आप सभी के लिए, कमाल कर दिया। और जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब दिए उनके नाम है रफीक, सोम्स, ये है मोहम्मद, ये कौन है भाई, देखिए नाम जरूर लिखा करें, मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ये है अफसार, हुसैन है हमारे साथ, फातिमा ने भी सही जवाब दिया है, काशी ने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान है, और अहमद मुल्ला ने भी हमें सही जवाब दिया है। सो गुड जॉब गाइस, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है, शुक्र है। अब हम नीचे धीरे धीरे उतर रहे हैं, लेकिन रस्सी एक बहुत बड़ी जो कहते हैं ना ब्रांच, टहनी में फंस गई है। जरा सामने देखिए, वो जो सबसे पुराना और घेरेदार पेड़ दिख रहा है आपको, देखिए देखिए, वो मदर ट्री है। वो मदर ट्री इस पूरे नेटवर्क का हब है। वो उन नन्हे पौधों को खाना भेजती है जहां धूप भी नहीं पहुंच पाती। जनाब, ये जंगल हमें सिखाता है कि जिंदगी कोई मुकाबला, कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी है, बिल्कुल हमारी तरह, है ना। ये सुनकर ऐसा ही फील हो रहा है, हम लगते आज़ाद हैं पर कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसी बात पर क्लू नंबर टू आपके लिए आ गया है, क्योंकि अगला पल्ला अनलॉक करने के लिए इस एहसास को, इस फीलिंग का नाम हमें बताना होगा जो जिसका हर हिस्सा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। ठीक है, इस वर्ड को, इस लंबे से वर्ड को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका मतलब होता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। चलिए मैं ऑप्शन भी देती हूँ आपको, तीन ऑप्शन है, ठीक है, क्या कहते हैं इस वर्ड को जिसका मतलब है कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेडनेस या फिर इंटरफेरेंस। इन तीनों में से क्या आ सकता है, सोचें, इंटरलिंक्ड, इंटरफेरेंस, इंटरकनेक्टेडनेस, इन तीनों में से कौन सा वर्ड है जो सही इस जगह पर बैठेगा, सोचे, जवाब दें 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ, और देखते हैं कि दूसरा पड़ाव आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा पड़ाव, दूसरा क्लू बस इतना ही है कि हमको उस लंबे से वर्ड का नाम बताना है अंग्रेजी में जिसका मतलब है कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं। ऑप्शंस, इंटरलिंक्ड, इंटरफेरेंस, इंटरकनेक्टेडनेस। और अभी एक म्यूजिकल ब्रेक, लेट्स एंजॉय टुगेदर, उसके बाद देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस दूसरे पड़ाव को पार कर पाए हैं। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: एस्केप रूम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे दोपहर के 2:02 2:01। ये सबसे लकी टाइम होता है जब हम ये विश मांग सकते हैं कि आज के एस्केप रूम की सिचुएशन, जो हम दो पेड़ों के बीच एक बड़े जाल लटकते हुए जाल में फंसे हैं, बस वहां से एस्केप कर पाए।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: तो यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो जनाब, आज के एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। मतलब हम जमीन से 300 फीट ऊपर हैं, हवा में तैर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने एक जाल में एंट्री मारी है। हाँ, और वो जाल दो पेड़ों के, बड़े से पेड़, उनके बीच में बना हुआ जाल है। अब उसमें हम आ गिरे हैं। अभी जाल को धीरे धीरे नीचे लाना पड़ेगा, जमीन तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि हम एस्केप कर पाए। और उसके लिए हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। सो क्लू नंबर वन हम सब ने सॉल्व किया, दैट वॉज वुड वाइड वेब, सही जवाब था। क्लू नंबर टू पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लू नंबर टू ये है कि भाई, एक ऐसा शब्द है अंग्रेजी में जिसका मतलब है कि हम सब एक दूसरे से ना जुड़े हैं। तो ये जो शब्द है, ये वर्ड है, इसे कहते क्या है? आपको मैंने तीन ऑप्शन दिए, ठीक है? इंटरलिंक्ड, इंटरफेरेंस, इंटरकनेक्टेडनेस। हमें कुछ लोगों ने इंटरलिंक्ड करके दिया है और कुछ ने लिखा है इंटरकनेक्टेडनेस। देखो, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो इस सिनेरियो पर जो सही वर्ड सटीक बैठता है, दैट इज इंटरकनेक्टेडनेस। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने ये वर्ड चुना है और ये प्रूव कर दिया कि ये दूसरा पड़ाव भी उन्होंने पार कर लिया है। वैसे जिन्होंने इंटरलिंक कहा है, मैं कहूँगी कुछ लोग इस चीज़ का इस्तेमाल इंटरकनेक्टेडनेस की जगह करते हैं, बट नहीं, सही वर्ड इंटरकनेक्टेडनेस ही आएगा। और जिन्होंने हमें सही जवाब दिए उनके नाम है हुसैन, गुड जॉब, कमाल कर दिया आपने। फातिमा ने सही जवाब दिया हमें और अहमद मुल्ला ने भी हमें सही जवाब दिया है। काशिफ ने भी हमें सही जवाब दिया है और मोहम्मद यूसुफ खान ने हमें सही जवाब दिया है। रफीक है, सोम्स है, अफसार, मोहम्मद, गुड जॉब गाइज। आपने प्रूव कर दिया कि दिमाग के आगे कोई भी चीज़ नहीं ठहर सकती। अगर हमने सही दिमाग इस्तेमाल किया तो हम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अब हम कहाँ हैं इस वक्त? हम बस मिट्टी के करीब ही हैं। मतलब ये जाल धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। हमारा जो नेट है, हमारा जो जाल है जिसके अंदर हम कैद हैं, वो ज़मीन को अब छूने ही वाला है। लेकिन ये आखिरी लैच, आखिरी ताला एक बायोलॉजिकल पासवर्ड मांग रहा है। हमें उस चीज़ का नाम चाहिए जो इन बड़े बड़े पेड़ों को या ट्रीज़ की बुनियाद होती है। ये वो हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे छुपा रहता है।

और पूरे जंगल को एक मजबूत पकड़ देता है। इनके बिना ये जंगल सिर्फ खड़े हुए वो कहते हैं ना कि मुर्दा लकड़ी के ढेर होते, लेकिन इनकी ही वजह से ये पेड़ एक दूसरे से जुड़े हैं और जिंदा हैं। और कहते हैं ना वो जंगल में जो एवरग्रीन फीलिंग है वो सिर्फ इसकी वजह से है। चलिए तो क्लू नंबर 3 आपके लिए है, मैं हर पेड़ का वो अनमोल हिस्सा हूँ जो जमीन के अंदर गहराई तक जाता है। मैं पानी एब्जॉर्ब करता हूँ और पेड़ों को मिट्टी से जोड़ कर रखता हूँ। तो मुझे क्या कहते हैं, बताएं सही जवाब 666-22-107 पर अपने नाम के साथ। और देखते हैं कि ये आखिरी पड़ाव आप में से कितने लोग पार कर पाते हैं। और अभी मिलन गाबा की एकदम एनर्जेटिक आवाज में ये गाना एंजॉय करेंगे और फिर देखते हैं कि आखिरी पड़ाव में आज कौन जीतता है। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दीप।
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज हम बिल्कुल अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचे हुए हैं हमारे एस्केप रूम के, जहां पर आज हम दो बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक बहुत बड़ा सा नेट था, उसमें आके फंस गए थे। अब ये नेट अगर ज़मीन से नहीं उतरता, ज़मीन पर नहीं उतरता, तो बड़ी मुश्किल हो जाती हमारे लिए, क्योंकि हम बीचों बीच जंगल में हैं और न जाने क्या होता। लेकिन हमने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया, क्लू नंबर वन हमने सॉल्व किया जिसका सही जवाब था वुड वाइड वेब। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़े, क्लू नंबर टू का भी हमने सही जवाब दे दिया इंटरकनेक्टेडनेस। अब क्लू नंबर थ्री पर आए हैं और सोच रहे हैं कि अब सही जवाब क्या हो सकता है। अब इस वक्त हम मिट्टी के बहुत करीब आ चुके हैं। अब ये जो जाल है, ये नेट, ये जमीन को बिल्कुल ना छूने ही वाला है। लेकिन उसके पहले हमें एक बायोलॉजिकल पासवर्ड ये बताना है ताकि जो आखिरी ताला है ये खुल जाए। और क्लू नंबर थ्री हमारे लिए ये था कि मैं हर पेड़ का वो अनमोल हिस्सा हूँ जो ज़मीन के अंदर गहराई तक जाता है। मैं पानी एब्जॉर्ब करता हूँ और पेड़ों को मिट्टी से जोड़ कर रखता हूँ। तो मुझे क्या कहते हैं, कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर। 666-22-107, 666-22-107, इस पर आपको अपना सही जवाब देना अपने नाम के साथ। हमारे लिसनर्स ने सही जवाब देना शुरू किया है, कुछ एक दो हमारे लिसनर्स हैं जो गलत जवाब दे रहे हैं। एक बार क्लू नंबर थ्री मैं फिर से दोहराऊंगी और उसके बाद ये मौका हमें नहीं मिलेगा, हमें इस सिचुएशन से सिर्फ और सिर्फ एस्केप करना है। फोकस, क्लू नंबर थ्री, मैं हर पेड़ का वो अनमोल हिस्सा हूँ जो जमीन के अंदर गहराई तक जाता है। मैं पानी एब्जॉर्ब करता हूँ और पेड़ों को मिट्टी से जोड़ कर रखता हूँ। तो मुझे क्या कहते हैं, थिंक अबाउट इट। ये एंटायर, वो कहते हैं ना, जंगल की फाउंडेशन है। सोचे, सही जवाब दे अपने नाम के साथ 666-22-107 पर। और अभी एक बड़ा ही शानदार गाना आज हमारी प्लेलिस्ट में है, जो कि एक रेट्रो एरा से है लेकिन नए अंदाज में है। और जब आप ये गिटार का पीस सुनते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स द सॉन्ग। सो नितिन बाली की आवाज़ में, इंजॉय द सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और इस वक्त बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए अपने एस्केप रूम के। और आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की थी कि मतलब हमारी जो लैंडिंग हुई वो लैंडिंग पूरी हो नहीं पाई। हम 300 फीट जमीन से ऊपर लटक रहे थे कहीं किसी घने जंगल में, दो बड़े पेड़ और उनके बीचों बीच लगा एक बहुत बड़ा जाल। अब वहां से निकलना था तो एक एक करके क्लूज सॉल्व करने थे और इस बड़े जंगल के नेटवर्क को समझना था, इनके कम्युनिकेशन लिंक्स को समझना था, वो फीलिंग, वो एहसास समझना था। सो क्लू नंबर वन का हमने सही जवाब दिया, वुड वाइड वेब सही जवाब था। दूसरा क्लू हमने सॉल्व किया जिसका सही जवाब था इंटरकनेक्टेडनेस। अब जिस जाल में हम फंसे हुए थे वो जाल भी जमीन से बस लगने ही वाला है, छूने वाला है जमीन को, लेकिन हमें एक आखिरी पासवर्ड बताना है। और क्लू नंबर थ्री हमारा सबसे आसान, सबसे सिंपल क्लू था, जिसमें ये था कि भाई मैं हर पेड़ का वो अनमोल हिस्सा हूँ जो जमीन के अंदर गहराई तक जाता है, मैं पानी एब्जॉर्ब करता हूँ और पेड़ों को मिट्टी से जोड़ कर रखता हूँ, तो मुझे क्या कहते हैं। चलिए सही जवाब की तरफ हम रुख करते हैं। तो सही जवाब है जड़ें, या यूं कहें रूट्स। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है, जोरदार तालियां है हमारे सारे लिसनर्स के लिए। आइए जरा देखें जो जवाब हमें सही मिले। सबसे पहले मिले हैं मोहम्मद अफसार, सोम्स रफीक, हुसैन साहब ने भी हमें बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की, एक्साइटमेंट में देखो जरा मैं माइक से आके टकरा गई। मोहम्मद यूसुफ खान ने भी हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है, फातिमा ने भी हमें सही जवाब दिया है, मोहम्मद इमरान ने भी हमें सही जवाब दिया है और फैजल ने हमें सही जवाब दिया है। इनका नाम क्या है भाई, कमकम खान लिखा है इनकी प्रोफाइल में, भाई देखो नाम ज़रूर लिखा करे। सादात ने भी हमें सही जवाब दिया है। अरे बहुत शानदार, आप सबने हमें सही जवाब देकर प्रूफ कर दिया कि भाई माइंड गेम्स में आपसे बड़ा उस्ताद कोई नहीं। लेकिन आज

इस चुनौती वाले जंगल से जो आपने पार किया है, इस हर एक पड़ाव को, वाकई में हैट्स ऑफ टू यू गाइस। तो आज के हमारे लकी विनर कौन है? आज के हमारे लकी विनर हैं हुसैन साहब। जोरदार तालियां आपके लिए, मुबारक, कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आज के आप लकी विनर बन चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट। और साथ ही हमारे सारे लिसनर्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मुबारक आपको, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हमारे एस्केप रूम की वो कहते हैं ना, जान नहीं होती। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आज पूरे एक घंटे, और कल फिर दोपहर 1:30 बजे आपकी मेरी मुलाकात होगी एक ब्रांड न्यू चैलेंज के साथ। तो कहीं ना जाइएगा, कल कहाँ हम जाने वाले हैं? आज तो हम बिल्कुल हरियाली के बीचों बीच थे, घने जंगल में थे। कल मैं सोच रही हूँ ये हरियाली से निकल कर एक तूफानी मैदान में जाते हैं, क्या कहते हैं, कुछ अलग एडवेंचर हो जाए तो ठीक है। कल दोपहर 1:30 बजे सुनना ना भूलें हमारा एस्केप रूम अपनी ए फॉर अमिता के साथ। और अभी क्या करना है, हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और मुझे भी सोशल मीडिया पे ढूंढ लीजिए, कोई मैसेज वगैरह करना तो वहाँ भी कर सकते हैं। और अभी के लिए ये कहना तो बनता है, हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बहुत शानदार गाना भाई, जस्ट लव इट। एंजॉय द सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107 विद सफा। साथियों, ईद का नाम सुनते ही ना दिल बड़ा खुश सा हो जाता है। गार्डन गार्डन, नए नए कपड़े पहनने को दिल करता है, घर की सजावट होती है, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं।

मेहमान आते हैं भाई, मजे मजे के लजीज खाने पकते हैं और भाई तोहफों की भरमार भी शुरू हो ही जाती है। तोहफों का सिलसिला भी एक अलग ही होता है। अच्छा, ईद ना वाकई में खुशी और शेयरिंग का एक खूबसूरत मौका होता है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची है कि ईद की तैयारियों के दौरान हम कितना वेस्ट क्रिएट करते हैं? भाई देखिए, एक्स्ट्रा शॉपिंग होती है, खाना अक्सर औकात जाया करते हैं, प्लास्टिक डेकोरेशंस होती हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं और अननेसेसरी पैकेजिंग भी यूज होती है। अच्छा, खुशी मनाने के साथ साथ अगर हम थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का ख्याल भी कर लें तो क्या ही बुरा होगा, ईद का मजा दोबाला हो सकता है भाई। तो भाई आज हम इको स्विच में बात करने जाएंगे इको फ्रेंडली ईद सेलिब्रेशंस की, यानी ईद की खुशियां भी और एनवायरनमेंट की हिफाजत भी। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर साथियों। ईद की खुशी का मौका होता है लेकिन सेलिब्रेशंस के दौरान कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी क्रिएट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल दूं तो जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करना, प्लास्टिक बैग्स और पैकेजिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना, खाने का ज्यादा बनाना और फिर जो लोग उसे खाते हैं वो ज्यादा प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर आधा खाना वेस्ट कर देते हैं। डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज होती हैं, डिस्पोजेबल कप्स यूज होते हैं, डिस्पोजेबल कटलरी इन शॉर्ट यूज होती होती है। एक्स्ट्रा डेकोरेशंस जो सिर्फ एक बार यूज होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। हम अक्सर मेहमानों के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर लेते हैं जो मोहब्बत और खुशी की निशानी होती है, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग के साथ ना हम वेस्ट को कम कर सकते हैं और हाँ, रिसोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छा, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ इको फ्रेंडली ईद के लिए कुछ सिंपल आइडियाज जो कि हम सब अपना सकते हैं। पहली चीज तो ये कि स्मार्ट शॉपिंग करें ना। देखिए, ईद की शॉपिंग करते वक्त सिर्फ वही चीजें खरीदें जो वाकई में जरूरी हैं। क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स चूज करें जो कि ज्यादा अरसे तक यूज किए जा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें ना। हर साल नई प्लास्टिक डेकोरेशन खरीदने के बजाय कुछ ऐसी लाइट्स, फैब्रिक और डेकोरेशंस घर में मौजूद होती हैं जिनको हम क्रिएटिवली अगर इस्तेमाल करें ना तो वो मल्टीपल टाइम यूज हो सकती हैं। तीसरी चीज ये कि भाई खाने का ज्यान कम करने की कोशिश करें। देखें, ईद पर मेहमानों के लिए खाना जरूर बनाएं, मैंने मना नहीं किया। ऐसा नहीं कि मेहमान आपके घर से भूखे चले जाएं, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। लेकिन देखें, क्वांटिटी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें, बचा हुआ खाना प्रॉपरली स्टोर करें या जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम करें। अच्छा, रीयूजेबल सर्विंग आइटम्स यूज करें। डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स की जगह पर आप घर के बर्तन यूज कर सकते हैं, इससे वेस्ट भी कम होता है और मेहमान नवाजी भी ट्रेडिशनल टच के साथ हो जाती है ना। वो कुछ मेहमान होते हैं ना, कहते हैं हाँ, हमें प्लास्टिक के बर्तनों में खाना दे दिया डिस्पोजेबल में, तो उनके इस नखरे से भी आप बच जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इको फ्रेंडली गिफ्ट्स हैं। तोहफों के लिए रीयूजेबल बैग्स, प्लांट्स, हैंडमेड आइटम्स या यूजफुल गिफ्ट्स चूज किए जा सकते हैं। गिफ्ट की वैल्यू साथियों सिर्फ पैकेजिंग में नहीं होती बल्कि सोच और मोहब्बत में होती है। चलिए इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ आपको। बहुत सी फैमिलीज अब अपनी ईद सेलिब्रेशंस में छोटी छोटी इको फ्रेंडली चेंजेस ला रही हैं। कुछ लोग ईद के कपड़ों की शॉपिंग में जरूरत और क्वालिटी को तरजीह देते हैं। कुछ फैमिलीज रीयूजेबल गिफ्ट बैग्स संभाल कर रखती हैं ताकि अगले मौकों पर उन्हें यूज किया जा सके। कुछ लोग ईद के बाद एक्स्ट्रा जो खाना बच जाता है उसको वेस्ट करने के बजाय पहले से प्लान कर लेते हैं कि भाई खाना किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चेंजेस ईद की खुशी को कम नहीं करते साथियों, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसमें एक रिस्पॉन्सिबल टच ऐड कर देते हैं। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि इस ईद एक ऐसी इको फ्रेंडली आदत जरूर अपनाएं जो इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट के लिए बेहतर हो, चाहे वो खाने का वेस्ट कम हो, रीयूजेबल आइटम्स यूज करना हो या स्मार्ट शॉपिंग करना हो। और हमें जरूर बताएं आप ईद पर सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार करते हैं, फैमिली गैदरिंग्स का, खाने का या गिफ्ट्स और डेकोरेशंस का। भाई इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, ईद की असली खूबसूरती सिर्फ तैयारियों में नहीं होती बल्कि खुशी बांटने और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करने में होती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे अच्छा मशवरा देने की अहमियत के बारे में। अच्छा मशवरा देना एक जिम्मेदारी भी है और एक सदका भी। जब कोई शख्स आपसे राय मांगे, उसे सच्चाई और खुलूस के साथ बेहतरीन मशवरा देना चाहिए। अक्सर लोग बिना सोचे समझे मशवरा दे देते हैं, जो कभी कभी दूसरे के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर बात समझ कर और नीयत साफ रख कर गाइड करें। अच्छा मशवरा देने का मतलब ये है कि हम दूसरे के लिए भी वही सोचें जो अपने लिए पसंद करते हैं। इसमें ऑनेस्टी और कंसर्न दोनों शामिल होते हैं। आज का अमल ये है कि जब भी कोई आपसे राय मांगे तो उसे ध्यान से सुने और ईमानदारी के साथ मशवरा दें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका RJ महावश के साथ।

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया. One step to 2030. दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की. आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां टेक्नोलॉजी की तरक्की बहुत तेजी से हो रही है और इसी तरक्की में से एक अहम फील्ड है स्पेस एक्सप्लोरेशन. जी हां, पहले स्पेस मिशन सिर्फ चंद सुपर पावर कंट्रीज तक महदूद थे, लेकिन आज अमेरिका, चाइना, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, इंडिया भी स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है और इसी कंपटीशन को अक्सर कहा जाता है न्यू स्पेस रेस. शायद आपने ये टर्म या ये वर्ड तो सुन रखे होंगे. देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना नहीं है. इसमें प्लैनेट्स की रिसर्च है, सैटेलाइट्स लॉन्च करना है, मून और मार्स मिशन है और नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट भी शामिल है. साथ ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI, रोबोटिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और स्मार्ट सेंसर्स भी स्पेस प्रोग्राम्स का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सैटेलाइट्स क्या है और ये हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करते हैं. देखिए, सैटेलाइट्स एक मशीन होती है जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, GPS नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सब सैटेलाइट्स की वजह से मुमकिन है. ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारी लाइफ या हमारी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है. जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, राइडिंग हेलिंग एप्स यूज करते हैं या वेदर अपडेट रखते या देखते हैं, तो असल में आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे होते हैं. बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी में स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी गहरी अहमियत रखती है. न्यू स्पेस रेस की वजह से इनोवेशन और रिसर्च में बहुत तेजी आ रही है

0: कंपनीज जैसे SpaceX, Blue Origin नए रॉकेट्स और रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं। इससे स्पेस मिशंस की कॉस्ट कम हो रही है और फ्यूचर में आम लोगों के लिए स्पेस टूरिज्म के दरवाजे भी खुल सकते हैं। मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन का असर और भी ज्यादा नजर आएगा। बेहतर सैटेलाइट से इंटरनेट स्पीड इंप्रूव होगी, रिमोट एरियाज को कनेक्टिविटी मिलेगी और कम्युनिकेशन सिस्टम मजीद मजबूत होंगे। एग्रीकल्चर में फार्मर्स सैटेलाइट्स के जरिए जमीन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के जरिए क्लाइमेट चेंज को समझना और उसका मुकाबला करना आसान होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल स्पेस मिशन में नए इन्वेंशंस को जो है वो समझने का मौका देगा। जैसे पहले बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो आज हम स्मार्टफोन्स में देखते हैं, उनकी बुनियाद स्पेस रिसर्च में रखी गई थी। इस फील्ड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। स्पेस इंडस्ट्री नई जॉब्स पैदा कर रही है। इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के लिए नए करियर ऑप्शंस पैदा हो रहे हैं। इससे मुल्क की इकोनॉमी और साइंटिफिक प्रोग्रेस दोनों को फायदा होता है। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ सितारों तक पहुंचने का ख्वाब नहीं है, बल्कि इंसानी तरक्की का एक अगला मजबूत कदम है। आज जो रिसर्च स्पेस में हो रही है, वो कल हमारी जिंदगी को ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा एफिशिएंट बनाएगी। न्यू स्पेस रेस इंसानियत को इनोवेशन, नॉलेज और डिस्कवरी की कई नई मंजिलों तक लेकर जा रही है। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स को नहीं समझेंगे, बल्कि अपनी जमीन को भी बेहतर बना सकेंगे। मुस्तकबिल उन्हीं कौमों का होगा जो साइंस, इनोवेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन की अहमियत को समझकर आज से उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो चलिए आज से इसकी तैयारी शुरू करते हैं। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक ऐसे वाक़े पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें बैक वक्त कई अजीम सुन्नतें जमा हैं। इसमें बीमार की आदत भी है, गैर मुस्लिम के साथ हुस्न सुलूक की बात भी आई है, दावत में नरमी, इसी तरह इंसानी हमदर्दी और किसी की हिदायत के लिए आखिरी लम्हे तक फिक्र करना। अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक यहूदी लड़का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत क्या करता था। वो बीमार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहाने बैठ गए और फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो। उसने अपने बाप की तरफ देखा जो उसके पास ही था। उसने कहा, अबुल कासिम की इताअत करो। इस पर उस लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए बाहर तशरीफ ले आए कि तमाम तारीफें उस जात के लिए है जिसने इसको जहन्नम से नजात दे दी। इसे रिवायत किया है बुखारी ने। इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक यह है कि अक्सर औकात दिल किरदार से खुलते हैं। ये लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहा था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखा था, आपकी नरमी देखी थी, आपका तवाज़ु देखा था। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इस्लाम कबूल करने को कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उसके लिए अजनबी नहीं थी। दावत पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के जरिए उसके दिल तक पहुँच चुकी थी। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, बीमार की इयादत ये ज़रूरी है। खैर खाही तो सबके लिए है और यही इस्लाम के अच्छे तारुफ को पेश करने का मौका है। इस्लाम तो हमें ये कभी नहीं सिखाता कि सिर्फ अपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का दायरा बहुत वसी था। मजीद सामने कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं सोचा कि अब तो ये लड़का बहुत बीमार है, अब क्या फ़ायदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हे तक उसके हिदायत की फिक्र की। यह हमें सिखाता है कि किसी इंसान के बारे में जल्दी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जब तक जिंदगी है, हिदायत का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। यहाँ यह भी गौर करने की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को इस्लाम की दावत दी लेकिन उसे ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो। फिर वो अपने वालिद की तरफ देखता है, वालिद इजाज़त देता है और वो अपनी रजामंदी से इस्लाम कबूल कर लेता है। यही दावत का सही मिजाज है कि हक वाजे करो, नरमी से समझाओ और दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करो। हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफ़क़त और दावती हिकमत अपनाने की तौफीक अता फरमाएं। हमें बीमारों की आदत, कमज़ोरों की मदद और हर इंसान के साथ खैरख्वाही की तौफीक दे। मज़ीद हमारे अखलाक को इस तरह संवार दे कि लोग हमारे किरदार में इस्लाम की खूबसूरती देख सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

0: कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इतनी नहीं होती हैं, उसके अलावा वो लोग क्या करते हैं कि मतलब एक तो उनको जो नॉर्मल जो वर्क है अपना, कहीं पे भी जो उनको जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो है जॉब्स मिलती हैं वहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है, वो तो नॉर्मल अपनी वो लाइफ चल रही है, उससे वो सेविंग्स कर रहे हैं या जो भी अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। बात थी अगर वो उनको जो एक्सेस ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं फ्रीलांसिंग से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बहुत सारे मतलब हमारे बांग्लादेश के भाई हैं जो मैंने उनके देखा है कि ऑनलाइन उन लोगों ने जो है अपनी प्रोफाइल्स डाल रखी हैं वेर इन यू नो पीपल कैन ऑर्डर प्लम्बर्स ऑनलाइन और स्किल्ड वर्कर्स ऑनलाइन वेर इन दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज।
1: ट्रू,
0: सो देयर आर मेनी वेज वेर इन पीपल कैन हसल, अ साइड हसल इज नेसेसरी। तो इवन ब्लू कॉलर्स वो चीज़ ज़्यादा समझते हो, इनफैक्ट मतलब जो व्हाइट कॉलर्स हैं उनसे ज़्यादा वो गट्स रखते हैं ये सारी चीज़ों में जाने के लिए।
1: बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अच्छा एक चीज, एक टर्म जो है आजकल बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिपेंडेंसी आफ्टर रिटायरमेंट। इस टर्म को किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे?
0: देखिए सेल्फ डिपेंडेंसी बस यही है, उसको उर्दू में कहें तो खुद मुख्तारी हो गई। अब जैसे कि इंसान की जो जिंदगी है ज्यादा से ज्यादा 65 साल जो भी तबीयी जिंदगी है, आप रिटायर कर जाते हो तकरीबन 55-60 साल। बहुत सारे लोग आजकल अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दे वर्क हार्ड यानी रिग्रेस वर्क करते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आइदर लैंड में और नहीं तो घर बनाने में। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब कोई भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड में कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ करना है कि वो डेवलप किस तरह से कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने हॉस्टल बना दिया, अब उसमें बच्चों को रिहाइश के लिए दे दिया, अब इनकम जो है रेंटल इनकम जनरेट हो रही है। दूसरा तरीका है मान लीजिए आपके पास जो है बिल्डिंग है, आपने जो है उसमें या तो बिजनेस कॉम्प्लेक्स खोल दिया, रेंट पे दुकानें देती, ठीक है, नहीं तो आपने किसी बैंक को दे दिया, एटीएम्स खोल दिए, मतलब छोटी छोटी जगहों पे आपने एटीएम्स खोल दिए। उसके अलावा नहीं तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल अपने पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ पे उनको जगह नहीं मिलती है एक्सक्लूसिव जहाँ पे वो टावर्स लगा सकें, तो वो क्या करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे जो है वो लोग, अगर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग ऊँची है तो वो उस पे जो है टावर्स लगा देते हैं। मतलब देर आर एन नंबर ऑफ एवेन्यूज वेरिंग यू कैन इन्वेस्ट एंड अर्न मनी। तो अब वो जनरेट आराम से मतलब हो सकता है कि अगर आप सही से प्लान कर रहे हैं, यहीं पे बात आ रही है प्लानिंग की। प्लानिंग मतलब बजटिंग है, आपने वो बजटिंग पहले ही अपनी लाइफ में 10-20 साल पहले कर रखी है राइट टाइम पे। सो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग।
1: बहुत ही अच्छा, फ्यूचरिस्टिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ओवर स्पेंडिंग इस टर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे देखते हैं? एंड सेकेंडली कुछ लोगों को मैंने देखा है जो दिखावे के चक्कर में कर्ज लेते हैं, लोन ले लेते हैं एंड दे ट्राई टू यू नो शो के हम भी कुछ हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का जो अमल है उसको क्या ओवर स्पेंडिंग के अंदर ही इंक्लूड किया जाए?
0: अब देखिए ओवर स्पेंडिंग या कह लीजिए फजूल खर्ची, अब फजूल खर्ची का जो मतलब समझ लीजिए जो बग बाइट करता है स्पेशली पीपल जो हमारे यहाँ के लोग हैं, क्योंकि हमारे ही लोग ज़्यादा मद्देनज़र में हैं, वो यहाँ आते हैं, वो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को यूज़ टू हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं लोन्स लेते हैं, अच्छी फ्लैशी गाड़ियाँ ले लेते हैं, बड़े घर ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वन फाइन डे उनकी जैसे मान लो जॉब चली जा रही है, दे आर बैक टू बेसिक्स, और मान लीजिए उनके पास ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं, फिर वो सोचते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स कैसे किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करे जाएं। तो ये सारी चीज़ों के लिए इंसान को ये करना चाहिए कि आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, मतलब जुझारू होना पड़ेगा कि आप ये सारी चीज़ों पर देखिए। यहाँ पर इंसान क्या करता है कि माशरे की मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है कि बड़ा घर ले लेता है कि हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, हमें एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना है और मतलब लोगों के नज़रिए में, बट वो जब वो गिरता है तो हाथ थामने वाले कम होते हैं।
1: What?
0: लेकिन उस वक्त में जिस टाइम वो ये सारी चीज़ें मतलब जो फजूल खर्ची कर रहा था, तो उस टाइम पे उस चीज का अंदाजा उसको नहीं था। तो प्रैक्टिकलिटी इसी में है कि सबसे पहले आप अपनी चादर देखेंगे और फ्यूचर प्लानिंग करें। देखिए जरूरी नहीं है कि जो है आपकी जो है क्या बोलते हैं पेड़ ऊपर से बहुत ही हरा भरा दिखाई दे, उसका तना बड़ा लंबा हो, शाखें बहुत बड़ी बड़ी हों। इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसान वो ज्यादा मालदार है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और जिनको कहते हैं पोढ़े लोग, मतलब नूवो रिच ना बने।

0: आप जो है वेल्दी बनने की कोशिश करें, मालदार नहीं अच्छी चीज है, वेल्दी बनने की कोशिश करें, वेल्थ जनरेट करें।
1: बहुत ही अच्छी बात, जबरदस्त, एक्सेलेंट, इंप्रेसिव। अच्छा, कुछ एक्सपेंसेस इस तरह के हैं जो सीजनल होते हैं, शादी है या कभी आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आपकी जरूरत भी है, और कभी किसी तरह कोई मिसहैप या फिर कोई बीमारी, ऑल ऑफ सडन भी चीजें आ जाती हैं, तो उसके लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। और एक चीज और, कुछ लोगों के लिए जो असेंशियल खर्चे हैं वो दूसरों के लिए नॉन असेंशियल है, तो कैसे इसको भी डिफरेंशिएट करें अपनी लाइफ में।
0: पहला पार्ट के आपने क्या बोला था पहले?
1: सबसे पहले कि बहुत सारे सीजनल खर्चे निकल आते हैं, कुछ एक्सीडेंट या मिसहैप,
0: जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। जनरली यहाँ पे जो लोग हैं वो इमरजेंसी फंड रखते हैं। फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड आपकी जॉब चली गई, आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, मार्केट डाउन है, तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू हैव अ प्लान बी। और फिर मतलब हदीस शरीफ से भी आता, अगर आप जहाँ पे आपकी चीजें सही नहीं हो पा रही हैं माश को लेकर, तो आप हिजरत कर जाएं। ठीक है, आप हिजरत कर जाएं। तो अब उस हिजरत करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब बात फंड की जहाँ बात आती है, तो फिर वो आपने पहले से जो प्लानिंग कर रखी है, आपने अपने कुछ पैसे बचा रखे हैं, उन्हीं पैसों के जरिए फिर आप अलग आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं।
1: सही,
0: ठीक है। अब दूसरी बात आ गई, जो नॉन एसेंशियल खर्चे हैं जो दूसरे के लिए जो है एसेंशियल है, राइट। तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसके लिए एसेंशियल खर्चे ये हो गए कि उसको हर हफ्ते जो है बाहर जाना है और बढ़िया जगह पे डिनर करना है,
1: आउटिंग,
0: और आउटिंग करनी है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसको अवॉइड करना फैमिली में रहते हुए और यार दोस्तों के साथ उठने बैठने में। तो उनके लिए उन्होंने क्या करा है कि ऑल्दो ये नॉन एसेंशियल है इफ यू थिंक प्रैग्मेटिकली, बट उन्होंने एसेंशियल इसको बना लिया है माशरे के लिए। तो अब इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको जो क्या बोलते हैं जो फ्रीक्वेंसी है उसको, फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। उस जब फ्रीक्वेंसी को आप कम करेंगे, धीरे धीरे धीरे धीरे आप अपना एक साइड बैकअप बनाते हुए चले, ना कि आप मतलब फजूल खर्ची करें। ठीक है, तो बस यही।
1: अच्छा, बजटिंग में फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करें?
0: बजटिंग में देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका फैमिली को इन्वॉल्व करने का ये है कि जो घर चलाती है वो एक लेडी होती है, और उसका इन्वॉल्वमेंट मतलब बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मर्द हजरात यही करते हैं कि वो पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा ला के दे देते हैं अपनी अहलिया को, क्योंकि वो तो घर भी संभाल रही है, मतलब उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जॉब डिफाइन नहीं होती है एक लेडी की। तो आप उसको पहले इन्वॉल्व करें, बच्चों के अंदर वो सेविंग जो है ना हैबिट्स इंस्टिल करें, उनको आप जो है ये पिगी बैंक्स ला के दें कि ये बेटा आपके लिए है, और फिर मंथ में आप जो है जैसे एज अ बोनस उनको कोई ज़रूरत की चीज़ दिला रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ इंकलकेट कर रहे। फॉर एग्जांपल आप उनको एक छोटी सी पॉकेट मनी दे रहे हो, 5 रियाल दे रहे हो, तो उनके अंदर ये बताओ कि देखो बेटा आप 2 रियाल से कुछ कर लो, आप 3 रियाल बचा लो, जेब में रख लो, या आपके फ्यूचर में आप इससे कोई अच्छी चीज़ ले सकते हो। तो मतलब ये चीज़ें हमको अपने घरों में जो है तरबियत करना पड़ेगी, नहीं तो ख़ास तौर से खलीज वाले उनका ये है कि जब वो वापस अपने मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे बेचारे उनको सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो बेहतर ये है कि वो अभी से सारी चीज़ें वो प्रिपेयर करना चालू करें, और वो बच्चों को जो है सेल्फ सब्सिस्टेंट, जैसे आपने सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए वो तैयार करें, एक नया जनरेशन तैयार करें।
1: वेरी वेल सेड।
2: क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, आरजे नाजिया आपको लेकर जाएंगी एक नए सफर पे, जहां आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म। सुनिए शो इन्वेस्ट कतर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की।
1: अच्छा, कुछ लोगों के लिए बहुत अहम है कि वो बच्चों की फ्यूचर की जो एजुकेशन उसे प्लान करें, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, ये तो सवाल बहुत ही अहम सवाल है, और हमारी अहलिया भी हमसे पूछती रहती हैं कि देखिए आजकल एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है और इतनी एक्सक्लूसिव हो गई है, और फॉर एग्जांपल इवन कतर में भी जो ग्रेजुएशन की कॉस्ट है इट्स इन लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यू नो इट्स नॉट इजी लाइक पर सेमेस्टर आप मे बी 40,000 दे रहे हो तो टू अफोर्ड दैट यू हैव टू स्टार्ट सेविंग नाउ इटसेल्फ ऑन अ मंथली बेसिस से फॉर एग्जांपल आई हैव अ डॉटर यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू मेक हर अ डॉक्टर और वॉट एवर द करियर plan is so you can keep aside some money for her education or his education and also different like you know you need to budget out yeah
1: ye bahut zaruri hai and aap keh rahe hain ki pehle se hi
0: pehle se hi karenge tabhi aap kyunki dekhiye aur ahem cheez kya hai ki sirf savings iske liye nahi chahiye uske sath sath aap bacche ko education de dekhiye main thoda sa hat raha hu education aaj ke waqt mein itni important nahi hai banisbat ke स्किल सेट तो आप स्किल्स पे इन्वेस्ट करने की भी कोशिश करें वो समझ लीजिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट है एक तो आप सेविंग कर रहे हो एजुकेशन के साथ बस साथ में आपको ये एक इन्वेस्टमेंट स्किल सेट डेवलप करने के लिए लाजिम डालना पड़ेगा बच्चों के ऊपर नहीं तो एट द मोमेंट देर आर अ लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयबल बेसिकली Because they lack the practical experience.
1: True, आज का time नहीं है सिर्फ। अच्छा मैंने बहुत सारी ऐसी services देखी हैं, ऐसे service class हैं, जो जिनकी जो jobs हैं, उनमें uniforms हों या फिर और जो tools हैं, उन पे खर्चा करना mandatory है ही। और उनको वो मंथली भी खर्चे करने पड़ते हैं बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं आपको बहुत अच्छा दिखना है आपको अच्छा पहनना है कुछ सर्टेन चीजों पर आपको खर्च करना ही करना है जैसे जिम जाना आपके लिए कंपलसरी है आपको एक अच्छा फिजीक दिखाना है या और भी आपके ग्रूमिंग है उन सब पे तो इन चीजों को कैसे बैलेंस करें और उनका बजट भी ना बिगड़े और सेविंग्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो
0: देखिए जैसे फॉर एग्जांपल
1: चार टिप्स देना चाहेंगे
0: सबसे बड़ी टिप्स हम एक दुनिया के बहुत ही मशहूर जाने माने नाम है जिनका नाम है वॉरेन बुफे और उनका कहना ये है कि एक इंसान को सबसे पहले सेव करना चाहिए सेविंग के पैसे आपने अलग निकाल लिए बाकी जो बचे आपने उसमें बजटिंग करनी है कि आपके रोजमर्रा के खर्चे कितने निकल रहे हैं ग्रूमिंग के कितने निकल रहे हैं रिफॉर्म के कितने निकल रहे हैं खाने पीने पे कितने निकल रहे हैं आउटिंग पे कितने लगे उसमें से भी आप बचाने की कोशिश करो और मतलब मैंने मतलब अपनी जिंदगी में ऐसे लोग माशरे में देखे हैं जो वो इन चीजों पर अमल करते हैं तो ये हमारा मतलब हमारी राय है
1: ये राय है अच्छा आपके लिए बचत करना या सेविंग का क्या मकसद क्या है क्योंकि ये लाइफ भी तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको अच्छे से बिता रहे हैं और अभी हम बजटिंग ही करते चले गए और ओल्ड एज में आके तो हमें इन चीजों की भी जरूरत नहीं होगी बेसिक सी चाहिए खाना मिल जाए जगह रहने को मिल जाए दवाओं के पैसे मिल जाए दैट्स इट तो फिर क्या ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ हमने तो कुछ अपने ऊपर खर्च ही नहीं किया वी वर लाइक सिंपली सेविंग मनी
0: नहीं अब इसकी बात बता रहे हैं देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 6 दिन काम करते हैं ठीक है 1 दिन मिलता है एंजॉय करने के लिए सही है कि नहीं लेकिन 6 दिन मेहनत हो रही है 6 दिन वो 6 दिन के पैसे जो जमा हो रहे हैं वो 1 दिन में खर्च हो रहे हैं है कि नहीं
1: बिल्कुल
0: तो देखिए अगर आप दीनी नजरिए से देखेंगे तो दीन ये कहता है और कुरान में कई जगह पे ये कहा गया है कि खर्च करिए मतलब ये नहीं कहा गया है कि मतलब फजूल खर्ची के लिए मना करा गया है लेकिन खर्च करने पर कहा गया है फजूल खर्ची मत करिए खर्च करिए बचाना बुरा नहीं है बचाने में और एक बुखल में दोनों में फर्क है मतलब बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन हमारे नबी ने भी कह दिया है मतलब कि बखील एक बखील इंसान हम में से नहीं है ठीक है लेकिन फजूल खर्ची भी आपको नहीं करनी एज अ मुस्लिम यू आर नॉट सपोज टू डू दिस ओवर स्पेंडिंग आपको नहीं करनी वो जो सेविंग इंसान आप कर रहा है आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी एक लाइफ स्टाइल को कंफर्टेबल रखते हुए कर रहा है मतलब आप स्टिंजीनेस से दूर रहें आप एक मिडिल पाथ इख्तियार करें स्टिंजीनेस से दूर रहें और फिर वो जो थोड़ी बहुत आप सेविंग कर रहे हो वो आपके फ्यूचर के लिए काम आएगी आप ये कह रहे हो कि मतलब हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करते हुए आपको साइड बाय साइड आपको एक साइड इनकम नहीं तो फिर आप क्या करेंगे आप दूसरे के सामने आपको हाथ फैलाना पड़ेगा और बुरे वक्त में कोई भी जल्दी काम नहीं आता मान लिया आपके 50 दोस्तों का मुश्किल से 1-2 ऐसे होंगे जो आपके सही हमदर्द होंगे और वो असली चेहरे उसी वक्त दिखते हैं और जिंदगी वो वक्त सीखने का होता है और उस वक्त में आप ये समझ लीजिए जो सेविंग जो थी आपकी वो आपको उस जिल्लत से बचाती है इस वजह से आप सेव कर रहे हैं। अब दवाइयों के भी पैसे खुदा ना खास्ता बच्चे छोड़ के चले जाएं अपने

0: जो बच्चे हैं वो अपने मियां बीवी मतलब अपने बीवी बच्चे में मस्त हैं या अपने स्पाउस के साथ मस्त हैं और बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, अगर बूढ़े माँ बाप के पास सेविंग्स नहीं है वो कैसे सस्टेन करेंगे? अगर कोई अबैंडन कर रहा है, इंडिया में कितने केसेस हो रहे हैं, इवन जो बड़े बड़े रईस घराने में, सबसे बड़ा केस तो मतलब एक बहुत बड़े टाइकून है जो जिन्होंने क्या किया कि अपनी जिंदगी रहते हुए उन्होंने सारी चीजें अपने बच्चे के नाम रख दी, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और फाइनली क्या हुआ कि उस बेटे ने ही अपने बाप को घर से निकाल दिया और वो बाप जो है एक एक पैसे का मोहताज है। तो वो आप ये सारी चीजें जो है, जो हमारा दीन है वो एक प्रैक्टिकल दीन है, और दीन हमारा जो है मतलब गमी का दीन नहीं है, हमारा दीन जो है फर्श वाला है, खुशियों वाला है, और वो सारी चीज़ों को जो है एक बैलेंस तरीके से, एक बैलेंस जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाता है, और वो ये सारी चीज़ें हमारे नबी दिखा के गए हैं।
1: बहुत अच्छी बात की, बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी दिया आपने, इट्स रियली टचिंग।
2: क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, आरजे नाजिया आपको लेकर जाएंगी एक नए सफर पे, जहां आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म। सुनिए शो इन्वेस्ट कतर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की।
1: आज हमने बजटिंग की बात की, और इनिशियली आपने बताया कि बजटिंग के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और जब आप बजटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेविंग्स भी करते हो, दे यू बी एबल टू सेव सम मनी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सेविंग के बाद एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू आता है इन्वेस्टमेंट्स, इसको किस तरह से जो है वो डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है?
0: देखिए, इन्वेस्टमेंट इंसान अगर करे तो वो रियल इन्वेस्टमेंट पे जो है फोकस करे। देखिए, हमारा बैकग्राउंड फाइनेंस का है, तो हमने बहुत ही करीब से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखी है, और मतलब वो हमारा मतलब एक पैशन था शुरुआती करियर में। बट उससे एक चीज मैंने सीखी है कि आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं इन्वेस्टमेंट करें।
1: ओके,
0: स्पेशली फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इंट्राडे में नहीं जाएं।
1: अच्छा,
0: आप उन शेयर्स को एक वक्त के लिए खरीद लें और खरीद के रखें और उनके ऊपर कैपिटल गेन कमाने की कोशिश करें। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड हो गया। इंट्राडे ट्रेडिंग जो बेसिकली एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग होती है, उस पे जनरली लोग उसमें बहुत ही मतलब वो एडिक्टिव होती है। सडनली लोगों को जो है एक छोटा सा प्रॉफिट होता है एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड सडनली दे एंड अप लूजिंग देयर मनी। ठीक है, तो इवन चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दिस, यू नो, हाईली कॉम्प्लिकेटेड फील्ड्स, फाइनेंशियल फील्ड। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो उसमें, फाइनेंस फील्ड में, तो अननेसेसरी उसमें नहीं जाएं। स्पेशली ये एडवाइस 60 प्लस लोगों के लिए है, जो लोगों के पास इफ़राद पैसे होते हैं और वो उनके पास वक्त भी होता है, फिर वो चले जाते हैं शेयर मार्केट में, बैठते हैं ब्रोकर्स के पास बैठते हैं और अपनी कमाई को तहस नहस कर देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप रियल इन्वेस्टमेंट करें, आप लैंड लें, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, आप बिल्डिंग्स बनाएं, आप लोगों के साथ जो अच्छे बिजनेस चल रहे हैं आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ में आप उसमें शिरकत करें, पार्टनरशिप करें, तो आप चीज़ों को रियल रखें। ना इधर ये कि आप एक बबल के पीछे जा रहे हो, तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मतलब जो जिसकी इंटेंसिक वैल्यू हो आप उसमें इन्वेस्ट करें, इन चीज़ों की इंटेंसिक वैल्यू हो आप उसमें। गोल्ड एक ऐसी चीज है,
1: गोल्ड बॉन्ड्स और यू आर सेइंग जस्ट
0: गोल्ड, गोल्ड नो
1: प्रेशियस।
0: आप वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आप गोल्ड बॉन्ड्स में जा रहे हो या आप मान लो प्रेशियस मेटल्स में वो कर रहे हो, उसके लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए। यू नीड टू डू सम कोर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज डन।
1: Somebody else can also do on our behalf, like अपना portfolio दे दिया और वो हम
0: करें। Yes, जी बिल्कुल सही करेंगे आप। देखिए बस, but देखिए यहाँ पे आपको जो for example fund managers होते हैं, जो HNI high net worth individuals जिसको इनको बोलते हैं, और specially western countries में बहुत ही organized है, बहुत ही organized है, wherein you know people have, there are huge clients, you know they have taken money, you know these are rich people. They have their fund managers, और ये बड़ी बड़ी बैंकों के साथ जो है ये उनको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक रॉक ग्रुप है, दुनिया का जाना माना नाम है, उसमें कितने HNIs का फंड्स उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन उसके लिए इंडिया में एज ए लेमैन उनके लिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स उन्हीं के लिए होती हैं

0: जिन लोगों को फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज नहीं है, बट अगेन दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो मैं जनरली एक नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बंदे को SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में मैं इन्वेस्ट करने के लिए ये कहूँगा कि अपना वो होमवर्क करे तभी करे,
1: अदरवाइज ना करे.
0: नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे. सबसे बढ़िया है, मैं हमेशा सबसे हमेशा ये कहता हूँ कि भाई साहब आप जमीन खरीदो, आप फ्लैट्स लो, आप बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनवाओ उस पर, आप फार्म हाउस लो, वहाँ पे चीजें स्टार्ट करो, चीजें रियल करो, रखो, आप रियल रखो चीजें आपके सामने, वो दिखे. तो मेरा मतलब मेरी जो अप्रोच है हमेशा मतलब एक क्लासिकल थिंकिंग ही की तरफ है, बजाय ये कि मॉडर्न अप्रोच रहे. जी
1: अच्छा, आपने शेयर मार्केट्स की तो बात की, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सेफ है?
0: म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और जनरली जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं उनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं. तो वो लोग जो है कुछ हद तक इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिनके बारे में मशहूर होता है कि हाँ भाई ये रिटर्न दे रही हैं. आपको उसका अपना होमवर्क करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन लाइक हलाल कंप्लायंट शरिया कंप्लायंट स्कीम, वेर इन दोज स्कीम्स आर इन्वेस्टिंग ओनली इन शेयर्स विच आर यू नो हलाल कंप्लायंट, सो आप उनके अंदर इन्वेस्ट करें तो आपको हर चीज़ देखना, क्योंकि देखिए हम लोगों के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं. जो लोग इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ों को मतलब मानते हैं कि मतलब वो चीज़ें जायज़ नहीं हैं, तो उनको ये सारी चीज़ों पर जो है एक दकीक नज़र रखना पड़ेगी तभी वो इन्वेस्ट करें. नहीं तो अगर आपके पास आपको इंटरेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता तो भाई आपके लिए प्रैग्मेटिक अप्रोच यही है कि आप FD में डाल लो. आप रेट ऑफ रिटर्न देखो ना कि FD पे कितना मिल रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट पे कितना मिल रहा है, या आपको म्यूचुअल फंड कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, मान लो FD आपको 7% दे रही है. आप वो आप अपनी मार्केट स्टडी करके देखो तब जाके आप करो. बहुत सारे लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल जिनके लिए कोई इनहिबिशन नहीं है इंटरेस्ट को लेकर, वो FD डालते हैं. उनके घर के खर्चे FD के इंटरेस्ट से चल रहे हैं, उनके पास इतने अफराद पैसे पड़े हुए हैं कि वो FD का इंटरेस्ट आ रहा है उसी से घर चल रहा है. ठीक है, तो मैं उस चीज़ को सजेस्ट नहीं करता हूँ. मैं सजेस्ट हमेशा यही करता हूँ, इसीलिए मेरे पास जो बेटर ऑप्शन वही है, आप रियल एसेट्स में यू इन्वेस्ट इन रियल एसेट्स.
1: बहुत ही अच्छी बात. अच्छा, हम बात लगातार कर रहे हैं बजटिंग की, हमने फीमेल्स को भी इसमें इंक्लूड किया,
0: बहुत बड़ा रोल है,
1: जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. नाउ बच्चों को इनिशियली राइट फ्रॉम द बिगनिंग किस तरह से टिप्स देना स्टार्ट करना चाहिए, फैमिली में उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए जिससे वो मोर रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड्स बजटिंग एंड देन लेटर ऑन सेविंग्स.
0: देखिए आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोगों के माँ बाप जो हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज की हम जिद करते थे तो हम लोगों की पिटाई हो जाती थी और वो चीज़ नहीं मिलती थी. हम लोगों के साथ जो हमारा जनरेशन, हमारे नीचे जो बच्चे आ रहे हैं, वो हम लोगों का क्या है कि हम लोग एक बहुत ही उनके साथ एक हल्का हाथ रखते हैं और वो बच्चों को पैम्पर करते हैं कि भाई बेटा तुमको चिप्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. मतलब दिस हैज़ बिकम नॉर्मल फॉर देम. उस नॉर्मल को हमें हटाना है कि नहीं बेटा ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मतलब ये रोज़मर्रा की इस्तेमाल के लिए नहीं है बेटा. जब आपको इंजॉय करना है, यू नीड टू हैव अ हैप्पी टाइम, समटाइम्स यू कैन हैव दैट गुड टाइम. तो वो चीज़ें हमको उनको समझाना अभी से, कि मतलब ये नहीं कि हम उनको सिल्वर स्पून दे रहे हैं, नहीं, वो बच्चों की तरबियत करना पड़ती है. ये नहीं कि आप बच्चों को सिर्फ पाल लें, उनकी तरबियत कीजिए आप
1: बकाया.
0: जी
1: बहुत ही अच्छी बात. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम एंड शेयरिंग सच अमेजिंग इनसाइट्स एंड इन्फॉर्मेशन. आप इस टॉपिक को किस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगे?
0: बस हम कंक्लूड इसी तरह से कहेंगे कि मतलब ये फजूल खर्ची से बचें और बुखल से भी बचें. ठीक है, एक दरमियानी रास्ता रखें और बहुत ज़्यादा अपनी इज्जत अपने हाथ, बहुत ज़्यादा लोगों में इतना ज़्यादा भी अपनी जो एंट्रीज़ है ना, एंट्रीज़ की थोड़ी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करें तो आपकी इज्जत भी बनी रहेगी, आपके पैसे भी बचेंगे, सब कुछ सही चलेगा. तो प्लानिंग करके चलें हर चीज़, मतलब जो रिस्क ले रहे हैं कैलकुलेटेड रिस्क लें.
1: कैलकुलेटेड रिस्क में बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात. और इसी खूबसूरत बात के साथ दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए टॉपिक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
2: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107. Time check.
1: जी सलाम वालेकुम। टाइम फॉर द टाइम चेक एफएम 107 की स्टूडियो की घड़ी में 4:01 और आपका अपना फेवरेट शो।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: भाई जान जिस शो में अपनी मर्जी की चीजें हो जाए वो फेवरेट हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम तो ऐसे ही काम करते हैं ना, हम यानी कि हम सब, कि अगर घर अपने मर्जी से चल जाए तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। लेकिन घर तो चलता नहीं अपने मर्जी से, है ना, कोई बात नहीं। चलो भाई, अगर ऑफिस में हम अपने मर्जी से आए या जाए, अगर ये हो जाए तो दिल खुश हो जाए, ये भी नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं। चलो अच्छा, ऑफिस में जब हम आ रहे हैं तो काम तो अपनी मर्जी से कर पाए, नहीं ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी बॉस की सुननी पड़ती भाई, कोई बात नहीं ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन नींद तो एक ऐसी चीज है भाई, जब आती है तो आती है, लेकिन अपने मर्जी की तो नींद भी नहीं है भाई साहब। सुबह उठना है ऑफिस के लिए तो उठना है, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, संडे को नहीं है मन जाने का, जाना है तो जाना है, इसमें अपनी मर्जी नहीं है, सो नहीं सकते देर तक। और नींद भी एक वक्त को अपना साथ छोड़ जाती है, 11 बजे लेटे 12 बजे नींद आ जाओ भाई, 1 बजे 2 बजे नहीं आ रही है, मर्जी नहीं चल रही ना। लेकिन जिसमें अगर मर्जी चल जाए तो वो तो फेवरेट ही हुआ भाई। हमारा एफएम 107 का ये शो जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो, अपनी मर्जी के गाने चलते हैं, जो कहा जाता है वो प्ले हो जाता है, इससे बढ़कर क्या चाहिए। एक जगह तो अपनी मर्जी पूरी हो रही है, इसलिए ये है आपका फेवरेट शो। हल्के हाथ से सारी डिटेल्स बता दी है, लाइफ को ऊपर से लेकर नीचे तक अपने ने ना तराजू में तौल दिया है। फिलहाल 4:03 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, यह आपकी मर्जी का शो इसलिए क्योंकि जो आप गाना कहते हैं वो गाना यहाँ पर प्ले किया जाता है। लेकिन हर रोज एक थीम होती है, उस थीम के बेसिस पे आप अपने गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा जरूरी है कि आप इस नंबर को याद रखें, इस नंबर का नंबर है 666-22107, 666-22107। इस नंबर को व्हाट्सएप पर लिखिए, किसी भी दोस्त के नंबर पे आप जाइए, वहां पर ये नंबर लिख दीजिए, ऑटोमेटिक नंबर का लिंक बन के आ जाएगा, उस पर क्लिक करिए, ये मैसेज खुलता है, उस पर मैसेज कर दीजिए, है ना। किसी को होता है यार सेव करना पड़ेगा, फिर व्हाट्सएप पे जाओ ढूंढो, ना नहीं करना पड़ेगा, 666-22107 किसी दोस्त के व्हाट्सएप पर लिख दो और फिर सेंड कर दो, नंबर का लिंक बन जाएगा, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट आप यहां पर होंगे हमारे स्टूडियो में। ठीक है, तैयार है कि नहीं अपने मर्जी के गाने बताने के लिए? लेकिन थीम क्या है फजील, ये तो बताओ।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, आज एक ऐसे लेजेंडरी शख्स का बर्थडे है जिस शख्स के गाने आपने ना सुने हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप इसके फैन ना हो ही नहीं सकता। कभी ये बंदा कंट्रोवर्सी में नहीं आया, मैं जब तक जिंदा हूं मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सुना है पिछले 20 साल 30 साल में या 40 साल में कि इनके साथ कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई हो। इनका नाम है कृष्ण कुमार कन्नत, केके के नाम से जाने जाते हैं, 23 अगस्त 1968 की इनकी पैदाइश। और ये केके जो है वन ऑफ द मोस्ट जबरदस्त कह ले प्लेबैक सिंगर, प्रोलिफिक प्लेबैक सिंगर रहे हैं इंडिया के, प्राइमरली अगर देखा जाए तो हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए हैं, कई अवार्ड्स मिले हैं, 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशन हैं। लेकिन इनके जो गाने रहे हैं वो इस लाजवाब तरह के गाने रहे हैं कि अवार्ड उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन इनके फैंस ने हमेशा इनके साथ जस्टिफाई किया है, इनके साथ रहे, इनके साथ खड़े रहे। हम दिल दे चुके सनम के गाने इन्होंने गाए हैं, अगर हम गानों के बारे में बात करें तो इतने हिट दिए, दिल चाहता है, ओ हम दम, सोनी ओरे, साथिया, डोला रे डोला, देवदास का है ना, फिर उसके बाद अगर आपको याद हो 10 बहाने गाना इन्होंने गाया है, 2005 की जो मूवी थी, क्या मुझे प्यार है, वो लम्हे, फिर उसके बाद गैंगस्टर, का वो गाना तू ही मेरी शब है, कौन भुला सकता है इस गाने को यार। आज भी लोग किसी को अगर भेजना होता, किसी को मनाना होता है ना, तो ये ही ऑडियो भेजते हैं, तू ही मेरी शब है सुबह है। एंड देन खुदा जाने बचना है हसीनों से, जन्नत का ज़रा सा वो गाना, ज़रा सा नहीं है भाई, हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। तो ऐसे लाजवाब उन्होंने हिट दिए हैं कि आज भी हम उनको सुनते हैं। लेकिन मई का 31 चल रहा था 2022 में, तो के एक कॉन्सर्ट में थे, जब कॉन्सर्ट से वापस लौटे तो हार्ट अटैक हुआ उनको और उनकी मौत हो गई, उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके गाने हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में। तो आज उनके इस बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए हम, या कहें उनकी लाइफ को, कभी भी ना अपने लोग किसी के जाने पर या इतने बड़े सिंगर के जाने पर दुख नहीं मनाते, लेकिन उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, उनके गाने को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज उन्हीं के गाने हम प्ले करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और नंबर है 666-22107, जहां पर आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैसेज की तरफ बढ़ते हैं धीरे से, और ये मैसेज सबसे पहले आया है, अस्सलाम वालेकुम सर, अब लगा दीजिए कुछ सैड सॉन्ग हमारी मर्जी का। सैड सॉन्ग आप देखिए, मैं तो आपकी मर्जी का लगा दूं, वैसे ही आप इतने सैड चल रहे हैं, और सैड क्यों होना, इसलिए सैड सॉन्ग अलाउ ही नहीं है। खैर, ये कौन है अरबाज, अरबाज पता नहीं क्यों सैड सॉन्ग सुनना चाहते हैं। उसके अलावा मुमताज़ भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, लगता है फजील भाई 2 दिन नहीं 2 महीने के बाद आए। फजील आप सोचो जब हम लोग का क्या हाल होता है, क्या हाल होता होगा भाई, 2 महीना 2 दिन। अरे यार ये सब बातें मत किया करो, दिल में दुख थोड़ा सा बढ़ता जाता है। बाकी फजील भाई ये सॉन्ग लगा दो तेरे चेहरे से, यार अभी जो बात कर रहे हैं थीम के बारे में, इतना हमने ठांस ठूस के बात करी, इतनी डिटेल में बात करी, उसके बाद भी मुझसे वो गाना कह रहे हो जो असल में केके का है नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, है तू ये कौन सा गाना है भाई, थोड़ा डिटेल में, है तू, हाँ तू है एक गाना है, लेकिन इन्होंने गाया कि नहीं ये देखना पड़ेगा। बाकी वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है, प्लीज़ प्ले बीते लम्हे, अहमद सईम ने कहा है, यूसुफ भाई ने कहा है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, खुदा जाने मिट गया, बचना है हसीनों से। मैं देखता हूँ अगर ये अवेलेबल होता है कि नहीं। फिर अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, गुड मॉर्निंग फजील भाई, हमारी तरफ से FM 107 वेलकम, क्या मुझे प्यार है, ये तो भाई आप ही बता सकते हैं। खादिम भाई की रिक्वेस्ट पर ये गाना भी अपन ढूंढ लेंगे कुछ देर में। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहला गाना जो है हीरो भाई की रिक्वेस्ट पर अपन ढूंढ लेते हैं, हाँ तू है हाँ तू, ये गाना बहुत अच्छा था यार, के ने गाया है, जन्नत का ये ट्रैक, और हमें मिल गया है ये ट्रैक। ठीक है, तो 3 बैक टू बैक गाने आएंगे, सबसे पहले हीरो भाई की रिक्वेस्ट में हाँ तू है बाय के, के की थीम है दोस्तों, इसी पर हम स्टिक रहेंगे, और फिर बीते लम्हे अहमद सैम, सैम सैम है या क्या नाम है पता नहीं भाई, SIAM लिखा हुआ है, सैम ही पढ़ लूंगा मैं। और फिर हुसैन भाई की रिक्वेस्ट है, और उस बीच अगर हमें खुदा जाने वो गाना मिल जाता है तो हम ये गाना प्ले करेंगे। ठीक है, ये 3 बैक टू बैक गाने सुनते हैं FM 107 पे, दिल से दैसी।

सिर्फ यही करने में मजा आता है। यार केके की बात ही अलग थी यार, क्या मुझे प्यार है। ये गाना सुना आपने FM 107 पे, ये शो द रिक्वेस्ट शो। इस्तकबाल एक बार फिर से आप सभी का, 4:24 और बाकी के 3 गाने लाजवाब हमारे पास तैयार रखे। और केके के गाने ऐसे हैं कि भाई उनकी कॉम्पोजिशन, उनका म्यूजिक सब बिल्कुल अलग है और उनका गाने का तरीका लेजेंडरी है। बाकी हमारे पास और रिक्वेस्ट जो है वो आ चुकी है और तैयार ये गाने हैं। सबसे पहले गाना मैं प्ले करने वाला हूँ जरा सा, केके ने गाया है ये गाना और सच में ये तो जन्नत मूवी का ट्रैक ना बड़ा ही गजब का है। जिहाद इनका नाम है या जाहिद है पता नहीं, लेकिन यही लिखा हुआ है। जिहाद अजीजिया से सुन रहा हूँ, अच्छा सॉरी अजीजिया से सुन रहे हैं। ज़रा सा ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं। सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, फिर उसके बाद सलाम भाई 10 बहाने ये गाना लगा दो। ठीक है, सेकंड सॉन्ग आएगा ताहिर खान की रिक्वेस्ट पे, 10 बहाने। केके और शान ने गाया है, इन दोनों ने इस गाने में मचाया है धूम। और फिर हर्टलेस मूवी का सोनिए, ये गजब का गाना है बिल्कुल, ये भी तैयार रखा है। और उसके अलावा ज़रा सा एक और भाई थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, इनका नाम है शेराज अंजाम, इन्होंने रिक्वेस्ट किया। और फिर एक और भाई थे, किधर गए ले हैं वो, इनका नाम है अबू सिदरा। ओके, अबू सिदरा ने भी रिक्वेस्ट किया है ज़रा सा। सिंगर हैं केके, कंपोज़र हैं प्रीतम। वेल, हर बार मैं चाहता हूँ कि कंपोज़र के बारे में बात हो, बाकी आर्टिस्ट के बारे में भी बात होती रहे, लेकिन हमारे पास वक्त जो है वो बड़ा मुख्तसर सा होता है। फिर ये जो 3 गाने हैं, ये 3 गाने तो आ रहे हैं, ज़रा सा यार 3 लोग थे रिक्वेस्ट करने वाले, हाँ मैंने 3ों का नाम ले लिया। तो सबसे पहले ज़रा सा ये गाना सुनते हैं, लेकिन ये ज़रा सा नहीं है, ये अच्छा खासा है और ज़बरदस्त है। शेराज अंजाम जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट किया अबू सिदरा ने और जिहाद भाई ने, तो ये 3 गाने।

और फिर ताहिर भाई का गाना आएगा दस बहाने, एंड देन सोनिए बाय इलियास हुसैन, यानी कि इलियास हुसैन की रिक्वेस्ट पे। इन तीन गानों को एंजॉय करते हैं, मजा आ जाएगा भाई, खुश ना हो जाए। आए हाय क्या क्या याद आने वाला है आज भाई। ये गाना सुनने के बाद आपको वो सन याद आ जाएगा। अरे वही वाला वक्त जिस वक्त आप नई नौकरी शुरू कर रहे थे या फिर कोचिंग में थे। आमतौर पे मुझे लगता है लोग कोचिंग में थे जब ये गाना आया है। 2008 में आई मूवी जन्नत का ये ट्रैक है, जरा सा दिल से देसी।

0: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
0: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देश।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: जी FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है हाल चाल, उम्मीद है बेहतरीन होंगे। और केके का ये गाना सुनने के बाद दिल और ज्यादा खुश हो जाता है। असल में मौसम अच्छे होने की शुरुआत यहीं से होती है, केके के गानों से होती है। जब भी मौसम जो है अंगड़ाई लेता है, मौसम थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा बारिश का मौसम होता है, तो केके के गाने छा जाते हैं और बड़ा ही लाजवाब लगता है। और वैसे भी उम्मीद है कतर में कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला बारिश या मौसम और अच्छा होगा। वैसे आज देखा जाए बादल कुछ तो दिख ही रहे हैं, हमारे लिए बादल दिख जाना ही खुशी है। और फिर केके के गाने, ये तो फिर दिल को और भी सुकून देते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहचान कौन का गेम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टूडियो की वीडियो में 4:45 हो चुके हैं। 3 गाने जो केके के मैंने यहाँ पर तैयार रखे हैं और आज बहुत ही ज्यादा आसान उम्मीदन होने वाला है। कई लोगों ने हो सकता गाना ना सुना हो, लेकिन जाते जाते आज मैं एक गाना प्ले जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि केके का कितना भी गाना प्ले कर दो यार कमी है। जैसे आतिफ असलम के गाने हैं, अरिजीत के गाने हैं, सोनू निगम के या शान के गाने हैं, वैसे ही जैसे उदित नारायण या फिर अलका याग्निक के गाने हैं या लता जी के गाने हैं, कम पढ़ ही जाते हैं। केके इस तरह के जबरदस्त स्टार रहे हैं। तो जाते जाते आज मैं एक और गाना प्ले करके जाऊंगा। अब बाकी वो आप डिसाइड कर लेना, मैं 3-4 गाना बता देता हूँ कौन कौन सा है जो मैं प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो है आंखों में तेरी, फिर एक है तू ही मेरी शब है, एंड देन क्या मुझे प्यार है, ये तो हो चुका है, तड़प तड़प के, ये भी अच्छा गाना है, बट मैं इसके यो साइड थोड़ा कम हूँ। उसके अलावा एक और गाना है, रहना है तेरे दिल का गाना, ये गाना है सच कह रहा है दीवाना, है ना, ये भी बहुत ही प्यारा गाना है। उस पल का एक एल्बम है यारो, उसमें एक गाना है जो दोस्ती पर बना है और सबसे शानदार और मशहूर गानों में से रहा है यारो। तो इन चारों में से यारो है तड़प तड़प, रहन दो, तड़प तड़प हटा देते हैं, यारो सच कह रहा है ना, क्या मुझे प्यार है, ये तो प्ले हो गया, तू ही मेरी शब है, और उसके अलावा आंखों में तेरी, इनमें से आप कह देंगे तो अपन यहाँ पर प्ले कर देंगे जाते जाते। लेकिन फिलहाल अभी हम पहचान कौन गेम की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर लिरिक्स जो है बीच से मैंने काट कर तैयार कर ली है। इसको सुनिए और फिर मुझे 666-22-107 पे बताइए कि गाने का नाम क्या है, या फिर हुक लाइन भी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो गाना आ रहा है पहचान कौन का, वो है ये।

हाँ जी बताइए ये गाने का नाम. थोड़ा मैंने टफ करने की कोशिश करी है, लेट्स सी कि क्या हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं. बाकी अब आप के हवाले वतन साथियों. 666-22107 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप बता सकते हैं. गाने का नाम आपको लिख कर देना है. सबसे पहले जो देखा जाए अगर मैसेज आया है तो, अच्छा ये तो वो वाले मैसेज आ रहा है कि कौन सा गाना प्ले करना है. सलाम है श्याम भाई का. और फिर एक भाई ने कहा तड़प तड़प, यार तड़प तड़प कैंसिल कर दिया था मकसूद साहब, सॉरी. फिर तू ही मेरी सब है ये प्ले कर देना. हाँ ठीक है भाई, एक तो आप हैं और एक और भाई थे, उन्होंने कहा था तू ही मेरी सब प्ले कर देना. फलक ने जो जवाब दिया है वो एग्जैक्ट गाने का नाम नहीं है और ना ही हुक है, तो प्लीज़ थोड़ा और डिटेल के साथ आइए तो फिर तो ठीक है. इलियास हुसैन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा. एंड देन फैयाज़ भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. एक भाई हैं, इनका नाम है शिराज अंजाम, इन्होंने भी सही अंजाम दे दिया गाने को सुनने के बाद. इतना हिट सॉन्ग है ये और अभी फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रही. यूसुफ भाई क्या हो गया, मुझे लग रहा है आपको मेमोरी अपनी रीसेट करनी पड़ेगी. अहमद मुल्ला भाई ने कहा है आपकी कशिश. नहीं भाई,

बहुत फेमस गाना है भाई, ये सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार इस गाने के लिरिक्स मैंने ध्यान से क्यों नहीं सुने, अगर सुना होता तो सही जवाब तो दे पाता। तो आपको बताना है, माज ने भी रिक्वेस्ट की, अगेन लिखा है, बस ये देखो ठीक है। फिर उसके बाद एक और मैसेज है, रेयर फ्लावर, ओ माय गॉड, जिला भाई यासीन भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर उसके बाद एक और मैसेज है, सलाम का, वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है कि सही जवाब लिखेंगे सुभाष कुमार। फिर उसके बाद माज ने लिखा है कयामत, फलक भाई ने बिल्कुल सही, अच्छा ये दूसरे वाले फलक हैं लेकिन कयामत कयामत गाना नहीं है। सुभाष कुमार ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, एंड देन लगन लगी जोगिया ने लिखा है, अरे नहीं यार, जो मुझे लगता है आज होना तो नहीं चाहिए था वैसे, लेकिन ये गाना बहुत फेमस है, मुझे लगा कि शायद बीच के लिरिक्स आपको याद होंगे। वेल, ये गाना है वो जो लोगों ने, यानी कि 70% लोगों ने सही जवाब दिया है, गाने का नाम दिलनशी।

भाईजान इस गाने पर तो झूम जाना लिखा ही है। घर जाने के बाद अगर इस गाने को नहीं सुना तो आपने केके को मिस किया यार, केके के गाने को सही से सुना नहीं है। इस बार पूरी लिरिक्स सुनना, झूम जाओगे। वेल, अगला गाना आ रहा है और अगले गाने को पहचानो और गाने का नाम बताओ।

ये गाने का नाम बताओ 666-22107 पे, 666-22107 पे। और अनीश भाई ने पहला गाना सुनने के बाद कहा था ताना तुम। ये भी मैं भी बहुत ज़्यादा करता था ना, जब ये नया नया गाना आया था दिलनशी, ताना तुम। ये वो गाना नहीं है। वेल बाकी आपके जवाब का इंतज़ार। सबसे पहले जवाब दिया है और पहली रैंक हासिल कर ली है इस गाने के लिए इलियास हुसैन ने। फिर उसके बाद जो दूसरा सही जवाब आया यूसुफ भाई का जाए, बिल्कुल सही, यूसुफ भाई ने मेमोरी अपनी रीसेट कर ली है। एंड देन जीशान साहब ने पहला गाना बिल्कुल सही बताया, दूसरा गाना भी सही बताया है। फलक एस आर के ने कहा है भाई पुराने चावल हम भी हैं। अनीश भाई ने दूसरा गाना बिल्कुल सही जाना है। यार गाने का नाम कुछ और है वैसे, माज भाई ठीक है आप करीब में हैं मैं ये कह सकता हूँ। फिर फलक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये फलक एस आर के वाले नहीं है, ये दूसरे वाले फलक है। यासीन ने सही जवाब दिया है, हिशाम ने सही जवाब दिया है। फिर उसके बाद एक और ये सही जवाब है जिसका नाम है आसिफ आलम, ओके आसिफ आलम ने भी सही जवाब दिया है। देयर इज़ वन मोर, इनका नाम क्या है, जुबैर ने सही जवाब दिया है, सुभाष ने सही जवाब दिया। अच्छा ये वाला गाना तो आन था मुझे लग रहा है, हैदर अली ने भी सही जवाब दिया, ये तो बहुत ही आन था। पर उसके बाद ये कौन है, मकसूद ने भी सही जवाब दिया है। नहीं मकसूद का गलत है। मकसूद भाई मैं थोड़ा फ्लू में किसी और का मैसेज आपके नाम पे पड़ गया। अहमद मुल्ला ने सही जवाब दिया है और फैजल ने कहा है झूम बराबर। वेल इस गाने को बताने से पहले ही हिंट दे दिया था, गाने का नाम है झूम बराबर झूम।

अब तीसरा गाना आ रहा है और यारो सच में बताना, अगर ये गाना आप पहचान रहे हो तो 666227 पे बताना कि आपने इन गानों को, यानी कि ये तीसरा जो गाना है, इसे लूप में कभी सुना है कि नहीं। सच में ये जो गाना है ये भी जबरदस्त और बहुत करीब है दोस्तों के।

बस करो बस करो, इसके आगे मत पढ़ना भाई के, बहुत ही लाजवाब ये गाना। और आज की पहली रैंकिंग हमारे पास आ गई है, जिनका नाम है मोहम्मद फैयाज। इन्होंने पहला गाना बिल्कुल सही पहचाना, दूसरा गाना बिल्कुल सही पहचाना, और अभी तीसरा गाना भी बिल्कुल सही पहचान लिया है। फैयाज के बाद जो सही जवाब या सेकंड रैंकिंग है वो है फलक एसआरके की, एंड देन इलियास जो पहले गाने में बहुत तेजी से आए, फिर दूसरे में, और

अब तीसरे में, यानी कि तीसरी रैंकिंग भी हमारे पास आ गई है इलियास भाई के नाम की। तो तीन रैंकिंग तो हमारे पास है, बाकी हैशाम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दो गानों का सही जवाब है, फिर दो गानों का सही जवाब यूसुफ भाई ने दिया है। बहुत ही उम्दा एक मैसेज है यासीन भाई का, कहते हैं ये नहीं पता, कोई नहीं, वैसे भी आपको मैं प्ले करके सुनाई दूंगा। अनीश भाई ने बिल्कुल सही जवाब है, मैं आखिरी वाला लाइन पढ़ गया आपकी आखिरी वाली लाइन। अहमद मुल्ला ने क्या बात है, माज भाई आखिरी में आ ही गए और कहा कि हाँ ठीक है मैं भी तो हूँ थोड़ा मोड़ा सही जवाब है। फिर उसके बाद सुभाष कुमार ने भी तीन के सही गाने बताए हैं और मकसूद साहब ने भी। वेल, जिनको नहीं पता एक बार फिर से गौर से सुनो, मेरे लफ्जों में भी इसका हिंट शुरुआत से ही आपको मिल रहा है। इस गाने का नाम आपको बताना है 666-2107 पे।

दोस्त। और यारो सच बताना कि इन गानों को या इस गाने को आपने लूप पे सुना है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों के बीच ये गाना बड़ा फेमस था। गाने का नाम है

0: वादे के मुताबिक जाने से पहले तो मैं तू ही मेरी शब है प्ले करने वाला हूँ, लेकिन जो दोस्त मेरे बाहर से सुन रहे हैं, सच में मेरा दिल है आपके लिए ये गाना प्ले करने का।
1: हसीन है ये ना हो तो क्या फिर
0: लेकिन कोड़े वाले भाई साहब बाहर बैठे हैं, मेरा वादा मैं पूरा करके ही रहूंगा के की आवाज में। और आप लोगों की रिक्वेस्ट में जो गाना आने वाला है वो है तू ही मेरी शब है तू ही सुबह। FM 107 पे इस गाने को एंजॉय करें और उम्मीद है कि हमारी और आपकी दोस्ती कल शाम 4 बजे फिर से एक बार जवान होगी। तब तक सुनते रहें FM 107, एक नई थीम के साथ मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे आपके अपने मर्जी के गानों के साथ। सुन रहे FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107

चैनल चेंज करेगा, चैनल चेंज करेगा, करा हूं अभी दो मिनट में। लड़ाई बाज गई, कह रहा चैनल चेंज करो, मजे नहीं आ, मजे दिलाऊं अभी मैं, पांच बज रहे ना, चैनल चेंज करेगा। हाँ भाई आपके क्या हाल है, बढ़िया है, इसके तरह नहीं करना बता रहा हूं मैं एक मिनट यार, मैं शो कर लूं प्लीज प्लीज।

सब आफ्टर वीकेंड बढ़िया चल है, गर्मी के अलावा तो बढ़िया भाई। आप बताइए क्या हाल चाल है। एक हमारा भाई है जी, इनका नाम है माज भाई। माज भाई टक रहा है, गुड मॉर्निंग मेरा भाई। यही तो स्टाइल है भाई का, हर काम उल्टा करना माज भाई, ठीक है। बाकी सीधे काम तो मैंने एकदम सीधे किए, बता नहीं सकता बस मैं। माज भाई अकेले कले कले गाड़ी में शर्मा रहे। एक मैसेज है फयाज भाई का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कबीर भाई, वेलकम बैक, मिस यू मेरा भाई, बहुत सारा प्यार क्या। और एक मैसेज है भाई ढोल बजा देना भाई, बजाते हैं भी, रुक जाओ, ठंड रखो इक्रम भाई, बहुत सारा प्यार। एक भाई है आसिफ भाई, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या शॉट है पब्लिक, हाजिरी लग गई है बढ़िया भाई। और लिखते हैं हमारी इतनी हिम्मत कहाँ आसिफ भाई, बहुत सारा प्यार करूँ मैं आपसे। शाम भाई वालेकुम अस्सलाम। और एक भाई लिखते हैं सलाम कैब्स ब्रो, ये मेरा भाई कैब्स ब्रो। मैं मुझे दो निकने मिले, कैबी कब्बू नितिन, एक्चुअली में कब्बू कैबी आज मैंने कैब्स ही कैब्स, वो सब मेरा भाई बहुत सारा प्यार किया। और यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, यूसुफ भाई अपनी ख़राब आवाज़ से भी आज सुबह कॉन्टेस्ट जीत गए। आज गलती से मैं सुबह का शो सुन रहा था, उड़ता नहीं हूँ वरना मैं, आज उठ गया मैंने सुना भाई यूसुफ भाई सारा जवाब दे, ऐसी आवाज़ में जवाब दे के जीत भी गए भाई। अलग ही चला यूसुफ भाई का। और इनके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, ये कौन मैसेज किया, हीरो भाई, हीरो भाई को बहुत सारा भाई, हीरो भाई क्या चल रहा है पब्लिक बांग्लादेश में, क्या हाल है मेरे भाई के। मोहम्मद भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक और मैसेज है चॉकलेट भाई, ऑल्सो चॉकलेट भाई कह रहे थे, चॉकलेट भाई कहते हैं पता नहीं क्यों। इकरम भाई थैंक यू भाई, आई होप ये कॉम्प्लीमेंट ही है। और एक मैसेज है, ये आपका नाम है रिबक नाम है आपका, मैं समझा नहीं, अच्छा उल्टा लिखा है मेरा नाम, ओ सॉरी आई डिडंट, दिमाग थोड़ा लेट चला मेरा। अजीज़ भाई वालेकुम अस्सलाम, भाई अजीज़ खादिम हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, कह रहे प्यार और दुआएं आपके लिए, थैंक यू सो मच भाई। और एक मैसेज आया भाई, बहुत दिनों के बाद बड़े दिनों के बाद शाम के शिफ्ट कर रहा हूँ भाई, मुबारक हो शाम की शिफ्ट आपको, बहुत सारा प्यार शेख इरफान अल कासमी साहब। और एक मैसेज है, आपने बोला ना उल्टा बोल, अच्छा नहीं नहीं मैं बोला नहीं उल्टा बोलो, मैं वो माज भाई को टारगेट कर रहा था मगर ठीक है। मणि भाई क्या हाल है मेरे भाई के, मैं एकदम बढ़िया भाई। और एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज क्या है जीशान शरीफ भाई ने, बहुत शरीफ आदमी, बहुत नहायत ही शरीफ आदमी जीशान भाई। बस ये कुछ मैसेज है मेरे पास, मेरा फ़ोन ही मैंने साइलेंट पर नहीं किया, टिटिंग आवाज़ बज गई, टिटिंग। अच्छा तो अभी 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलेंगे, मैं आज की कहानी का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। आज की जो कहानी है ये बहुत फेमस कहानी है, पर इसकी क्या कहते हैं उसको, रीटेलिंग ऑफ द स्टोरी अभी तक नहीं हुई है, मतलब मैंने नहीं करी है 107 पर, तो आई वॉन्ट टू शेयर दिस स्टोरी बिकॉज ये बड़ी खास कहानी है, बड़ी खास कहानी है। और कमाल की बात ये कि इसकी जो रियल फुटेजेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, तो जब आप देखेंगे ना तो आपका भाई दिल भर आएगा कतई, मतलब कमाल की कहानी है। फरद भाई ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम फरद भाई, क्या हाल है भाई के। और एक मैसेज, वेलकम ब्रो, क्या हाल अहवाल, बढ़िया भाई एकदम शानदार चल रहा है। और मैसेज है आज है, आज का बर्थडे है तो सैड सॉन्ग हो जाए प्लीज़। किसका, अरे नहीं भाई सैड सॉन्ग चला को नहीं पता भाई मैं। बाकी एक मैसेज है भाई, कल दिन 12:30 बजे आप शमाल रोड पे थे, हैं याद करने दो, नहीं भाई नहीं तो शमाल रोड पे था क्या, मैं कौन सी गाड़ी देखी भाई आपने मोहम्मद भाई, मैं तो नहीं था भाई, मैं समझ गया। किसी ने बैंडाना पहन रखा होगा, आपके भाई ने लुक बदल रही है भाई, अब बैंडाना वाला लुक नहीं है आपके भाई का, छोड़ दिया हमने वो रस्ते। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी सुन रहा हूँ, बहुत सारा प्यार भाई को, आप भी सुनिए मुबशर उमीन भाई, लुक चेंज कर लिया आपके भाई ने, 12:30 बजे मैं शमाल रोड पे को नहीं भाई, घर पे ही हूँगा मैं। तो अभी क्या है, कहानी कुछ देर में आएगी, 11 मिनट 2 सेकंड के बाद तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाकी आपको पता ही है 666-22107 नंबर है, मैसेज करते रहेंगे, जान में जान आती रहेगी, एक एक मैसेज, एक एक लीटर

0: या नहीं लीटर ज़्यादा हो गया, एक एक मैसेज कम से कम 10-17 खून बढ़ाएगा, तो ये करते रहो करो आप। एक मैसेज है, उसका नंबर ले लो, स्पाइंग कर रहा था क्या क्या है हाँ नया लुक परसों ही देगा। माज भाई अच्छी अच्छी बातें करो, चलो ये माज भाई अच्छी बातें ना करे ना, उठा के ले आना इनको, मुश्किल है लेकिन ले आना माज भाई। चलो अच्छी अच्छी बातें लिखो जल्दी से। एक मैसेज है, गाड़ी ख़राब थी बिल्कुल आप जैसा था भाई, तो मेरा तो लुक ही बदल गया भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फलक भाई, थैंक यू भाई। तो मिलते हैं 11 मिनट 2 सेकंड के बाद पब्लिक, जाना किधर ही नहीं, आपने बेस्ट जगह पर हैं। बाकी माज भाई की तारीफ जो है मैं 11 मिनट के बाद बताता हूँ आपको, नहीं की होगी तो फिर इनसे मैं अलग से निपट लूँगा, अपना थोड़ा अलग यारी। क्या क्या करें, गला ख़राब था तो हेल्प क्यों नहीं किया माजू भाई, माजू भाई के बारे में बात कहूँगा। कुछ लोग मुझे बड़े स्वीट मिले हैं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया, माज भाई उनमें से एक है। माज भाई डार्लिंग आदमी है, थोड़ा तेज तरह आ रहे हैं, बस स्टे ट्यून्ड है, जाना नहीं।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: बहुत जना टाइम से मैसेज किया है, मुझे मैसेज किया है आसिफ भाई ने। आसिफ भाई कह रहे हैं, आसिफ भाई कह रहे हैं कबीर भाई जनता चाहती है कि आप अपना असली रूप दिखाओ, प्लीज दिखाओ, जो आपने अपना रूप बदला है वो जनता से शेयर करो। भाई मैं अपना लुक अभी मैंने शेयर कहीं भी सोशल मीडिया पर डाला को नहीं भाई, जल्दी डाल दूंगा बढ़िया करके, उसमें कैप्शन वैप्शन सोच रहा हूँ बढ़िया सा, कैंट सा एकदम, मौज आ जाए सबको। जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे मेरा भाई, और एक सलाम वालेकुम आया ताहिर खान साहब का, ताहिर भाई बहुत बहुत बढ़िया भाई। कहानी सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं पहले तो अपने मैसेज कर देना, पता होना चाहिए मुझे कितनी जनता है, अभी जनता है नहीं होती कि मैसेज सॉरी कहानी के लिए तैयार हो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज क्या है मुझे अहमद फराज भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज भाई। अगर यूज ईशान भाई आप तो मेरा कंटेंट जानते ही हैं, वो वाला थोड़ी है ईशान भाई, कैसे नोट हो रहा है ईशान एक कॉल आ, रुक जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। और जनाब खैरियत से हैं?
0: जागते रहो।
1: जागते रहो
0: मेरे भरोसे मत रहो। हाँ जी बताओ
1: क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार।
1: मैंने जैसा ना रेडियो भाई साहब, जैसा मैंने रेडियो ट्यून इन किया तो मैंने कुछ सुना, मैंने कहा यार लोग जो है ना के बिना वजह में कबीर भाई के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि अपना असली रूप दिखा दो, अपना असली रूप दिखा दो। भाई पब्लिक गलत फहमी पर बैठी है
0: भाई। देखो पब्लिक क्या है, पब्लिक तो किसी की होती नहीं है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी पब्लिक मेरी है तो मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं।
1: पब्लिक आपकी है, बाकायदा आपकी है, ठीक है मानते हैं भाई, मगर वो कैप्शन बना नहीं है और ना बनेगा।
0: नहीं भाई बनेगा,
1: पब्लिक देख ले
0: बिल्कुल ही मेरी भी उम्मीदें साथ में तोड़ दी यार आपने तो, मतलब हद हो गई भाई, ये ऐसी बात मत करो
1: यार। भाई इतना टाइम हो गया ना उम्मीद पर टीके टीके के, आप कुछ आएगा आप कुछ आएगा आप कुछ आएगा, अरे कुछ आएगी
0: एकदम से आएगा भाई, शेर आया फिर एक दिन आ जाएगा, वो पूरे खेत ले जाएगा, सारे जानवर ले जाएगा, सही बताओ।
1: वो अफवाह होगी, अफवाह
0: अफवाह नहीं होगी भाई, अफवाह तो चल रही है अभी तो अफवाह चल रही
1: है गांव वालों को डराने के लिए कि सो जाओ जल्दी से।
0: नहीं नहीं अभी आ जाएगी भाई, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल सब करेंगे, बेफिक्र हो जाओ।
1: ये चीज तो मुझसे क्या करेगा भाई, करेंगे करेंगे
0: भाई को मुझ पर 2 रुपए का भरोसा नहीं है भाई
1: मुझे पता ये कभी नहीं होने वाला।
0: नहीं नहीं होगा यार, ऐसी क्या बात कर रहे हैं यार आप, तो मतलब बिल्कुल ही यार है।
1: लड्डू का ऑर्डर दे देखे मैं कैंसिल करता रहता हूँ यार, के भाई अभी आने वाला है तुम ऑर्डर तैयार रखो।
0: अच्छा नहीं नहीं देखो
1: मैं अमीरों में बंटवाऊंगा, लोग गरीबों में बंटवाते हैं, मैं अमीरों में बंटवाऊंगा।
0: नहीं नहीं नहीं भरोसा रखें, भरोसा रखें, होगा, दुआ करें जैस भाई, बहुत सारी दुआएं करें, हो जाएगा ठीक है टेंशन को नहीं। अभी कहानी सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, जा रहे हो कहीं?
1: जोक ऑफ द डे, हाँ अभी है इंशाल्लाह फिलहाल।
0: चलो फिर सुन लो भाई, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ कहानी आज, फटाफट शुरू कर रहा हूँ ठीक है।
1: ओके
0: मेरा भाई, बहुत प्यार भाई को, अल्लाह हाफिज। तो जैस भाई के बाद नियाज भाई का मैसेज है, वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग। एक मैसेज है, सलाम, तेरे बिना ना गुजरा है, मिस्ड यू ओवर द वीकेंड। अच्छा इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट सिक्योरिटी गार्ड भाई मेरा, ओवेज अवेज भाई को बहुत सारा प्यार मेरे भाई को। और एक मैसेज ईशान भाई का, ईशान भाई मैंने शेयर कर दी भाई, आ जाना उधर ही। और एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी फॉलोइंग साइलेंट लिसनर कितने वो आपको भी नहीं मालूम है, सुनते हैं लेकिन अच्छा देने का मौका नहीं मिलता। मेरे भाई कोई टेंशन नहीं है, आपने ये बात कह के मुझे आज बहुत हिम्मत दी है, बहुत ज़्यादा। ये शैफुल हुदा साहब जी के मैसेज कह रहे हैं, आपके साइलेंट लिसनर जितने आपको खुद को नहीं पता, और बहुत प्यार मेरे भाई को। इनके बाद जो मैसेज किया, अली भाई फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा से मेरा भाई, वालेकुम सलाम अली भाई। और सुहेल अहसन साहब, वालेकुम अस्सलाम। चलो मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ बिकॉज पब्लिक आ गई है। तो आज का जो किस्सा है, जैसे मैंने कहा, इट्स गोइंग टू बी अ रीटेलिंग ऑफ अ स्टोरी, क्योंकि ये कहानी हो सकता है बहुतों ने देखी होगी, बट जिन तक ये कहानी नहीं पहुंची तो मेरा फर्ज बनता है कि कहानी सुनाए। सो आर यू रेडी? शुरू करें। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, F7 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, खरा सोना है, और मैं शुरू कर रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। हाँ तो जी, मैं दुहा वाला कबीर F107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं साल 2013 में, 13 साल पहले, मई का महीना और 26 तारीख, और इस वक्त दिन की शुरुआत बस होने वाली थी, लाइक अर्ली आवर्स, बिल्कुल शुरुआत मतलब यूं समझ लीजिए कि देर रात, देसी भाषा में कहें तो। इस वक्त तीन टग बोट्स, मैं समझाऊंगा टग बोट्स क्या होती हैं, तीन टग बोट्स जो थी वो एक बड़े से ऑयल टैंकर को टो कर रही थी। गाड़ी को कैसे टो करते है ना, गाड़ी में क्या होता है, टो करने के लिए खूंटी लगाते हैं है ना, उसको खींच के ले जाते हैं गाड़ी को। नाउ इमेजिन दिस, समुद्र में एक बड़ा सा शेवरॉन ऑयल टैंकर और इसे टो करके ले जाना था, और टो करके ले जाने के लिए तीन बोट्स थी। 32 किलोमीटर ऑफ कोस्ट ऑफ नाइजीरिया। तो ये दो टग बोट जो थी वो ऑयल टैंकर के साइड्स में थी, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे, और दोनों चिपकी हुई थी। ये दोनों इसलिए लगाई गई थी लेफ्ट और राइट में ताकि वो स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब कि वो होता ना लहरें आए तो ऑफ बैलेंस ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए दो बोट्स उसके साइड में थी। और जो तीसरी टग बोट थी उसका मेन काम था इस जहाज को, इस ऑयल टैंकर को खींचना, टो करके ले जाना। इसका नाम भी था, इसका नाम था जैज कोन 4। और ये जो बोट थी तीसरी वाली, ये सबसे आगे की तरफ ऑयल टैंकर की बंधी हुई थी, ये जुड़ी थी मेन स्ट्रैप लाइन से। तो बेसिकली मेन काम यही कर रही है, ये ऑयल टैंकर को खींच के ले जा रही है 32 किलोमीटर दूर नाइजीरिया के ऑफकोर्स, और बहुत अच्छा खासा लंबा सफर था। तो आगे की जो टग बोट थी उसमें 12 क्रू मेंबर थे, उनका मेन काम था मैनेज करना, देखते रहना कि भाई ऑयल टैंकर साथ साथ आ रहा है नहीं आ रहा। तो सुकून से आ रहा था और ये 12 क्रू मेंबर्स एकदम सुकून में थे। इनको हायर एक अफ्रीकन कंपनी ने किया था जिसका नाम था वेस्ट अफ्रीकन वेंचर्स। ये नाइजीरियन बेस्ड एक कंपनी थी और उन्हीं का ये ऑयल टैंकर था, वो चाहते थे कि भाई इसको जरा टो करके ले जाओ, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे और ये सबके सब 12 मेंबर्स एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे, देवर जस्ट देयर काम करने के लिए, होता ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम के आओ काम करो कर जाओ, वैसा वाला सीन था इनका। अभी जो 12 क्रू मेंबर थे इनमें से एक बंदा बहुत मेन था, ये बंदा था हैरिसन ओकीन। हैरिसन भाई जो था, हैरिसन था नाइजीरिया का, ये इस बोट का, इस टग बोट का कुक था। उसकी जिम्मेदारी थी कि जितने भी तीनों बोट्स हैं उनमें जितने भी लोग सवार हैं उन सब के लिए खाना बनाना, एंड ही वाज वेरी वेरी गुड एट इट। तो रात के 1:45 के करीब, 12:45-46 ऐसे हो रहे थे रात के, और हैरिसन जो था वो अपने क्वार्टर्स में सो रहा था। एकदम से उसकी आंख खुली क्योंकि जाहिर सी बात है कि रात के वक्त लहरें बहुत तेज जब उठती हैं तो उसकी वजह से बोट जो होती है वो थोड़ी सी इधर उधर होती है, तो वो झूलने लगता है जहाज। तो उसकी आंख खुली, अब ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए, लहरों का तेज हो जाना, लहरों की वजह से पूरी बोट का उथल पुथल हो जाना, इधर उधर होना, ये आदत थी उनको, ये समुद्र का नेचर है और वो इसको अच्छे से समझते हैं। मगर हैरिसन की अब आंख उठ गई, खुल गई तो खुल गई। वो उठा, आंखें मलता हुआ उसने अपने क्वार्टर का दरवाजा खोला, वहां से हॉल में आया और उसने हॉल में देखा एंड तक जितने भी दरवाजे थे वो सारे के सारे बंद थे, क्योंकि इस क्रू की एक पॉलिसी थी कि सोने के टाइम सबके सब अपने क्वार्टर्स में होंगे और सबके सब लॉक करके रखेंगे। अब आप पूछेंगे क्यों, वजह थी पायरेट्स, समुद्री डाकू अभी भी हैं, हो सकता है कोई आ जाए लूटने के लिए, हो सकता है किसी को भनक लग जाए, कुछ हो जाए खुदा ना खासा, सो वो रिस्क नहीं लेना है, तो इसलिए सबके सब अंदर क्वार्टर्स के बंद थे। हैरिसन ने कुछ देर वहां पर देखा, कोई हलचल नहीं थी, और हैरिसन जो था वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। इस वक्त पूरा का पूरा जो है वो बोट का मसला ऐसा था कि वो हिल रही थी कभी लेफ्ट कभी राइट, और वैसे ही उसकी दीवारें पकड़ पकड़ के झूलता हुआ, एक तो आधी नींद में था, वो बाथरूम के दरवाजे तक गया। उसने दरवाजा खोला, अंदर गया, इस वक्त तकरीबन 12:50-12:51 के करीब वक्त था, और वो अंदर गया, उसने दरवाजा बंद किया। अभी भी बोट जो थी पूरी तरह से झूल रही थी, लेकिन इस टाइम पे एक और चीज हुई जिसका अंदाजा हैरिसन को जरा सा था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि इतना खतरनाक रिजल्ट आएगा। वो ये कि जब उसने दरवाजा बंद किया अंदर बाथरूम का, एट द सेम टाइम एक बहुत खतरनाक लहर उठी समुद्र से और वो टकराई इस टग बोट से जिसके अंदर ये 12 क्रू मेंबर्स थे। पूरा का पूरा जहाज
2: टेढ़ा हो गया और डूबने लगा। पानी जो था वो अंदर की तरफ आ रहा था और बाथरूम के अंदर इस वक्त हैरिसन था। हैरिसन जो था, जब उसने ये आवाज सुनी तो वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। वो दरवाजा बाथरूम का खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना पानी भर चुका था तब तक कि वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। पानी पुश कर रहा था दरवाजे को, ये मेटल गेट बाहर की तरफ खुल ही नहीं रहा था। ही वाज ट्राइंग रियली रियली हार्ड। हैरिसन कोशिश करता रहा, अंदर से चिल्लाता रहा, लेकिन ये मेटल डोर, ऊपर से इतनी सारी आवाजें, लहरों की आवाजें जो बहुत ज्यादा वायलेंट भी थी, तो कोई उसकी आवाज को सुन नहीं सकता था। वो बड़ी मुश्किल से पूरी जान निकाल के बाहर निकला तो बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे ही बाहर निकला, उसकी जमीन उसके लिए सीलिंग बन चुकी थी, क्योंकि जहाज पूरा का पूरा अपसाइड डाउन हो चुका था, पूरा पलट गया, और जो मेन लाइन जुड़ी हुई थी टैंकर से वो अलग हो चुकी थी, कट चुकी थी। तो अब आप समझिए, जस्ट इमेजिन, ये बोट पूरी की पूरी अपसाइड डाउन, तो मतलब जो सीलिंग है वो फर्श बन गई, जो फर्श है वो सीलिंग। और जो बाथरूम से निकला, बहुत बुरी तरह टकराया इधर उधर, और अब वो खड़ा था सीलिंग की तरफ। उसके चेहरे पर वो खौफ था जो उसने सोचा भी नहीं था। वो हॉल की तरफ देख रहा था, उसने देखा कि लोग सब अपने सर पकड़े हुए, क्योंकि सबके सर पे चोटें आ रही थी, लोग टकरा गए थे, शिप पलट रही थी। तो तीन लोग उसे दिखे जो क्वार्टर से बाहर आए थे और बहुत पैनिक में थे, चिल्ला रहे थे एक दूसरे की तरफ, लेकिन कोई भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था। चारों

तरफ से लहरों की आवाजें वायलेंट और वो बढ़ रहे थे। वो तीनों जो बाहर निकले थे अपने अपने क्वार्टर्स से वो ऑपोजिट साइड भागने लगे, जहां पे हैरिसन खड़ा है उसके ठीक उल्टा वो भागने लगे। मगर हैरिसन ने अपने आंखों के सामने एक और खतरनाक मंजर देखा। जिस तरफ वो तीनों जा रहे थे उस तरफ ही लहर आई और वो लहर जो थी बहुत वायलेंट थी। उसने उन्हें नीचे गिराया और फिर एक और लहर खिड़की से तोड़ते हुए अंदर आई और बहुत तेजी से उन तीनों को ले गई अपने साथ। हैरिसन इस वक्त अपने आप को किसी तरीके से खड़ा रखने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कहां जाऊं, और उसके सामने जो हुआ वो जानता था कि वो तीन लोग जो उसे नजर आए वो जिंदा नहीं बचेंगे, वो मर चुके होंगे। और जैसे ही वो वहां से हटने की कोशिश कर रहा था कि कहीं चला जाए, एक और लहर आई और इस वक्त जितनी भी पावर थी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी थी, जितने भी इक्विपमेंट से जहाज के पूरे कट हो गए। वो घूमा ऑपोजिट, अब उसे भागने के अलावा और कोई चारा समझ में नहीं आया। और फिर एक लहर ने उसे भागकर फेंक दिया, और इस वक्त लहर ने उसे जहां फेंका वो ऑपोजिट डायरेक्शन थी। तो वो जहां से निकला था, जिस बाथरूम की तरफ से निकला था, वो उसके खुले दरवाजे से टकराया, और टकरा के वो सामने ऑफिसर्स, जो मेन ऑफिसर्स होते हैं, उनके रूम की तरफ गिरा और अंदर की तरफ गिरा। तो जहाज अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है और उल्टा हो चुका है पूरा। और जो पानी अंदर जमा हो चुका था इस वक्त, जो आ रहा था लगातार, वो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर था, इतना ठंडा जिसकी हद नहीं। और इस वक्त वो अंदर की तरफ ऑफिसर रूम में घुसा। उसके बाद एक जगह थी, पूरे पोर्शन था जो एक तरीके का वॉशरूम पोर्शन था, वहां पे जाके वो घुसा। लेकिन पानी तब तक काफी भर चुका था, और वो कोशिश कर रहा था कि वो कैसे, क्योंकि अभी पूरा का पूरा वो सबमर्ज्ड है, पूरा पानी के अंदर था। वो स्ट्रगल कर रहा था, मैं क्या करूं, और वो इधर उधर अपनी सांसों को उखड़ती हुई सांसों के साथ तैरने की कोशिश कर रहा था। और एकदम से जब वो ऊपर आया तो उसने लंबी सांस खींची, क्योंकि वो एक ऐसे पोर्शन में आ गया था जहां पर एक छोटा सा एयर पॉकेट था, जरा सा। मतलब अगर आप ऊपर की तरफ आए तो सिर्फ आपकी गर्दन भर बाहर रहेगी, बाकी नीचे पूरा पानी। वो जरा सी जगह थी, वो एयर पॉकेट था, और बस वो अपनी गर्दन को बाहर निकल के लंबी सांसें खींच के बाहर आने की कोशिश कर रहा था। बाकी इट वॉज पिच ब्लैक, क्योंकि एक तो रात का वक्त था, ऊपर से ठंडा पानी, और शिप जो थी वो पूरी तरह से सबमर्ज हो चुकी थी। तो वो जो पोर्शन बचा था एयर पॉकेट, वो उसके दरवाजे बंद होने की वजह से जरा सा बचा था। इस वक्त उसने बॉक्सर शॉर्ट्स पहने हुए थे, और किसी भी किस्म का लाइट सोर्स नहीं था, उसके पास खाना नहीं था, पानी नहीं था। बस वो एक एयर पॉकेट उसका सहारा था। उसकी वाइफ ने उससे कुछ दुआएं बताई थी, बस वही वो पढ़ रहा था। फिर एकदम से एक बहुत जोर की आवाज आई, मेटल के एक साथ टकराने की, और उस आवाज के साथ एक और खतरनाक चीज हुई। जो जहाज था जिसके अंदर वो था, वो ओशन फ्लोर से टकराया, लिटरली नीचे जाके। अब उसे पता था डिहाइड्रेशन से, भुखमरी से, या फिर इस ठंडे पानी की वजह से, या डूब जाने की वजह से, या शार्क्स के खा जाने की वजह से वो मर तो जाएगा। जस्ट इमेजिन, उसने कुछ ऐसा भी पहना हुआ नहीं था कि वो बच सकता था। वो उस वक्त नींद से ही उठा था, कंप्लीटली एक्सपोज्ड था इस ठंडे पानी से, पूरे ओशन से। वो एक तरीके से बस इंतजार कर रहा था, उसे पता था मरेगा, लेकिन कैसे मरेगा ही डिड नॉट नो। और उसे अंदाजा हुआ कि शिप इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है कि उसका निचला जो हिस्सा है, उसका बहुत सारा हिस्सा भी ओपन है। तो वो समुद्र के तमाम जो क्रिएचर्स हैं, जितने भी मच्छियां हैं, बड़े से बड़ी, छोटे से छोटी, खतरनाक मच्छियां, सब उस तक पहुंच सकती है।

फिर उसने, क्योंकि गर्दन सिर्फ उसके ऊपर थी, तो उसने नीचे नाक अपनी दबा के नीचे जानने की कोशिश करी कि नीचे देखूंगी क्या है क्या नहीं। उसने जब अपनी सांस रोकी, पानी के अंदर गया, तो उसने देखा नीचे उसे कमरा नजर आया, क्योंकि बोट अभी उल्टी है, तो उसे एक जगह नजर आई जहां पे उसे लगा कि यार इसके अंदर कुछ सामान हो सकता है, और ये ऑफिसर्स वाला कमरा था तो उसके अराउंड काफी चीजें मिल सकती हैं। तो वापस ऊपर आया, सांस वापस ली उसने, और उसका माइंड कह रहा था मैं क्या करूं, क्या मैं रिस्क लूं, मैं नीचे डाइव करके जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं, क्योंकि नीचे जाके कुछ दिखने वाला नहीं है, पर ऊपर रह के भी कुछ फायदा नहीं है। और जब वो ऊपर था तो एक खौफनाक आवाज और आने लगी, जिस जगह पे उसकी बोट सिंक हुई थी कोई नहीं बचा था, उसका कोई भी दोस्त नहीं बचा था, और इस वक्त एक आवाज आ रही थी पूरी धाड़ धाड़ आवाज, जो बम्पिंग साउंड होती है, जो शार्क्स थी 12-12 फीट की टाइगर शार्क्स, वो अपना सर मार रही थी, अंदर आने की कोशिश कर रही थी इस बोट के, एंड वो आवाज क्लियरली वो सुन पा रहा था, मगर उसे पता था कि अगर वो सामान लेने की कोशिश नहीं करेगा तो वो वक्त दूर नहीं कि जब वो ऐसे ही मर जाएगा। तो उसने लंबी सांस खींची, आंखें बंद करी, दुआएं करी, और फिर वापस पानी के अंदर गया, एक डाइव मारी उसने, और अभी उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मगर फिर वो ऐसे ही अंदाजे से, क्योंकि जितना उसे अंदाजा था, और शिप क्योंकि उल्टी है तो उसे वो भी अंदाजा लगाना था कि शिप उल्टी है तो मुझे कैसे जाना होगा, वो नीचे नीचे मैन्यूवर करता हुआ एक जगह पहुंचा, वहां पे उसे नजर आया कि एक पैनल है वो निकाल सकता है, उसने पैनल को खींचा, और इस वक्त बाय द वे वो सांस रोके, उसने पैनल को जैसे खींचा, और खींचने के बाद उसे लगा कि मुझे सांस नहीं आ रही, अब उसे वापस ऊपर जाना था, वो वापस ऊपर की तरह एक बार सांस भरी, फिर वापस नीचे गया, और इस बार जब अंदर गया तो उसे कुछ चीजों पे उसके हाथ लगे, और वो देखना चाह रहा था ये क्या है, मगर इट वॉज कंप्लीटली पिच ब्लैक। जो उसके हाथ लगा वो लेके आया उसे समुद्र के अंदर आने वाली एक बाकायदा फ्लैशलाइट मिली, उसको एक सोडा कैन मिला, और फिर वो लेके वो ऊपर की तरफ आया, उसने वो लाइट जलाई, और बस वो सोचा था कि मैं कैसे मरूंगा, बस यही जानना बाकी है, मरूंगा तो सही। चौबीस घंटे वैसे ही रहा, और 24 घंटों के बाद वो जो फ्लैश लाइट वो लेके आया था वो फ्लाइट बंद हो गई। अब ये बंदा गर्दन तक पानी, बस चारों तरफ चेक, और ये ओशन के अंदर उल्टी भी बोट के अंदर था, और इतने में एक और हॉरिफिक चीज इसके सामने हुई। इसने देखा कि दो बड़ी शार्क्स, जहां पे वो बंद है बाय द वे, उसके साइड वाले कमरे में, बिकॉज एक पीप होल था वहां से वो देख पा रहा था, साइड वाले कमरे में दो शार्क्स एंटर कर चुकी हैं। जस्ट इमेजिन, अपनी जगह इस बंदे को रखकर देखिए कि आप एक जगह पे फंसे हुए हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, और आपके बिल्कुल साइड वाले चेंबर में दो 12 फीट की टाइगर शार्क्स घुसी हुई हैं। कोई फ्लैशलाइट नहीं थी इसके पास, किसी किस्म की सप्लाईज नहीं थी, सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर शार्क्स थी। वो कुछ नहीं कर सकता था, अगर ज्यादा डूबने और बाहर आने की कोशिश करी और शार्क्स को पता लगा तो वो यहां पर भी टकराना शुरू कर देंगी, और फिर मिनटों की बात है, इफ नॉट सेकंड्स, कि वो तोड़कर अंदर आ जाए। तो वो जितना स्टिल रह सकता था उतना स्टिल ही रहने की कोशिश कर रहा था, कप का पा रहा था, लेकिन इसका डर इस पे हावी हो रहा था, और इसे पता था कि जिस जगह पे डूबा हुआ है वहां पे कोई करिश्मा ही इसे बचा सकता है। ही कुड नॉट गो एनीवेयर। हैरिसन बस बैठा हुआ साइड के चेंबर में, जो शार्क्स लगातार बैंग कर रही थी, बस वो सुन रहा था। ये बंदा दुआएं पढ़ता हुआ 60 घंटे टोटल यहीं पे रहा, 36 घंटे

सर अपनी नाक बंद करी, सांस खींची, वापस पानी के अंदर जाके इधर उधर देखने लगा। फिर इसे एक जगह लाइट दिखी, क्योंकि इसका जो विजन था मतलब नीचे वो देख सकता था, तो नीचे एक और चेम्बर था जहाज का, जहां पे इसे लगा कि इसने किसी किस्म की रोशनी देखी और पॉसिबल नहीं है कि वहां पे कोई रोशनी हो। तो उसने लगा जाके देखूं या ना देखूं, बड़ा रिस्की काम है क्योंकि बाकी पूरा अंधेरा है, वेरी लिटिल लाइट जो कि बस कभी भी जा सकती है। मगर इसने कहा कि अगर कुछ नहीं किया तो मैं यहाँ पे वैसे भी फंसा हुआ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये ऊपर आया, इसने आंखें बंद करी, फिर लंबी सांस खींची, वापस अंदर गया और पूरा सांस रोके हुए तैरता हुआ जहाँ पे से लाइट दिखी थी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। एंड नाउ तैरते तैरते से लग रहा था कि लाइट मैंने देखी कि नहीं देखी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेलुसिनेशन था। और ये आगे जाता गया, ऐसे लगा यार ये मैं कहाँ गया, और अभी सांस उखड़ने लगी है, और ऐसे लगा कि अगर मैं वापस नहीं गया तो यहीं तड़प तड़प के डूब जाऊँगा। और ऐसे ही बिल्कुल चेहरा इसका नीला पड़ रहा, ये मुड़ा क्योंकि ऐसे कोई नहीं दिखा, ये मुड़ के वापस जाने की कोशिश कर रहा था और अभी रास्ता नहीं मिल रहा था। बट थैंकफुली इसे आइडिया था कि जहाज किस तरह किधर जा सकता हूं मैं, और पकड़ पकड़ के जल्दी जल्दी तैर के आखिरी सांस में ही उस एयर पॉकेट तक वापस पहुंचा, लंबी सांस नहीं निकल के। सोचने लगा कि मैंने लाइट देखी कि नहीं, ये मुझे धोखा तो नहीं हुआ। ही वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिमसेल्फ, क्योंकि वो पागल हो रहा था वहां पे। मगर फिर हुआ एक चमत्कार, एक्चुअल मिरेकल। दरअसल डाइवर्स जो थे वो भेजे गए थे क्रू मेंबर्स को निकालने के लिए। वो ये मान रहे थे कंपनी के जो डाइवर्स थे कि कोई बचेगा नहीं, तो हमें बॉडीज बाहर निकालनी होंगी और उन बॉडीज को उनके फैमिली वालों को देना होगा। और तो ये मान के चल रहे थे कि कोई नहीं बचा है। एक डाइवर जो था उसी की लाइट हैरिसन को दिखी थी, और वो डाइवर इधर उधर तैरता हुआ अपने माथे पे जो उसने लाइट लगा रखी थी उससे वो पूरे रास्ते को देख रहा था। एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई जिंदा बचा होगा। हैरिसन के जब वो सामने पहुंच गया और हैरिसन को लगा ये तो डाइवर है, अब हैरिसन को पता था अगर वो कुछ जल्दीबाजी में बोलेगा तो ये बंदा डर जाएगा। यू नो इट कैन बी वेरी वेरी शॉकिंग, आपको समझना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि आप कोई डाइवर हैं, चलिए, और आप डाइविंग करते हैं, आपको बताया गया कि भाई नीचे कोई जिंदा नहीं है, आपको बॉडी लेके ऊपर आनी है, एंड यू योरसेल्फ नो कि पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है कोई नीचे बच जाए। मगर ऐसे में कोई आपके कंधे पे ऐसे हाथ रख दे तो आपकी क्या हालत होगी, इट कैन बी वेरी डेंजरस, वो शॉक बहुत डेंजर हो सकता है। मगर हैरिसन ने कहा मुझे करना पड़ेगा। हैरिसन बोल नहीं पा रहा था और उस तक आवाज जा नहीं रही थी, मगर जैसे वो करीब आया हैरिसन ने उसके कंधे पे हाथ रखा, वो मुड़ा एकदम से, वो डर गया और उसके माथे की जो फ्लैश लाइट थी वो सीधा सामने पड़ रही थी, तो इतनी लाइट हो रही थी कि वो बिल्कुल अंधा सा हो गया। लेकिन फिर हैरिसन ने उसके हाथ को पकड़ के हल्का सा दबाया, और जब ये किया तो उसे लगा रे कोई जिंदा है। ड्राइवर जो था वो उस एयर पॉकेट में आया, जिस एयर पॉकेट में वो बिल्कुल गर्दन को बाहर की तरफ रख के हैरिसन सांस लेने की कोशिश कर रहा था, और अभी जहाज के थोड़ा और टूटने की वजह से पानी थोड़ा सा और नीचे गया था। डाइवर शुरुआत में तो ऐसे उसे लगा कोई वायलेंट जानवर तो नहीं है, मगर जब उसने देखा तो वो बहुत बहुत हैरान था। उसने अपने माथे की लाइट को बंद किया, ऑन किया, बंद किया, ऑन किया, क्योंकि डाइवर को यकीन नहीं हो रहा था कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो 60 घंटे पहले यहां पे आए थे ना, कोई जिंदा कैसे बच सकता है। मगर फिर जब उसे दिखा तो ऑब्वियसली वो असली वीडियो इंटरनेट पर भी आप देख सकते हैं, हैरिसन ओकीन का। हैरिसन के चेहरे पर वो जो एक्सप्रेशंस हैं वो प्राइसलेस हैं, वो बताए नहीं जा सकते, वो एक्ट आउट नहीं किया जा सकते। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। वो खुश भी है लेकिन जाहिर नहीं कर पा रहा था। इट वॉज टोटल डार्कनेस। उस डाइवर ने सबसे पहले उसे डाइविंग मास्क पहनाया और उसका हाथ पकड़ के, क्योंकि वो तैर भी नहीं पा रहा था, उसमें जान नहीं बची थी, जैसे तैसे उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। मगर यहां पर आपको समझना पड़ेगा इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो इंसान इतने टाइम से इतने डीप फंसा हुआ है उसे सीधा बाहर नहीं निकाला जा सकता। यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि जब वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आके सांस लेगा तो वो मर सकता है। इसलिए उसे सबसे पहले इस रैकेज, इस टूटे हुए जहाज के अंदर से निकाला गया और फिर उसे डीकंप्रेशन चेंबर्स में रखा गया, चेंबर में रखा गया, ताकि वो पहले नॉर्मल हो जाए, उसकी सांस नॉर्मल हो जाए, एनवायरनमेंट नॉर्मल हो जाए, और इसमें उसे 60 घंटे और रखा गया। जस्ट इमेजिन कि आप 60 घंटे बिता के आए, 60 घंटे और एक चेंबर में, यू कैन स्टिल

सी एवरीथिंग, मतलब आप सेफ हैं बट आप फिर भी वहीं के वहीं हैं। बहरहाल उसे 60 घंटे के बाद जमीन तक ले जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके वाइटल्स चेक हुए, ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड था, रिकवरी करी उसने, मगर ट्रॉमा बहुत डेंजर था, ये हैरिसन उकीन के लिए बहुत बहुत खतरनाक चीज़ थी। उसने अपने बाकी 11 काम करने वाले वो साथी जिनसे मिले हुए चंद घंटे हुए थे, उन्हें अपने सामने गायब होते हुए या मरते हुए या शार्क्स के मुंह में दबोचे हुए देखा, और वो सारा ट्रॉमा, खुद का फंसा होना, ये सब कुछ उसके साथ रह गया। हैरिसन उकीन जब पूरी तरह से रिकवर कर चुके थे तो उनकी वाइफ ने ये तक बताया कि हैरिसन आज भी मोस्टली उठ जाते हैं रात में, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी समुद्र में है या वो किसी जहाज में है और वो जहाज डूब रहा है। ये ट्रॉमा आज तक हैरिसन की इनके साथ है एंड ही इज लिविंग अप टू इट। लोगों ने बोला कि क्या आप किताब लिखेंगे, क्या आप इंटरव्यू देंगे, पॉडकास्ट का जमाना है, आप कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन हैरिसन ने कहा, आई कैन नॉट, मैं ये वापस नहीं जीना चाहता, मैं ये वापस लिख कर नहीं याद दिलाना चाहता खुद को, और मुझे याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये बहुत क्लियर है ट्रॉमा। हैरिसन उकीन उसके बाद कभी भी समुद्र की तरफ नहीं लौटे, क्वाइट ऑब्वियसली, मगर द ट्रॉमा लिव्ड ऑन। इस कहानी की असली फुटेज आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, इफ यू वांट टू सर्च हैरिसन उकीन नाम है इनका। एंड वो जो वीडियो आप देखेंगे जिसमें वो डाइवर हैरिसन तक पहुंचा है, माय गॉड इज एक्सप्रेशन इज समथिंग एल्स, बहुत बहुत प्राइसलेस है। तो ये था आज का किस्सा, ये कहानी अब आपके हवाले। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। प्लीज़ बताइएगा ये किस्सा आपको कैसा लगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सर्वाइवल स्टोरीज, एंड आपका ओपिनियन बड़ा ज़रूरी है। अगर आप देखना चाहें तो मैं बता देता हूँ, हैरिसन उकीन नाम है, HARRISON, आप जाके इनका वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी मशहूर सर्वाइवर हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल वीडियोज एवर, बिकॉज भाई मेरे को उस बंदे का चेहरा देख के लगा यार इसने क्या झेला है इसने। प्लीज डू वॉच इट। बाकी कहानी के ऊपर कुछ कहना चाहें तो 666-22-107। एंड मूड को थोड़ा बदल देते हैं, आज अमिता बार बार ही गा रही थी, मैंने कहा चलो आज यही कर देते हैं, ये लो जी बढ़िया। बट कहानी के ऊपर बताना पड़ेगा आपको प्लीज, है वेटिंग। अरे लाडो MC Square।

भाई मैं नू कह रहा था, देखो आज तुमने समुद्र की कहानी सुना दी, अगर मुझे कोई ऑप्शन देना कि आप स्पेस जाना चाहेंगे समुद्र, भाई मैं डेफिनेटली चूजिंग सी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ठीक है लोगों को थैलेसोफोबिया होता है, डरते हैं रात में, एक्चुअली में मैंने एक बार ओशन देखा भी है, लगता डरावना, लेकिन मजे है भाई उसके, अलग ही मिस्ट्री है। और ये कहानी सुन के मुझे लगता है कि अपने आईडी पे दोबारा सोचना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं भाई रेडी हूँ, मेरे को मतलब आई विल डेफिनेटली चूज सी। आप बताइएगा आपका क्या मतलब, डू यू फाइंड समुद्र दैट मिस्टीरियस? क्योंकि मुझे लगता है स्पेस से ज़्यादा तो भाई ये समुद्र, ये रखा इन्नू रखा सामने, ये है सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस। आप क्या चूज़ करते हैं? और कहानी के बारे में ज़रूर बताना भाई, इफ़ यू लाइक डिट प्लीज़ लेट मी नो।

हाँ जी, सबासी तो बहुत मिल गई है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कहानी में मैसेज किया है। पर एक भाई ने मैसेज किया है मुझे कि कल से जो है खबर आई है कि कतर में कूलर सीजन आएगा। नहीं भाई, पता नहीं, मैंने ऐसी खबर अभी चेक नहीं करी, अगर होगी तो बता दूंगा। बाकी मोइन अहमद भाई लिखा है, लिखते हैं कबीर भाई सलाम भाई, ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी, वीडियोज भी देखे हैं, यही आके यकीन हो जाता है कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा है। और आपका स्टोरी बताने का तरीका इज अमेजिंग भाई, मुझे वैसे ही सी फोबिया है और अब मैं आर्गिस नहीं जाऊँगा। कोई बोले चलो चलो नहाने, नहीं नहीं मुझे नहीं नहाना। और लिखते हैं मैं स्पेस जा सकता हूँ भाई, पानी में नहीं। मैंने तो मस्क भाई की वेबसाइट पे मार्स मिशन का वॉलंटियर भी कर रखा है। मेरा भाई तम ही जाओगे भाई साहब, वहीं सोसाइटी बसाने। एक इक्रम भाई लिखा है स्टोरी आउट क्लास, थैंक यू सो मच भाई। फराज भाई ने मिस कर दिया, फराज भाई वालेकुम अस्सलाम। और एक भाई कह रहे हैं जाना चाहिए, वो कह रहे हैं स्टोरी बहुत बढ़िया थी भाई। थैंक यू, बहुत सारा प्यार हैदर भाई को, थैंक यू हैदर भाई। और आसिफ भाई ने लिखा है ये कहानी मैं लोगों के मुँह से सुनना चाहता हूँ, कैसी लगी? और इसका जवाब फिर मैं आपको 6:40 पे दूंगा। ये कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, 6:40 बताओगे क्या चक्कर है भाई? और लिख रहे हैं आप आज आपकी इमोजी का भी जवाब देना है, हर मैसेज के नीचे आप सिर्फ हंस के डाल देते हो, ये बदले की भावना लग रही है मुझे, मेरा इंतकाम देखेगी। आदर अब्दुल लतीफ भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, ऑल्दो आई स्टार्ट लिसनिंग टू द स्टोरी एट द एंड स्टेज आई विजुलाइज एडवेंचर इन द सी। एडवेंचर को नहीं भाई, जान आधी होली बंदे की। कहते हैं मार्वलस स्टोरी, आई डाइव्ड इन द डीप सी एंड प्लेड विद शार्क। ये लो जी, ये अलग समुद्र के फूफा हैं भाई, कह रहे मैं तो जा चुका हूँ, मैं शार्क से खेलता भी हूँ मैं। खादिर भाई ने तो शार्क से गाली पकड़े, कह रहे अरे गुज गोरे छोटा बाबू, काटेगा इतनी बड़ी बड़ी दांत, काटेगा इन दांतों से। और सैम भाई ने मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलता भाई नहीं बोला भाई, स्टोरी अच्छी थी भाई पर सुनी नहीं, क्योंकि आपने सुनाई अच्छी होगी मेरा भाई। और श्याम भाई वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और एक मैसेज आया हैरिसन, हाँ हैरिसन उकीन नाम है भाई, ये देख लीजिएगा सोनू भाई। और बाकी मैसेज किया है क्या है मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच। और इनके बाद एक मैसेज आया है, इन्होंने क्या लिखा है, अस्सलाम वालेकुम खैरियत से इवनिंग, कैसी कहानी, वो अच्छी थी भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारा प्यार भाई को। और भाई के बाद मैसेज किया अच्छी स्टोरी सेंड कर देना। फिर एक भाई ने मैसेज किया है कबीर भाई लव योर स्टोरीज एंड लव यू, थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार। माजिद भाई, नौशाद आल आफ्ताब आलम भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नाइस स्टोरी लिखी है नाजिया बहन ने, थैंक यू। और एक सलाम भैया मुझे, सलाम भाई ने, वालेकुम अस्सलाम परवेज भाई किदा। और एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, तबस्सुम मैंने लिखती है आई जस्ट सॉ अ स्मॉल क्लिप एंड इट्स रियली टेरिफाइंग, आई वाज टोटली इनटू द स्टोरी व्हेन यू सेड शार्क्स वर टैपिंग एंड व्हेन ही पुट हिज हैंड्स ओवर द डाइवर, अमेजिंग स्टोरी। मुझे समुद्र के पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन एक फीलिंग भी है कि कुछ सी एडवेंचर ट्राई करूँ एक बार जिंदगी में। कोई मूवी है ओशन वाली कबीर भाई आपकी रिकमेंडेशन में? बहन रिसेंटली बहुत सारी आई हैं, अगर आपको थोड़ा थ्रिल चाहिए और रियल फुटेज वाली मूवी चाहिए जिसमें रियल फुटेजेस यूज़ की गई हैं, तो वॉच द बे, मैंने बताया भी था, मैं लिख के देता हूँ आपको, द बे, ओके ये एक मूवी है, इसमें असली शार्क फुटेज यूज़ करी है उन लोगों ने, व्हाट एन अमेजिंग मूवी दे हैव मेड, बहुत अच्छी है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ थ्रिलर प्लस मिस्ट्री, बहुत बढ़िया है। और एक मैसेज है भाई ये स्टोरी तो आदत बन रही है, ऐसी हूँ भाई मैं, नसों में घुस जाऊँगा मैं कहानी सुना।

सुना क्या आसिफ भाई बहुत सारा प्यार भाई को। और एक मैसेज, स्टोरी भाई प्लीज लेट हो गया, लेट होने वालों को सजा मिलेगी। द लास्ट ब्रेथ, लास्ट ब्रेथ ठीक है साबिर भाई, लेकिन आप द बे देखो क्योंकि रियल फुटेज यूज़ करी है उसमें। और एक मैसेज, भाई आपने गलती की है, आपको ये बोलना था उस बंदे की जगह खुद को रख के सोचो, लेकिन आपने बोला अपनी जगह उस बंदे को रख के सोचो। मैंने ऐसा बोला क्या? ठीक है, समझ गए ना आप, किसी को भी कहीं भी रख के देखो, बचना चाहिए बंदा भाई, बस बचना चाहिए। और एक मैसेज, भाई वो कर्स ड्रिंक कहाँ से मिलेगी आज तो बता दो फ्राइज वगैरह वो अंगूठी बताओ, सब छोड़ो मुझे मतलब को नहीं, शार्क वार्क से मुझे वो अंगूठी जाननी है कहाँ पर है भाई, दिल्ली के चोर बाजार में मिलेगी वो। और एक मैसेज किया है इन्होंने हाँ भाई यही है, ये मोहम्मद भाई जो आपने मुझे भेजी है ना न्यूज़, ये उसी की है एग्जैक्टली। और एक मैसेज, आई मिस द स्टोरी, नो प्रॉब्लम भाई, भेजेंगे। आतिफ भाई वालेकुम सलाम। और एक मैसेज, सबीर भाई कह रहा हूँ, कबीर भाई, अपने नाम गलत बोल रहा हूँ सुल्तान भाई कह रहे हैं, कबीर भाई मैं तो पानी क्या भरे टब में ना जाऊँ, मैं तो टब में भी ना जाऊँ। सुल्तान भाई कह रहे हैं तुम तो समुद्र की बात कर रहे हो ना जी। ज़बरदस्त कहानी भाई, और इन्होंने वीडियो ढूंढ के भेजा, हाँ भाई यही है हैरिसन उकीन, ये जो मोमेंट्स उनके कैप्चर हुए, अब आप देख रहे हो ना जब मैं कहानी बता रहा था उसके बाद ही फुटेज देखना, इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी फलक भाई। और एक मैसेज है, कबीर भाई मिस हो गई, दो दिन बहुत बोरिंग गुजरे मेरे भाई, एंटरटेन करेंगे फुल भाई, मैं आप तो प्रोफेसर हैं इधर कुछ भी है वो लोग प्रोफेसर का ही प्रोफेसर आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ऑल दो मुझे सरकैज़म नज़र आ रहा है इसमें। और एक मैसेज, साउथ में हीरो की हिंदी डबिंग में आपकी आवाज़ तबाही मचा देगी। अरे मेरा भाई, पापा को फूल लगाओ, लगाओ पापा को, मेरे पापा को फूल लगाओ, उनको बता दो कितनी तारीफ हुई लड़की की। कह रहा है साउथ में भाई, मैं यार दिल जीत ले यार, क्या बदलू क्या। समीर भाई, भाई मैं आपको चार दिल भेज रहा हूँ इस बात पे, 1 2 3 4 मेरी तरफ से भाई, फुल पावर भाई, भाईचारा ऑन टॉप। तो एक भाई लिखा, आदत डाल दी भाई आपने, 3 दिन से फीवर था, घर पे रेस्ट कर रहा था, आज कब से वेट कर रहा था कि घर जाके बैठूं कबीर भाई को सुनने का। भाई मेरा भाई, बहुत मोहब्बत आपको हैदर भाई, ये लो 4 दिल आपको भी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार। कह रहे क्या लिखा है उन्होंने, भाई पापा को लड़की वाले को फ़ोन लगाओ। ऐसे ही दोस्तों से मना किया था मम्मी ने, मिले नहीं जाना आसिफ भाई, उसको भी मैं अलग से कॉल लगा लूँगा, लगवाऊँगा नहीं, मैं खुद लगाऊंगा कॉल। एक मैसेज, भाई चक्कर है क्या न्यूज़? नहीं नहीं भाई, कोई चक्कर को नहीं भाई। मैंने भाई नो स्मोकिंग देखी बट समझ में नहीं आई, मैंने उसी दिन कहते नो स्मोकिंग देखोगे समझ में नहीं आएगी, आई न्यू दैट, बाकी देख लो चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमारा भाई जिंगल चलेगा, किधर गया जिंगल, 3 2 एंड 1।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: देखो जी टाइम तो हो लिया 6:02 क्योंकि अभी अजान जल्दी है तो इंशाल्लाह भी आपसे अजान के बाद ही मुलाकात होगी। बाकी व्हाट्सएप 666-22-107 है तो आप मैसेज करते रहा करें, बाकी मैसेज अभी कुछ देर में शो में शामिल किए जाएंगे। एक भाई ने मुझे मैसेज किया है, क्या कह रहे हैं कहाँ ये वीडियो नहीं मिल रही। अरे बहुत आसान है वीडियो, रुको मैं आपको, मैं जो हूँ ना उसका स्क्रीन शॉट जो है वो

आराम से बैठ के एंजॉय करो भाई। किधर गया इनका? एक तो नाम नहीं मिल रहा मुझे इनका, किधर गए किधर गए किधर गए किधर गए। हाँ ये लो मुबशर भाई, आराम से देखो मौज करो। बाकी इंशाल्लाह मगरिब की अज़ान के बाद आपसे मुलाकात होगी। दोनों ही देखिए भाई, बढ़िया भाई, फिर तो शानदार है। आप भी मेरी तरह मूवी बफ निकले साबिर भाई, बफ। और एक मैसेज मुझे भी भेज दें। ओके भाई मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ, बाकी आप लोग खुद देख लेना वीडियो, एंड यू माइट एज वेल इन्जॉय इट। बाकी इंशाल्लाह अज़ान के बाद मुलाकात होगी, आपने जाना कहीं भी नहीं है अभी, तो बहुत सारी बातें करनी है यार, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाओगे। सो 666-22107 नंबर है, 666-22107। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ देर में। बाकी सबसे बढ़िया स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहीं बात करेंगे अपन भाई लोग, भाईचारा ऑन टॉप एंड बहन चारा भी। स्टे ट्यून्ड।

0: इनमें फर्क यह है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से टूट जाता है। हमेशा रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले, चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: देसी।
1: भाई मेरे पास दो बड़े प्यारे मैसेजेस आए, मैं पढ़ूंगा क्योंकि अभी एक गाने के बाद पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह। बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। और एक भाई ने कहा कि आप वो एनिमल डॉक्यूमेंट्री, भाई मैं वही अभी कुछ देर पहले तबस्सुम बहन को बता रहा था, मैंने वो वाला वॉइस ओवर किया है अपने करियर की शुरुआत में। वो था ना वो जो चैनल आता था एनिमल प्लैनेट, उसमें वो बैकग्राउंड पे जो चलती थी आवाज़, अब मादा शेरनी गुफा से बाहर आ रही है, नर इस वक्त आराम से पेड़ की छांव में बैठा है, ये सब बोलता था भाई मैं। मजे आते थे मुझे करने में, आधे जानवरों की तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गए मुझे इस चक्कर में। ये है छोटा बंदर, ये खानदान का सबसे छोटा बच्चा है। वो जो लिख के देते थे ना भाई, इतना फनी होता था वो। तो क्या याद दिला दिया आपने यार। और अब ये नर अगला गाना चलाएगा, अगला गाना है कुसु कुसु। इस सीजन में ये नर अक्सर ये गाना चलाया करता है। और ये गाना चल रहा है इस वक्त, मादा शेरनी गुफा से बाहर आके गाना सुन रही है, गाने का नाम है कुसु कुसु कुसु कुसु।

भाई सबके सब मैसेज कर रहे हैं एक ही बात अरे भाई वो जो वो जो एनिमल डॉक्यूमेंट्री आती थी ना शुरुआत में उसके लिए मैंने बहुत क्या कहते हैं बहुत वॉइस ओवर किए हिंदी वाली जो डबिंग होती थी एक तो फरद भाई को मजा आएगा एक भाई कह रहे हैं भाई आज के बाद जब भी मैं ये एनिमल डॉक्यूमेंट्री सुनूंगा आपकी याद आएगी वो ऐसी होती थी भाई और वो जो लिख के देते हैं ना स्क्रिप्ट में आपको बताऊं आपको अंदर क्या बताता हूं तो वो लोग जब डबिंग कराते हैं तो आपको बता तो देते हैं जानवर के बारे में जिसके आप आसपास बोल रहे हैं मगर आपको जो वॉइस ओवर देते हैं बड़ा कमाल का होता है मुझे आज भी एक वॉइस ओवर याद है उसमें दिया था उसमें लिखा था और ये है चीता घर का सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे तेज भागने वाला जब ये शिकार करने के लिए तैयार होगा तो ये अपने माँ बाप से दूर जंगल में चला जाएगा मैं वो बिना हंसे बोल ही नहीं पाता था पर उनको टोन ही ऐसी चाहिए क्या करें ये बंदर अब पेड़ पर चढ़ चुका है अब ये किसी की नहीं सुनेगा म्यूजिक प्लीज

0: एक भाई ने मैसेज किया, वैसे भाई जब आप दादी अम्मी की क्या है, जैसे भाई जैसे दादी अम्मी स्टोरी सुनाती हैं बिल्कुल आप वैसी स्टोरी सुनाते हैं भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आराम से भाई मेरे जाइए, नमाज पढ़ के आइए इंशाल्लाह। और ये सऊदी अरब से उन्होंने मैसेज किया, आई डोंट नो उनका नाम क्या है। नसीम साहब कहते हैं अच्छा है उस्ताद, थैंक यू सो मच फरहत भाई। फरहत भाई आप सुनेंगे ना आवाज़ कभी भी तो आपको ये याद आएगा। एक कॉल आ रही है, कॉल उठा लेते हैं। हमारी कॉल पर कौन सा नर आया है? अस्सलाम वालेकुम। अरे मुझे अचानक से याद आ गया यार, वो बात
1: बहुत मजा आ रहा था अभी जो लास्ट वाला भी बोले वाला वो।
0: अरे वो जो लिख के देते थे ना उनको, उनको स्ट्रेट फेस बोलना बहुत मुश्किल काम है भाई। वो इतनी फनी स्क्रिप्ट होती है, लगता है ये बिना से कैसे बोलूंगा मैं। बड़ा मजा आता था मतलब। मजेदार चीज थी भाई वो, बहुत मजेदार चीज थी,
1: बहुत मजा आया।
0: तो यही है भाई सीन, बाकी तो चलता ही रहेगा। आपने कहानी वानी सुनी? नहीं सुनी, नहीं सुन पाया। अच्छा मुझे लगा।
1: अरे कहानी कहानी कबीर भाई बहुत जबरदस्त कहानी,
0: वाकई
1: में बंदा सरवाइव कर गया है। रिसन भाई को सैल्यूट है। मतलब हिम्मत तो तोड़ दी थी उसने, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था छोटी मोटी सही।
0: हाँ भाई, ये वो जो 60 घंटे भाई ने बिताए हैं ना, वो वीडियो आप कोई देख लेगा ना, वीडियो देख के बोलेगा अरे ये क्या है भाई, कैसे कर गया वो।
1: तो कमाल है। उसका उसका लक भी था कि उसके करीब मछलियां नहीं आ पाई, नहीं तो वो 12 फीट, जब आपने कहा था ना कि 12 फीट के 2 शार्क वहाँ पे, तो वहाँ पे सही में मेरी भी हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मैं ही समंदर में हूँ।
0: क्योंकि भाई वो अगर जरा था हिलता डुलता ना तो वो फिर वो धार लेती है उसको, कहती अच्छा नू समझना नहीं आ पाऊंगी। तो फिर वो चला।
1: सही बात है, वो तो धर लेती उसको, लेकिन उसकी किस्मत भी थी और उसने भी कोशिश करी अपने आप को।
0: हाँ बहुत होते है भाई, बहुत होते है। मैं तो डर के, मुझे ठंड लग गई थी जब मैं तैयारी कर रहा था इस कहानी की।
1: मुझे पानी वैसे पसंद है, मुझे डाइविंग भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। वैसा कोई ये नहीं है, लेकिन इस पानी में वो 60 घंटे सरवाइव करना, ये थोड़ा सा मेरे लिए मतलब
0: भाई, आप वीडियो जरूर देखना, आपको जरूर मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैंने वो पूरा लिख के रखा। मैं अभी घर जाऊंगा तो मैं वीडियो जरूर देखूंगा वो।
0: डन है मेरा भाई, बाकी आपको डिस्कवरी की आवाज बीच में सुनाते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं।
1: कहानी आपकी बहुत अच्छी लगी।
0: और अब मादा शेरनी गुफा से बाहर आके कहानी सुनेगी।
1: फाइनली वो गुफा से बाहर आ गया। 60 घंटे पानी में रहा।
0: अरे उसमें फनी होता था, वो लोग जानवरों को नाम दे देते थे, मतलब वो लिटरली खुद देते थे नाम कि इसका नाम ये है, इसको बोलना कि इसका नाम ये रखा गया, अपनी मर्जी से बोलते थे वो और भी उसे फनी करते थे, मगर वो आपको हंसना नहीं है तो वो बड़ा अजीब सा मटेरियल होता है वो। पर
1: अभी लेकिन आप बहुत मजा आ रहा था वाकई में, मैं दूसरे स्टेटस पे था अभी थोड़ी देर पहले।
0: थैंक यू भाई, बहुत प्यार भाई, थैंक यू।
1: हिडन टैलेंट बॉस को नहीं पता चलना चाहिए थी तो मुश्किल होगी आपकी।
0: नहीं नहीं भाई, ये किसी को नहीं पता लगना चाहिए। किसी को नहीं पता लगना चाहिए। अरे भाई साहब, नहीं मुझे बहुत मजा आया था भाई, थैंक यू सो मच। और वीडियो जरूर देखना, मुझे बताना कि अगर आप वीडियो देख के वो क्या
1: एक्सपीरियंस। बिल्कुल मैंने मैसेज करी है, मुझे स्टोरी भी चाहिए होगी। मैं
0: डन डन मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा, जरूर भेजूंगा।
1: ओके भाई,
0: ओके भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह
0: अल्लाह हाफिज़ भाई। के बाद आसिफ भाई ने मैसेज किया है ना, कबीर भाई आपको तो इसका एक्सपीरियंस है लगता है, जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था घंटे का प्रोग्राम किया था तब। नहीं, ये उससे ही पहले का भाई, रेडियो से पहले ये सब किया करता था मैं, रेडियो में जब आया था उससे पहले किया था। एक मैसेज, वीडियो कैसे मिलेगा यूट्यूब भाई? हैरिसन ओकिन टाइप करना है आपको, मैं नाम लिख के देता हूँ, हैरिसन और को डबल आर हैरिसन ओकिंग, ये तो मैंने नाम लिख के दिया आपको, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा वीडियो। आमिर भाई मसईद से मैसेज किया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और एक मैसेज, सर कहानी नहीं सुन पाया फजील सर की वजह से कहानी नहीं सुन पाया। फजील सर ने क्या किया भाई? वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों तोड़ा। ये मैसेज किया अरबाज भाई ने, और लिखते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर आप बिग बॉस में हो, बिग बॉस की आवाज़ मुझे आपकी लग रही है। नहीं नहीं भाई, काश ऐसी होती, मैं नोट छाप रहा होता कोने में बैठ के। और एक मैसेज आया मेरे पास, बहुत प्यारा मैसेज है, कह रहे हैं आपकी आप डिस्कवरी पर आपकी वॉइस वाली वीडियो ढूंढनी पड़ेगी। मैं दे दूंगा आपको, मैं आज मुझे याद रहेगा आज मैं निकाल के लेके आता हूँ। और लिखते हैं भाई, इन्होंने बड़ा अच्छा किस्सा लिखा है बाय द वे, मैं सुनाना चाहता हूँ। भाई कहते हैं कि भाई मैं सुनता था आपको, मैं जो स्टाफ को शॉप पे ड्रॉप करने जाता हूँ तो आपका एफएम सुन रहा होता हूँ। वो स्टाफ जब सो रही होती है कार में, मुझे लग रहा है कि सब सो रहे हैं, कौन एफएम सुन रहा होगा सोकर। एक दिन वो स्टाफ लोग बोलती हैं इवनिंग रूम पे जाते हुए कि कबीर वाला चैनल लगाओ। मैंने बोला आप लोग तो सो रहे थे। वो बोली हम आँख बंद करके कबीर भाई को सुन रहे होते हैं। फैन फॉलोइंग भाई की, भाई मेरा भाई क्या बात है यार, एकदम कड़क मैसेज किए ले भाई, थैंक यू भाई। और एक मैसेज है क्या किया इन्होंने भाई साहब ने, एक सेकंड रुको, ये कह रहे हैं भाई आप जो स्टोरी सुनाते हो हमारे जहन में पूरी फिल्म चलती है। थैंक यू सो मच ताहिर भाई को, बहुत सारा प्यार ताहिर भाई, थैंक यू। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, मोहम्मद कलीम वकरा से लिखते हैं, मैं और मेरा दोस्त दोनों बैठकर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरा दोस्त का नाम है उस्मान। उस्मान भाई को अस्सलाम वालेकुम, उस्मान भाई थैंक यू। और एक मैसेज है सलाम, और एक मैसेज है वीडियो देख के उन्होंने मैसेज किया है कि तौबा डर लग रहा है, हम तो बीच का प्रोग्राम बना रहे हैं और ये वीडियो। बीच में शिप लेके नहीं उतर जाना है, ठीक है, थोड़ा सा काबू रखना है जिस बातों में। और एक मैसेज भाई, स्टोरी सेंड मी, रूम जाकर सुनता हूँ, जरूर जरूर जरूर जरूर, नो प्रॉब्लम। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, टुडे स्टोरी इज द स्टोरी, भाई टुडे स्टोरी इज द स्टोरी, ठीक है भाई आप जैसा बोले। और एक मैसेज था मुझसे मिस हो गया है, क्या राणा वहीद साहब दूसरी शादी कर रहे हैं तो क्या हो गया भाई। जल क्यों रहे हो, उसकी कामयाबी से तुमको क्या परेशानी है। ऐसा लग रहा है शिकायत कर रहे हैं उसकी, हे राणा वहीद भाई है ना दूसरी शादी कर रहे हैं। बताओ कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। भाई ये सवाल गलत है, कहानी कैसे लगी, क्यों, क्या सवाल, मतलब क्या होना चाहिए बताइए, आप ही बता दीजिए। बाकी 666-22107 नंबर है। मैं तो सजेस्ट ही करूँगा आपको ये कहानी ना जो आज सुनाइए, जिनको बाद में मिलेगी वो बाद में, लेकिन ज़रूर सर्च करना है इस बंदे को यूट्यूब पे। आप वीडियो देखोगे ना भाई, रूह कांप जाएगी आपकी, बता रहा हूँ मैं, मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के, पूरे पैसे वसूले भाई इसको देखने के बाद। बाकी 666-22107 नंबर है। एक बढ़िया शगाना लाएंगे भाई, रश्मित कौर रैश किंग, और उससे पहले एक और गाना है, रुको किधर गया भाई गाना है वो, मुझे मिल नहीं रहा, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, मुझे मिल जाना चाहिए, जैसे ही मिल जाएगा भाई मैं चला दूंगा। मिल क्या, क्यों नहीं दे रहा ये गाना, कि इधर चलाऊं मैं इधर चले, नहीं भाई दिखा कोई नहीं, वो गाना नहीं है। बाकी एक मैसेज और आ गया इस बीच, हाँ भाई क्या क्या मैसेज है, सर वीडियो लिंक अगर सेंड कर दो यार मेरा नाम, मैं एक सेकेंड मैं नाम लिख के देता हूँ आपको, अरबाज भाई आप सर्च कर लेना, ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। हैरिसन ओकीन नाम है, चलो मैंने लिख के भेज दिया आपको, कि गाना बजा दो या तो फिर कॉल उठा लो। अरे रे कैसी धमकी दी है भाई ने, रुको पहले इनको कॉल कर लेते हैं, इनका हिसाब किताब किया जाए, एक सेकेंड। ये है हमारे आसिफ भाई, आसिफ भाई को हम लगा रहे हैं, कॉल लगा रहे हैं आसिफ भाई को, आसिफ भाई ये लो उठाई लो कॉल, जाड़ा लगे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या हाल है पाटी?
2: हाँ पाजी जबरदस्त, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई क्या हाल चाल?
0: अरे भाई साहब कैसे हैं आप?
2: वो लाइन बोल दो ना एक बार तुम्हारी।
0: नहीं नहीं भाई थैंक यू सो मच, इतना ही काफी। इतने में इतना इंच मिलेगा आज भाई, यादव पहनने का नहीं क्या?
2: नहीं नहीं भाई, मैं चाहता हूँ एक बार तुम अपना असली रूप दिखा दो पब्लिक को, पब्लिक जानती नहीं भाई तुमको।
0: सबको अंदाजा है मेरे भाई, हर कोई बोलता
2: नहीं नहीं भाई, लोगों को गलत फहमी के शिकार है लोग भाई, तुम असली चेहरा दिखा दो अपना एक बार।
0: यार ये तो यार मतलब ऐसा थोड़ी बहुत बड़ा एक्सपोजे हो जाएगा, मतलब हद हो गई।
2: अरे नहीं भाई, मैं जनता जनता जनार्दन जानना चाहती है आपका असली रूप क्या है।
0: मैं अलग से वॉइस नोट भेज दूंगा, ने कोई दिक्कत नहीं है।
2: वैसा आपका गाना बहुत, सॉरी गाना बोल रहा हूँ, कहानी बहुत अच्छी थी भाई।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो कब जा रहे हैं समुद्र में अब आसिफ भाई?
2: नहीं बार बार आप वो जो कर रहे थे ना स्टाइल,
0: हाँ
2: वो बचाने वाली, वो बचता ना इंसान, वो स्टाइल वो बहुत अच्छी लगी भाई तुम्हारी मेरे को।
0: मजा आया ये बताओ।
2: मजा नहीं आया भाई, बाकी कुछ भी बोलो।
0: तो कब जा रहे हैं आसिफ भाई फिर बूट पलटाने मेरा भाई?
2: ए भाई जब तुम चाहो जब पहुंचा दो भाई।
0: शार कहेंगे, शार को बोलना क्या बनता है खाने का ही क्या। क्या बच्चे
2: को भाई एकदम फुल समझ रहे, तुम फुल पब्लिक को लपेट रहे तुम अपने जादू में।
0: जादू तो क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत आ गई?
2: पब्लिक पब्लिक भाई एकदम परेशान है, असली रूप दिखा दो भाई, आज तुम अपलोड कर दो भाई इंस्टाग्राम पे फोटो।
0: मैं लुक डालूंगा भाई, अभी कुछ दिनों में मैं लुक अपलोड कर दूंगा। मैं
2: जब से भाई मैं सोचा ना कि मतलब भाई ने आवारापन देख के अपना लुक बदली कर,
0: नहीं आवारापन देख के नहीं बदला भाई। हाँ ये गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, या हवा मत फैलाओ, वैसा कुछ नहीं किया है। मैं थोड़ा बाद में चेंज किया था, मतलब पहले से प्लान था।
2: डन डन, मैं भी देखना चाहता हूँ भाई, भाई का असली।
0: डन भाई, भाई भेजेंगे ना भाई एकदम।
2: ओ एक तुम्हारे को एक चीज भेजा था, वो देखेगा नहीं भाई?
0: भाई किधर भेजे? इंस्टाग्राम में भेजेगा?
2: जो चश्मा लगा के फोटो खींच डालता है डीपी पे, वो कैसा लगता है?
0: देखा पहले। ठीक है कोई बात नहीं, फंस गए बेटे।
2: भाई एक तुम्हारा भाई मैसेज लिसनर है, वो आपको सुनता है, उसका बर्थडे है, तो कोई सैड सॉन्ग बजा दो उसके नाम पे आवर अपन का।
0: क्या कौन है ये
2: भाई? पहला एक मैसेज आया था आपको, भाई मेरा बर्थडे है, कोई सैड सॉन्ग बजा दो।
0: हाँ बताओ यार, क्या मेरा बर्थडे सैड सॉन्ग बजा दो
2: भाई, उसका आवर अपन का गाना सुना दो भाई, फिर तो फिर आ जा।
0: हद हो गई यार ये बर्थडे पे भी लोग ऐसे। अगस्त के महीने में जो जो पैदा हुए हैं भाई, सबसे मेरा बहुत जी जान जिगर सब लगा के रखा है मैंने, क्योंकि मैं खुद अगस्त की पैदाइश हूँ, तो सबको हैप्पी बर्थडे जिनका भी अगस्त में आएगा या आने वाला है। आपका बर्थडे कब है आसिफ भाई?
2: जुलाई 7।
0: अरे भाई साहब,
2: भाई एमएस धोनी, भाई तो एमएस धोनी के टाइम पे अपन पैदा हुए।
0: अरे भाई साहब, फिर भी आपके ऐसे करम है आए।
2: कबीर भाई बहुत बहुत बहुत दिल खुश करते हैं भाई।
0: थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार भाई।
2: अखा एफएम एक तरफ, कबीर भाई एक तरफ।
0: हाय, ये वाली लाइन फैलनी चाहिए आसिफ भाई, ये लाइन फैलनी चाहिए।
2: फैल गई भाई, आज से फैल गई, कल से तुमको ये मैसेज आएंगे भाई।
0: भाई
2: शो एक तरफ, कबीर भाई का शो एक तरफ।
0: हाँ बेटे, आज तो गिफ्ट दे दिया भाई ने बर्थडे का, क्या बात है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत प्यार आसिफ भाई।
2: थैंक यू
0: मेरा भाई, ख्याल रखो मेरा आसिफ भाई।
2: ओके
0: भाई, अल्लाह हाफिज। और आसिफ भाई की मोहब्बत के बाद एक मैसेज आया मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा कबीर भाई, आपकी डिस्कवरी वॉइस ओवर है ने माहौल बना दिया, एक शो शुरू कीजिए, लोगों को डिस्कवरी लाइक वॉइस ओवर करने को कहें, बेस्ट वॉइस शॉर्ट आउट दें। ये अच्छा आइडिया है। वालेकुम अस्सलाम लिख दूँ पहले ने में, क्या आइडिया दिया है, जिहान नाम है इनका, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम एंड ग्रेट आइडिया। ये सेगमेंट कभी करते हैं, है ना, सबसे बेस्ट आवाज़ जो होगी उसको हमारी तरफ से मिलेगा इनाम। आए एक मैसेज आया है मायापुरी वाले कबीर भाई, हर ए भाई सर, हमें आपकी कहानी का नशा हो गया। अच्छी बात है भाई, ये तो अच्छी चीज़ है शमशाद भाई, बहुत सारा प्यार भाई शमशाद को। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया भाई। और फोटो भेजा भाई ने, सर आपकी वॉइस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सर अगर आप कहानी में हर आदमी की वॉइस ओवर करते तो बहुत अच्छा आता। मैं सब किसी हर किसी का वॉइस ओवर करूँ, मैं पैसे लगते हैं इसके। मकसूद भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, थैंक यू सो मच, उनको स्टोरी अच्छी लगी, आप और सुनाओ, आप सुनाओ और कहानी अच्छी ना हो, मेरा भाई बहुत प्यार, थैंक यू। तो ये कुछ वो मैसेजेस हैं, एक आध अगर मुझसे मिस हुए तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ, आई ट्राई मेड लेवल बेस्ट के सारे पढ़ लूँ। सोहेल भाई थैंक यू सो मच। ओके तो ये थे कुछ जो

मैसेजेस मेरे पास आए हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आए और ये जो डिस्कवरी की आवाज़ के लोग दीवाने हुए, थैंक यू सो मच। मैंने ये नहीं सोचा था भाई कि इतना अच्छा लग जाएगा। एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, वी डिडंट गेट, अच्छा ओके, मैं आपसे अलग से बात करता हूँ। इसरा मोहम्मद जी का मैसेज, इसरा आई एम अबाउट टू टेक्स्ट यू राइट नाउ, किधर भी जाने का नहीं। बाकी 666-22107 नंबर है, 666-22107। एंड ज़रा भाई किधर गया गाना, ओके ये चलाते हैं, काफ़ी टाइम बाद। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस ट्रैक, आया था बहुत जल्दी आया था ये, हाल फिलहाल नहीं कहूँगा, 11 साल हो गए। इमरान खान की आवाज, इमेजिनरी। ये लो भाई, जिसका बर्थडे उसके लिए गाना, सैड नहीं बजा सकता मैं, इसलिए आई एम चूजिंग दिस वन। 6

इस गाने के बाद एक भाई ने मैसेज किया है भाई कह रहे हैं भाई ये सॉन्ग सुनने के बाद अलग ही एनर्जी लेवल आ जाता है, कह रहे हैं कार की स्पीड 40 से 100 पे जा रही है, गाड़ी साइड में स्टॉप करके मैसेज करना पड़ा, डर इस बात का था कहीं 140 से चली जाए। अरे नहीं भाई प्लीज ड्राइव सेफली मेरी जान, थैंक यू सो मच। ये मोहम्मद सलीम साहब जोश में आ गए है, मेरी इमेजिनरी गर्ल है। नहीं भाई स्पीड काबू में भाई। कभी कभी इधर देखो, मैं स्पीड की बात चली तो मैं आज ही कहना भी चाह रहा हूँ, जिन लोगों को राइट पर चलानी है आप चलाइए राइट पे, मसला कोई नहीं है, आप राइट में चलाइए, बिल्कुल चलाइए, आपको स्लो स्पीड से जाना है, मगर भाई स्लो स्पीड का मतलब ये थोड़ी है कि 80 के रोड पे 50 पे चलाओगे यार, ऐसा तो मत करो। मेरी ऐसी कोई खास किसी से शिकायत, कोई रंजिश नहीं है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो दोबारा क्लियर कर देते हैं, लेफ्ट में जो जा रहा है जान दो उसको, उसको जल्दी हो जा रहा है ना, बीच की लेन में जो जा रहा है उसको भी जाने दो, ये जो राइट वाले हैं, मैं मान रहा हूं आपको स्लो जाना है, थोड़ी तो स्पीड मेंटेन कर लो, 50 की स्पीड पर जा रहे हैं यार। मैं तो कुछ लोगों देखा है उनको साइड्स में निकलते हैं ना, आप साइड से निकलते हुए देखते हैं आप, भाई खरबूजे खा रहे हैं लोग गाड़ी चलाते हुए यार,

सवाल से मिलेगी, पूरी सवाल से मिलेगी। कुछ चीज़ों के ऊपर जरा नज़र फेर लेते हैं। सबसे पहली तो बात है मौसम की, क्योंकि अभी कई सारी खबरें आ रही हैं। तो कल से थोड़ा सा टेम्परेचर, ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम से ओ ठंडा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट कल से थोड़ा टेम्परेचर मिड में आ जाएगा। अभी क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो 44-45 तक जा रहा है, दैट विल कम डाउन अ लिटिल बिट, सो 41-42 के आसपास आ जाएगा। एक दो डिग्री का फर्क आपको दोपहर में महसूस होगा। महसूस करने के लिए घर से बाहर निकल के सूरज के सामने नहीं खड़े हो जाना, मतलब फर्क महसूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी गर्मी है, तो प्लीज़ कतर में रहकर एक आदत हो जाती है कि पानी पीना भी लोग भूल जाते हैं भाई, मतलब इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ। ये बड़ी अजीब सी बात है बट है। तो जो लोग नए नए कतर में आए हैं, उनको लग रहा होगा हाँ घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, एसी की तेजी हो जाती है भाई, तो पानी ज़रूर पी लिया करें, बिकॉज अंदाज़ा नहीं होता है कि आपने कितना इनटेक किया है। और फिर इस गर्मी में आधे लोग अभी बुखार से परेशान हैं। मैं जितने मैं मेरे पास मैसेज जितने भी आए हैं, उनमें से मैं चलो मैं गिन के देखूँ तो 4 लोग तो मुझे बोल चुके हैं उन्हें बुखार हो रहा है। सो प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें। मैं अमूमन लेक्चर देने में यकीन नहीं रखता हूँ, मेरे कहने से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बट इतना है कि भाई रिमाइंडर है बस, और तो कुछ नहीं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, जो मैंने लुक बदला है वो भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अब तो पब्लिक भाई रील बना देगी, तो जल्दी जल्दी उस पर लुक डालेंगे। तो आप भी आ सकते हैं, 666-22-107 ये व्हाट्सएप का नंबर है, ट्रैफिक का हाल ज़रूर बताइएगा, 666-22-107 पर मैं इंतज़ार करूँगा। बाकी मुझे भी आप ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, दोहा वाला कबीर FM107 में आपको मिल जाऊंगा। कबीर की जो स्पेलिंग है, बस वो भाई थोड़ी ठीक रखना, अक्सर वही स्पेलिंग लोग गलत लिख देते हैं और फिर जो है फिर कहते हैं आपकी तो प्रोफाइल मिलती नहीं है, ऐसा नहीं है, मिल जाएगी, बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। 666-22-107 एक मैसेज आया मेरे पास, तो बस मैं लिखती हूँ, दैट्स माई हस्बैंड। अरे साइड की गाड़ी धूम की स्पीड से निकल रही होती है और ये बंदा 40 की स्पीड पर चल रहा होता है, कभी कभी लगता है बैलगाड़ी में बैठी हो, आई लिटरली फ्राउन, और वो खरबूजा नहीं संतरे खा रहे होते बहन मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कल ही देखा है, कल ही पूरी जगह ट्रैफिक लगा हुआ है, और मंसूरे की जगह आप लोग जानते हैं कैसी है, वहाँ पे पूरा जाम है, ठीक है, राइट की लेन थोड़ी सी खाली जा रही थी, एक बंदा अपना मन मोजी, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया इतना स्लो चला रहा है, गाड़ी वाड़ी ख़राब है, पर इसने हैजर्ड लाइट तो जला नहीं रखी। मैं उसके साइड से निकल रहा था और मैंने देखा वो बंदा खरबूजा खा रहा है भाई, खरबूजा खाते खाते चिल मोड में गाड़ी चला रहा है, मगर जिंदगी तो यही जी रहा है यही जी रहा है जिंदगी। तो बस राइट हैंड साइड पे चलाने वालों से मेरी गुजारिश है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू ड्राइव स्लो, थोड़ी सी बस स्पीड मेंटेन कर लो प्लीज, है ना। कल से तेज चलाएंगे, कल से तेज चलेगी गाड़ी, प्लीज मेंटेन कर लेना। बाकी तो एक भाई का बर्थडे था तो उन्होंने कहा था सैड गाना चला दो, नाम भूल गया मैं उनका, इतनी सैड बात कर गए वो, लेकिन भाई आपके लिए भाई, भाई का बर्थडे, भाई को बर्थडे में सैड गाना सुनना है तो सुनना है, भाई ने बोला करने का तो करने का भाई और एक मैसेज है, मैं कह रहा मांग लेना था उससे खरबूजा भाई अगर शीशा खुला होता ना मैं कहता भाई एक पीस तो फिर आओ, सुन रहे हो, और तेज चलाओ तुम्हारे लिए खरबूजा देता हूँ, एक पीस बस

तो फिर आओ। भाई जिन्होंने मुझे कहा था कि सेट गाना चलाना है उनके बर्थडे पे, ये लो भाई अब आपकी आंखों से खतरे गिरा गिरा के खाओ और ये रहा तो फिर आओ। हमें ये तो राइम कर गया। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं दुआ वाला कबीर मोहसिन भाई कह रहे कौन है, कहाँ से आते लोग भाई। उन्होंने खुद बोला कह रहे मेरा बर्थडे है, मेरे को सैड गाना सुनना है। मैं कहा ठीक है, आप केक पर आंसू गिराइए आराम से खाइए, मेरे को क्या, एज लॉन्ग एज सामने वाला बंदा खुश है अपने बर्थडे पे और कोई मतलब नहीं भाई, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। साफ सीधी बात। तो आगे अहमद भट्ट साहब ने मैसेज किया है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या मस्त सॉन्ग लगाया था कुसु कुसु, नाउ दिस सॉन्ग, क्या सिलेक्शन है भाई। भाई आपका भाई हल्के काम तो करता ही नहीं भाई। अच्छा एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कुछ देर पहले, वो कह रहे थे कि भाई आप मूवी का रिव्यू अच्छा देते हैं तो मुझे बताइए कि हॉरर मूवी कौन सी देखूं। ओके वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी हेल्प यू।

बट देखो, क्योंकि आपने पूछा कि मूवी रिकमेंडेशन चाहिए आपको, पिछली बार मैंने आई थिंक बॉलीवुड का बता दिया, सब बता दिए. अभी मैं कुछ हॉरर मूवीज बताता हूँ, क्योंकि एक भाई ने पूछा भी है. सो अगर पास्ट फाइव ईयर

की बात की जाए 2021 से लेकर 2026 तक, तो कुछ मूवीज हैं जो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी पर्सनली. मैं कोई रैंकिंग के ऑर्डर में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रैंडमली बता रहा हूँ, ठीक है. ब्रिंग हर बैक, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज देखिए, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज.

व्हेन इवल लर्क्स, LURKS. तो भाई ये चार अभी के लिए बता रहा हूँ आपको. इफ़ यू हैव, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू वॉच समथिंग तो फिर आप जरूर देखिए. आई थिंक ब्रिंग हर बैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हॉरर फ्लिक्स मेड. एक मैसेज है भाई, ब्रिंग हर बैक तो फिर आओ जैसा हो गया, ब्रिंग हर बैक तो फिर आओ जैसा हो गया. हाँ से भाई सही लगाया अपने हिसाब के साथ. ब्रिंग हर बैक का अगर टाइटल ट्रैक होता हिंदी में तो फिर ओवर से बहुत भूत दौड़ता हुआ आ रहा है. अच्छा हो सकता है, वेरी गुड, अच्छा पंच था भाई ये, तो बहुत सॉलिड पंच था भाई. बट या जोक्स अपार्ट, नहीं जोक्स के साथ ही, पर ये हॉरर फ्लिक्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सात पाँच सालों में बहुत बढ़िया बनी है. अगर रैंकिंग भी करनी हो तो मैं रैंकिंग में ब्रिंग हर बैक को बढ़िया रखूंगा ऊपर. मुझे वेपन से कोई डर नहीं लगा. लोगों ने बोलता हूँ वेपन्स ओ देख लोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी नहीं है. मुझे अगर आपको प्रॉपर हॉरर चाहिए तो भाई उसमें वेपन्स तो नहीं आती, ठीक है टॉप 10 में डाल देते हैं उसको. बट ब्रिंग हर बैक, ऑडिटी, व्हेन इवर लर्क्स और बारबेरियन, ये आई थिंक बारबेरियन और ब्रिंग हर बैक के डायरेक्टर दोनों सेम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये लिस्ट है, इनमें से जो मूवी आपको मिले देख डालना, क्योंकि हाल फिलहाल में तो कोई अच्छी आई नहीं है. इंसीडियस भी पिट गई भाई थिएटर में आके, मजा को नहीं आवा भाई इंसीडियस देख के, इसलिए मैं खुद नहीं जा रहा थिएटर, वरना मेरा प्लान था कि इंसीडियस कम से कम देखने जाऊंगा. आपकी कौन सी पसंदीदा मूवी रही है हाल फिलहाल में बताइएगा, स्पेशली हॉरर फ्लिक्स, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं हॉरर के बारे में, तो बताना ज़रूर मुझे. बट ये मेरी लिस्ट थी भाई, एटलीस्ट पाँच जो मैंने आपको बताई. इन्होंने कौन सा भाई, वो वाला नहीं है ना मामला, क्या है भाई, ये मेरे पास गाना है नहीं, आई हैव टू सर्च, होना तो चाहिए था पर है नहीं, क्या टाइप करके भेजना है. ओके भाई मैं टाइप करके भेजता हूँ फरद भाई को. बाकी 666-22107 नंबर है, 666-22107. सचिन जिगर का संगीत, रश्मीत कौर साथ में, रैश किंग ठुमकेश्वरई. भाई साहब 6:45 क्या हाल है भाई, बढ़िया. मैसेज कर दिया करो, देखो बढ़िया सा लगता है, ठीक है.

और कुछ मैसेजेस हैं जाने से पहले भी इतने प्यारे मैसेजेस यार, मतलब फरद भाई ने बोला है कि भाई आपके जाने का टाइम आते ही दिल मायूस हो जाता है, कुछ भी बोलो भाई, बहुत सो स्वीट ऑफ यू मेरे भाई, ये पता कैसा मोमेंट है, ओह थैंक यू भाई। और एक और भाई ने मैसेज किया है, बाकी सब एक तरफ भाई का शो एक तरफ, अरे मेरा भाई, थैंक यू भाई, कह रहे भाई ये तो मैं पेटेंट करवा के रहूंगा बार बार बोल बोल।

थैंक यू सो मच, इतनी सारी शाबाशों के लिए. और लिखते हैं भाई, प्यारे भाई लोगों का दिल में आपके लिए. थैंक यू सो मच फरहत भाई, मैं बड़ा ओवरवेल्म हूँ. थैंक यू सो मच. और ये भाई कह रहे हैं एम्पलीफायर चला दो. भाई शो ही खत्म हो लिया, क्या एम्पलीफाई कर लो इस बात को, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. मगर आज भाई थैंक यू सो मच. बाकी एफ एम 107 पर मैं दोहा वाला कबीर. और ये दो घंटे कब निकल जाते हैं सीरियसली कुछ पता ही नहीं लगता. जो एक्साइटमेंट होती है ना वो बात करने की, कहानी सुनाने की, और खामा खाम कुछ बात करते. सबसे ज़्यादा मज़ेदार पता है शो का पार्ट क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि शाम के शो में, या आप कभी भी आप मेरे साथ बात करते हैं, मुझे अच्छा ही लगता है कि जो भी बात कर रहा होता है खुल के बात करता, दिल खोल के. एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. उसमें कोई वो नहीं होता, प्रोटोकॉल नहीं होता. बिना फिल्टर के बात हो रही होती है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो. सो थैंक यू सो मच. हर हर किसी को बहुत सारा प्यार. जिस तरीके से हम मैसेजेस करते हैं, सच में ऐसा लगता है कि यारों का झुंड जो है सारे बैठे हुए हैं साथ में और वो सुन रहे हैं. भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस फीलिंग. ऑन दैट नोट, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, ज़रूर जुड़िएगा. मैं दोहा वाला कबीर, dohawalakabir.fm107 के नाम से मिल जाऊँगा. और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल को. मिलते हैं, अब तो हफ्ता शुरू हुआ भाई, कल मिलेंगे ठीक है, शाम में 5 बजे बढ़िया सी कहीं लाएंगे. तब तक आप सुबह से मिस कीजिएगा, मैं आपको मिस करूंगा. मिसी मिसी खेलेंगे, बस शाम में मिल जाएंगे ठीक है. अभी 7 बजे न्यूज़ बुलेटिन एंड कहानी में भेजता हूँ आपको चाय पीते पीते. दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं. मा सलामा.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

आइए, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन, वेलकम टू द वर्ल्ड जो बदलता ही रहता है हर सेकंड, वेलकम टू टेक इनोवेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं दूहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड टेक इनोवेशन में आज भी बहुत कुछ है बरबर की। ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आपके काम आएंगी, कोई भी ऐसी बात नहीं जो घुमा फिरा के करनी पड़े, पॉइंट ब्लैंक एक एक चीज आपके काम की। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर आपको चीज ना समझ में आए, आपको लगे कि दोबारा सुननी है या जानना है, तो आप बाकी शोज में मुझसे पूछ सकते हैं जब मैं लाइव रहूंगा आपके साथ। मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों से टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के बारे में भी। आई लव इट, आई लव गैजेट्स, आई लव टेक्नोलॉजी, इसलिए मैं बहुत ही चाव से आपके लिए सब लिख के आता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्स की, फिर गैजेट्स की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद हम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। तो मेनली जो चीज मेन है, सोशल मीडिया हैंडल्स, वहां पे जरूर जरूर जुड़े रहें, परिवार हमारा बढ़ता रहना चाहिए सोशल मीडिया का।

0: तो FM 107 कतर, FM 107 कतर इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। सो प्लीज गैर इन टच विद अस, ठीक है? शुरू करें, शुरू करते हैं सबसे पहले AI टूल्स एप्स दिस वीक से।
1: ट्रेंडिंग एप्स, ट्रेंडिंग एप्स।
0: तो सबसे पहले ऑन द लिस्ट, ये कोई रैंकिंग नहीं है, रेंडमली आपको बता रहा हूं। तो नंबर वन पे मैं सबसे पहले बात करूंगा sushi.ai की, SWISHY, sushi.ai। ये जो AI है, एक कमाल की वेबसाइट है इसकी, जब आप गूगल पर डालेंगे तो वेबसाइट सबसे पहले आ जाएगी। ये हर किसी सोशल मीडिया पे काम करने वाले बंदे के लिए है। अगर आप अपना करियर सोच रहे हैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो आपके बहुत काम आएगी। अगर आप वीडियो एडिट करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, टिकटॉक पे डालते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। ये AI ये वेबसाइट आपको देती है मोशन ग्राफिक्स, जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके हिसाब से इंट्रोस देख सकते हैं, आप कट्स लगा सकते हैं। और आपको कोई भी अगर टेम्पलेट पूरी वेबसाइट पे समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी इतने सारे सिलेक्शन में से मेरे पसंद का कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। आप स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रॉम्प्ट देकर कि यू नो व्हाट, मुझे ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा चाहिए, ये कलर चाहिए, ऐसी स्टाइलिंग चाहिए, एंड इट विल गिव यू। मोस्टली फीचर्स इसके फ्री हैं, जो प्रो वर्जन है इसका वो कुछ चीजों के लिए है, तो आपका काम हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो स्विशी, ये जब आप नाम टाइप करेंगे गूगल पे, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, वहां जरूर जाइएगा। सो SWISHY, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे जो इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे काम करते हैं या बनाना चाहते हैं कुछ, ये आपके लिए बहुत मददगार, बहुत मददगार है ये। ट्राई दिस वन, आपको सच में अच्छी लगेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई मेरा फेवरेट, इसका नाम है Pixabay, PIXABAY। दोबारा बोल देता हूं, PIXABAY। अभी क्या करता है ये वेबसाइट पे, जब जाएंगे आप Pixabay, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, पहले ही वो है वेबसाइट होगी। तो अमूमन जब आप ढूंढने निकलते हैं, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, आपको कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं, बहुत मसले आते हैं। फिर आप उन साइट्स पे जाते हैं जो आपको पेड वर्जन लेने पे मजबूर कर देते हैं, बिकॉज दे विल नॉट गिव यू फ्री वर्जन ऑफ इट। उन सब का तोड़ यही है, आप Pixabay जाइए, आपको साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, आपको बैकग्राउंड स्कोर मिलेगा, आपको म्यूजिक मिलेगा फॉर योर वीडियोस, आपको अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस मिल जाएंगे, और ये ट्रेंडी ट्रांजिशंस हैं इस वेबसाइट्स पे। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रेंडिंग चल रही हैं, जो आपने कहीं साउंड सुना है बहुत ज्यादा फेमस है, एंड यू वॉन्ट टू यूज इट समवेयर इन द वीडियो, और आप ढूंढ रहे हो उसको, यूट्यूब पे लगे हुए ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, वो आपको यहां मिलेगा। ये फ्री है और इसका एक एक चीज आपके काम आ सकती है। तो अगर आप काम करते हैं वीडियोस पे, आप काम करते हैं ऑडियो के चीजें बनाते हैं, और या आपको जनरली प्रोफाइल के लिए कुछ चाहिए अपने बनाना है, तो ये डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इट इज ऑल फ्री एंड यू जस्ट हैव टू लॉग इन एंड आपका काम हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। Pixabay, PIXABAY, BGM मतलब बैकग्राउंड स्कोर, साउंड इफेक्ट्स, और कॉपीराइट फ्री ग्राफिक्स, मतलब कोई कॉपीराइट शॉपीराइट कुछ नहीं है, आपको आराम से कंटेंट के लिए अपने यहां से सारा का सारा सामान मिलेगा, समझ रहे हैं आप, आपके मजे आ जाएंगे। तो ये आपके काम का है, और फैला दीजिए, किसी को अगर बताना चाहे तो बताइए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे, और ये ऐप नहीं वेबसाइट है, तो ये क्लियर कर दूं मैं, ये वाली जो वेबसाइट है ये फिर से आपके सोशल मीडिया कंटेंट के लिए, इसका नाम है transitionalhooks.com, TRANSITIONAL, transitionalhooks.com। ट्रांजिशनल हुक्स की जो वेबसाइट है, ये आपको सारे ट्रेंडी ट्रांजिशन देगी, आपको उन्हें अलग से एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये काम आएगा आपके वीडियोस में। समटाइम्स आपको ट्रांजिशन देखते हैं बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो में, एंड यूर लाइक यार ये कैसे किया इसने, यार ये तो ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है मेरे, और फिर आप अपने तिगड़म लड़ाते हैं, आप फिर AI के पास जाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, मगर यहाँ पे आपको हाथों हाथ एक टेम्पलेट मिल जाएगा, और उस टेम्पलेट को यूज करके आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं, लिटरली स्काई इज द लिमिट। आप इसमें देखेंगे तो वही ट्रांजिशन है जो आपको अक्सर रील्स में मिलते हैं, आपको टिकटॉक पे नजर आते हैं, या आपने देखा होगा कि बड़े फैंसी तरीके से ट्रांजिशन होता है एक चीज से दूसरी चीज की तरफ, यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स इसे यूज करते हैं, तो ये आपके काम भी आ सकता है। सो ये मैंने जो आज आपको तीनों चीजें बताई हैं, ये तीनों चीजें आपके करियर को एज एन इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे आप कुछ करना चाहते हैं।

0: उसे बूस्ट करेंगी, डेफिनेटली हेल्पफुल, एंड आप करते करते सीखते चले जाएंगे। समझ रहे, इन वेबसाइट्स के साथ क्या है कि करते करते चीजें समझ में आती हैं, और जब आ जाती हैं तो एक एक फन वे में आप बहुत कुछ सीख भी जाते हैं, और यू नेवर नो कि आपका करियर किक ऑफ हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनेट पे वही चीज चलती है जो थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, फिनिश्ड नजर आती है, फिनेस होती है उसमें, लगता है कि हाँ यार इस पे काम किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि एकदम स्मूथ और एकदम ऐसा लगे कि हाँ एक्सपर्टीज आपकी नजर आए, तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो, और ये वाली तो बहुत जरूरी है, transitionalhooks.com, transitionalhooks.com, ठीक है। ट्राई दिस वन आउट। अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स की तरफ, इन गैजेट्स दिस वीक।
1: cool gadgets.
0: तो गैजेट नंबर वन, मैंने सोचा था इस बार मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बजट में आपको मिल सकता है, और बहुत शानदार मिल सकता है। तो बजट फ्रेंडली एक हेडफोन है, बेसिकली एयरबर्ड्स हैं जो आपके बहुत काम के हैं। ये है बाय नथिंग CMF बर्ड्स 4A। तो CMF जो बर्ड्स हैं ये इतने सही हैं कि आपको लगेगा यार ये महंगे होने चाहिए थे। Sometimes you feel, यार ये इतने सस्ते कैसे हैं यार, ये तो बढ़िया काम करते हैं। एंड CMF के जो बर्ड्स हैं मैंने यूज भी करके देख लिए, और मैं पक्के इनसे कह सकता हूं कि आपको अगर एक बजट में बहुत बढ़िया साउंड चाहिए तो ये आपके काम का है। सो CMF नथिंग के जो एयरबड्स हैं वो आप चेक कीजिए, आपको मिलेंगे, बहुत सारे वर्जन हैं, मगर जो 4A है और जो उसके प्रो वर्जन हैं वो बहुत अच्छे हैं, काफी बजट फ्रेंडली हैं। ऐसा नहीं है सीधा लाओ जी 1200 रियाल निकालो, 800 रियाल निकालो, ऐसा नहीं है। और अगर आप का कोई दोस्त है जो इंडिया से आपको लाके दे सकता है, क्योंकि इंडिया में अमेजोन से डिलीवरी होगी या फिर लोकल स्टोर से मिलेगा, तो और भी सस्ता मिलेगा। कितना सस्ता बताऊं आपको, दिल में याद रखो, महज 120 रियाल, इस साधन मैक्सिमम नहीं तो 150, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। तो ये बहुत बहुत इफेक्टिव एयरबड्स हैं, बजट फ्रेंडली भी हैं, दिखते महंगे, ऊपर से कलर्स अलग आ जाते हैं इसमें। तो ये आप देखिएगा एंड ऑर्डर कर सकते हैं। अब कतर में लोकली कहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, वरना आपको दिखे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर बजट फ्रेंडली गैजेट। अब जो गैजेट के बारे में बात कर रहा हूँ ये भी बड़ा कमाल का है। अमूमन जब हम स्मार्ट वॉच की तरफ जाते हैं तो बहुत वाइड रेंज है, बड़ी बड़ी कंपनी इसमें कूदी हुई हैं, राइट फ्रॉम सैमसंग टू एप्पल टू हुआवे एंड डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं, जो फिटबिट, ये सब कुछ एक साथ इनमें जंग हो रही है। और जो स्मार्ट वॉचेस का जो रेंज है वो भी बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा रिसेंटली टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी हो गई है, जो वॉचेज हैं वो भी 1500 को क्रॉस कर रही हैं। आई रिमेंबर व्हेन एप्पल लॉन्च्ड वन वॉच और मैंने खुद जाके वो देखी थी तो 2100 रियाल की थी। तो अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी में स्पेशली स्मार्ट वॉचेस की जो जो जो सेक्शन है वो 1000 के नीचे बात नहीं करता, करता भी है तो बहुत कम। बट देन ऐसे में एक बजट फ्रेंडली वॉच हो तो कितनी कमाल की है। और मैं बैटरी लाइफ को मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सस्ती है तो भाई इसकी तो बैटरी खराब होगी, ना, बैटरी बाकियों से बहुत बढ़िया और घड़ी तो और भी बढ़िया और ऊपर से बजट फ्रेंडली। तो ये है CMF, अगेन नथिंग की है, वॉच प्रो टू, CMF वॉच प्रो टू। अगर लोकली अगेन मुझे दिखती है तो मैं आपको बताऊंगा, आप कहीं लोकली कतरे में मिले तो आंख बंद करके आपका मन करा है स्मार्ट वॉच लेने का तो ये ले लेना, बजट फ्रेंडली है। एंड इस वॉच का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, इंडियन रुपीज में बात करूं तो 3999 था, 4000 कुल मिला के, तो अगेन इट इज अराउंड दैट रेंज। तो यहाँ पे हो सकता है कि 250 रियाल के आसपास हो, मगर 250 रियाल और 300 रियाल फॉर अ स्मार्ट वॉच इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये घड़ी आप ये कलाई पे सस्ती भी नहीं दिखती, सबसे अच्छी बात ये, इट लुक्स फैंसी, इसका जो UI है वो भी बहुत बढ़िया है। एंड आई हैव बीन यूजिंग वन ऑफ दोज वॉचेस, मैं उसका नाम भूल गया हूं, मगर वो CMF की वॉच ही है और मेरा पर्सनल यूज है, इसलिए आपको बता रहा हूँ बैटरी लाइफ इसकी बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी है। और आपके जो बेसिक काम है, आपको स्लीप ट्रैकिंग करनी है, हार्ट बीट है, ये सब है, आप जिमिंग करते हैं, आप वॉक कर रहे हैं, यू नो स्टेप्स गिने, एवरीथिंग एनीथिंग जो बेसिक चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिसाइसली आपको जरूर बताएगी ये वॉच। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली वॉच देख रहे हैं दिस इज फॉर यू, और आपको लगे कि शेयर करना है, अगर लोकली कहीं मिलती है लेट मी नो एज वेल, CMF वॉच प्रो, गो फॉर इट, बढ़िया आगे चलो भाई। लास्ट गैजेट ऑन द लिस्ट, बहुत प्यारा, मुझे इस गैजेट से भाई हो गया प्यार, मोहब्बत हो गई सच्ची वाली। मैंने इतने सारे कीबोर्ड्स आपको आज तक बताए, कितने सारे कीबोर्ड बताए, कोई कीबोर्ड फोल्ड होकर जेब में आ जा रहा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, मगर यार इस कीबोर्ड से मेरे को हो गया प्यार भाई। ये कीबोर्ड है ओला इस

0: का नाम है AULA F75, ओला F75। ये एक कीबोर्ड है, आरजीबी लाइट है, बोलिंग आरजीबी लाइट तो कीबोर्ड में मिल ही जाती है, क्या बड़ी बात है। मगर ये ट्राई मोड गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसमें एक नॉब भी दी हुई है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी नॉब है राइट हैंड कॉर्नर में, और बड़ा अच्छा उसका फंक्शन है। ब्राइटनेस पे उसे लगा दो, वॉल्यूम के लिए यूज कर लो, एंड ये एनिमे स्टाइल में है। जो लोग गेमिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं शायद वो समझेंगे, एनिमे स्टाइल अगर आप एनिमे देखते तो भी समझेंगे। तो एक अलग सा लुक है इसका, ये कीबोर्ड इतना प्यारा लगा ना मुझे कि मैं अगर पीसी पे गेमिंग कर रहा होता तो मैं पहली फुर्सत में से लेके आता, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पीछे यूएसबी के सेक्शन दिया हुआ है, ऑन ऑफ है ब्लूटूथ का, एंड आई रियली लव द फैक्ट कि उन्होंने तो इस कीबोर्ड को फन बनाया है। लग रहा है यार फन है कीबोर्ड। गैजेट तो ऑलमोस्ट कीबोर्ड के मामले में तो सारे कीबोर्ड आपको सेम ही लगेंगे, बट उसमें भी फन डाल देना जस्ट शोज की मेहनत की गई है। तो ये मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कोई कीबोर्ड के शौकीन है तो आप इसे देख सकते हैं। अगेन ये इंडिया में तो बहुत इजीली मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर अमेजोन की डिलीवरी आपके यहाँ आती है तो आप जानते हैं तो मंगा लीजिएगा भाई। मैं नाम एक बार फिर से बता देता हूँ, AULA ओला क्यों बोल रहा हूँ, ओला आई प्रोबेबली थिंक यही इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, AULA F75, एफ लाइक इन फ्रूट 75, नंबर 75, ओके। तो ये थे गैजेट्स दिस वीक। अब जरा आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, खबरों में बहुत कुछ है भाई, आ जाओ इन टेक न्यूज। सबसे पहली खबर है, लोगों की नजर बनी हुई है आईफोन की तरफ, एप्पल लॉन्च करने वाला है सितंबर में, क्या होने वाला है ये आईफोन 18 क्या लेके आएगा। देखो रूमर्स जो आ रहे हैं, जो सामने चीजें आ रही हैं उसके बारे में बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि नए नए कलर्स में लॉन्च होने वाला है। इस बार जो कलर यूज कर रहे हैं वो डार्क चेरी और बर्गंडी शेड है। डार्क चेरी में पता नहीं कैसा लगेगा, आई डोंट नो, ऑरेंज तक ठीक था भाई, पर डार्क चेरी और बर्गंडी शेड में इस बार आईफोन आ सकता है, जो प्रो कलर्स होंगे एप्पल के। एंड वो नए नए कलर्स को भी टेस्ट करें, तो जब तक लॉन्च होगा उनका फ्लैगशिप फोन तो पता नहीं कहां कहां चला जाएगा। और कॉस्मिक ऑरेंज भी है, कॉस्मिक ऑरेंज भी होगा इस बार अगेन। मगर जो मेन चीजें हैं वो है डायनेमिक आइलैंड आईफोन का, वो और छोटा कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि वो जो फेस आईडी है ना वो इस बार डिस्प्ले के अंदर है। यू नो जो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात है कि जबकि Xiaomi जैसे फोन बहुत पहले कर चुके हैं, ये Samsung भी कर चुका है, तो उन्होंने फेस आईडी को इस बारी फेस आईडी कंपोनेंट्स को अंडर द डिस्प्ले कर दिया है। सो जो डायनेमिक आइलैंड है उसे और छोटा कर दिया है और एक यूनिफाइड लुक देने की कोशिश करी है अलग अलग रंगों के साथ। तो आई डोंट नो ये कितना सच है, ये 95% सच है बाय द वे, 5% तो झोल हो गया तो मैं कह नहीं सकता, मगर ये मैं बहुत पुख्ता खबर लेके आया हूँ। तो जब आईफोन 18 आएगा तब देख लेंगे हम। कुछ लोग कह रहे थे इस बार तो फोल्ड आ जाएगा आईफोन का, भाई मुझे नहीं, मुझे पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आईफोन अभी फोल्ड की मार्केट में उतरेगा, आई डोंट थिंक सो। वो कुछ नया ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दे वो अलग बात है, बट आईफोन विल नॉट कम फॉर फोल्ड्स, आई डोंट थिंक सो।
1: गेम्स एंड एंटरटेनमेंट।
0: एंड लास्ट खबर जो है वो है गेमिंग की दुनिया से, मॉर्टल शेल 2 रिलीज हुआ है। रिव्यू से पहले लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, फिर गेम प्ले आया, फिर लगा अरे बाप रे ये तो चाहिए, और फिर रिलीज हो गया तो अब ऐसा हो गया ये तो चाहिए ही चाहिए। तो मॉर्टल शेल 2 गेमर्स जाग जाओ, ये बहुत बढ़िया है। 30 आवर का गेम प्ले है, कमाल का है फॉर द फुल गेम, कॉम्बैट से लेकर हर एक चीज बहुत मजेदार है। एंड सोल गेम्स की दुनिया में आंधी लेके आया है ये गेम। बहुत ही ग्रिटी इन्वायरमेंट्स हैं और वो ऐसा लगता है कि एल्डन रिंग को ग्राफिकली अपस्केल करके, पहले ही ग्राफिक्स उसके बहुत अच्छे हैं, उसे और अपस्केल करके उसे कॉम्बैट को और ज्यादा ग्रिटी बना के लॉन्च कर दिया है, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो ये था हमारा टेक इनोवेशन, एंड इसी के साथ आपसे चाहूंगा इजाजत। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, मिलेंगे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

0: जब भी कोई आपसे राय मांगे तो उसे ध्यान से सुने और ईमानदारी के साथ मशवरा दें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107 विद सफा। साथियों, ईद का नाम सुनते ही ना दिल बड़ा खुश सा हो जाता है। गार्डन गार्डन, नए नए कपड़े पहनने को दिल करता है, घर की सजावट होती है, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, मेहमान आते हैं, भाई मजे मजे के लजीज खाने पकते हैं और भाई तोहफों की भरमार भी शुरू हो ही जाती है। तोहफों का सिलसिला भी एक अलग ही होता है। अच्छा, ईद ना वाकई में खुशी और शेयरिंग का एक खूबसूरत मौका होता है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची है कि ईद की तैयारियों के दौरान हम कितना वेस्ट क्रिएट करते हैं? भाई देखें, एक्स्ट्रा शॉपिंग होती है, खाना अक्सर औकात जाया करते हैं, प्लास्टिक डेकोरेशंस होती हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं और अननेसेसरी पैकेजिंग भी यूज होती है। अच्छा, खुशी मनाने के साथ साथ अगर हम थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का ख्याल भी कर लें तो क्या ही बुरा होगा, ईद का मजा दोबाला हो सकता है भाई। तो भाई आज हम इको स्विच में बात करने जाएंगे इको फ्रेंडली ईद सेलिब्रेशंस की, यानी ईद की खुशियां भी और एनवायरनमेंट की हिफाजत भी। देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर। साथियों, ईद की खुशी का मौका होता है लेकिन सेलिब्रेशंस के दौरान कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी क्रिएट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल दूं तो जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करना, प्लास्टिक बैग्स और पैकेजिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना, खाने का ज्यादा बनाना और फिर जो लोग उसे खाते हैं वो ज्यादा प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर आधा खाना वेस्ट कर देते हैं। डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज होती हैं, डिस्पोजेबल कप्स यूज होते हैं, डिस्पोजेबल कटलरी इन शॉर्ट यूज होती ही होती है। एक्स्ट्रा डेकोरेशंस जो सिर्फ एक बार यूज होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। हम अक्सर मेहमानों के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर लेते हैं जो मोहब्बत और खुशी की निशानी होती है, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग के साथ ना हम वेस्ट को कम कर सकते हैं और हाँ, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छा, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ इको फ्रेंडली ईद के लिए कुछ सिंपल आइडियाज जो कि हम सब अपना सकते हैं। पहली चीज तो ये कि स्मार्ट शॉपिंग करें ना। देखिए, ईद की शॉपिंग करते वक्त सिर्फ वही चीजें खरीदें जो वाकई में जरूरी हैं। क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स चूज करें जो कि ज्यादा अरसे तक यूज किए जा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें ना। हर साल नई प्लास्टिक डेकोरेशन खरीदने के बजाय कुछ ऐसी लाइट्स, फैब्रिक और डेकोरेशंस घर में मौजूद होती हैं जिनको हम क्रिएटिवली अगर इस्तेमाल करें ना तो वो मल्टीपल टाइम यूज हो सकती हैं। तीसरी चीज ये कि भाई खाने का ज्यान कम करने की कोशिश करें। देखें, ईद पर मेहमानों के लिए खाना जरूर बनाएं, मैंने मना नहीं किया। ऐसा नहीं कि मेहमान आपके घर से भूखे चले जाएं, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। लेकिन देखें, क्वांटिटी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें, बचा हुआ खाना प्रॉपरली स्टोर करें या जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम करें। अच्छा, रीयूजेबल सर्विंग आइटम्स यूज करें। डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स की जगह पर आप घर के बर्तन यूज कर सकते हैं, इससे वेस्ट भी कम होता है और मेहमान नवाजी भी ट्रेडिशनल टच के साथ हो जाती है ना। वो कुछ मेहमान होते हैं ना, कहते हैं हाँ, हमें प्लास्टिक के बर्तनों में खाना दे दिया डिस्पोजेबल में, तो उनके इस नखरे से भी आप बच जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इको फ्रेंडली गिफ्ट्स हैं। तोहफों के लिए रीयूजेबल बैग्स, प्लांट्स, हैंडमेड आइटम्स या यूजफुल गिफ्ट्स चूज किए जा सकते हैं। गिफ्ट की वैल्यू साथियों सिर्फ पैकेजिंग में नहीं होती बल्कि सोच और मोहब्बत में होती है। चलिए इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ आपको। बहुत सी फैमिलीज अब अपनी ईद सेलिब्रेशंस में छोटी छोटी इको फ्रेंडली चेंजेस ला रही हैं। कुछ लोग

0: ईद के कपड़ों की शॉपिंग में जरूरत और क्वालिटी को तरजीह देते हैं। कुछ फैमिलीज रीयूजेबल गिफ्ट बैग्स संभाल कर रखती हैं ताकि अगले मौकों पर उन्हें यूज किया जा सके। कुछ लोग ईद के बाद एक्स्ट्रा जो खाना बच जाता है उसको वेस्ट करने के बजाय पहले से प्लान कर लेते हैं कि भाई खाना किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चेंजेस ईद की खुशी को कम नहीं करते साथियों, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसमें एक रिस्पॉन्सिबल टच ऐड कर देते हैं। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि इस ईद एक ऐसी इको फ्रेंडली आदत जरूर अपनाएं जो इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट के लिए बेहतर हो, चाहे वो खाने का वेस्ट कम हो, रीयूजेबल आइटम्स यूज करना हो या स्मार्ट शॉपिंग करना हो। और हमें जरूर बताएं आप ईद पर सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार करते हैं, फैमिली गैदरिंग्स का, खाने का या गिफ्ट्स और डेकोरेशंस का। भाई इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, ईद की असली खूबसूरती सिर्फ तैयारियों में नहीं होती बल्कि खुशी बांटने और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करने में होती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: Maximum music, maximum fun. On FM 107, Dil Se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुबारक अल नईमी के बारे में। मुबारक अल नईमी कतर की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ियों में शुमार होती हैं और मुल्क की नुमाया फीमेल एथलीट्स में से एक हैं। उन्होंने कम उम्र से ही टेनिस का सफ़र शुरू किया और अपनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन की बदौलत कतर की नुमाइंदगी कई अहम मुकाबलों में की है। मुबारक ने मुख्तलिफ GCC, अरब और एशियन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने कीमती तजुर्बा हासिल किया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। वो कतर की उन खिलाड़ियों में से हैं जो मुल्क में वुमेन्स टेनिस को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर रही हैं।

0: One Step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की. आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां टेक्नोलॉजी की तरक्की बहुत तेजी से हो रही है और इसी तरक्की में से एक अहम फील्ड है स्पेस एक्सप्लोरेशन. जी हाँ, पहले स्पेस मिशन सिर्फ चंद सुपर पावर कंट्रीज तक महदूद थे, लेकिन आज अमेरिका, चाइना, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, इंडिया भी स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है और इसी कंपटीशन को अक्सर कहा जाता है न्यू स्पेस रेस. शायद आपने ये टर्म या ये वर्ड तो सुन रखे होंगे. देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना नहीं है. इसमें प्लैनेट्स की रिसर्च है, सैटेलाइट्स लॉन्च करना है, मून और मार्स मिशन है और नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट भी शामिल है. साथ ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI, रोबोटिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और स्मार्ट सेंसर्स भी स्पेस प्रोग्राम्स का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सैटेलाइट्स क्या हैं और ये हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करते हैं. देखिए, सैटेलाइट्स एक मशीन होती है जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, GPS नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सब सैटेलाइट्स की वजह से मुमकिन है. ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारी लाइफ या हमारी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है. जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, राइडिंग हेलिंग एप्स यूज करते हैं या वेदर अपडेट रखते या देखते हैं, तो असल में आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे होते हैं. बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी में स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी गहरी अहमियत रखती है. न्यू स्पेस रेस की वजह से इनोवेशन और रिसर्च में बहुत तेजी आ रही है. कंपनीज जैसे SpaceX, ब्लू ओरिजिन नए रॉकेट्स और रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं. इससे स्पेस मिशंस की कॉस्ट कम हो रही है और फ्यूचर में आम लोगों के लिए स्पेस टूरिज्म के दरवाजे भी खुल सकते हैं. मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन का असर और भी ज्यादा नजर आएगा. बेहतर सैटेलाइट से इंटरनेट स्पीड इम्प्रूव होगी, रिमोट एरियाज को कनेक्टिविटी मिलेगी और कम्युनिकेशन सिस्टम मजीद मजबूत होंगे. एग्रीकल्चर में फार्मर्स सैटेलाइट्स के जरिए जमीन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं. हेल्थ सेक्टर में एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी. इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के जरिए क्लाइमेट चेंज को समझना और उसका मुकाबला करना आसान होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल स्पेस मिशन में नए इन्वेंशंस को जो है वो समझने का मौका देगा. जैसे पहले बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो आज हम स्मार्टफोन्स में देखते हैं, उनकी बुनियाद स्पेस रिसर्च में रखी गई थी. इस फील्ड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है. स्पेस इंडस्ट्री नई जॉब्स पैदा कर रही है. इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के लिए नए करियर ऑप्शंस पैदा हो रहे हैं. इससे मुल्क की इकोनॉमी और साइंटिफिक प्रोग्रेस दोनों को फायदा होता है. दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ सितारों तक पहुंचने का ख्वाब नहीं है बल्कि इंसानी तरक्की का एक अगला मजबूत कदम है. आज जो रिसर्च स्पेस में हो रही है वो कल हमारी जिंदगी को ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा एफिशिएंट बनाएगी. न्यू स्पेस रेस इंसानियत को इनोवेशन, नॉलेज और डिस्कवरी की कई नई मंजिलों तक लेकर जा रही है. अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स को नहीं समझेंगे बल्कि अपनी ज़मीन को भी बेहतर बना सकेंगे. मुस्तकबिल उन्हीं कौमों का होगा जो साइंस, इनोवेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन की अहमियत को समझकर आज से उसकी तैयारी शुरू कर देंगे. तो चलिए आज से इसकी तैयारी शुरू करते हैं. फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.
0: One step to 2030.

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड और वो प्रोग्राम जहां हम खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे टेनिस की तारीख के एक ऐसे खिलाड़ी की जिनका नाम लीडरशिप, कंसिस्टेंसी और कामयाबी की मिसाल बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज का रिकॉर्ड है रॉजर फेडरर के नाम। रॉजर फेडरर के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, हु वाज और हु इज रॉजर फेडरर इन टेनिस कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, रॉजर फेडरर मशहूर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और ना सिर्फ स्विट्जरलैंड बल्कि दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स इन टेनिस में माने जाते हैं। रॉजर फेडरर टेनिस की तारीख के सबसे अजीम खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। उन्होंने अपने करियर में बेशुमार रिकॉर्ड्स कायम किए, लेकिन उनका सबसे यादगार वर्ल्ड रिकॉर्ड था 20 ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल्स टाइटल्स जीतना। जी हाँ दोस्तों, जब उन्होंने 2018 में ये माइलस्टोन हासिल किया तो वो तारीख के पहले मेन टेनिस प्लेयर बन गए जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते। बाद में ये रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन फेडरर का ये कारनामा आज भी टेनिस की तारीख के सबसे अजीम अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। अच्छा, मैं अपने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में हमेशा शेयर करता हूँ कि ग्रैंड स्लैम किसे कहा जाता है। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम उसे कहा जाता है कि सीजन में, मतलब पूरे एक साल में टेनिस के मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, चार मुख्तलिफ इवेंट्स, और उस मुख्तलिफ इवेंट जो है ग्रैंड स्लैम का एक ओहदा दिया गया है, एक पोजीशन अटैच किया गया है। और वो इवेंट्स हैं, आपको बता दूं, साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन, और जून के अंदर में जब फ्रांस में जब टेनिस की जो इवेंट चैंपियनशिप होती है तो वो उस चैंपियनशिप को फ्रेंच ओपन कहते हैं, और उसके फौरन बाद जुलाई में विंबलडन जो कि लंदन में खेला जाता है, और उसके बाद आखिरी जो टूर्नामेंट है वो US में मुनक्किद होता है और उसका नाम है US ओपन। तो ये चार मुख्तलिफ टेनिस इवेंट्स हैं, इस टेनिस इवेंट्स को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम इन कुल मिलाकर मजमी तौर पर देखें तो 20 ग्रैंड स्लैम मेन सिंगल्स टाइटल जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया था, और जो आज के डेट में नोवाक जोकोविच के नाम है 24 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड। तो नोवाक जोकोविच इनफैक्ट रॉजर फेडरर का टाइटल ही तोड़ा था, ये रिकॉर्ड जो था वो तोड़ दिया था। अच्छा, अभी बात करते हैं रॉजर फेडरर के बारे में। रॉजर फेडरर 8 अगस्त 1981 को बेसल यानी स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में पैदा हुए। बचपन से ही उन्हें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का शौक था, लेकिन आखिरकार उन्होंने टेनिस को अपना मुस्तकबिल बनाया, और उनकी बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन, शानदार फुटवर्क और नेचुरल टैलेंट ने उन्हें कम उम्र में ही दूसरे खिलाड़ियों से अलग मकाम दिलाया। वो होता है ना कि जब आपके पास टैलेंट हो तो लोग समझ जाते हैं कि इस बंदे में कुछ तो दम है। अगर आप ग्रुप में खेल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर प्लेयर, इस पर्टिकुलर यंगस्टर के अंदर में वो काबिलियत है जो आगे बढ़ने वाली जो बात है, आगे दौड़ने वाली बात जो है, आगे तक पहुंच सकता है ये लड़का। तो फेडरर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। देयर वाज समथिंग दैट यू नो केम टू बी नोटिस्ड बाय द कोचेस जिनके अंदर में उन्होंने ट्रेनिंग ली। प्रोफेशनल टेनिस में उनका असल ब्रेक थ्रू 2003 में आया जब उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल विंबलडन जीता। जी हाँ दोस्तों, इसी जीत के साथ एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने टेनिस की तारीख बदल दी। रॉजर फेडरर ने अपनी खूबसूरत प्लेइंग स्टाइल, जबरदस्त पावरफुल फोरहैंड और एक लाजवाब वन हैंडेड बैकहैंड की बदौलत दुनिया भर के कोर्ट्स पर हुक्मरानी की। ही वाज स्टाइलिश और सबसे अहम बात है, अ जेंटलमैन टेनिस प्लेयर दैट हैज रूल्ड द मॉडर्न टेनिस लाइक नो वन एल्स। अगले 15 सालों में रॉजर फेडरर ने हर सरफेस पर ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रैंड स्लैम जितने भी जो टूर्नामेंट्स के बारे में आपसे हमने जिक्र किया था शुरू में कि एक ग्रास में, एक क्ले कोर्ट में, हार्ड कोर्ट में, तो दीज आर द सर्फेसिस जहाँ पे एक प्लेयर, एक टेनिस खिलाड़ी अपने आप को उस लेवल तक ले जाता है जहाँ उसे लगता है कि आई कैन विन ऑन ऑल दीज सर्फेसिस। मिसाल के तौर पर आपको मैं बता दूं कि गाड़ी चलाना ऑन द नॉर्मल रोड्स एंड गाड़ी चलाना ऑन द सैंड ड्यून्स काफी फर्क है ना। तो सरफेस का खेल है दोस्तों, और यहाँ पर रॉजर फेडरर ने ऐसा खेल खेला कि दुनिया वाले देखते रह गए। उन्होंने 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 यूएस ओपन और 1 फ्रेंच ओपन टाइटल अपने नाम किया। अब आप लोगों का सवाल ये हो सकता है कि फ्रेंच ओपन में व्हाई ही वाज नॉट सक्सेसफुल। तो मैंने कहा ना कि हर सरफेस पे हर कोई बेताज बादशाह नहीं होता, और मैंने ये जिक्र किया था कि फ्रेंच ओपन में राफेल नदाल इज द किंग ऑफ क्ले। आज भी रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम है, क्योंकि फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, मिट्टी वाली जो सरफेस है, उसमें हर कोई खिलाड़ी तो इतना ज़्यादा आउट से कि पावरफुल या यू नो एबिलिटी नहीं है कि उस सरफेस पे खेल सके। तो रॉजर फेडरर वाज वन ऑफ देम। रॉजर फेडरर वाज गुड ऑन ग्रास, बहुत ही उम्दा किस्म के खिलाड़ी थे जिन्होंने ग्रास पर राज किया, और इसी वजह से क्ले पर उन्होंने कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और कई मरतबा उनको हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट आइदर नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। सो एक फ्रेंच ओपन टाइटल को मिलाकर उन्होंने अपने नाम इतने सारे टाइटल्स किए, ग्रैंड स्लैम जो टाइटल्स के बारे में मैंने जिक्र किया कि 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स मजमू तौर पर, और ये कामयाबी इस बात का सबूत थी कि वो सिर्फ एक सरफेस के स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि हर किस्म के कोर्ट पर कामयाब होने की सलाहियत रखते थे। जनवरी 2018 फेडरर के करियर का सबसे यादगार लम्हा था। या दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में उन्होंने मारिन चिलिच को 5 सेट्स के रोमांचक मुकाबले में शिकस्त देकर अपना 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। दैट वाज द आखिरी ग्रैंड स्लैम टाइटल फॉर रॉजर फेडरर। इस कामयाबी के साथ वो टेनिस की तारीख के पहले मेन प्लेयर बने जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स हासिल किए। ये उस वक्त एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो नामुमकिन सा लगता था। उस वक्त क्या 2018 की तो बात है, आज से 8 साल पहले की बात है। सो 8 साल पहले रॉजर फेडरर वाज द किंग ऑफ द ग्रैंड स्लैम। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतना सिर्फ टैलेंट की वजह से मुमकिन नहीं था। ये मैं बार बार हमेशा ये कहता आया हूँ कि टाइटल्स ये जो खिलाड़ी जीतते हैं, ये जो गोल्स मेसी करते हैं या रोनाल्डो करते हैं, इससे हम सिर्फ टैलेंट से ही यू नो उसको जोड़ नहीं सकते हैं। टैलेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर सक्सेस, टैलेंट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट है ना। टैलेंट के साथ साथ आपकी यू नो जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो स्किल्स है, आप उस स्किल्स को कितना इम्प्रूव आप कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, जो 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल रॉजर फेडरर ने जीता, इसके पीछे सिर्फ टैलेंट इज नॉट द यार्डस्टिक, ओनली यार्डस्टिक, ठीक है। इसके लिए सालों तक मुसलसल मेहनत, फिटनेस, डिसिप्लिन और प्रेशर में यानी दबाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना जरूरी होता है। चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी खिलाड़ी उठा के देख लीजिए, सिर्फ टैलेंट के बलबूते पे दुनिया में यानी दुनिया के जो जितने भी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किए होंगे, दे डिडंट सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ टैलेंट। एक बहुत मेजर एक एग्जाम्पल आपको दूंगा इंडियन क्रिकेट के हवाले से, विनोद कांबली। विनोद कांबली एंड सचिन तेंदुलकर, ये दोनों बड़े ही यू नो क्लोज फ्रेंड्स थे और उन दोनों ने मिलकर तमाम स्कूलों के टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए थे। यानी इन बॉम्बे के जितने भी एज ग्रुप टूर्नामेंट्स थे, विनोद कांबली एंड सचिन तेंदुलकर वर द लीडिंग बैट्समैन। लेकिन आगे जाके देखिए, विनोद कांबली डिड स्कोर 3 ट्रिपल सेंचुरीज बट सचिन तेंदुलकर वेंट अहेड ऑफ हिम। सो इससे यही साबित होता है कि जस्ट बिकॉज यू हैव टैलेंट डजंट मीन कि आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। एनीवे, बात हो रही है रॉजर फेडरर की, और फेडरर ने तकरीबन 2 दहाइयों तक दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी कंसिस्टेंसी, ये इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। उनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज था राफेल नडाल, जिसके बारे में आपसे मैंने कहा, और नोवाक जोकोविच, और ये एक त्रॉयका वर्ल्ड टेनिस में रूल किया पिछले 15 साल, मैं मान के चलूँ, चलिए 20 साल पकड़ लेते हैं, 20 साल लास्ट 20 इयर्स टू बी प्रेसाइज, अगर 2008 से मैं कैलकुलेट करूँ तो पिछले 20 सालों में अभी रॉजर फेडरर तो रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया, आई मीन रिटायरमेंट ही ऑलरेडी सेड गुड बाय टू टेनिस, तो रफाल नडाल भी ऑलरेडी टाटा बाय बाय टू वर्ल्ड टेनिस, लेकिन अब सिर्फ जोकोविच बचा हुआ है। लेकिन पिछले 20 सालों में यही तीनों खिलाड़ी हर टूर्नामेंट में मिलते थे, एक तरह से देखा जाए कि दे वर द मास्टर्स ऑफ वर्ल्ड टेनिस, और इन तीनों को मिलकर बिग थ्री कहा जाता था, और इनकी राइवलरी ने टेनिस को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और दुनिया भर के करोड़ों फैंस को इस स्पोर्ट का दीवाना बना दिया। आई रिमेम्बर नडाल के तो कई फैंस हैं, नडाल वॉज सो पॉपुलर विद हिज बंदाना विद हिज यू नो, एंड फ्रेंच ओपन में हर टूर्नामेंट में हर साल जीतना, तो रफाल नडाल हैड अ बिग बिग फॉलोइंग, वहीं जोकोविच का भी और रॉजर फेडरर का भी। तो रॉजर फेडरर को बहुत ज़्यादा सराहा जाता था इन विंबलडन में, जहाँ पे वो काफ़ी पॉपुलर आज भी हैं, एंड इसी वजह से दे रूल्ड कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस और साथ साथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इतने सख्त मुकाबले के बावजूद फेडरर ने वो रिकॉर्ड्स कायम किए जो उस वक्त नामुमकिन नजर आते थे। दोस्तों फेडरर की सबसे बड़ी खूबी उनकी लॉन्गजीविटी थी, एंड आई मीन यू नो कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्गजीविटी। अक्सर चैंपियंस चंद साल बाद अपनी परफॉर्मेंस खो देते हैं, वो होता है ना आई एम हैप्पी, हमें क्या और लेना है, क्या मैंने तो कर लिया सब कुछ जो करना था, वो एक टाइटल पे खुश नहीं रहते थे। He has to improve. That is the hallmark of a champion as of a sports person. कि अगर आपने एक टूर्नामेंट अपने जीता तो वो भूल जाते हैं कि भाई ये टूर्नामेंट तो पिछले साल की बात थी, आई हैव टू गो फॉर अनादर एंड गो फॉर अनादर, यानी मुसलसल जीतना एक उनके लिए एक यू नो एक हैबिचुअल बात थी। और अक्सर जैसे मैंने कहा चैंपियंस खो देते हैं, ये जो यू नो लय जो है ये दे लूज इट, दे ओवर कॉन्फिडेंस की बात कह लीजिए, बहुत छोटे से इसमें यू नो जीत से बहुत खुश हो जाना, फेडरर में ये बात नहीं थी, ना तो नडाल के अंदर में ना जोकोविच के अंदर में, और इसी वजह से आज जोकोविच आज भी खेल रहा है, ठीक है ये दोनों रिटायर हो गए लेकिन जोकोविच आज भी खेल रहा है। एनीवे फेडरर ने अपने फिटनेस और स्मार्ट स्केड्यूलिंग की वजह से लेट 30s तक दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाए रखी, समझिए इस चीज को। इंजरी तो हो, इंजरी प्रोन्स तो होती हैं, ATP यू नो टूर में खेलना, नॉट जस्ट ग्रैंड स्लैम में खेल रहे हैं, ATP टूर साल भर के टूर्नामेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना है टू मेंटेन योर रैंकिंग। तो 2017 में इंजरी के बाद उन्होंने शानदार कमबैक करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन दोनों टाइटल्स जीतकर सबको हैरान कर दिया। दैट वाज रॉजर फेडरर। ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड के अलावा भी फेडरर ने कई अजीम इवेंट्स हासिल की और उन्होंने 103 ATP सिंगल्स टाइटल्स जीते जो ओपन एरा की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार होते हैं। अच्छा ATP सिंगल्स टाइटल क्या है मैं आपको बता दूं, ATP से मुराद एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ये एक जैसे कि फुटबॉल में फीफा है, यू नो बास्केटबॉल में फीबा है, वॉलीबॉल में FIVB है, तो वैसे ही ATP इज बेसिकली द प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स के एक यू नो आई वुड से इन एसोसिएशन है, और जिसके तहत आप उनके रैंकिंग्स के बारे में जान सकते हैं। तो जितने भी सिंगल टाइटल्स टूर्नामेंट्स डबल टूर्नामेंट ये सब ATP के ही अम्ब्रेला के नीचे ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो ATP सिंगल्स टाइटल जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन योर रैंकिंग, तो उन्होंने 103 ATP सिंगल्स टाइटल जीते जो ओपन एरा की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार किया जा रहा है, और दैट्स द शो दैट काइंड ऑफ प्लेयर ही वाज। इसके अलावा वो 237 मुसलसल हफ्तों तक, याद रखिएगा 237 मुसलसल यानी कंटिन्यूस 237 हफ्तों तक दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी रहे, जो आज की डेट में आज भी ये रिकॉर्ड है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो एक तारीखी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उन्होंने 5 मरतबा साल का इख्तिताम भी वर्ल्ड नंबर वन के तौर पर किया। तो आप क्या समझ रहे हैं किस तरह के खिलाड़ी थे ये, बताइए हमें ऑन

0: और व्हाट्सएप नंबर 666-221-107 पर। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और मजीद इनके बारे में जान लेते हैं। रॉजर फेडरर हर सरफेस पर कामयाब रहे, ग्रास कोर्ट्स पर उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी, हार्ड कोर्ट्स पर उनका एग्रेसिव गेम ओपोनेंट्स के लिए मुश्किल पैदा करता था। जबकि क्ले कोर्ट पर भी उन्होंने 2009 में फ्रेंच ओपन जीत कर साबित कर दिया कि वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। उनका प्लेइंग स्टाइल टेनिस की तारीख का सबसे खूबसूरत स्टाइल माना जाता है। वो मुश्किल से मुश्किल शॉट्स को भी इंतहाई आसानी से खेलते नजर आते थे। क्या टच था, क्या क्लास था। उनका वन हैंडेड बैक हैंड और पावरफुल फोर हैंड आज भी टेनिस के बेहतरीन स्ट्रोक्स में शुमार किया जाता है। बड़ा स्किलफुल टेनिस प्लेयर ही वॉज। कोर्ट पर उनकी मूवमेंट और टाइमिंग ने उन्हें दूसरे प्लेयर से अलग पहचान दी। यू नो वी वोंट से कि चॉक एंड चीज, बट द क्वालिटी मैटर्स इन स्पोर्ट्स एंड एनी एवरी वर्क्स ऑफ लाइफ, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। तो रॉजर फेडरर वॉज अ क्वालिटी इन मॉडर्न टेनिस। फेडरर सिर्फ रिकॉर्ड्स की वजह से मशहूर नहीं हुए बल्कि अपनी इखलाक और स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से भी दुनिया भर में इज्जत हासिल की। जीत हो या हार, उन्होंने हमेशा अपने रवैये से मिसाल कायम की। ये मैंने शुरू में कहा था आपसे, बिहेवियर ऑन द कोर्ट ऑफ द कोर्ट। इसी वजह से उन्हें टेनिस का एम्बेसडर भी कहा जाता है। रोजर फेडरर ने स्विट्जरलैंड की नुमाइंदगी करते हुए 2014 में डेविस कप भी जीता, जो उनके करियर की एक बड़ी कामयाबी थी। इसके साथ उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स ही नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 2022 में रोजर फेडरर ने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाद में उनका 20 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड राफेल नडाल और फिर नोवाक जोकोविच ने तोड़ दिया। लेकिन फेडरर का नाम हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा कि वो पहले प्लेयर थे जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का हिस्टोरिक माइलस्टोन हासिल किया। याद रखिएगा दोस्तों कि स्पोर्ट्स की दुनिया में रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स हमेशा तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, और इसी वजह से रॉजर फेडरर का 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ऐसा ही एक है माइलस्टोन है जिसने टेनिस में ग्रेटनेस का मायार भी बदल दिया। और दोस्तों इस अचीवमेंट ने नई जनरेशन के प्लेयर्स को और भी बुलंद मकासिद हासिल करने की हिम्मत दी। आज रॉजर फेडरर को सिर्फ एक चैंपियन नहीं बल्कि टेनिस की तारीख के सबसे बासर और बावकार प्लेयर्स में शुमार किया जाता है। उनकी एलिगेंस, कंसिस्टेंसी, स्पोर्ट्समैनशिप और वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवमेंट्स उन्हें हमेशा स्पोर्ट्स हिस्ट्री के अजीम तरीन लेजेंड्स में रखेंगे। रॉजर फेडरर की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली कामयाबी सिर्फ ट्रॉफीज जीतने का नाम नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, डिसिप्लिन और बेहतरीन किरदार के जरिए दुनिया पर अपनी पहचान छोड़ने का नाम है। और इसीलिए उनका 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड टेनिस की तारीख के सबसे यादगार और अजीम रिकॉर्ड में हमेशा शुमार किया जाएगा। और ये रिकॉर्ड आज ब्रोकन है लेकिन रॉजर फेडरर इज शाइनिंग एज अ ब्राइट एग्जांपल ऑन द टेनिस कोर्ट। ये थे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके इस प्रोग्राम को मजीद हम आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आज हमने बात की रॉजर फेडरर के बारे में और रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड के बारे में, 20 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड। अब नाउ मूविंग ऑन टू द अदर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसमें शामिल है जोनाथन एडवर्ड्स का ट्रिपल जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, एथलेटिक्स की तारीख के सबसे अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड में से एक जोनाथन एडवर्ड्स के नाम है। 7 अगस्त 1995 को गोथेनबर्ग स्वीडन में है, और वहीं पर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में एडवर्ड्स ने ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसने पूरी स्पोर्ट्स दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने 18.29 मीटर की जबरदस्त ट्रिपल जंप लगाकर मेंस ट्रिपल जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जो आज तक कोई एथलीट नहीं तोड़ सका। इस अचीवमेंट को और भी खास इसलिए माना जाता है क्योंकि एडवर्ड्स ने इसी मुकाबले के दौरान पहले 18.16 मीटर की जंप लगाकर पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन चंद ही लम्हों बाद उन्होंने अपनी ही परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हुए 18.29 मीटर की तारीखी जंप लगा दी और ये एथलेटिक्स की तारीख के सबसे यादगार लम्हों में शुमार होता है। दोस्तों ट्रिपल जंप एथलेटिक्स का इंतहाई मुश्किल इवेंट माना जाता है। इसमें एथलीट को स्पीड, बैलेंस, ताकत और बेहतरीन टेक्निक का शानदार मुजाहरा करना होता है। जोनाथन एडवर्ड्स ने हॉप, स्टेप और जंप के हर मरहले को इतनी कमाल महारत के साथ अंजाम दिया कि उनकी परफॉर्मेंस आज भी एक्सपर्ट्स के नज़दीक इस इवेंट की बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। तकरीबन 30 साल गुजर जाने के बावजूद दुनिया का कोई भी एथलीट एडवर्ड्स के 18.29 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। ये रिकॉर्ड आज भी एथलेटिक्स में एक्सेलेंस, कंसिस्टेंसी और परफेक्शन की अलामत माना जाता है और नई जनरेशन के ट्रिपल जंप एथलीट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज और इंस्पिरेशन है। अब बढ़ते हैं फुटबॉल में, जहां हम बात करेंगे लियोनेल मेसी के वर्ल्ड कप गोल्स के बारे में। जी हां दोस्तों, फुटबॉल की तारीख के सबसे अजीम रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड लियोनेल मेसी के नाम है। ऐसा तो लियोनेल मेसी हैज अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद बार्सिलोना, विद पीएसजी, विद हिज ओन कंट्री अर्जेंटीना के लिए भी वर्ल्ड कप जीतना। कतर में 2002 में अर्जेंटीना के सुपरस्टार ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। चलो दोस्तों, ये वाकया और ये जो मोमेंट आया 2026 वर्ल्ड कप के दौरान, जब मेसी ने जर्मनी के लेजेंड मिरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड तोड़कर फुटबॉल की तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवा दिया। दोस्तों मेसी का वर्ल्ड कप का जो सफर था वो 2006 में शुरू हुआ था और उसके बाद उन्होंने हर वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए अहम गोल स्कोर किए। दो दिहाइयों तक मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंस देना किसी भी फुटबॉलर के लिए आसान बात नहीं होती। जैसे कि मैंने फेडरर के बारे में भी कहा, यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, वर्क, डिसिप्लिन, फोकस और टैलेंट हमेशा आपको साथ लेके नहीं चलता। टैलेंट आपके पास है, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया टू हेल्प यू सक्सीड इन एनीवेयर, देन आई एम गलत। और मेसी ने अपनी कंसिस्टेंसी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट से ये साबित कर दिया कि वो गेम के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक हैं। मेहनत भी इसका एक रीजन है दोस्तों। हाँ, सिर्फ टैलेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इससे कुछ नहीं होता है। मेहनत, डिसिप्लिन, फोकस, स्टडी और नो यू हैव टू एवरी टाइम, एक होता है कि हर इंडिविजुअल को इवेल्युएट, अपने आप को इवेल्युएट करनी चाहिए, वेदर अबाउट योर सेल्फ, वेदर अबाउट योर परफॉर्मेंस, अबाउट योर वर्क। सो मेसी ने किया, फेडरर ने किया, सो ऐसे लोगों के पास ये तो रिकॉर्ड होंगे। इस रिकॉर्ड की खास बात यह है कि मेसी ने ये कामयाबी सिर्फ गोल्स की वजह से नहीं बल्कि प्रेशर के सबसे बड़े स्टेज पर हासिल की। वर्ल्ड कप जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट में हर गोल की अहमियत बहुत ज्यादा होती है और मेसी ने नॉकआउट मैचेस और ग्रुप स्टेज दोनों में अपनी टीम के लिए फैसलाकुन गोल्स किए। उनकी लीडरशिप और काम फिनिशिंग ने अर्जेंटीना को कई यादगार फतवाह दिलाए। मेसी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि उनकी सालों की मेहनत, डेडिकेशन और फुटबॉल से मोहब्बत का सबूत है। आज दुनिया भर के फुटबॉल फैंस उन्हें सिर्फ अर्जेंटीना का नहीं बल्कि फुटबॉल की तारीख का अजीम तरीन प्लेयर्स में शुमार करते हैं। 18 गोल्स इज अ बिग थिंग, 18 गोल्स करना बहुत बड़ी बात है। मिरोस्लाव क्लोजे का 16 गोल्स का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़कर यह साबित किया कि ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स इन वर्ल्ड फुटबॉल और वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल्स करने का ये रिकॉर्ड उनकी लेगेसी को और भी मजबूत बनाता है और आने वाले जनरेशन के लिए एक मिसाल है। मूविंग ऑन टू क्रिकेट, और क्रिकेट में आज हम बात करेंगे अनिल कुंबले का 10 विकेट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट की तारीख के सबसे अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है। इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग लेग स्पिनर्स और क्रिकेटर रह चुके हैं एंड बाद में वो कप्तान भी बने, बाद में वो कोच भी बने। 7 फरवरी 1999 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में अनिल कुंबले ने एक ही इनिंग्स में तमाम 10 विकेट्स हासिल करके क्रिकेट की तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो टेस्ट क्रिकेट की तारीख के सिर्फ उस वक्त दूसरे बॉलर बने जिन्होंने एक इनिंग्स की तमाम 10 विकेट्स हासिल की और इससे पहले ये कारनामा सिर्फ इंग्लैंड के जिम लेकर ने 1956 में अंजाम दिया था और उसके बाद 2021 में न्यूजीलैंड के अजाज पटेल ने ये रिकॉर्ड भी इक्वल किया ऑफ अनिल कुंबले एंड जिम लेकर, जब पटेल ने इंडिया के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 विकेट्स फॉर 119 रन लेकर इसी रिकॉर्ड में शामिल हो गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसी रिकॉर्ड में शामिल हो गए। सो ओवरऑल देर आर थ्री बॉलर्स अगर देखा जाए, लेकिन इंडिया के लिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाला पहला बॉलर अगर है तो अनिल कुंबले है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप उस वक्त दुनिया की मजबूत तरीन बैटिंग लाइनअप्स में शुमार होती थी, जिसमें सईद अनवर, इंजमामुल हक, एजाज अहमद और मोइन खान जैसे तजुर्बेकार बैट्समैन मौजूद थे। लेकिन अनिल कुंबले ने अपनी बेहतरीन लेग स्पिन बॉलिंग, जबरदस्त कंट्रोल और लगातार प्रेशर की वजह से हर बैट्समैन को पैवेलियन का राह दिखाई। कुंबले ने इनिंग्स में 26.3 ओवर्स में सिर्फ 74 रन देकर तमाम 10 विकेट हासिल किए, और ये परफॉर्मेंस सिर्फ इंडिया की यादगार फतेह का सबब नहीं बनी बल्कि टेस्ट क्रिकेट की तारीख की सबसे बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस में भी शुमार की जाती है। और आज भी एक इनिंग्स में 10 विकेट्स लेना हर स्पिनर और फास्ट बॉलर का ख्वाब माना जाता है। दो दिहाइयों से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद अनिल कुंबले का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए फख्र की अलामत है। उनकी ये तारीखी परफॉर्मेंस साबित करती है कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन के साथ नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट फार्मूला 1 ग्रां प्री, और यहाँ पे आज बात करेंगे फार्मूला 1 की तारीख है सबसे शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड में से एक, मैक्स वर्स्टपेन। और मैक्स वर्स्टपेन के नाम यह रिकॉर्ड है, नीदरलैंड्स के सुपरस्टार ड्राइवर ने 2023 में लगातार 10 फार्मूला 1 ग्रां प्री रेसेस जीतकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और इससे पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी के लेजेंडरी सेबेस्टियन वेटल के पास था, जिन्होंने 2013 में मुसलसल 9 रेसेस जीती थी। वर्स्टपेन ने इटालियन ग्रां प्री जीतकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और फार्मूला 1 की तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवा दिया। लगातार 10 ग्रां प्री जीतना कोई मामूली बात नहीं दोस्तों। फार्मूला 1 में हर रेस मुख्तलिफ सर्किट, वेदर कंडीशंस और स्ट्रेटजी के साथ होती है। हर वीकेंड ड्राइवर्स को नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वर्स्टपेन ने हर रेस में अपनी स्पीड, कंसिस्टेंसी और बेहतरीन रेस मैनेजमेंट का मुजाहरा किया। आज वर्स्टपेन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड फार्मूला 1 की तारीख के सबसे यादगार रिकॉर्ड में शुमार होता है। ये सिर्फ उनकी एक्सट्रॉर्डिनरी टैलेंट का सबूत नहीं बल्कि मेहनत, डिसिप्लिन और बेहतरीन फोकस की मिसाल भी है। उनकी ये तारीखी कामयाबी दुनिया भर के मोटर स्पोर्ट्स फैंस और नए ड्राइवर्स के लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहेगी। और अब बात करते हैं कैमल रेसिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अरब दुनिया के सबसे पुराने और मशहूर स्पोर्ट्स में से एक है। इस स्पोर्ट के एक दिलचस्प रिकॉर्ड यूएई में कायम हुआ था, जहां एक ऊंट ने तकरीबन 16 किलोमीटर की रेस सिर्फ 13 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त में मुकम्मल करके गैर मामूली रफ्तार का मुजाहरा किया। और आज के दौर में जितने भी रेसिंग कैमल्स हैं 60 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार हासिल कर सकते हैं। बेहतरीन ब्रीडिंग, खास ट्रेनिंग और रोबोटिक जॉकीज के इस्तेमाल ने कैमल रेसिंग को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। और आज भी गल्फ ममालिक में कैमल रेसिंग फक्र, रिवायत और स्पोर्ट्स एक्सेलेंस की निशानी मानी जाती है। अब अपना अगला जो आखिरी सेगमेंट है उसमें कतर एंगल है, और यहाँ हम बात करते हैं स्टेडियम्स के बारे में। तो कतर का लुसेल स्टेडियम के बारे में आज बात करेंगे, और इसी लुसेल स्टेडियम दुनिया के सबसे शानदार फुटबॉल स्टेडियम में शुमार किया जाता है, आप लोगों को पता है। और इस स्टेडियम की सबसे खास बात इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, जो अरब रिवायती फानूस और इस्लामिक नक्काशी से मुतासिर है। तकरीबन 89,000 यानी 89,000 कैपेसिटी वाली स्टेडियम कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जो गर्मी के मौसम में भी प्लेयर्स और फैंस को राहत फराहम करती है। वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला गया था। लुसेल स्टेडियम मॉडर्न इंजीनियरिंग, सस्टेनेबिलिटी और कतरी कल्चर का खूबसूरत इम्तिजाज माना जाता है, और दुनिया भर के फुटबॉल फैंस के लिए एक आइकॉनिक वेन्यू है। दोस्तों हम आखिरी पड़ाव तक आ चुके हैं, और आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह रॉजर फेडरर ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए स्विट्जरलैंड और अपना नाम रोशन किया। दोस्तों ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का नहीं, ये लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और एक्सलेंस का रिकॉर्ड है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। अगली किस्त में हम किसी और अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं।

0: टूटते भी हैं।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट,
4: हदीब टू हैबिट,
3: दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
5: One hits music station. Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
5: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
2: FM 107.
5: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: बार उसे याद दिलाया, ये तो भाई मन है एहसान जिताना जिसे कहते हैं, और अजा यानी किसी की इज्जत, एहसासात, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करना अजियत है। कभी ऐसा होता है कि किसी ने ज़रूरत के वक्त किसी शख्स की माली मदद कर दी, फिर कुछ अरसे बाद वो उसी मदद को लिवरेज बनाकर उससे अपना काम निकलवाना शुरू कर देता है। कहता है, मेरे फलां रिश्तेदार को नौकरी दिलवा दो, मेरे लिए ये काम कर दो, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब ये मदद नहीं रही, ये एक नफसियाती कर्ज बन गया। इसी तरह किसी गरीब या ज़रूरतमंद को चंद पैसे देकर उसके साथ तस्वीर बनाना, फिर उसे सोशल मीडिया पर फैला देना, ये भी उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर सकता है। कुरान का मिजाज ये है कि सदका उसका दुख कम करने के लिए है, उसके दुख को नई शक्ल देने के लिए नहीं। आपने उसकी माली तकलीफ़ कम कर दी, लेकिन अगर उसी अमल से उसे एहसास कमतरी, शर्मिंदगी या समाजी अजियत दे दी तो मकसद ही फौत हो गया। सूरह बकरा के आखिरी हिस्सों में सदकात के बारे में ये एक नहायत खूबसूरत कुरानी सेंसिटिविटी नज़र आती है कि कुरान मोहताज शख्स को सिर्फ एक रिसीवर नहीं समझता, वो एक मुकम्मल इंसान है, उसके जज्बात हैं, उसकी इज्जत है, उसका वक़ार है और उसके दिल की हिफाजत भी सदक़े के आदाब का हिस्सा है। तो यहाँ एक बड़ा उसूल हमारे सामने आया, एक तो इस्लामी हुक्म, दूसरा सही तसव्वुर और तीसरा अखलाकी कैद, ये तीनों साथ चलते हैं। इन्फाक करो, लेकिन पहले ये समझो कि माल अल्लाह का है। इन्फाक करो लेकिन एहसास न जिताओ। इन्फाक करो, खर्च करो, लेकिन सामने वाले को ज़ख्मी न करो। अल्लाह की राह में इन्फाक करो लेकिन उसकी इज्जत बचाते हुए। सामने कराम, एक शख्स आम हालात में ईमानदार तो हो सकता है, लेकिन जब उसे नज़र आए कि बेईमानी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और पकड़े जाने का इम्कान भी कम है, तो अगर उसकी अमानतदारी के पीछे कोई गहरा ईमानी तसव्वुर नहीं तो उसका उसूल डगमगा सकता है। लेकिन अगर वो ये जानता है कि मामला अल्लाह की निगरानी या आखिरत की जवाबदेही और बंदगी की जिम्मेदारी का है, तो उस अखलाक की जड़ कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अलबत्ता यहाँ एक और हकीकत भी समझना ज़रूरी है कि कुरानी तरबियत का मतलब ये नहीं कि दुनिया से हर बुराई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, जन्नत तो नहीं। अगर अल्लाह ताला चाहते कि दुनिया में शर का इम्कान ही न रहे तो इब्लीस के वजूद और इंसानी आजमाइश की ये सूरत ही न होती। लेकिन अल्लाह ने इंसान को चॉइस दी, खैर और शर दोनों के इम्कान रखे ताकि इम्तिहान माना रखे। अब आते हैं वही की बालातर मरजियत की तरफ, यानी जब हम इनहराफ का शिकार हो जाएं, मुनहरिफ हो जाएं, तो कुरान हमें वापस बुलाता है। मसलन अगर मुआशरा नस्ल, कौम या रंग की बुनियाद पर तकब्बुर और बर्तरी की तरफ चला जाए, कुरान फौरन सामने आता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। अगर माल के बारे में गुरूर आया तो कुरान कहता है तुम मालिक नहीं, मुस्तखलफ हो। अगर सदका करके एहसान जिताया तो कुरान रोक देता है। यानी वही हर दौर में हमारे अंदरूनी इन्हराफात को एक्सपोज भी करती है और हमें वापस सही सिमत में भी ले आती है, और यही किसी जिंदा दीनी निज़ाम की बड़ी ताकत है कि वो इंसान के गलती करने के इम्कान को मानता है मगर उसे गलती में मुस्तकिल भटकने के लिए नहीं छोड़ता। अशरफ सामीन ने एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद प्रोग्राम तफ़ीमुल कुरान के आज के हलके में, जहां हमारी गुफ्तगू हो रही है इस्लामिक फाइनेंस पर। अब प्रोग्राम के इस मरहले में हम एक ऐसे माली मसले की तरफ आते हैं جس پر قرآن مجید نے بڑی تفصیلی گفتگو کی۔

के लिए मेहनत करता है अगर नीयत दुरुस्त हो तो वो भी इबादत बन जाती है। एक मुसलमान जब दरख्त लगाता है वो भी सदका बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दरख्त लगाता है फिर उससे कोई इंसान, परिंदा या जानवर फ़ायदा उठाता है तो ये उसके लिए सदका है। ज़रा गौर कीजिए सामिन किराम, इंसान दरख्त इसलिए लगाता है कि उससे फ़ायदा हासिल करे, लेकिन अल्लाह ताला उसी अमल को आखिरत के अजर का जरिया भी बना देते हैं। ये इस्लाम की खूबसूरती है, दुनिया का काम भी और आखिरत का अजर भी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो रही हो और तुम्हारे हाथ में पौधा हो तो अगर मुमकिन हो उसे लगा दो। क्या अजीम तालीम है सामिन किराम, यानी आखिरी लम्हे तक खैर का काम करते रहो, मायूस न हो, अमल से पीछे न हटो। सामिन किराम, ये सब तरबियत कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से पैदा हुई? जवाब एक ही है, कुरान से। सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम के नज़दीक कुरान जिंदगी का मरकज था। वो समझते थे कि असल इज्जत कुरान वालों की है, असल शरफ कुरान वालों का है, असल क़ियादत कुरान वालों की है। इसलिए उनके माशरे में अगर कोई शख्स इल्म हासिल करना चाहता तो पहले उसे कुरान की तरफ भेजा जाता, अगर कोई बुलंद मकाम हासिल करना चाहता तो पहले कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करता, अगर कोई दीन का तालिब इल्म बनता तो कुरान उसकी पहली मंजिल होता। कुरान उनकी शनाख्त, उनकी तहजीब, उनकी ज़िंदगी थी। समय कराम, आज भी अगर हम उम्मत की अजमत वापस लाना चाहते हैं तो हमें दोबारा कुरान को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना होगा, क्योंकि जिस उम्मत का रिश्ता कुरान से मजबूत होता है अल्लाह ताला उसे इल्म, हिकमत, इज्जत और क़ियादत सब कुछ अता करते हैं। तारीख के औराक में ऐसे बेशुमार वाक़ियात मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि मुसलमानों के नज़दीक किसी इंसान की असल कदर व कीमत उसके माल, नसब या मनसब से नहीं बल्कि कुरान के ताल्लुक से मुतय्यन होती थी। गोया कुरान उनके नज़दीक इंसान की शख्सियत का मेयार था। वो समझते थे कि जो शख्स अल्लाह के कलाम से जुड़ गया वो इज्जत का मुस्तहिक है, जो कुरान से दूर हो गया उसने अपनी असल दौलत खो दी। क्योंकि इंसान सिर्फ अखलाक के चंद मज़ाहिर का नाम नहीं, इंसान की असल ज़िंदगी उसके दिल, उसकी रूह, उसके ईमान और उसके रब से ताल्लुक में होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से एक रूह वही भेजी। यहाँ कुरान को रूह कहा गया है। रूह के बगैर जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। जिस्म हरकत कर सकता है, चल फिर सकता है, लेकिन रूह निकल जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह कुरान के बग़ैर इंसान बज़ाहिर ज़िंदा नज़र आता है, खाता है, पीता है, तजारत करता है, तालीम हासिल करता है, लेकिन हकीकत में उसकी रूह मुर्दा होती है। कुरान आया तो इंसानों में हकीकी ज़िंदगी पैदा हुई। इसलिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया है, इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह और उसके रसूल की दावत कबूल करो जब वो तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती है। वह कुरान ज़िंदगी बख्शता है, कुरान दिलों को ज़िंदा करता है। वज़ीर सामने कराम, गुफ्तगू के इख्तिताम मरहले में एक और बुनियादी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो इस्लामी माशियात में काफ़ी अहम हैसियत रखते हैं। ये एक बुनियादी रुकन है, ज़कात, इसे क्यों फ़र्ज की गई है? क्या इस्लामी माशरे में माली ज़िम्मेदारी सिर्फ ज़कात अदा करने से पूरी हो जाती है? पहली बात तो यह है कि यहाँ एक अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है कि ज़कात माल में एक ऐसा हक है जो बुनियादी तौर पर साहिब माल के मालदार होने की वजह से वाजिब होता है। यानी एक शख्स निसाब और शरायत के मुताबिक माल रखता है तो उस पर ज़कात आती है। लेकिन इस्लाम में हर माली ज़िम्मेदारी सिर्फ उसी एक सबब से पैदा नहीं होती। कई हुकूक ऐसे हैं जिनके पीछे दो बुनियादें होती हैं, एक किसी ख़ास ज़रूरत या ताल्लुक का वजूद और दूसरी उस ज़रूरत को पूरा करने की आप में कुदरत और इस्तेदाद। मसलन आपका पड़ोसी मोहताज है, आप उसकी मदद सिर्फ इसलिए नहीं करते कि आप मालदार हैं बल्कि एक दूसरा ताल्लुक भी मौजूद है, वो आपका पड़ोसी है और मोहताज है। यहाँ गिना भी है और जिवार यानी पड़ोसी का हक भी। इसी तरह फ़राइज़ किफ़ाया का दायरा ज़कात से कहीं वसी है।

0: सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुबारक अल नईमी के बारे में। मुबारक अल नईमी कतर की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ियों में शुमार होती हैं और मुल्क की नुमाया फीमेल एथलीट्स में से एक हैं। उन्होंने कम उम्र से ही टेनिस का सफ़र शुरू किया और अपनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन की बदौलत कतर की नुमाइंदगी कई अहम मुकाबलों में की है। मुबारक ने मुख्तलिफ GCC, अरब और एशियन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने कीमती तजुर्बा हासिल किया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। वो कतर की उन खिलाड़ियों में से हैं जो मुल्क में वुमेन्स टेनिस को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कतर टेनिस फेडरेशन की हिमायत और मुसलसल ट्रेनिंग की बदौलत मुबारक ने अपने गेम में काफ़ी बेहतरी पैदा की है। उनकी फिटनेस, फुटवर्क और कोर्ट पर कॉन्फिडेंस उनकी पहचान बन चुका है। वो हर टूर्नामेंट में बेहतर नतीजे हासिल करने और अपनी रैंकिंग को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत करती हैं। मुबारक अल नईमी सिर्फ एक टेनिस प्लेयर ही नहीं बल्कि कतर की नौजवान लड़कियों के लिए एक मिसाल भी हैं। उनकी कामयाबियां ये साबित करती हैं कि मेहनत, हौसला और मुसलसल कोशिश से हर हदफ हासिल किया जा सकता है। आने वाले सालों में उम्मीद की जा रही है कि वो मजीद बैन अक्वामी सतह पर कतर का नाम रोशन करेंगी और नए खिलाड़ियों के लिए राह हमवार बनेंगी। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, एक बार फिर हम बेचैनी की वजूहात पर बात करेंगे कि वो क्या हैं। हमारे दिमाग में मौजूद बास कीमियाई मादों का तवासुन जब बिगड़ने लगता है तो बेचैनी पैदा हो सकती है। अगर ख़ानदान में किसी को एनजाइटी रही हो तो उसके इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे थायराइड का मसला है, किसी को डायबिटीज़ है, दिल के मसाइल से कोई दो चार है, एस्थमा है या कोई भी क्रॉनिक जो है वो पेन है, तो उससे बेचैनी जो है वो ज़्यादा हो सकती है या वो बेचैनी का सबब बन सकते हैं। और जैसे कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें बेशुमार वजूहात होती हैं एनजाइटी की या अजय की बेचैनी की, जिसमें मुलाजमत का कुछ दबाव है, माली परेशानियां हैं, घर के मसाइल हैं और ख़ुदा नखास्ता किसी अजीज़ की वफात भी हो सकती है, इम्तहानात का बहुत दबाव है, इस तरह इज़्ज़वाजी या ख़ानदानी कुछ मसाइल हैं, ये सब हमारी बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें ये है कि नींद का पूरा ना होना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स जो है उनका इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना और हर वक्त मोबाइल या सोशल मीडिया इस्तेमाल जो हम करते हैं तो उससे भी बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेगेटिव जो न्यूज़ हैं उनमें मुसलसल मसरूफ़ रहना, ये तमाम आदत जो हैं वो एनजाइटी को बढ़ा सकती हैं। तो लिसनर्स, बेचैनी की वजह को समझना उसके इलाज की तरफ पहला कदम है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107 विद सफा। साथियों, ईद का नाम सुनते ही ना दिल बड़ा खुश सा हो जाता है। गार्डन गार्डन, नए नए कपड़े पहनने को दिल करता है, घर की सजावट होती है, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, मेहमान आते हैं, भाई मजे मजे के लजीज खाने पकते हैं और भाई तोहफों की भरमार भी शुरू हो ही जाती है। तोहफों का सिलसिला भी एक अलग ही होता है। अच्छा, ईद ना वाकई में खुशी और शेयरिंग का एक खूबसूरत मौका होता है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची है कि ईद की तैयारियों के दौरान हम कितना वेस्ट क्रिएट करते हैं? भाई देखिए, एक्स्ट्रा शॉपिंग होती है, खाना अक्सर औकात जाया करते हैं, प्लास्टिक डेकोरेशंस होती हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं और अननेसेसरी पैकेजिंग भी यूज होती है। अच्छा, खुशी मनाने के साथ साथ अगर हम थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का ख्याल भी कर लें तो क्या ही बुरा होगा, ईद का मजा दोबाला हो सकता है भाई। तो भाई, आज हम इको स्विच में बात करने जाएंगे इको फ्रेंडली ईद सेलिब्रेशंस की, यानी ईद की खुशियां भी और एनवायरनमेंट की हिफाजत भी। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर। साथियों, ईद की खुशी का मौका होता है लेकिन सेलिब्रेशंस के दौरान कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी क्रिएट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल दूं तो जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करना, प्लास्टिक बैग्स और पैकेजिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना, खाने का ज्यादा बनाना और फिर जो लोग उसे खाते हैं वो ज्यादा प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर आधा खाना वेस्ट कर देते हैं। डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज होती हैं, डिस्पोजेबल कप्स यूज होते हैं, डिस्पोजेबल कटलरी इन शॉर्ट यूज होती होती है। एक्स्ट्रा डेकोरेशंस जो सिर्फ एक बार यूज होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। हम अक्सर मेहमानों के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर लेते हैं जो मोहब्बत और खुशी की निशानी होती है। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग के साथ ना हम वेस्ट को कम कर सकते हैं और हाँ, रिसोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छा, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ इको फ्रेंडली ईद के लिए कुछ सिंपल आइडियाज जो कि हम सब अपना सकते हैं। पहली चीज तो ये कि स्मार्ट शॉपिंग करें ना। देखिए, ईद की शॉपिंग करते वक्त सिर्फ वही चीजें खरीदें जो वाकई में जरूरी हैं। क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स चूज करें जो कि ज्यादा अरसे तक यूज किए जा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें ना। हर साल नई प्लास्टिक डेकोरेशन खरीदने के बजाय कुछ ऐसी लाइट्स, फैब्रिक और डेकोरेशंस घर में मौजूद होती हैं जिनको हम क्रिएटिवली अगर इस्तेमाल करें ना तो वो मल्टीपल टाइम यूज हो सकती हैं। तीसरी चीज ये कि भाई खाने का ज्यान कम करने की कोशिश करें। देखें, ईद पर मेहमानों के लिए खाना जरूर बनाएं, मैंने मना नहीं किया। ऐसा नहीं कि मेहमान आपके घर से भूखे चले जाएं, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। लेकिन देखें, क्वांटिटी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें, बचा हुआ खाना प्रॉपरली स्टोर करें या जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम करें। अच्छा, रीयूजेबल सर्विंग आइटम्स यूज करें। डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स की जगह पर आप घर के बर्तन यूज कर सकते हैं, इससे वेस्ट भी कम होता है और मेहमान नवाजी भी ट्रेडिशनल टच के साथ हो जाती है ना। वो कुछ मेहमान होते हैं ना, कहते हैं हाँ, हमें प्लास्टिक के बर्तनों में खाना दे दिया डिस्पोजेबल में, तो उनके इस नखरे से भी आप बच जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इको फ्रेंडली गिफ्ट्स हैं। तोहफों के लिए रीयूजेबल बैग्स, प्लांट्स, हैंडमेड आइटम्स या यूजफुल गिफ्ट्स चूज किए जा सकते हैं। गिफ्ट की वैल्यू साथियों सिर्फ पैकेजिंग में नहीं होती बल्कि सोच और मोहब्बत में होती है। चलिए, इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ आपको। बहुत सी फैमिलीज अब अपनी ईद सेलिब्रेशंस में छोटी छोटी इको फ्रेंडली चेंजेस ला रही हैं। कुछ लोग ईद के कपड़ों की शॉपिंग में जरूरत और क्वालिटी को तरजीह देते हैं। कुछ फैमिलीज रीयूजेबल गिफ्ट बैग्स संभाल कर रखती हैं ताकि अगले मौकों पर उन्हें यूज किया जा सके। कुछ लोग ईद के बाद एक्स्ट्रा जो खाना बच जाता है उसको वेस्ट करने के बजाय पहले से प्लान कर लेते हैं कि भाई खाना किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चेंजेस ईद की खुशी को कम नहीं करते साथियों, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसमें एक रिस्पॉन्सिबल टच ऐड कर देते हैं। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि इस ईद एक ऐसी इको फ्रेंडली आदत जरूर अपनाएं जो इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट के लिए बेहतर हो, चाहे वो खाने का वेस्ट कम हो, रीयूजेबल आइटम्स यूज करना हो या स्मार्ट शॉपिंग करना हो। और हमें जरूर बताएं आप ईद पर सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार करते हैं।

0: फैमिली गैदरिंग्स का, खाने का या गिफ्ट्स और डेकोरेशंस का भाई। इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन एफएम 107। याद रखिए, ईद की असली खूबसूरती सिर्फ तैयारियों में नहीं होती, बल्कि खुशी बांटने और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करने में होती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर. मैं हूं आपकी आरजे माविश खान. आज हम बात करेंगे अच्छा मशवरा देने की अहमियत के बारे में. अच्छा मशवरा देना एक जिम्मेदारी भी है और एक सदका भी. जब कोई शख्स आपसे राय मांगे, उसे सच्चाई और खुलूस के साथ बेहतरीन मशवरा देना चाहिए. अक्सर लोग बिना सोचे समझे मशवरा दे देते हैं, जो कभी कभी दूसरे के लिए मुश्किल पैदा कर देता है. लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर बात समझकर और नियत साफ रखकर गाइड करें. अच्छा मशवरा देने का मतलब ये है कि हम दूसरे के लिए भी वही सोचें जो अपने लिए पसंद करते हैं. इसमें ऑनेस्टी और कंसर्न दोनों शामिल होते हैं. आज का अमल ये है कि जब भी कोई आपसे राय मांगे तो उसे ध्यान से सुने और ईमानदारी के साथ मशवरा दें. ये था हमारा आज का मैसेज. आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महवश के साथ.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One Step to 2030.
3: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की. आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां टेक्नोलॉजी की तरक्की बहुत तेजी से हो रही है, और इसी तरक्की में से एक अहम फील्ड है स्पेस एक्सप्लोरेशन. जी हाँ, पहले स्पेस मिशन सिर्फ चंद सुपर पावर कंट्रीज तक महदूद थे, लेकिन आज अमेरिका, चाइना, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, इंडिया भी स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है. और इसी कंपटीशन को अक्सर कहा जाता है न्यू स्पेस रेस. शायद आपने ये टर्म या ये वर्ड तो सुन रखे होंगे. देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना नहीं है. इसमें प्लैनेट्स की रिसर्च है, सैटेलाइट्स लॉन्च करना है, मून और मार्स मिशन है, और नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट भी शामिल है. साथ ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI, रोबोटिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और स्मार्ट सेंसर्स भी स्पेस प्रोग्राम्स का

एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सैटेलाइट्स क्या हैं और ये हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करते हैं। देखिए, सैटेलाइट्स एक मशीन होती है जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, जीपीएस नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सब सैटेलाइट्स की वजह से मुमकिन है। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारी लाइफ या हमारी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, राइडिंग हेलिंग एप्स यूज करते हैं या वेदर अपडेट रखते या देखते हैं, तो असल में आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे होते हैं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी में स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी गहरी अहमियत रखती है। न्यू स्पेस रेस की वजह से इनोवेशन और रिसर्च में बहुत तेजी आ रही है। कंपनीज जैसे SpaceX, ब्लू ओरिजिन नए रॉकेट्स और रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं। इससे स्पेस मिशंस की कॉस्ट कम हो रही है और फ्यूचर में आम लोगों के लिए स्पेस टूरिज्म

0: समझना और उसका मुकाबला करना आसान होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल स्पेस मिशन में नए इन्वेंशंस को जो है वो समझने का मौका देगा। जैसे पहले बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो आज हम स्मार्टफोन्स में देखते हैं, उनकी बुनियाद स्पेस रिसर्च में रखी गई थी। इस फील्ड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। स्पेस इंडस्ट्री नई जॉब्स पैदा कर रही है। इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के लिए नए करियर ऑप्शंस पैदा हो रहे हैं। इससे मुल्क की इकोनॉमी और साइंटिफिक प्रोग्रेस दोनों को फायदा होता है। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ सितारों तक पहुंचने का ख्वाब नहीं है, बल्कि इंसानी तरक्की का एक अगला मजबूत कदम है। आज जो रिसर्च स्पेस में हो रही है, वो कल हमारी जिंदगी को ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा एफिशिएंट बनाएगी। न्यू स्पेस रेस इंसानियत को इनोवेशन, नॉलेज और डिस्कवरी की कई नई मंजिलों तक लेकर जा रही है। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स को नहीं समझेंगे, बल्कि अपनी जमीन को भी बेहतर बना सकेंगे। मुस्तकबिल उन्हीं कौमों का होगा जो साइंस, इनोवेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन की अहमियत को समझकर आज से उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो चलिए आज से इसकी तैयारी शुरू करते हैं। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
1: फ्रॉड अवेयरनेस।
2: एक बिजी शेड्यूल के बीच में आपको कॉल आती है।
3: हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है, अभी जो OTP आया है प्लीज बता दीजिए, वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा।
2: एक OTP आप बताते हैं और अकाउंट खाली हो जाता है। सलामुअलैकुम, मैं हूँ वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड को कहते हैं OTP फ्रॉड। दुनिया का सबसे फास्ट स्कैम माना जाता है। स्कैमर बैंक, कुरियर, पेमेंट ऐप बन के कॉल करता है, OTP मांगता है और जैसे ही आप अपना OTP शेयर करते हैं, गेम ओवर। याद रखिए, OTP यानी वन टाइम पासवर्ड सिर्फ आपके लिए होता है। बैंक, पुलिस, कुरियर कोई भी OTP नहीं मांगता और ऐसी कॉल में हमेशा वो अर्जेंसी दिखाते हैं। जल्दी बताइए नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी बताइए वरना ये प्राइस निकल जाएगा। वो एक अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और हावड़ तावड़ में आप अपना OTP बता देते हैं। यानी अर्जेंसी इज इक्वल टू बिगेस्ट रेड फ्लैग। तो ध्यान रखिए, OTP कभी शेयर मत कीजिए। कॉल आए तो कट करो, खुद ऑफिशियल नंबर पे कॉल करो और अगर OTP दिया तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करो। एक OTP, एक सेकंड और जिंदगी भर का रिग्रेट।
1: सतर्क रहें, सावधान रहें। फ्रॉड अवेयरनेस
0: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: कर न जा, मर्जी ये हक यही है तुम मोड़ कर न जा, मर्जी ये हक यही है तुम मोड़ कर न जा।
1: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
2: हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में मुतअद्दिद जगहों पर आया है, जैसे सूरह अल अंबिया, सूरह स्वात। कुरान उनकी इस्तकामत, सबर और अल्लाह की रहमत पर इत्मीनान की तालीम देता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी आज भी मुसलमानों के लिए सबर और अल्लाह पे तवक्कुल की बेहतरीन मिसाल है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी सबर की बेहतरीन मिसाल है। सबर का मतलब सिर्फ तकालीफ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना भी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी, माली नुकसान और बच्चों की मौत के बावजूद अल्लाह की रजा पे राजी रहे। आज की दुनिया में भी मुश्किलात जैसे बीमारी, माली मसाइल या खानदानी मुश्किलात आ सकती हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल हमें ये सिखाती है कि हर मुश्किल में सब्र और इस्तकामत ज़रूरी है। जब भी इंसान मुश्किलात में मुबतला हो, वो फौरन शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करे और सब्र इख्तियार करे। सब्र करने वाला बंदा अल्लाह के नज़दीक आला मकाम रखता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी दौलत और सेहत में भी शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत सी नींदें दी थी, ज़मीन, मवेशी, दौलत, ख़ानदान और सेहत। जब ये नींदें छिन गईं, तब भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फ़ैसले पर सब्र किया और शुक्रगुजारी का रवैया बरकरार रखा। शुक्रगुजारी सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि दुख और मुश्किलात में भी अल्लाह पे भरोसा रखना शुक्र का हिस्सा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें छोटी बड़ी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सेहत, घर, रोज़गार और अहले खाना का शुक्र बचा लाना इंसान के दिल को सुकून देता है। अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत थी। जब सब कुछ ख़त्म हो गया और बीवी के अलावा कोई उनके साथ न रहा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और यकीन किया कि अल्लाह की रहमत हर मुश्किल से बड़ी है। इंसान को चाहिए कि हर मामले में अल्लाह पे भरोसा रखे, ख्वाह माली नुकसान हो या बीमारी। दुआ और अल्लाह पे यकीन इंसान को जहनी सुकून फराहम करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलात का मकसद सिर्फ दुख देना नहीं होता। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला ताकि उनका सब्र, इस्तकामत और अल्लाह की रजा पर यकीन दुनिया के लिए मिसाल बने। हर इब्तला इंसान को मजबूत बनाती है और ईमान को पुख्ता करती है। जब इंसान किसी मुश्किल में मुबतला हो, तो उसे समझना चाहिए कि आजमाइश है और अल्लाह के नज़दीक सब्र करने वाला बंदा आला मकाम पाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने हर मुश्किल में उनके साथ रह के खिदमत की। बीवी की वफादारी और मदद ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र की ताकत दी। अहले खाना का साथ इंसान को मुश्किलात में हौसला देता है और इंसानी रिश्तों की अहमियत को जाहिर करता है। मुश्किल वक्त में अहले खाना और दोस्तों का साथ अहम है। हमें भी दूसरों के दुख में शरीक होना चाहिए और मदद फरहम करनी चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने फौरन कबूल की। दुआ और अल्लाह की तरफ रुजू करना हर आजमाइश में सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ शिफा दी, बल्कि उनकी दौलत और ख़ानदान भी वापस की। मुसलमान को चाहिए कि हर मसले में अल्लाह से दुआ करे, क्योंकि दुआ इंसान के दिल को सुकून देती है और अल्लाह के करम की वसी राहें खोलती है। लिसनर्स, यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुनते रहें एफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी एक सबक है कि इंसान को हर हालत में अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखना चाहिए। दौलत, सेहत या मुश्किलात में हमेशा अल्लाह की मर्जी और फैसले पे राजी रहना ही कामयाबी है। दुनियावी नेमात आरजी हैं, असल सुकून अल्लाह की रजा है। जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखें, चाहे खुशी का वक्त हो या दुख का, अल्लाह की रजा को सबसे मुकद्दम रखें। इंसान को यही हकीकी कामयाबी देता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई और अपने आखिरी दिनों तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। उनकी जिंदगी की लंबी मुद्दत ये जाहिर करती है कि अल्लाह के नज़दीक सब्र और इस्तकामत का सिला दुनिया में भी दिया जाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने आखिरी अयाम में भी सब्र और शुक्रगुजारी का अमली मुजाहरा करते रहे। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते, दुआओं में मसरूफ रहते और अपनी कौम के लोगों को सब्र इस्तकामत की तालीम देते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि एक जिंदा सबक है जो हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई फरहम करता है। उनकी लेगेसी को चंद अहम पहलुओं में तकसीम किया जा सकता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी मिरास उनका सब्र और इस्तकामत है। वो हर किस्म के दुख, बीमारी और माली नुकसान में अल्लाह की रजा पे राजी रहे। दुनिया में कुरान और हदीस में उनका जिक्र हमेशा सब्र की आला मिसाल के तौर पे किया गया है। आज भी मुसलमानों और इंसानियत के लिए उनकी जिंदगी सब्र और साबित कदमी की रहनुमाई देती है। हर मुश्किल में सब्र इख्तियार करना और अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तालीम का हिस्सा है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुख और बीमारी के दौरान भी अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखा और दुआ की। उनकी दुआ का कबूल

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
5: माहिरीन की राय पर।
4: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
5: हेल्थ गाइड,
4: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
5: इलाज और एहतियात तक।
4: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
5: दिल से देसी।
4: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
6: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
7: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

लोगो, तुम ही अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह तो गनी व हमीद है। वो चाहे तो तुम्हें हटाकर कोई नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसके बार का एक अदना हिस्सा भी हटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को मुतनब्बेह कर सकते हो जो बेदेखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। जो शख्स भी पाकीजगी इख्तियार करता है अपनी ही भलाई के लिए करता है, और पलटना सबको अल्लाह ही की तरफ है। अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं है, न तारीकियां और

रोशनी यकसां है, न ठंडी छांव और धूप की तपिश एक जैसी है, और न जिंदे और मुर्दे मुसावी हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सुनवाता है, मगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून हैं। तुम तो बस एक खबरदार करने वाले हो। हमने तुमको हक के साथ भेजा है, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर। और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें कोई मुतनब्बेह करने वाला न आया हो। अब अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी झुटला चुके हैं। उनके पास उनके रसूल खुले दलाइल और सहीफे और रोशन हिदायत देने वाली किताब लेकर आए थे, फिर जिन लोगों ने न माना उनको मैंने पकड़ लिया, और देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी।

जिसमें कोई सबक लेना चाहता तो सबक ले सकता था, और तुम्हारे पास मुतनब्बेह करने वाला भी आ चुका था। अब मजा चखो, जालिमों का यहां कोई मददगार नहीं है। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की हर पोशीदा चीज से वाकिफ है। वो तो सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है। अब जो कोई कुफर करता है उसके कुफर का वबाल उसी पर है, और काफिरों को उनका कुफर इसके सिवा कोई तरक्की नहीं देता कि उनके रब का गजब उन पर ज्यादा से ज्यादा भड़कता चला जाता है। काफिरों के लिए खसारे में इजाफे के सिवा कोई तरक्की नहीं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने देखा भी है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते हो? मुझे बताओ, उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या आसमानों में उनकी क्या शिरकत है? अगर ये नहीं बता सकते तो इनसे पूछो, क्या हमने इन्हें कोई तहरीर लिखकर दी है जिसकी बिना पर ये अपने शिर्क के लिए कोई साफ सनद रखते हो? नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे को महज फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ही है जो आसमानों और जमीन को टल जाने से रोके हुए है, और अगर वो टल जाएं तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है।